हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: अरे भैया, खेती और फायदे का सौदा।
1: और क्या, हमारे यूपी में पहले केवल पारंपरिक खेती होती थी। अब ट्रैक्टर्स, मॉडर्न मशीनों और डिजिटल तकनीकों की मदद से किसान और कृषि दोनों स्मार्ट हो गए हैं।
0: अच्छा
1: भैया, किसानों की बढ़िया ट्रेनिंग, आर्थिक मदद और प्रोत्साहन से यूपी में अनाज, दूध, पशुपालन, हर चीज का उत्पादन बढ़ चुका है।
0: अरे वाह,
1: सरकार का फोकस ही इस पर है कि किसानों को बढ़िया दाम मिले, बिचौलियों को छुट्टी मिले और कस्टमर को अच्छा सामान मिल पाए।
0: शुक्र है, डबल इंजन सरकार है।

0: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
1: एक नए इतिहास के
2: नव निर्माण के 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश बना कनेक्टिविटी का केंद्र। 22 एक्सप्रेसवे, 90 राष्ट्रीय राजमार्ग, 16,000 किलोमीटर रेल नेटवर्क, हर क्षेत्र में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर,
3: जलमार्ग, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और एयरपोर्ट निवेश विकास को दे रहे नई दिशा। रेल, रोड, जलमार्ग और एयर कनेक्टिविटी हर नागरिक को जोड़ रही है विकास से। गर्व है इस बदलते उत्तर प्रदेश पर।
2: 2 से 22 एक्सप्रेसवे, बेहतर सड़कें, तेज कनेक्टिविटी, हर शहर हर गांव जुड़ रहा है विकास से। रेल, रोड और जलमार्ग बना रहे हैं उत्तर प्रदेश को मजबूत,
3: कनेक्टिविटी से समृद्ध। यही है नए उत्तर प्रदेश की पहचान।

0: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष

मुख्य समाचार। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने कहा, म्यांमार भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। उत्तराखंड का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खुला। एशियाई खेल 2026 से पहले टॉप समूह में 22 नौका चालक शामिल। और हॉकी में अंडर 18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1

0: गुटों का मुद्दा भी उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि म्यांमार के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमार की धरती का इस्तेमाल नहीं होगा।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
0: दोनों देशों के बीच मुख्य रूप से व्यापार और आर्थिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, विकास सहयोग और क्षेत्रीय स्थिति पर बातचीत हुई। म्यांमार भारत का रणनीतिक पड़ोसी देश है और इसकी 1640 किलोमीटर लंबी सीमा नागालैंड और मणिपुर सहित भारत के कई पूर्वोत्तर राज्यों से लगी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने भी श्री ऑनलाइन से मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। 5 दिन की भारत यात्रा पर राष्ट्रपति ऑनलाइन व्यापार और उद्योग जगत से बातचीत के लिए आज मुंबई जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भारत और अमरीका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में सचिव दर्पण जैन वार्ताकार हैं और अमरीका ब्रैंडन लिंच रहे। दोनों पक्षों ने 3 फरवरी को समझौते के पहले चरण की रूपरेखा घोषित की थी। रूपरेखा पर सहमति बन जाने पर 7 फरवरी को संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया। अब समझौते के लिए कानूनी पक्ष बनाया जाना है। अमरीका पिछले वित्त वर्ष में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी प्रवक्ता बैठक में पिछले 12 वर्ष के दौरान मोदी सरकार की सेवा, संगठनात्मक विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच को बढ़ाने के प्रयासों पर विचार विमर्श हुआ। 12 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का साक्षी सरकार को देश में सेवा का अवसर मिला है।

0: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई।
1: प्रधानमंत्री जन धन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिहीन जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं के बैंक

अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त एक शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने आजमगढ़ जिले से एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिस पर पाकिस्तान

0: की ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में गड़बड़ी की जांच शुरू होने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की आला अधिकारियों के साथ मंत्रणा को दूसरा शीर्ष समाचार बनाया है। हिंदुस्तान ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के कथन को पहली खबर बनाते हुए लिखा है, अमेरिका से व्यापार समझौता जल्द। वीर अर्जुन ने म्यांमा के राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भेंट का चित्र सबसे ऊपर प्रकाशित करते हुए म्यांमा के राष्ट्रपति के बयान को सुर्खी बनाया है, भारत के खिलाफ म्यांमा की धरती का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दैनिक भास्कर ने अपने संपादकीय में भारतीय रिजर्व बैंक की नीति निर्धारक इकाई के 3 से 5 जून के मध्य लिए जाने वाले फैसलों का विश्लेषण किया है। शीर्षक दिया है, महंगाई से गरीबों को बचाने पर फोकस होना चाहिए। पत्र याद दिलाता है कि पिछले 10 वर्षों में खाद्यान्नों की कीमतें इलेक्ट्रॉनिक सामान के मुकाबले ज्यादा बढ़ी हैं।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार।

0: मैंने सभी लोगों की हील कर दी है।
1: वाओ लवली मैम, बहुत ही बढ़िया, ऐसे लोगों के लिए सल्यूट जाता है, प्लीज मैम।
0: बाकी जैसे हम लोग मैंने थायराइड के भी 2-3 पेशेंट्स को ठीक किया है।
1: वाओ।
0: तो उनका थायराइड बहुत ज्यादा था, तो अब उनका जब वो नॉर्मल, मैं उनसे कहती रहती हूँ, उन्होंने मेडिसिन नहीं, क्योंकि उनकी ऑलरेडी मेडिसिन स्टार्ट हुई थी जब वो मेरे पास आए थे।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: तो मैंने उन्हें मेडिसिन छोड़ने के लिए नहीं बोला था, साथ में उनकी मेडिसिन भी चल रही थी। मैंने उनको डाइट गाइडेंस दी, मैं सबको पर्सनलाइज्ड डाइट गाइडेंस देती हूँ, तो हाँ, तो डाइट गाइडेंस दी, फिर उसके बाद मैंने उनको योगा कराया, तो उससे उनका हील हो गया। काफी चीजें हम हीलिंग भी साथ में कराते हैं, काफी चीजें, खाली एक योगा ही नहीं, काफी चीजें कराते हैं, तो उससे वो लोग हील हो जाते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं।
1: भाई मैं तो मैम की बातों में खो गया हूँ भाई, मुझे लग रहा है मुझे कोई जगाओ, मेरे को उठाओ। मैं आपको सच बता रहा हूँ, इतनी प्यार से एक्सप्लेन कर रही है ना, आपको सुनने में जितना मजा आ रहा है, मेरे को तो देखने में और उनकी बातें सुनने में उतना ही मजा आ रहा है। एक तो नाम आनंद, ऊपर से बातें आनंदित वाली हो रही हैं, और जब बात हेल्थ की होती है तो डबल आनंद आता है, क्योंकि हमें, हम कुछ भी करें बट अपनी हेल्थ के लिए ना हमेशा हमें रेडी रहना चाहिए, जब भी आपको टाइम मिले। अच्छा मैम, टाइम से मुझे याद आया एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में ना रैंडम आते हैं, सॉरी, वो ऑन द स्पॉट चलता है, सेंस ऑफ ह्यूमर। तो मैं पूछ रहा था, क्या योगा करने का सिर्फ मॉर्निंग ही है या फिर हम शाम को भी कर सकते?
0: नहीं, हम इवनिंग में भी कर सकते हैं।
1: ओके।
0: हाँ, उसके पहले सिर्फ हमें 2.5 आवर का थोड़ा सा बीच में फूड अवॉइड करके 2.5 आवर का ब्रेक लेना होगा।
1: ब्रेक लेना होगा। उसके बाद हम
0: continue. उसके बाद हम कर सकते हैं।
1: ऑल राइट, मतलब फिर कोई इशू नहीं है।
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: परफेक्ट।
0: इवनिंग बैचेस भी चलते हैं, तो सब लोग 2.5 आवर पहले ही लंच कर लेते हैं, उसके बाद मेरे साथ ज्वाइन हो जाते हैं।
1: That's very nice. आप चलिए,
0: ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही सेशन।
1: अब चलिए मैम की ऑनलाइन और ऑफलाइन सेशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, वो कैसे अपनी सर्विस प्रोवाइड करा रही है मुरादाबाद की लेडीज को, और क्या कुछ स्पेशल होता है उनके इस सेशन के अंदर, कितने क्लासेस वो देते हैं और क्या क्या चीजें हैं वो जो प्रोवाइड कराती हैं, अगर आप उनसे कनेक्ट होना चाह रही है, चाह सिर्फ मेल का है या फीमेल का, ये भी हम जानेंगे। डोंट वरी, आप बने रहो और सुनते रहो FM मुरादाबाद 89.6। योगा एक्सपर्ट रुचि मदान जी मेरे साथ हैं, मेरा नाम आनंद है, और आपको आनंदित करने के लिए, आपकी हेल्थ पर और ढेर सारी बातचीत करने के लिए अपने साथ लेकर आया हूँ एक फैंटास्टिक मैम को, जिनका नाम रुचि मदान है। सो ग्लैड यार, क्योंकि उनसे मैं बात करता रहता हूँ, उनका मैं जब भी स्टेटस देखता हूँ मुझे भी एक मोटिवेशन आता है, बट हाँ वो बात अलग है, मैं थोड़ी देर के बाद भूल जाता हूँ, बट अब नहीं भूलूंगा, क्योंकि अब मैम मेरे को मंत्र सिखा के जाने वाले हैं यहाँ पे लाइव। अच्छा मैम, ओम चेंडिंग की मैं बात करता हूँ, सबसे पहले वंस अगेन वेलकम बैक। और ओम चेंडिंग की अगर बात करें तो ओम चेंडिंग करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं?
0: देखिए, ओम चैंटिंग में रोज अपने स्टूडियो जब हमारे साथ योग
1: हाँ,
0: कराते
1: हाँ,
0: हैं
1: हाँ, हाँ,
0: तो हर बैच में ओम चैंटिंग अलग से होता है।
1: ओके।
0: क्योंकि ये एक बहुत पावरफुल ओमकार मंत्र है, जो मतलब हमारे सनातन धर्म की संस्कृति से ही रिलेटेड है।
1: ओके।
0: तो ओम का जाप करने से हमारी 72,72,210 नाड़ियाँ एक्टिवेट हो जाती
1: है। वाओ, एक बार रिपीट कर देंगे, मैं भूल जाऊंगा, दोबारा बता दो आप।
0: 72,72,210
1: नाड़ियाँ
0: एक्टिवेट हो जाती हैं ओम का उच्चारण।
1: अरे वाह, कितनी देर तक कर सकते हैं ओम चैंटिंग में?
0: ओम चैंटिंग आप जैसे हम लोग तो 3 times कराते हैं, 3, 5, 7 इस तरीके से,
1: मतलब ऑड अलग अलग कैटेगरी
0: ऑड फिगर्स में ओम चैंटिंग कर सकते हैं।
1: ऑल राइट, ठीक है।
0: तो इसको करने का भी तरीका होता है जो okay. हम मतलब मेथड से कराते हैं। ओम चैंटिंग से हमारी पूरी बॉडी वाइब्रेशन हो जाती है,
1: ठीक है।
0: तो अभी क्या कहते हैं, हम लोग इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से भी कराते हैं। Okay. और इससे ओम चैंटिंग से रिलेटेड हम लोग अपना प्रज्ञा योग भी कराते हैं। तो प्रज्ञा योग इतना पावरफुल है जो कि ओम से ही कनेक्टेड है।
1: ऑल राइट,
0: तो प्रज्ञा योग में हम क्या करते हैं, उससे हमारा स्टूडेंट्स के लिए बहुत पावरफुल है वो, और हमारी मेंटल एबिलिटी बढ़ती है उससे, हमारा कंसंट्रेशन, मेंटल पावर इम्प्रूव होती है प्रज्ञा योग से, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में ऊपर जो हमारा वायुमंडल है वहाँ पे हमेशा, सनातन धर्म में ये माना जाता है कि हमेशा ओम की वाइब्रेशंस होती रहती है, चलती रहती है,
1: चलती रहती है।
0: तो उसकी वाइब्रेशंस को प्रज्ञा योग में हम अपने भीतर लेते हैं।
1: Okay.
0: तो उसके करने के बाद जब भी वो सब लोग करते हैं, उसके बाद सब लोग, एक तो उससे बॉडी की टोनिंग तो होती ही है जो प्रज्ञा योग हम करते हैं, और उसके साथ हमारी मेंटल एबिलिटी भी इम्प्रूव होती है, और सब लोग इतने हैप्पी हो जाते हैं उसको करने के बाद, बहुत सब लोग रिलैक्स और काम फील करते हैं।
1: That's very nice. तो मुझे लग रहा है रुचि मैम से एक बार ओम चेंडिंग करा ले क्या? क्या हम अभी लाइव चेंडिंग कर सकते हैं ओम की? पॉसिबिलिटी है,
0: कर सकते,
1: ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ, मैं थोड़ी देर के बाद आंखें खोल लूंगा। वेल, आंखें मीच के ओम चेंटिंग करते हैं, आंखें खोलिए, पहले ये बताओ।
0: देखिए, जब हम प्रेयर करते हैं स्टार्टिंग में,
1: ठीक है, ठीक है,
0: हमारा सेशन प्रेयर से स्टार्ट होता है।
1: हाँ जी,
0: तो हम जब प्रेयर करते हैं तो हम आईज क्लोज ही रखते हैं,
1: ठीक है,
0: आईज नहीं खोलते।
1: कुछ लोग कहते हैं जब हम आईज क्लोज करते हैं या जब हम कोई भी उच्चारण करते हैं तो बड़ी नेगेटिविटी मन में आने लगती है, हमारा मन बहुत भटकता है।
0: एक्चुअली जिनको थोड़ा सा मेंटली, जो लोग डिस्टर्ब होते हैं, जिनको थोड़ा डिप्रेशन का इश्यू होता है, तो वो लोग आईज क्लोज करके नहीं कर पाते।
1: Okay.
0: तो उनको मैं अलाउ कर देती हूँ।

0: आप आईज खोल के ही कर लो, क्योंकि उनको हेडेक या ये सब प्रॉब्लम
1: राइट।
0: लेकिन एक मेरे पास डिप्रेशन के भी पेशेंट हैं, तो उनकी वो अब काफी इम्प्रूव्ड है और उनको अब ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती।
1: अरे वाह, ब्यूटीफुल। तो हम भी ट्राई करके देखें मैम, एक छोटा सा, कितनी देर तक करना होगा?
0: आज तो हम शॉर्ट करेंगे ना,
1: ठीक है? तो ठीक है, रुचि मैम मुझे सिखाने वाली है ओम चैंटिंग। गाइस एक्सक्लूसिवली लाइव रेडियो पे पहली बार आप ओम चैंटिंग सुनोगे, अनबिलीवेबल यार, मुझे तो एक्साइटमेंट हो रही। कैसे करेंगे हम, कैसे शुरू करना है आप बताइए। दोस्तों आप भी हमारे साथ ट्राई करिएगा, जो भी लोग सुन रहे हैं प्लीज ट्राई करिए, आपको बहुत आनंद आएगा, मैं सच बता रहा हूँ, एंड आपको बहुत मजा आएगा। तो मैम शुरू करें? ठीक है, सबसे पहले क्या करना होगा, आंखें बंद कर दीजिए।
0: सबसे पहले हम लोग, आज तो हम लोग चेयर पर बैठे हैं,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन जो लोग नीचे नहीं बैठ पाते वो चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं।
1: अच्छा, अलाउ है ये भी?
0: हाँ जी हाँ,
1: ओके ठीक है,
0: चेयर पे बैठ के कर सकते हैं, लेकिन जो लोग बैठ सकते हैं वो अपने पृथ्वी तत्व से जुड़े और जमीन पर बैठ कर ही करें।
1: ठीक है ठीक है,
0: तो सबसे पहले हम अपनी कमर गर्दन और कंधे सीधे करके बैठ जाते हैं, स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट कर लेते हैं,
1: ओके,
0: अपनी आईज को क्लोज करते हैं,
1: ठीक है,
0: और सबसे पहले हम 5 ब्रेथ्स लेते हैं,
1: ओके,
0: अपने आप को थोड़ा सा ऊर्जान्वित करने के लिए 5 ब्रेथ्स लेते हैं, लॉन्ग एंड डीप इनहेल एंड एक्सहेल,
1: ओके,
0: लॉन्ग एंड डीप इनहेल, स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल एक्सहेल, लॉन्ग एंड डीप इनहेल, स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल एक्सहेल। अपने लंग्स में, अपने डायफ्राम में अच्छे से प्राण ऊर्जा को भरेंगे और एक्सहेलेशन कर देंगे। हर इनहेलेशन के साथ एक पॉजिटिविटी हमारे भीतर आएगी और हर एक्सहेलेशन के साथ सारी नेगेटिविटी बाहर आ जाएगी। 5 टाइम्स लॉन्ग एंड डीप इनहेल करने के बाद हम अपने ध्यान को आईज क्लोज ही रखेंगे, हम अपने ध्यान को अपने आईब्रोज के सर में आज्ञा चक्र पर लेकर जाएंगे, जहां पर हम अपना तिलक लगाते हैं वहां पे अपने ध्यान को लेकर 5 टाइम्स अपने मन को शांत करते हुए आराम से नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। लंबी गहरी श्वास लें, छोड़ें, श्वास लें, छोड़ें, श्वास लें, छोड़ें। एक बार फिर से लंबी गहरी श्वास लें, छोड़ें, श्वास लें, छोड़ें। अपने मन को शांत करेंगे, माथे को रिलैक्स करेंगे, खुद को योग के लिए तैयार करेंगे, अपनी माइंड, अपनी बॉडी और सोल को योग के लिए प्रिपेयर करेंगे। माथे पर ध्यान देते हुए, अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान देते हुए ओमकार का जाप करेंगे। 3 बार ओम चैंटिंग करेंगे। ओमकार शब्द, ओम जो शब्द है वो हमारा 3 अक्षरों से मिलकर बना है, आ, ऊ और मा। तो इसको उच्चारण करने का सही तरीका मैं आज आपको बताऊंगी। आ का उच्चारण थोड़ा कम देर के लिए, ओ का उच्चारण उससे थोड़ा ज्यादा, और माँ का उच्चारण थोड़ा डीप करते हैं। सबसे ज्यादा लॉन्ग हम माँ का उच्चारण करते हैं, जिससे हमारे गर्दन से लेके पूरे ऊपर सहस्त्रार चक्र, जो हमारे सिर के ऊपर एक चक्र होता है सहस्त्रार चक्र, वहां तक वाइब्रेशंस आती हैं। तो स्टार्ट करेंगे, पहले लॉन्ग एंड डीप इनहेल,

0: इसके बाद हम गायत्री मंत्र का जाप करवाते हैं 3 बार और इसके बाद हम लोग पामिंग करते हैं, अपने दोनों हाथों को रब करते हैं हमारे दोनों हाथों में। हमारी पूरी बॉडी की तंत्रिकाओं का जाल होता है, उसको पामिंग करके अपने सबसे पहले आईज पर, अपने चेहरे पर, माथे पर और कानों पर लगाते हैं, इसको स्पर्श कराते हैं और जो भी पॉजिटिव ऊर्जा हमें प्राप्त हुई है वो अपनी बॉडी को प्रदान करते हैं। धीरे अपनी आंखें हाथों में ही खोलते हैं। इसको करने के बाद हमारी पूरी बॉडी रिलैक्स्ड और काम हो जाती है, एक बॉडी में एनर्जी आ जाती है और हम अपने आगे का योग और एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर देते हैं।
1: मेरे को तो इतना मजा आया गाइस, लिटरली मतलब नो वर्ड्स, दिस इज अमेजिंग। मैं इतना पॉजिटिव और मैं थोड़ी देर के लिए तो दूसरी दुनिया में पहुंच गया था मैम, अनबिलीवेबल यार। गाइस आपने रेडियो पे पहली बार कुछ इंटरेस्टिंग सुना है एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट दिस इज मतलब अनबिलीवेबल, बहुत ही अल्टीमेट था ये। रुचि मैम ये क्या करा दिया आपने, मेरे को लग रहा है मुझे लग रहा था मैं दूसरी दुनिया में पहुंच गया हूँ, बट इतनी पॉजिटिविटी, इतनी सकारात्मकता और जो एनर्जी थी ना बहुत ही अलग थी। मतलब इतना डीपली कैसे आप लोग चले जाते हो?
0: अभी तो ये स्टार्टिंग है ओम चैंट, इसके बाद हम जब गायत्री मंत्र कराते हैं और मेडिटेशन कराते हैं तो सब लोग इतना अच्छा फील करते हैं और सब लोग, जो लोग रिलैक्स इतने हो जाते हैं, जो लोग रात को जिनकी नींद पूरी नहीं होती और जो लोग सो नहीं पाते वो लोग सो भी जाते हैं योग निद्रा में और मेडिटेशन में।
1: वाओ मैम मुझे भी क्लासेस चाहिए। आप मेल्स को नहीं देते ना, प्रॉब्लम ये है शायद।
0: नहीं हाँ। आप मेल्स का ग्रुप बना लीजिए।
1: पक्का चलो गाइस, जो जो मैम से ये क्लासेस लेना चाहते हैं मुझे व्हाट्सएप कर देना या इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, रेडियो वाला आनंद 95 के नाम से मिलता हूँ, डोंट फॉरगेट वहाँ भी फॉलो करिएगा, वहाँ पर भी आपको मैं मिल जाऊंगा। कुछ भी क्वेरीज है मेरे साथ, जितने भी लोग योगा करना चाहते हैं मैम के साथ मिलके सीखना चाहते हैं, सोचो मेरे को 2 मिनट के अंदर इतना आनंद आ गया, जब हम प्रैक्टिकल मैम से सीखेंगे तो कितना मजा आएगा, सच में बता रहा हूँ। जो भी इंटरेस्टेड है व्हाट्सएप कर देना। तो ये छोटी छोटी एक्सरसाइज करके
0: मैं आपको एक मुद्रा और बहुत ही जो इम्पोर्टेंट है
1: प्लीज
0: और सबके लिए बहुत नेसेसरी है वो बताना चाहती हूँ, वो है वायु मुद्रा।
1: वायु मुद्रा,
0: तो वायु मुद्रा से जैसे हमारी बॉडी में पेन्स होते हैं, जो भी किसी को कोई भी पेन्स है, हेडेक है, सियाटिका है, स्लिप डिस्क है, कोई भी किसी भी तरीके का बॉडी में पेन है, तो अगर हम वायु मुद्रा 15 मिनट्स के लिए लगा लें तो हमारी बॉडी हील होने लगती है और हमारी बॉडी के पेन्स चले जाते हैं।
1: वाओ क्या बात है, ये तो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज भी है कि आप मतलब इन चीजों से भी अपने आप को काफी हद तक ठीक कर सकते हैं, सही कर सकते
0: जी,
1: हैं
0: जी।
1: स्ट्रेस का कितना जो है योगा से बेनिफिट होता है?
0: देखिए स्ट्रेस का तो 100% बेनिफिट होता है।
1: ओके
0: अगर आप योगा और एक्सरसाइज करते हैं
1: जी,
0: तो उससे भी आपको हैप्पीनेस मिलती है, आप अपनी बॉडी के एक एक पार्ट्स पे के लिए अवेयर होते हैं और आपका स्ट्रेस योग करने से अपने आप ही चला जाता है। आप आधा घंटा योग करके देखें, आपका स्ट्रेस एकदम से ही गायब हो जाएगा, ये मैं अपने सेल्फ एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ।
1: वाओ दैट्स वेरी नाइस मैम, थैंक यू सो मच। सुबह सुबह आपने हमारे सुनने वालों को तमाम जानकारियां दी, आपने मोटिवेट किया। मैं जाते जाते
0: मेडिटेशन तो है ही भाई आपको स्ट्रेस से दूर करने के लिए।
1: कई लोग मेडिटेशन के बारे में बोलते हैं कि हमारा ध्यान बहुत भटकता है, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो बड़े सारे ख्याल आते हैं और मन जो है लगता ही नहीं है स्थिरता के साथ।
0: देखिए मेडिटेशन करने का एक तरीका होता है जो हम गाइडेड मेडिटेशन कराते हैं,
1: ओके,
0: उसमें डेफिनेटली 100% ध्यान लग जाता है,
1: ओके,
0: और बैठे बैठे अपनी मैट पे जिस भी जगह पर जाना चाहे वहाँ जा सकते हैं।
1: क्या बात,
0: हमें कहीं मंदिर और गुरुद्वारों में कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, अगर हम चाहें तो अपनी मैट पे ही बैठ के मेडिटेशन आराम से कर सकते हैं।
1: अरे वाह, इससे अच्छी बात तो फिर कुछ हो ही नहीं सकती है। रुचि मैम थैंक यू सो मच, सुबह सुबह आप आए और आपने हमारे तमाम सुनने वालों को बहुत ही बेहतरीन लाजवाब जानकारियां दी, स्पेशली हेल्थ को लेकर। आप क्या कहना चाहेंगी जाते जाते, कोई संदेश आप देना चाहें?
0: मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि हमें अपनी दिनचर्या में जैसे हम अपने डेली और अपने कार्य करते हैं वैसे ही हमें योग को भी अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेना चाहिए, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे और अपने दैनिक कार्य आराम से कर पाएंगे। इसमें यह भी बोलना चाहती हूँ थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करते हुए कि ये भगवत गीता में भी बोला गया है, भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि योगा कर्मसु कौशलम, योग करने से हमारे कर्मों में कुशलता आती है।
1: क्या बात है,
0: तो अगर हमने योग कर लिया और उसके बाद जब हम अपना कोई भी वर्क करेंगे, ये मेरा खुद अपनाया हुआ ये देखा हुआ है सभी के प्रति, मैंने जो भी लोग मेरे यहाँ आते हैं तो उनके कार्यों में अपने आप ही कुशलता आने लगती है, एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और उनके काम सारे सारे अच्छे होने लगे।
1: ये तो खैर मुझे भी नहीं पता था मैम, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने बता दी। अच्छा मैम, आप एक विमेन हैं और एक विमेन के लिए इतनी सारी चीजें करना इट्स नॉट इजी, है ना।
0: yes,
1: हर
0: yes.
1: किसी के पीछे एक इंसान का हाथ तो होता है, जब वो सक्सेसफुल होता है। आज आपको इतनी बड़ी अचीवमेंट मिली है, आपने शेयर की हमारे सुनने वालों के साथ, तो मतलब इसके पीछे किसका क्रेडिट है और क्या मतलब आपको कभी घर से कैसा सपोर्ट रहा है आपका?
0: देखिए मेरे हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव है।
1: अरे वाह, क्या नाम है सर?
0: मेरे हस्बैंड का नाम है मिस्टर मनीष मदान।
1: अरे वाह, क्या बात है।
0: आरसी मदान गैसेज एंड क्रॉकरीज के मालिक हैं वो।
1: अरे वाह,
0: तो उनका बहुत कोऑपरेशन रहता है मेरा योगा। उनका पहले उनका इंटरेस्ट रहता था कि मैं उनके आउटलेट्स पर बैठूं, शोरूम पर उनका साथ दूं, लेकिन जब उन्होंने ध्यान दिया कि हाँ मेरा इंटरेस्ट योग की तरफ ज्यादा है, उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया।
1: Lovely.
0: और जब मैं अपनी स्टडीज भी कर रही थी, जब एक्चुअली मैंने आफ्टर मैरिज अपनी स्टडीज कम्प्लीट की थी योग की, तो उन्होंने मुझे काफी कोऑपरेट किया।
1: लवली, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है।
0: सुबह तो? योगा भी करवाती हूँ योगा स्टूडियो के लिए। तो मतलब जैसे मैं उनको बोल देती हूँ कि यार आप टाइमिंग पे मतलब अपनी टाइमिंग्स पे सब चीजें कर लीजिएगा, मुझे जाना है उधर, अपने टाइमिंग्स पे ब्रेकफास्ट एंड ऑल सब कुछ आप कर लीजिएगा। हाँ, तो वो मेरा
1: बाकी जो पुरुष सुन रहे हैं ना, ध्यान से सुनिएगा भाई, कल हो सकता है आपकी वाली मैडम भी यहाँ बैठ के आपकी तारीफ करे, तो थोड़े से जो है आप भी लग जाओ बस काम पे, फॉलो करो। बाकी जो महिलाएं और पुरुष आपको सुन रहे हैं, कुछ कहना चाहती हैं?
0: यही कहना चाहती हूँ कि अगर हस्बैंड्स अपनी वाइफ को सपोर्ट करें तो उन्हें डेफिनेटली आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।
1: ब्यूटीफुल मैम, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत इन्फॉर्मेशन आपने दी, बहुत ही मजेदार वाली, फिर नेक्स्ट टाइम के लिए भी बचा के रखते हैं रुचि मैम।
0: हाँ जी,
1: चलिए मैम, बाय बाय, थैंक यू सो मच मैम, हैव अ ग्रेट मॉर्निंग। थैंक यू गाइस, एफएम मुरादाबाद 89.9।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना। मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
2: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
3: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
2: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
4: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
1: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
5: अरे बेटा बस थोड़ी दूरी तो जाना है।
1: पर पापा।
5: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
1: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद। नमस्कार मुरादाबाद, आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। और अभी वक्त है एक महत्वपूर्ण जानकारी का। ये खबर आई है जिला अधिकारी महोदय मुरादाबाद डॉक्टर राजेंद्र पेंचिया जी द्वारा। उन्होंने जनपद वासियों से अपील की है कि मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सुबह सुबह रेडियो ऑन ना करने से पहले
6: मुझे कुछ दिखाएंगे जरा माँ।
1: अरे तो भाई चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले।
6: माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: तो भाई साहब आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यून इन कीजिए आपकी शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।
7: क्या बात है सर, क्या बात है सर।

सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपने ट्यून इन किया है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। आप जुड़ चुके हैं दिल से दिल तक वाले कनेक्शन पर। जी हाँ, मेरा नाम आनंद है। मंगलवार की बेहतरीन सुबह है। वक्त हो रहा है स्टूडियो की घड़ी में 8:50। बिल्कुल जी, अच्छे गानों के साथ आज के सफर की शुरुआत। क्या बात है, कुछ गानों के बाद आता हूँ लौट के। आप ट्यून इन रहिए मुरादाबाद 89.6 FM पर।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: स्वागत है दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आपके रेडियो का बेहतरीन प्रोग्राम। जी हाँ, तो बेहद ही खास शो है ये, जिसका नाम है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। और मैं हूँ आपका दोस्त आरजी आनंद, और मेरे साथ है
1: आरजे रीना।
0: तो आप सभी को हम दोनों की ओर से नमस्कार।
1: आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहाँ तिल की खुशबू, गुड़ की मिठास और नान खटाई नरमी और मेरठ की आत्मा है।
0: कभी सर्दियों की सुबह मेरठ में बिताई है आपने?
1: बिल्कुल, सुबह सुबह धुंध, हाथ में कुल्हड़ वाली चाय और सड़क किनारे ताजी रेवड़ी।

0: मेरठ की गजक।
1: यानी कोई भी गजक बना ले, लेकिन मेरठ वाली बात हर किसी में नहीं होती आरजे रीना।
0: अब बात उस स्वाद की जो नो चंदी मेले की जान है नान खटाई।
1: उफ, घी से भरी हुई, ऊपर पिस्ता और मुंह में जाते ही घुल जाने वाली।
0: लेकिन क्या आपको पता है नान खटाई की कहानी काफी दिलचस्प है।
1: जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है नान खटाई शब्द फारसी भाषा से आया है। नान मतलब ब्रेड और खटाई यानी बिस्किट जैसी बेक्ड चीज।
0: और भारत में इसे देसी स्वाद मिला। इलायची, देसी घी, बेसन, सूजी और फिर पैदा हुई वो नान खटाई जिसके बिना मेला अधूरा लगता है।
1: मेरठ का नौचंदी मेला सिर्फ एक मेला नहीं है, भावना है।
0: और इस मेले की सबसे बड़ी पहचान नान खटाई और हलवा पराठा।
1: मैं तो मेलों में झूले से ज्यादा नान खटाई के स्टॉल ढूंढता था।
0: और मैं तो पैकेट घर लेकर आती थी।
1: मेरठ के पुराने बाजारों में आज ऐसी दुकानें मिल जाती है जहां कई पीढ़ियों से यही मिठाइयां बनाई जा रही हैं। इन मिठाइयों की खुशबू लोगों को दूर दूर से अपनी ओर खींच ले आती है।
0: नान खटाई एक तरह का पारंपरिक भारतीय बिस्किट है। यह बाहर से हल्की कुरकुरी और अंदर से नरम होती है। इसे मैदा, सूजी, घी, चीनी और इलायची से बनाया जाता है।
1: कहा जाता है नान खटाई शब्द फारसी भाषा से आया है। नान मतलब रोटी और खटाई यानी बिस्किट।
0: मेरठ की नान खटाई खास इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसमें देसी घी का भरपूर इस्तेमाल होता है। पुराने समय में इसे मिट्टी के तंदूर में पकाया जाता था जिससे इसका स्वाद और खुशबू दोनों अलग होते थे।
1: सबसे पहले घी और चीनी को अच्छी तरह फेटा जाता है, फिर उसमें मैदा, सूजी और इलायची मिलाई जाती है। छोटे छोटे गोल आकार देकर इन्हें धीमी आंच पर बेक किया जाता है।
0: जब यह पकती है तो इसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती है।
1: मेरठ में नान खटाई सिर्फ खाने की चीज नहीं है बल्कि मेहमान नवाजी का भी हिस्सा है। घर में आए मेहमान और चाय के साथ नान खटाई परोसी ना जाए, ऐसे कैसे हो सकता है।
0: अब तो बात करते हैं रेवड़ी की। दोस्तों, सर्दियों का मौसम और रेवड़ी, यह रिश्ता बहुत पुराना है। रेवड़ी तिल और गुड़िया चीनी से बनाई जाती है। यह छोटी छोटी गोल मिठाई होती है जो खाने में कुरकुरी और स्वाद में बेहद शानदार लगती है।
1: मेरठ की रेवड़ी में तिल की गुणवत्ता और गुड़ का संतुलन बहुत ही अच्छा माना जाता है। यहाँ की पारंपरिक दुकानों में आज भी हाथ से रेवड़ी बनाई जाती है।
0: सबसे पहले गुड़ या चीनी को गर्म करके गाढ़ी चाशनी बनाई जाती है, फिर उसमें भुने हुए तिल मिलाए जाते हैं। इसके बाद छोटी छोटी गोलियों का आकार दिया जाए।
1: यह काम बहुत तेजी और कुशलता से करना पड़ता है क्योंकि मिश्रण जल्दी सख्त हो जाता है।
0: तिल में कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में होता है। स्वाद में यह शरीर को गर्म रखता है और ऊर्जा देता है।
1: इसीलिए पुराने लोग कहते थे सर्दी में तिल खाया करो, शरीर को ताकत दिया करो।
0: अब बारी है मेरठ की मशहूर गजक की। गजक उत्तर भारत की एक पारंपरिक मिठाई है जिसे खास तौर पर ठंड के मौसम में खाया जाता है। यह तिल, गुड़ और घी से बनाई जाती है।
1: बहुत लोग रेवड़ी और गजक को एक जैसा समझ लेते हैं लेकिन दोनों अलग हैं। रेवड़ी छोटी और सख्त होती है जबकि गजक परतदार और हल्की कुरकुरी होती है।
0: यह सिर्फ मिठाई नहीं है बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और पुराने स्वादों की पहचान है। इसमें छिपा है अपनापन, मेहनत और भारतीय खान पान की खूबसूरत विरासत।
1: अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि मेरठ की मिठाइयों की चर्चा अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है।
0: तो दोस्तों, इसकी वजह है कि उत्तर प्रदेश सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन यानी एक जनपद एक व्यंजन योजना।
1: और इसमें सिर्फ बड़े उद्योगपति नहीं बल्कि छोटे हलवाई, घरेलू महिलाएं, स्टार्टअप्स और युवा उद्यमी भी शामिल हो सकते हैं। मतलब अब शर्मा जी की गजक सीधे दुबई और लंदन भी जा सकती है।
0: और यही तो लोकल टू ग्लोबल का असली सपना है।
2: भैया नमस्कार।
3: नमस्कार
2: भैया, ये जो एक योजना है सरकार की, एक ODOC योजना, इस योजना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे बींगा व्यापारी?
3: ये बहुत अच्छी योजना है सरकार की तरफ से, क्योंकि इसमें क्या है कि जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वन टेस्ट, ये चीज है एक जनपद एक स्वाद। हमारा मेरठ स्वाद नगरी है और उसी नगरी का एक
4: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
5: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

0: होते ही जज रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
4: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
3: पर पापा।
4: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
5: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें।

स्किन एलर्जी मस्त से नाखून बालों की समस्या टैटू हटाना कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद 7983153386

सुप्रभात, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग है मंगलवार की सुबह। थोड़ी देर पहले हमने आपका वेलकम किया, 9:07 हो रहे हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। हाँ जी, कैसे हाल चाल है? आई रियली होप सब बढ़िया होंगे, फैंटास्टिक होंगे जी। एक बढ़िया वाली गुड मॉर्निंग है सुपर डुपर वाली आप सभी को। आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद। दोस्तों, कहते हैं कि जिंदगी में कभी कभी ना अच्छा भी इसलिए होता है ताकि आपके जीवन में और अच्छा हो, है ना। कुछ आप सोच रहे हैं कि भैया मैं ये करना चाह रहा हूँ, ये मैं करना चाह रही हूँ, बट वो चीज नहीं हो पा रही, तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ अच्छा छिपा है। बस आप ना हर चीज में पॉजिटिविटी को तराशना शुरू कीजिए, सकारात्मक चीजों को ढूंढना शुरू कीजिए। लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ब्यूटीफुल है। कभी कभी लाइफ में ना अगर कुछ अप्स एंड डाउन आते हैं तो उसको नेगेटिविटी में मत लेके जाइए, उसके पीछे कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव छुपा है। बट अक्सर होता क्या है ना, जब भी हमारी लाइफ में कुछ मिस हैपनिंग चीज होती है तो हम नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। हमें लगता है ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे अब ये तो नहीं होगा वो तो, मतलब हम कुछ भी ना सकारात्मकता नहीं ढूंढते हैं, पॉजिटिविटी नहीं ढूंढते, तो हर चीज के पीछे एक पॉजिटिविटी छुपी होती है यार। जरूरत है अपने दिमाग को, अपने ब्रेन को वो चीज देने की, मतलब एक सही सिग्नल देने की। जब आप सही डायरेक्शन में सही सिग्नल दोगे तो लाइफ ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। हाँ जी, तो भैया ऐसी मजेदार बातों के लिए अब आप जुड़ चुके हैं आरजे आनंद के साथ। अगले ये जो 10 बजे तक का मेरा और आपका सफरनामा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है लेडीज एंड जेंटलमैन। बाहर का मौसम एब्सोल्युटली ऑसम हो रहा है। तारीख की बात करें तो 2 जून की ब्रांड न्यू मॉर्निंग है। दिस इज न्यू वीक, एब्सोल्युटली ट्यूजडे मॉर्निंग है यार। नया हफ्ता, नई तारीख और नया महीना भी शुरू हो गया है यार। जी हाँ, बात करें अगर आज की टेम्परेचर की तो अभी 29 डिग्री दिखा रहा है करंटली मैं देख पा रहा हूँ आज का वेदर। यार ऐसा है ना, मौसम के हालचाल जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो मौसम के अगर हालचाल सही से पता नहीं चलेगी ना बॉस, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैंने कहा चलो सुबह सुबह पहले आपको आपके साथ मौसम का हालचाल साझा किया जाए कि भैया आज का वेदर क्या कह रहा है। देखिए भाई साहब, अभी ह्यूमिडिटी 62% दिखा रहा है, यानी कि 62% ह्यूमिडिटी है। हवाएं अच्छी खासी रफ्तार से चलने वाली हैं, यानी कि 8 किलो प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं बॉस, है ना। विजिबिलिटी ओके है, एयर क्वालिटी भी मुझे ठीक ठाक नजर आ रही है, लेकिन दोपहर होते होते टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस में तब्दील हो जाएगा, यानी कि गर्मी जो है वो आपको अच्छी खासी मिलने वाली है आज की सुबह। अब आगे बढ़ते हैं, अच्छे गाने आपको मिलेंगे और एक बढ़िया सी अपडेट आज के दिन के बारे में। आप मुझे मैसेज करो 9837896896, दिस इज माय नंबर, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करके बताओ कि भैया आज किसे जा रही है आपकी सुबह, हाँ क्या कर रहे हो स्पेशल। व्हाट्सएप कर सकते हो 9837896896, दिस इज माय नंबर, इस नंबर पे आप मुझे अपने हालचाल फटाफट से पहुंचा दो यार। इंतजार कर रहे हैं आपके मैसेजेस का। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 विद आरजे आनंद, जहां भैया बातें होती हैं दिल से दिल तक। आर यू रेडी ना, व्हाट्सएप आने शुरू हो गए भाई, सभी लोगों को गुड।

देखो भाई गाना बहुत ही बढ़िया था, सच बताऊं तो ऐसे गाने सुन के सुबह सुबह मतलब मन जो है ना प्रसन्न हो जाता है, मन प्रफुल्लित हो जाता है। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, इतने बढ़िया गाने सुनोगे तो ऑफ कोर्स यार सुबह आपकी ऑटोमेटिकली बेहतरीन हो जानी है ना। आप जुड़ चुके हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे आरजे आनंद के साथ। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेरी गुड मॉर्निंग, आई होप सब बढ़िया होंगे। नौ बज के 14 मिनट का समय हो गया है, स्टूडियो की घड़ी में हमारे साथ ढेर सारे श्रोता जुड़े हैं। मेरे साथ सोनाली जुड़ गई हैं, लिखती हैं गुड मॉर्निंग आनंद जी, आप आते हैं तो बाहर आती है। अरे वाह, थैंक यू मैम। सैंडविच बना रही है, एक पिक्चर शेयर की है, ओ माय गॉड लवली मैम, सच ऐसे ना मतलब ब्यूटीफुल लग रहा है देख के, मुंह में से पानी आ रहा है। गलत बात है, ऐसे मत करो यार। एक मैसेज पहुंचा है, हाय गुड मॉर्निंग, कल करे सो आज करे सो अब, इस बात को ही याद रखो आनंद और जिंदगी में आगे बढ़ते रहो। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम मयंक है, हाय मयंक गुड मॉर्निंग। ये मुझे पागवाड़ा से मैसेज करते हैं। एक मैसेज मेरे पास पहुंचा है, हेलो जी नमस्ते, सिविल लाइंस में बैठा हूँ। अरे कहाँ बैठे हैं सिविल लाइंस में आप? और ये कहते हैं कि पाजी सुबह सुबह रेडियो सुन के मजा आता है, थैंक यू सो मच जनाब। एक मैसेज मेरे पास पहुंच रहा है, हाय गुड मॉर्निंग, मैं इस वक्त बीएससी पर जा रहा हूं और आपका रेडियो सुन रहा हूं, बहुत ही आनंद आ रहा है आनंद जी, थैंक यू सो मच। गाइज ऐसे मैसेज आप भी मुझे पहुंचा सकते हैं 9837896896, दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर। आई एम वेटिंग फॉर यू मैसेजेस। 2 जून का इतिहास क्या कहता है, ऐतिहासिक पन्नों में क्यों महत्वपूर्ण है आज की 2 जून की हिस्ट्री, चलिए आपको फटाक से बताते हैं। बहुत जरूरी है यार आपके लिए, सही इन्फॉर्मेशन अगर मिल जाती है तो सुबह और भी अमेजिंग हो जाती है ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज का दिन तमाम सारी घटनाओं के लिए महत्वपूर्ण है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज के दिन ही यू नो हुई हैं और आज की तारीख अपने आप में बहुत ही स्पेशल हो जाती है। 2 जून को आपको बता दें, सन 1999 में दक्षिण एवं उत्तर कोरिया के बीच उच्च स्तरीय वार्ताओं पर सहमत भूटान में टीवी प्रसारण की शुरुआत हुई थी श्रोताओं आज ही के दिन। और आपको बताते चलें, आज ही के दिन सन 2005 में भारत रूस और चीन के बीच जो है सम्मेलन समाप्त हुआ था श्रोताओं आज ही के दिन। और इसके अलावा आज ही के दिन नटराजन चंद्रशेखर जो भारतीय व्यवसायी हैं, इनका जन्म हुआ था 1963 में आज ही के दिन। और आपको बताते चलें, आज ही के दिन अनंत गीते जो हैं इनका भी ये हुआ जन्म, जो प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ हैं, 1951 में जन्म हुआ था। मणिरत्नम जो भारत के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक में से एक हैं, सन 1955 को इनका जन्म हुआ श्रोताओं आज ही के दिन। एंड सन 1980 में आज ही के दिन डॉली बनर्जी जो महिला खिलाड़ी हैं, इनका भी आज ही के दिन जन्म हुआ था श्रोताओं। और भारतीय हॉकी टीम की भूतपूर्व खिलाड़ी थे, आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था बलवीर सिंह जूनियर 1932 में। एंड श्रोताओं और भी तमाम सारी चीज़ें हैं जो आज के दिन को स्पेशल बना रही हैं 2 जून की सुबह, मंगलवार की मॉर्निंग। जय श्री राम बोलते हुए आगे बढ़ेंगे। बड़े मंगलवार चल रहे हैं, 4 मंगलवार तो हो चुके हैं कंप्लीट, आज 5वां बड़ा मंगलवार है। इस बार 4 नहीं पूरे 8 बड़े मंगलवार आपको मिल रहे हैं। तो अगर आप बड़े मंगलवार में कहीं भी जाते हैं हनुमान जी के दर्शन करने तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मुरादाबाद में कहाँ पर कौन कौन से और अच्छे प्रसिद्ध मंदिर हैं ये भी आप हमें व्हाट्सएप करके बता सकते हैं, आप कहाँ जाते हैं ये भी आप हमें बता सकते हैं, और अभी आप क्या कर रहे हैं वो भी आप मुझे बता सकते हैं 9837896896, दिस इज माई नंबर। कहीं पे कुछ हैपनिंग चीज हो रही है, कुछ बढ़िया पॉजिटिविटी हो रही है आपके आसपास तो डेफिनेटली आप मुझे बताओ यार। 9837896896 ये नंबर ध्यान कर लो मेरे भाई। 2 जून को क्या स्पेशल और है नेशनल इंटरनेशनल पे अभी बात करेंगे। और अभी 2 जून में ना आपको एक चीज़ और बता दूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि मोबाइल से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर रही है। देखिए मोबाइल जो है ना हम सभी की लाइफ का हिस्सा बन गया, हमारी रोज़मर्रा की जिंदगी बन चुका है हमारा मोबाइल फोन, टेक्नोलॉजी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इसके बिना सब कुछ बड़ा अनकम्प्लीट सा लगता है। बट यार एक टाइम था जब हम बिना मोबाइल के भी अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करते थे है ना, बट वो ये होता नहीं कि हम किस चीज़ को अपनी एडिक्शन बना रहे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मोबाइल के बारे में बात करेंगे, कौन सी एज ग्रुप अगर ज्यादा मोबाइल चलाती है तो उनको क्या चीज का सामना करना पड़ रहा है, एक रिसर्च आई है रिसेंटली, इसमें भी मैं बात करने वाला हूं थोड़ी सी देर में। लेकिन उससे पहले आप लोगों के मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इन खूबसूरत मैसेजेस के लिए। आप मुझे और मैसेज करिए ना यार, 9837896896 दिस इज माई नंबर। मैं फटाक से अभी एक छोटू सा गाना प्ले कर रहा हूं, इस गाने के बाद जल्दी से लौट कर आता हूं, उसके बाद मैं आपको ये खास इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे सोन गो एनीवेयर, अगर आप मुझे कुछ कहना चाह रहे हैं तो बिल्कुल, मैंने आपको बता ही दिया है अपना नंबर, ठीक है भाजी।
एक और खास चीज है जो मुझे लगता है आज की सुबह आप तक जरूर पहुंचनी चाहिए और बिल्कुल डेफिनेटली पहुंचेगी, बस उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना है। अभी मैं सोच रहा हूँ आपके लिए कौन सा वाला गाना चलाऊं जो यू नो आपकी सुबह को थोड़ा सा फैंटास्टिक बना दे, आपकी मॉर्निंग को थोड़ा सुपर डुपर अमेजिंग बना दे। मुझे मिल गया है आज का बेहतरीन गाना जिसको सुनते हुए आगे बढ़ेंगे मैं और आप इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, क्योंकि आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये वो गाना है जो आपको थोड़ा सा फ्लैश बैक में लेके चला जाएगा। एग्जैक्टली, दिस इज वेरी वेरी अमेजिंग नंबर और थोड़ा सा ढिंचाक भी है। जब ये मूवी आई थी तो उस मूवी में इस गाने ने रॉक मचाया था, बॉस रॉक। यस, गाना भी बहुत बढ़िया है एंड ऑफ कोर्स ऐसे गाने जब सुनेंगे और आगे बढ़ेंगे तो सुबह ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। है ना कमाल का सॉन्ग, नीरज श्रीधर की आवाज, तुलसी कुमार देंगी साथ, प्रीतम का म्यूजिक। इसी गाने को सुनते हुए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा डांस करके आता हूं मैं और आप भी प्लीज करिए यार, क्योंकि डांस भी हमारी फिटनेस का सबसे बड़ा रास्ता होता ही है। लेकिन अगर आप डांस करते हो तो इससे और भी बहुत सारी बॉडी में फायदे होते हैं, बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, बताऊंगा थोड़ी देर में। थोड़ा सा मटक लो यार, कुछ नहीं जा रहा। वॉल्यूम बढ़ाओ रेडियो की, सुन रहे हो आप आनंद को ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम, आप शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन आप सुन रहे हैं। हाँ, किचन में कुछ बना रहे हो आप तो बस खड़े खड़े थोड़ा सा हिल लो यार,

0: सुबह सुबह रेडियो ऑन ना करने से पहले
1: माँ मुझे कुछ दिखाएंगे जरा माँ।
0: अरे तो भाई चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले।
1: माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है।
0: तो भाई साहब आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यून इन कीजिए आपकी शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।
2: क्या बात है सर, क्या बात है सर।
3: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
4: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
5: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
6: कॉल 8826213131।
7: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
8: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
7: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
9: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।
10: आप जुड़ चुके हैं आपके शहर के अमेजिंग रेडियो स्टेशन, दिस इज फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे। आनंद विद यू लेडीज एंड जेंटलमैन, वेरी गुड मॉर्निंग गर्ल्स एंड बॉय। बहुत सारे मैसेजेस आपने कर दिए, थैंक यू वेरी मच मुझे इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि मुरादाबाद में कहां क्या अच्छा चल रहा है। लौट के आते हैं उसके बाद जिक्र करेंगे आपके मैसेजेस पे, और एक खास कड़क अपडेट लोकल फॉर वोकल में मिलेगी इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप जुड़ चुके हैं आरजे आनंद के साथ, गुड मॉर्निंग।

0: मन मोर देन गोल्ड। आई नो यार, सुबह सुबह आपको लग रहा है ये आनंद ने आज क्या चला दिया है। मेरी जान ऐसा है, सुबह सुबह का जो टाइम होता है ना, वो एक्सरसाइज वाला होता है, फिटनेस का टाइम होता है। तो मेरे को लगा एक्सरसाइज करने के लिए इन गानों से बेटर कुछ हो नहीं सकता है। तो आज की सुबह लेट मी टेल यू कि ये जो गाने हैं ना, ये वो गाने हैं जब आप कहीं पे जुम्बा करते हो, कहीं योगा करते हो, कहीं भी आप जा रहे हो डांस क्लास वगैरह, तो ये आपको बहुत ही अच्छी और फुल ऑन वाइब आपको। इसको सुन के मेरे को भी ऐसा लगा था कि यार मैं भी थोड़ा जुम्बा करूं, तो मैं वही करने लगा था। दूसरा गाना कब चल गया, अनबिलीवेबल यार। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज एब्सोल्युटली अल्टीमेट सॉन्ग। म्यूजिक सुबह आनंद के साथ हैं आप, बहुत ही अमेजिंग गाना है यार, और इसको सुनते हुए आगे बढ़ लिया आपने मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। अभी आगे बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच, आप लोगों ने बहुत ही अच्छे मैसेजेस किए हैं, जोरदार तालियां, कंग्रेचुलेशन एवरीबॉडी। बहुत प्यारे प्यारे संदेश मेरे पास पहुंच गए हैं। बस मैं आपको एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, जरा सी देर में वी कम बैक, डोंट गो एनीवे। इसी गाने के साथ आगे बढ़ते हैं, तो सुनते रहिए और अपने रेडियो की वॉल्यूम थोड़ी बढ़ा लीजिए। मैं जस्ट अभी लौट कर आता हूं स्टूडियो की घड़ी में, वक्त हो रहा है 9:32। आनंद के साथ सुन रहे हैं आप की शहर का अपना अमेजिंग रेडियो स्टेशन एफ मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। सो बस मैं ये कह रहा था, अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, कुछ भी आपके आसपास यू नो हैपनिंग चीज है, तो यू कैन शेयर विद मी 9837896896। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर। एल वी गो राइट बैक, जस्ट अ मिनट लेडीज एंड जेंटलमैन।
1: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
2: कहा मेरी कसम,
1: मिस कर दिया तो रीलोड।
3: चाहे चाहे चाहे
1: सुनिए बिंदास मॉर्निंग्स आरजे आनंद के साथ, मंडे टू सैटरडे 7 से 10।

कितनी। भाई मेरे बारे में कुछ मत सोचना, लेट मी टेल यू, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बहुत ही अच्छा इंसान हूँ। मैं मतलब कभी कभी जोक कर लेता हूँ, बात अलग है। फिर डोंट माइंड लेडीज एंड जेंटलमैन, सोनू निगम, सुनीति चौहान की आवाज, अनु मलिक साहब का म्यूजिक है, गाना बहुत ही फैंटास्टिक है, जो हमें सिखाता है जीने के हैं चार दिन। क्या करना है यार, बहुत सारी प्लानिंग हम लोग करने लग जाते हैं। जो भी करंटली का डे चल रहा है, आई मीन जो आज का दिन है, टुडे, इसको सेलिब्रेट करो यार। आज के दिन को एंजॉय करना है, आपने टेंशन नहीं लेनी है बॉस। बाकी गाड़ियों में अगर आप अपने ऑफिस जा रहे हैं तो ऑल द वे बेस्ट यार। जहाँ भी आप जा रहे हैं, आप चाहे दिल्ली रोड जा रहे हैं या कांट रोड जा रहे हैं या आप जा रहे हैं स्टेशन रोड, बस वॉल्यूम बढ़ा के रखो और फ्रीक्वेंसी सेट कर लो 89.6 विद मी आनंद आपके साथ है। आज ट्यूसडे की सुबह है। मैंने कहा जी जय श्री राम, कैसे हालचाल है। अच्छा मैं आपको बता देता हूँ भैया, अभी ना एक करंट अपडेट रिसेंटली आई है, वेदर अपडेट। मैं वही चेक कर रहा था कि भैया मौसम के हालचाल क्या कह रहे हैं, तो आपको मैं बताना चाहूंगा फटाफट से। 4 और 6 जून के बीच एक बार फिर से मौसम बदल सकता है। एक रिपोर्ट आई है जिसमें पता लग रहा है कि भैया उत्तर प्रदेश समेत कई सारे राज्यों में बारिश होने की संभावना है। इनफैक्ट धूल भरी आंधी भी चलने की संभावना बताई जा रही है। 4 से 6 जून के बीच वेदर फिर से चेंज होगा और आपको गर्मी से थोड़ी राहत मिल जाएगी। अच्छी बात है ना। अपनी जरा भैया तैयारी शेयरी तगड़ी रखा करो यार। और अगर आज आप घर से बाहर निकल रहे हो तो मैं कह रहा हूँ पाजी बढ़िया वाली सनस्क्रीन लगा के निकलो, अच्छी खासी धूप हो रही है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे, आज नेशनल इंटरनेशनल डे की अगर मैं बात करूँ तो रिपब्लिक डे इटली का मनाया जाता है 2 जून को। इटली का रिपब्लिक डे आज सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा और क्या स्पेशल है अभी आपको मैं फटाक से बताता हूँ। एक हेल्थ टिप्स आपके लिए लेकर आया हूँ जो आपको थोड़ा सा फिट एंड फाइन बनाएगी, थोड़ा सा स्ट्रांग बना देगी आपकी पर्सनैलिटी को। बस मेरे साथ बने रहिए, मैं अभी लौट कर आ रहा हूँ। आपने जो मैसेज किए हैं ये भी हम फटाफट शामिल करेंगे स्टेशन ऑफ द नेशन पे। मोबाइल चलाने के अगर आप हैं बहुत बड़े क्रेजी फैन तो थोड़ा सा इंतजार करो यार, ज्यादा मोबाइल चलाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। कैसे बताता हूँ ना।

अब बात है यार, जवानी फिर ना है, सच्चाई है इस गाने के अंदर। और एब्सोल्युटली अच्छा गाना, जब सुबह सुबह सुनने को मिल जाता है तो दिन ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है जी। आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग, 9:38 स्टूडियो क्लॉक में वक्त हो रहा है, 9:36 हो रहा है। हिंदी में समझा देता हूँ। रिसेंटली एक रिसर्च की गई जिसमें पता लगा है 72% बच्चे जो है रोज 3-6 घंटे मोबाइल चला रहे हैं। 7% उनका जो पढ़ाई से दिमाग है वो भटक रहा है। 60% दिमाग का जो कॉन्सेंट्रेट है ना वो पढ़ाई पर नहीं जा रहा है बॉस। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि देखिए मोबाइल जो है अच्छी चीज है, हमारे और आपके दिमाग के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मोबाइल जो है ना अगर हम ज्यादा चलाएंगे तो इससे दिक्कतें सिर्फ हमें होनी है। इसीलिए अच्छी आदत को जो है फॉलो करो यार, है ना। और अभी आगे बढ़ते हैं, आपको रिसर्च बताता हूँ क्या कहती है रिसर्च। देखिए रिसर्च में ना एक बेसिकली एक रिसर्च हुई जिसमें जो है एक स्कोर सामने निकल के रहा है कि भैया जो 72% बच्चे हैं वो हर दिन 3-6 घंटे मोबाइल में उलझे रहते हैं, वहीं 60% जो है उनका दिमाग पढ़ाई पर जो है ना वो कम जा रहा है। मतलब उनका जो फोकस है वो 60% पढ़ाई पर नहीं जा पा रहे पूरी तरीके से, वो हट रहा है। 60% जो बच्चे हैं उनका दिमाग जो है पढ़ाई पर नहीं जा रहा। 48% बच्चे हैं जो मोबाइल चलाते टाइम चिड़चिड़े भी हो जाते हैं और जल्दी मतलब गुस्से में आ जाते हैं। 41% जो है देर रात तक रील देखते हैं या फिर गेमिंग के कारण उनको नींद की कमी हो रही है। वहीं 35% फैमिलीज के साथ जब बातचीत की गई तो उसमें पता लगा है कि 35% ऐसे भी हो गए बच्चे जो मोबाइल के साथ ज्यादा समय बिताते हैं और फैमिली के साथ थोड़ा कम टाइम बिताना पसंद करते हैं। बाजी ढोल तो बाद में बजेगा, पहले तो दिक्कतें बज रही हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ अगर आपके घर में बच्चा मोबाइल ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है तो प्लीज ये मत करने दीजिए, डोंट डू दिस, बिकॉज ये एडिक्शन बहुत खराब है। अगर आपका बच्चा ज्यादा फोन यूटिलाइज कर रहा है तो उसे थोड़ा सा कंट्रोल करना सिखाइए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक रील अगर आपने देखो इंस्टाग्राम पे, योगी जी का भी आया था हमारे सेम साहब, उन्होंने कहा था अगर बच्चा मोबाइल मांगता है और आप नहीं दे रहे हो और बच्चा रो रहा है तो उसको थोड़ी देर रोने दो, लेकिन उसको एडिक्शन मत दो। अगर आप उसको ज्यादा मोबाइल दे रहे हो ना तो वो आपके बच्चे के लिए आपको थोड़ी देर के लिए बड़ी हैप्पीनेस देगा, ठीक है, आपका बच्चा खुश हो गया, लेकिन वही आगे कि उसकी एडिक्शन बनेगा, देन उसको वो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो मैं बस इतना ही कहना चाह रहा हूं कि आप प्लीज थोड़ा सा जरा ध्यान रखिए, ज्यादा मोबाइल शोबाइल मत चलाने दीजिए। इनफैक्ट अगर आप पेरेंट्स हैं तो मैं आपको भी सजेशन दूंगा कि आप जितना हो सकता है ना मोबाइल का मतलब काम से रिलेटेड ही आप ऑफकोर्स यूज कर सकते हो यार, हमारे भी काम में हम भी यूटिलाइज करते हैं मोबाइल, बट बहुत ज्यादा फोन का इस्तेमाल करना खतरनाक हो रहा है बॉस, है ना। तो ज्यादा फोन प्लीज मत इस्तेमाल करिए, इससे आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, आपके स्किन पे जो चमक है कहीं ना कहीं वो भी कम होती है, इसकी जो ब्राइटनेस होती है ना वो स्किन के लिए बड़ी हार्मफुल होती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल, दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, स्पेशली पेरेंट्स से, अगर आपके बच्चे छोटे हैं आप उनके सामने बहुत ज्यादा मोबाइल का यूज करते हो तो वो बच्चे भी वैसा ही करेंगे, सो डोंट डू दैट। हाँ आगे बढ़ते हैं, अभी एक अच्छी सी हेल्थ टिप्स लेकर आ रहा हूँ इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, बाकी ख्याल रखिए अपना, स्टे ट्यून्ड, बने रहिए आनंद के साथ। एक अच्छा सा गाना सुन रहे हैं।

0: सुबह सुबह रेडियो ऑन ना करने से पहले
1: माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
0: अरे तो भाई चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले।
1: माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है।
0: तो भाई साहब आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यूनिंग कीजिए आपकी शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।
2: क्या बात है सर, क्या बात है सर।
3: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
4: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
3: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
5: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
6: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
0: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
7: टायर लो सोना जीतो।
8: क्या?
7: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
9: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
0: अपोजिट
9: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
0: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई। अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
10: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
0: पर पापा।
10: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
0: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।
11: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग। बिंदास
0: मॉर्निंग। क्या बात है यार, थैंक यू सो मच। इतना अच्छा सा ये मूड बनाने के लिए थैंक यू मैडम। आगे बढ़ते हैं आज का मेरा कड़क क्वेश्चन, दैट इज वेरी सिंपल। ट्यूजडे की सुबह आपने क्या आइडेंटिफाई करना है, कौन सा गाना है ये, व्हाट्सएप करना है आपने अपने नाम के साथ अपना सही जवाब। पहले सवाल सुनो यार। कौन सा गाना है ये, उठाना है अपना फोन, टाइप करना है अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना राइट आंसर, उसको सेंड करना है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। यस ऑफ कोर्स, आज ट्यूजडे की सुबह 2 जून है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये जो म्यूजिक चल रहा है कौन से गाने का है। बहुत ही फैबुलस मूवी थी, यू थिंक अबाउट शाहरुख खान, थिंक अबाउट दीपिका पादुकोण, बहुत ही अच्छी मूवी, फराह खान के डायरेक्शन में बनी एंड एक ऐसी मूवी जो मैनिफेस्टेशन के ऊपर बनी थी। और सच बताऊं तो यार ये वो पिक्चर है ना जिसके डायलॉग ने हमारी जिंदगी को वाकई में एक अलग लेवल पे पहुंचा दिया है। एंड ऑफ कोर्स मैंने सारे क्लूज आपको दे दिए होंगे आज की सुबह, तो आप पकड़ लोगे ये गाना कौन सी फिल्म का कौन सा गाना है। 3 2 1 गो स्टार्ट बेबी, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, कौन सा गाना है। कौन सा गाना है ये, आपने मैसेज करना है अपने नाम के साथ, उठाना है अपना फोन, टाइप करना है अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना सही जवाब, उसको मेरे नंबर पे भेज देना, ठीक है। अपने नाम के साथ अपना सही जवाब, मैंने जो भी म्यूजिक चलाया था वो कौन से गाने का म्यूजिक है, वो कौन सा गाना है, साफ शब्दों में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे आपने गाने का नाम बताना है, ठीक है जी। फटाक से मुझे नाम बता दो यार, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपकी मैसेजेस का। एक अच्छी सी हेल्थ अपडेट है छोटी सी, फटाफट बता दो।

0: देखी।
1: राजू कलाकार ने कमाल कर दिया यार, इतना बेहतरीन गाना दे दिया हमें
0: तूने। दिल मेरा संग मेरे वो दिल पे चलाए,
1: दिल पे छुड़िया मम्मी ने चला दी। जब वो एक ऐसी सब्जी बनाई जिसको मैं खाता नहीं था, लेकिन जब मैंने खाई तो मैं अलग ही दुनिया पहुंच गया यार।
0: दिल पे चलाए,
1: सच बता रहा हूँ, आज आप भी यही बोलोगे आनंद कौन सी सब्जी का नाम ले लिया भाई, दिल पे छुरी चला दी सुबह सुबह तूने। मैं क्या, नहीं भैया ये सब्जी वो है जिसको खाओगे ना, मैं बता रहा हूँ आपका जो दिमाग है ना वो बढ़िया हो जाएगा, स्ट्रांग वाला हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, मतलब तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मतलब एकदम जेन्युइन सच्ची और अच्छी बात बता रहा हूँ। चलो एक काम करते हैं, मुद्दे की बात पे आते हैं और अब आपको सही वाली हेल्थ अपडेट देते हैं, बहुत जरूरी है, क्योंकि सही इन्फॉर्मेशन और सही अपडेट बहुत जरूरी होती है मेरे लिसनर्स के लिए। अगर आप हेल्दी हैं, आप फिट हैं, फाइन हैं, तो मेरे को अच्छा लगेगा यार, आप मेरी फैमिली हो यार, वी आर फैमिली। तो आज हम बात करने वाले हैं एप्पल गुड के बारे में। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट, एक ऐसी सब्जी है जिसका नाम लेने में ना मेरे को थोड़ी हंसी भी आ रही है, आपको लगेगा आनंद सुबह सुबह किस चीज की बात कर रहा है तू।
2: बेबी तेरी आंख दे वे डोपामिन,
1: डोपामिन बाद में करना गुरुजी, जरा चुप हो जाओ, तो उसी बाद में बताएंगे आपके ज्यादा। ये यार अभी जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ना, इसको अगर आप खाते हैं तो इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। सबसे पहले तो इसमें विटामिन सी होता है, फाइबर होता है, और भी बहुत सारे इसमें फायदे होते हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी बॉडी के लिए, ऑल ओवर आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। यस, मैं बात कर रहा हूँ टिंडा के बारे में। आपको हंसी आ रही होगी ना, ये टिंडा सब्जी बहुत से लोग नहीं खाते होंगे, बट यार मैं बता रहा हूँ, मैंने जब पहली बार खाया तो मेरे को अजीब लगी और उसके बाद मेरे को बहुत टेस्टी लगी। अगर आपको वेट लूज करना है उसमें काफी हेल्प करता है, आपके पाचन को, आपके डाइजेशन सिस्टम को अच्छा रखता है, आपके शरीर को हाइड्रेटेड रखने में काफी हेल्प करता है ये।

तो आज मैं आपको वही टिंडा के बारे में बता रहा हूँ कि भाई अगर आप इसको डाइट में लेते हैं, मतलब अगर आप इसकी सब्जी का इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी होती है। आपको बता दें बेहद ही कम कैलोरी वाली सब्जी और सबसे पौष्टिक होती है। इसमें लगभग 94% पानी होता है, भरपूर फाइबर होता है इसमें, जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। जैसे कि मैंने बताया अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं तो आपको काफी हेल्प करता है ये, आपके डाइजेशन सिस्टम को अच्छा रखता है, आपका ब्लड प्रेशर भी जो है ठीक ठाक रखता है, यानी कि आपके भैया ये मतलब हेल्थ के साथ साथ आपके ब्लड प्रेशर को नियंत्रण रखने में काफी हेल्प करता है। आपके दो चार बालों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। टिंडे में विटामिन ए होता है और सी, जो आपकी बॉडी के लिए और आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। आपकी त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाने में काफी हेल्प करता है टिंडा। ग्रीन ग्रीन टिंडे आप मार्केट में जाओ, जब मैं शुरू शुरू में छोटा था मेरे को इतना आइडिया नहीं था, मुझे लगता है मम्मा वाव क्या अमरूद है, मम्मी ने बोला इट्स नॉट अमरूद दिस इज टिंडा, मैं ये टिंडा व्हाट इज दिस टिंडा। जब मैंने खाया इसका सब्जी तो भाई कसम से बड़ा टेस्टी था यार। अच्छा, इसमें विटामिन ई होता है जो आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाने में काफी हेल्प करता है, और जैसे मैंने बताया कि स्किन के लिए अच्छा होता है। इसमें पोटेशियम, आयरन और भी ऐसे बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर आप टिंडा इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी सब्जी, मतलब अपनी डाइट में सब्जी को ले रहे हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया भैया, इसका इस्तेमाल करो, जरूर करो, और फैमिली में सबको खिलाओ, जो नहीं खाते उनको कुछ नया और स्टाइल तरीके से बना के दो, स्टाइलिश तरीके से बना के सर्व करो, बच्चे भी खाएंगे यार, ऐसा नहीं है। आजकल तो एक ही डिश को बनाने के 4-5 तरीके हो गए ना, चार पांच नहीं, मैंने कुछ ही कम ही बोल दिए, मतलब नई तरीके से आप जो है एक ही डिश को अलग अलग नाम देके बना सकते हो, कुछ स्टाइल में अलग अलग तरीके से सर्व कर सकते हो। चलो आगे बढ़ेंगे, आज हम बात कर रहे थे टिंडा की सब्जी के बारे में। अगर आप टिंडा अपनी मतलब डाइट में लेते हैं, शामिल करते हैं, अगर इसकी ये सब्जी अगर आप लेते हैं तो ये कैसे आपको हेल्प करता है, कितने सारे फायदे हैं टिंडा खाने के। आगे बढ़ते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अगर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो बता रहा हूँ आज के दिन आप पीछे रह जाओगे यार, बता रहा हूँ आपको। कौन सी गाने का म्यूजिक है, दिस इज माई लास्ट आवर लेडीज एंड जेंटलमैन। 9:56 हो रहा है जी, 9:56 हो रहा है मेरे स्टूडियो की घड़ी में। अच्छा, आप अकेले अकेले रेडियो सुन रहे हो ना, छत पे बैठ के, बहुत बढ़िया। कौन सा गाना है ये, आपने मेरे को व्हाट्सएप करना है, ध्यान से सुनो। उठाइए अपना फोन, टाइप कीजिए अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना सही जवाब, उसको सेंड कीजिए ना मेरे नंबर पे 9837896896। आप मुझे टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ मेरे को व्हाट्सएप करना है, आप अपने टेक्स्ट मैसेज बॉक्स में जाइए, उठाइए अपना फोन, मैसेज बॉक्स में जाके लिखिए अपना नाम, स्पेस देके लिखिए अपने शहर का नाम, स्पेस देके लिखिए आपने जो भी म्यूजिक सुना है वो कौन से गाने का है, उसको सेंड करिए ना मेरे नंबर पे 9837896896। ये स्टूडियो का नंबर है, अभी लौट कर आने गाने के बाद आप सुनते रहिए आरजे आनंद को ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे। जब बातें होती हैं दिल से दिल तक तो कनेक्शन ही अलग होता है। फिलहाल स्टूडियो की घड़ी में वक्त हो गया है 9:57, आप हैं आनंद के साथ, गुड मॉर्निंग।

ये अगर मुरादाबाद में आप गागन की तरफ है और आपको लग रहा है कि वहाँ पे ट्रैफिक तो नहीं लगा होगा आनंद, या फिर अगर आपको लग रहा है कि भैया आप ट्रैफिक में है, हल्का फुल्का ट्रैफिक आपको मिल रहा है, आप जीरो पॉइंट की तरफ है, आप दिल्ली रोड पे है, आप पागवाड़े की तरफ है, तो आप भी मुझे मैसेज कर सकते हो यार, कहीं भसड़ भसड़ तो नहीं मच रही ना, स्टेशन की तरफ तो यार लगी रहती है, उधर की तो मैं बात ही नहीं कर रहा बड्डे पिरा। गले से नहीं लगना है आपने, सिर्फ ट्रैफिक से बचना है, कोई लग रहा है तो लग जाओ। जोकिंग यार, सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद आरजे आनंद के साथ, दिस इज बिंदास मॉर्निंग।

0: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
1: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन
2: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद
3: कॉल 8826213131।
4: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
5: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
6: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
7: देखिए मेरे पास बहुत सारे मैसेज, थैंक यू वेरी मच इतने अमेजिंग मैसेजेस के लिए, थैंक्स अ लॉट। मेरे साथ जुड़ चुके हैं अभी इस वक्त कुसुम जी और साथ में प्रतीक भी जुड़ गए हैं, थैंक यू सो मच। एक लकी कॉलर को लेकर आ रहा हूँ फटाक से। स्टेशन ऑफ द नेशन पे आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई रियली होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे स्टेशन को और आगे खुशी के साथ भी एंजॉय करते रहेंगे। ये स्टेशन ऑफ द नेशन जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक, ये गाना आप सभी के लिए आज की सुबह।

0: देखो भाई, ऐसा है अभी हमारे जो लकी कॉलर है ना, बहुत बिजी हो गए हैं। आज की सुबह हमारी सुपरस्टार जो है कौन बन रही है, जानना चाहते हो आप? चलिए मैं बताता हूँ फटाफट से। मुझे सही जवाब सबसे पहले यहाँ पर किनका आया था? यस, सबसे पहले सही जवाब दिया था मुझे लक्ष्मी जी ने, माता मंदिर प्रकाश नगर से। कौन सा गाना है आइडेंटिफाई करना था? मैम कंग्रेचुलेशन, आपने सही जवाब दिया सबसे पहले। आज तो आपकी हो गई बल्ले बल्ले। बड़ा आपने फोन नहीं रिसीव किया, आई थिंक आप कहीं बाहर होंगी, अब देखेंगे अब आप करेंगी कॉल, मैडम फोन पिक नहीं हो पाएगा मैडम। वेल बहुत बहुत बधाई है। गाना कौन सा था ये बताना था आपने?
1: देखो, देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए ना कोई कहानी।
0: ओम शांति ओम का गाना बहुत ही बढ़िया गाना था। कंग्रेचुलेशन लक्ष्मी जी, बहुत बहुत बधाइयां। एंड बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया था, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग आज की सुबह। कमाल कर दिया आप लोगों ने, इतने प्यारे प्यारे मैसेज करते हो आप लोग।
2: राधे राधे आनंद जी।
0: राधे राधे मैम।
2: मैं अलका वर्मा
0: जी। अलका मैम,
2: आपने जो म्यूजिक चलाया उसका राइट आंसर है ओम शांति ओम।
0: क्या बात है, क्या बात है मैम।
2: बोल है इसके, देखो देखो शाम बड़ी दीवानी,
0: धीरे धीरे। मुझे लगा आगे भी गाएंगी मैम। बहुत ही बढ़िया अलका जी, कंग्रेचुलेशन, आपने गा के मेरा सुबह अच्छा बना दिया, बेहतरीन बना दी मेरी सुबह। एंड गाइस थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं और अलका जी के साथ और भी बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिए हैं, जैसे मंसूरी करौली मुरादाबाद से, इरशाद हुसैन अंसारी, डॉक्टर शेर शारी के लीजिए हमारे साथ जुड़े हैं आज की सुबह, तालियां इनके लिए भी। थैंक यू बाकी लिसनर्स के लिए भी जोरदार तालियां। अंजलि राघव हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज की सुबह। एंड मेरे पास ये प्रियांशी का मैसेज पहुंचा था, गुड मॉर्निंग आनंद जी। और डॉक्टर ये प्रकाश जी का भी मैसेज आ गया है। एंड सुरेश जी मेरे साथ जुड़े हैं आज की सुबह। एंड मेरे पास मैसेज पहुंचा था, गुड मॉर्निंग जी, कैसे हाल चाल है? अभी तो बहुत ज़्यादा मोबाइल हीट हो रहा है। ये कासिम अली मुरादाबाद से जुड़े हैं। एंड मेरे पास निसार हुसैन साहब का मैसेज आया था रहमत नगर करूला से। इसके अलावा हमारे पास मैसेज पहुंचा था मंसूरी कॉलोनी से भी, ये एक और श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, इनका नाम अमन है, हाई गुड मॉर्निंग। और साथ ही हमारे पास मैसेज आया था ये अर्चित एंड अवंतिका उमाशंकर जी का, ये देवभूमि उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ते हैं, रुद्रपुर से। शबीना खान मेरे साथ जुड़ गई हैं आज की सुबह, वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार के लिए, मैसेजेस के लिए। ऑल द वे बेस्ट आज के दिन की देता हूं ढेरों मंगल शुभकामनाएं। मस्त रहिए, जगास रहिए और ऐसे ही सुनते रहिए आपके शहर का अपना अमेजिंग सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफ एम मुरादाबाद 89.6, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। ढेर सारा पानी पीते रहिए, डिहाइड्रेटेड जो है भाई साहब, ये जो आजकल चल रहा है ना गर्मियों में पानी की कमी जो हो रही है, इसको भी आपने से पूरा करना है। हाइड्रेटेड तो आप तभी रहेंगे जब आप ढेर सारा पानी पीते रहेंगे ना, तो बस पानी पीते रहिए, खुद को हाइड्रेटेड रखिए, बहुत जरूरी है। एंड आगे बढ़ते हुए अच्छे गाने आपके लिए लगा के जा रहा हूं, आप इसी स्टेशन को एंजॉय करते रहेंगे, आगे भी अच्छे गाने आते रहेंगे आपके लिए। ठीक है, अभी के लिए आरजे आनंद की ओर से सायोनारा, बाय बाय। आज बड़ा मंगलवार है, पांचवा बड़ा मंगलवार, इसकी भी ढेरों मंगल शुभकामनाएं। कुछ कहना चाहते हैं तो सोशली जुड़ सकते हैं आरजे आनंद के साथ इंस्टाग्राम पे, डोंट फॉरगेट फॉलो कीजिए रेडियो वाला आनंद 95 के नाम से इंस्टाग्राम आईडी मिलता है, मेरा ऑफिशियल आईडी है एफएम मुरादाबाद 89.6 के नाम से। आप सुन रहे हैं आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। 10:10 हो गए, आरजे आनंद कहता है साइनिंग ऑफ, बाय।

0: मजा जी रहे अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

गुड मॉर्निंग मुरादाबाद, वेलकम है आप सभी का आप ही के अपने शहर के फर्स्ट, जी हाँ, सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। दोस्तों आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूँ आपके साथ आपकी खुशी। और आज 2 जून की तारीख है, प्यारा सा दिन है, ट्यूसडे का, मंगलवार की सुबह। अपने साथ एक खूबसूरत सीख लेकर आइए दोस्तों, बाहर की ताजगी, सुबह की ठंडी हवाएं और नए दिन की नई उम्मीद हमें याद दिलाती है कि हर दिन एक नया अवसर है खुद को बेहतर बनाने का। तो दोस्तों आज का शुभ विचार है, इंसान कभी गलत नहीं होता, उसका वक्त गलत होता है। कि इंसान कभी गलत नहीं होता, उसका वक्त गलत होता है, मगर लोग इंसान को गलत कह देते हैं। जैसे पतंग कभी नहीं कटती, कटता तो सिर्फ धागा है, लेकिन लोग कहते हैं कि पतंग कट गई है। कितनी गहरी बात है ना दोस्तों। ज़िंदगी में कई बार हालात हमारे खिलाफ हो जाते हैं, समय हमारा साथ नहीं देता और लोग हमारी परिस्थितियों को देखकर हमारे व्यक्तित्व का फैसला कर लेते हैं। लेकिन सच ये है कि एक मुश्किल दौर किसी इंसान की पहचान नहीं होता। जिस तरह कटे हुए धागे का मतलब ये नहीं कि पतंग उड़ाना भूल गई, उसी तरह कठिन समय का मतलब ये नहीं है कि इंसान की काबिलियत ख़त्म हो गई। मैं आपसे कहना चाहूँगी कि इसीलिए दोस्तों, अगर आज आपके जीवन में कोई चुनौती है, कोई परेशानी है या फिर कोई आपको गलत समझ रहा है, तो हिम्मत मत हारिए। वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं, एक दिन वही लोग आपकी सफलता की मिसाल भी देंगे। याद रखिए, बुरे वक्त की एक खूबी होती है, यह हमें उन लोगों से मिलवा देती है जो अच्छे वक्त में सिर्फ साथ होने का दिखावा करते हैं। तो मुस्कुराइए और खुद पर भरोसा रखिए। बहुत ही खूबसूरत सा दिन है आज, ट्यूसडे का, मंगलवार का। और दोस्तों समय हुआ है 10:19, करते हैं अपने शो की शुरुआत एक खूबसूरत गीत के साथ। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इस खूबसूरत से शो में आप भी मेरे साथ कनेक्ट हो जाइएगा। नंबर है 9837896896। और एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक आज की सुबह मैंने आप सभी के लिए यहाँ पर आप सभी को डेडिकेट करती हूँ, फ्रॉम द मूवी दिलवाले से। एंड गाना बहुत ही प्यारा है, अरिजीत सिंह जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज़ में सुनिएगा ये गीत। मैं लौट कर आती हूँ। गुड मॉर्निंग हमारी प्यारी श्रोताओं को।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय, न्यूरो केयर सेंटर। संपर्क करें 9548539705।
3: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
4: अरे बेटा, बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
3: पर पापा।
4: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
5: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।
6: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
5: अरे भैया, नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ। और श्रोताओं, वक्त हुआ है 10:33। यहाँ पर आपकी खूबसूरत लगातार संदेश भी आ रहे हैं, उनको भी हम जल्दी से शामिल करेंगे। बता देते हैं आपको दोस्तों, आज 2 जून की तारीख है और क्या कुछ स्पेशल है आज के दिन। दोस्तों देखिए, हर दिन हर तारीख अपने आप में स्पेशल होती है और ऐसे ही आज 2 जून का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज मनाया जाता है तेलंगाना स्थापना दिवस। जी हाँ साथियों, साल 2014 में आज ही के दिन तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। लंबे संघर्ष और लोगों की आकांक्षाओं के बाद तेलंगाना को अलग राज्य का दर्जा मिला। इसीलिए 2 जून का दिन तेलंगाना के लोगों के लिए गर्व, सम्मान और उत्सव का दिन है। तेलंगाना अपनी समृद्धि, संस्कृति, ऐतिहासिक धरोहरों और खूबसूरत परंपराओं के लिए जाना जाता है। यहाँ की राजधानी हैदराबाद है। अपनी शानदार इमारतों, तकनीकी विकास और स्वादिष्ट खान पान के लिए भी पूरी दुनिया में मशहूर है। अगर तेलंगाना की कुछ खास बातों की बात करें तो दोस्तों, यहाँ की चार मीनार बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। गोलकोंडा किला यहाँ की ऐतिहासिक पहचान है और यहाँ की लोग, संस्कृति और त्यौहार लोगों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। तेलंगाना भारत के प्रमुख

और जो तेलंगाना से हमें इस वक्त सुन रहे हैं, हमारे पास कॉल भी आते हैं तेलंगाना से। तेलंगाना की धरती यूं ही तरक्की, बस हम तो यही शुभकामनाएं देते हैं कि तेलंगाना की धरती यूं ही तरक्की की नई ऊंचाइयां छूती रहे, यहाँ की संस्कृति, खुशहाली और भाईचारा हमेशा महकता रहे। तेलंगाना स्थापना दिवस की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और भी चर्चा करेंगे हम दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर जो आपके संदेश आए हैं उनको भी मैं क्विकली शामिल करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हम और इंतजार करवाएं अपने श्रोताओं को, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं ऑलरेडी। तो चलिए क्या क्या पहुँचाते हैं आज की सुबह हमारे प्यारे प्यारे से श्रोता, उनके दिलों की बात जान लेते हैं।

और हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया हुआ है उमा शंकर सिंह जी का, एंड ये कहते हैं, नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, हम सब आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं। साथ में अवंतिका सिंह हैं, अर्चित सिंह हैं, और ये अपना संदेश पहुँचाते हैं रुद्रपुर देवभूमि उत्तराखंड से। और ये कह रहे हैं कि कल हमें कृषि विभाग से एक पुरस्कार मिला, हम पशुपालन में रुद्रपुर के फर्स्ट किसान के रूप में विजेता बने। अरे वाह, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको सर, बहुत बहुत बधाइयां। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया हुआ है जनकपुरी सहारनपुर से जून रोजी पलवली जी का, और ये हमें गुड मॉर्निंग पहुँचाते हैं आज की सुबह। वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। और दोस्तों अभी कुछ ब्यूटीफुल म्यूजिकल ब्रेक का टाइम हो गया है, उसके बाद लौट कर आएंगे और भी आपसे गपशप करेंगे। हाँ, मैं आपसे कहती हूँ, अगर आप कोई जिंदगी में कहानी लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले पानी पीना पड़ेगा, तभी तो आप कहानी लिख पाओगे ना। जब आपका स्वास्थ्य सही होगा तभी तो आप अपने जीवन में जो भी आपने सोचा है, जो भी गोल्स आपने बनाए हैं, उनको तभी अचीव कर पाएंगे आप। जब आपकी हेल्थ एकदम फिट एंड फाइन रहेगी तो उसके लिए आपने सेहत का ख्याल रखिए, पानी पीते रहिए, एंड अगर घर से बाहर जा रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा संभल कर जाइएगा, छाता वगैरह साथ रखिए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और बस हम यही कहेंगे कि बाकी चेहरे पर अपनी प्यारी सी स्माइल हमेशा ऐसे ही बनाए रखिए, मुस्कुराते रहिए। और एक खूबसूरत सा ट्रैक आपके लिए आज की सुबह, इसको सुनिएगा। बस मैं लौट कर आती हूँ, आप कहीं मचाइए, रेडियो किसी को बिल्कुल भी मत घुमाइए। और खुशी कहती है कि दिल से मुस्कुराइए, जब आप सब मुस्कुराते हैं तो हमें भी बहुत ही अच्छा लगता है। और चलिएगा, एक शानदार ट्रैक मैं सुनवाती हूँ आज की सुबह, उसके बाद करेंगे और भी आपसे गुफ्तगू।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: टायर लो सोना जीतो।
2: क्या?
1: जी हाँ,
3: चावला टायर
1: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
4: अपोजिट
3: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: ऑफर वैलिड टिल 10th June, TNC अप्लाई।
0: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सांसें सही, जिंदगी सही।

हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ। और दोस्तों, बताइएगा इस समय राइट नाउ आप क्या कर रहे हैं? ओहो, बहुत ज्यादा काम में बिजी हैं। चलिए थोड़ा सा वक्त खुद के लिए भी निकालिए और हमें अपना संदेश पहुंचाइएगा कि आप इस समय क्या कर रहे हैं राइट नाउ। अभी ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लिया है और कुछ श्रोता अभी घर के काम में बिजी हैं, तो कुछ अभी शॉप पर आराम से बैठे हैं और कस्टमर का वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कोई तो शॉप पर आए। दोस्तों, जब आपके शॉप पर कोई कस्टमर आता है तो उसको प्यार से अच्छे से डील कीजिए और किसी के साथ भी कोई ऐसा व्यवहार ना करें कि किसी इंसान का आपकी वजह से दिल दुखे। ऐसे कार्य करने चाहिए जीवन में कि आपकी वजह से किसी को तकलीफ ना हो, सामने वाला पर्सन खुश रहे। क्योंकि मुझे लगता है कि इतना अगर अच्छा जीवन हमें मिला है तो किसी को तकलीफ देने से क्या फ़ायदा। अगर देना ही है तो खुशियां दो ना एवरीवन, और खुश रहो। इतना सिंपल सा, इतना प्यारा सा जीवन है एक्चुअली ना। कि आजकल क्या हो गया है, लोग वो बात है ना कि इंसान अपने दुख से परेशानी, दूसरों की खुशियों से परेशान है कि वो क्यों मुस्कुरा रहा है, क्या वजह है। लेकिन अगर वही टाइम आप दूसरों के ऊपर इतना फोकस करेंगे कि वो क्यों मुस्कुरा रहा है, क्या वजह है, इतना ही आप समय अपनी लाइफ में देंगे और अपनी लाइफ को और बेटर बनाने के लिए आप सोचेंगे और मेहनत करेंगे तो आप भी खुश रह पाएंगे एवरीवन। तो इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि दूसरों की लाइफ में ताक झांक करने से बेहतर है कि आप अपनी लाइफ में अपनी ज़िंदगी में फोकस करें। जो आप चाहते हैं वो सब आपको मिल जाएगा, बस आपको मेहनत करनी है और पूरी ईमानदारी के साथ आपको अपनी मेहनत करनी है। जो आप अचीव करना चाहते हैं लाइफ में, जो भी आपका ड्रीम है, लाइक जो भी आप चाहते हैं वो सब आपको मिलेगा, लेकिन आपको उसके लिए कंटिन्यू मेहनत करनी है पूरी शिद्दत के साथ। और बाकी देर से ही सही, लेकिन आपका ड्रीम ज़रूर पूरा होगा, हमें तो यकीन है। अब आपको भी खुद पर विश्वास रखना है, ठीक है। और यहाँ पर खूबसूरत कुछ और संदेश आए हैं, मैं उनको भी शामिल कर लेती हूँ। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं आज की सुबह तो दोस्तों आप बिना आलस किए मुझे मैसेज कर सकते हैं। हाँ जी, देखो अभी आप बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं चेयर पर बैठे बैठे। मैं आपसे कहती हूँ, मुस्कुराने की वजह तो अच्छी बात है, आप मुस्कुरा रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि आप हमेशा मुस्कुराते रहें, लेकिन एक मैसेज हमें भी कर दीजिएगा क्योंकि इंतजार कर रहे हैं आपके प्यारे संदेशों का। और यहाँ पर हमारे पास मैसेज आया है रानी नांगल से रिहाना जी का, और ये हमें गुड मॉर्निंग पहुँचाती हैं आज की सुबह। रिहाना जी, आपको भी गुड मॉर्निंग, क्या कर रही हैं आप बताइएगा। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया हुआ है सरगांव छत्तीसगढ़ से, राजनंद गांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जमुना साहू का, एंड ये हमें गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी, और ये भी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। नेक्स्ट मैसेज हमें मिला है नेपा नगर एमपी से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह जी का, और ये भी कार्यक्रम को सुन रहे हैं। इन्होंने एक प्यारे से गीत की रिक्वेस्ट हमें भेजी है, बिल्कुल हम पूरी कोशिश करेंगे सर इस ट्रैक को प्ले करने की। तो चलिए दोस्तों, लौट आते हैं कुछ खूबसूरत गीतों के साथ, लेकिन आपसे मैं कहती हूँ कि आप बस कहीं मत जाइए। लेकिन हाँ, जो काम के लिए आपके पेरेंट्स ने आपको बोला है इस समय, हाँ जैसे बच्चों की छुट्टियां भी चल रही हैं तो इस समय बच्चे क्या कर रहे हैं घर पर, कुछ खेलने में बिजी हैं, गेम्स में, तो कुछ बस टीवी देखते रहते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि पेरेंट्स, देखिए जो पेरेंट्स इस समय मुझे सुन रहे हैं, आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपको अपने बच्चे को क्या क्या एक्टिविटीज़ सिखानी है, क्या क्या चीज़ें करनी है, क्योंकि आप बड़े हैं और आपसे बेहतर कौन जान सकता है, आप ही तो शिक्षा देने वाले हैं, फर्स्ट गुरु तो पेरेंट्स ही होते हैं ना। तो इस छुट्टियों के टाइम में आप अपने बच्चों को कुछ नई नई एक्टिविटीज़ सिखाइए, बाहर लेकर जाइए, कुछ गेम्स खिलाइए। क्योंकि बच्चों का ना आजकल का क्या हो गया है, बस एक रूम एक मोबाइल, उनको और कुछ नहीं चाहिए। अगर आप पूरा दिन उनसे पूछो भी नहीं ना कि आपने खाना खाया है नहीं खाया है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जबरदस्ती खुद उनको फोर्स करते हैं कि पहले खाना खा लो, बाद में जो भी मोबाइल में अपना गेम्स वगैरह खेलना है वो बाद में खेलना, पहले खाना खा लो, इतना रिक्वेस्ट करते हैं आप तब बच्चे खाना खाते हैं। तो मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा मोबाइल से बच्चों को डिस्टेंस बनाकर रखिएगा,
थोड़ा सा मोबाइल से बच्चों को बचा कर रखिए, उनको आप बाहरी ज़िंदगी में थोड़ा सा ज़्यादा इन्वॉल्व कीजिएगा, वो ज़्यादा बेस्ट है मैम। बच्चों के लिए भी अच्छा रहेगा और पेरेंट्स के लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि बाहर नेचुरल जितना आप रहते हैं, इवनिंग में वॉक करने जाते हैं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, बच्चों को भी अच्छा लगता है। कभी ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स बिजी होते हैं बहुत ज़्यादा काम में, तो बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं, तो फिर बच्चे क्या करते हैं, अकेले रहते हैं, तो फिर वो मोबाइल की उनको लत लग जाती है। इन्हीं चीज़ों में बच्चे फिर इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसीलिए थोड़ा वक्त आप अपने बच्चों को भी दें, शाम में घूमने जाएं, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, कुछ बातें उनकी सुने, कुछ आप भी उनसे कहिए, तो अच्छा लगता है जब ऐसा माहौल घर में होता है। और अभी कुछ गाने मैं यहाँ पर प्ले कर रही हूँ, उसके बाद लौट कर आएंगे और भी आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप मुझे अपने संदेश पहुँचा सकते हैं, मोबाइल नंबर मैं आपको बताती हूँ 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और कुछ खूबसूरत गीत आप सभी के लिए जो आपको लाइक थिरकने पर मजबूर कर देंगे। बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक है और ये गाना सभी ने सुना है, तो मैंने कहा चलिए एक बार और सुनवा देते हैं।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
3: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
2: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
4: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
5: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
6: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
5: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।

हे हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आपका अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी खुशी। यहां पर वक्त हुआ है दोस्तों 11:07 और आपके खूबसूरत संदेश भी आए हैं, उनको भी हम शामिल करेंगे दोस्तों। और भी आपसे बहुत सारी गुफ्तगू करनी है, बातें बहुत सारी हैं, लेकिन टाइम कम पड़ जाता है। कोई बात नहीं है, अभी हमारे पास पूरा एक घंटा है और हम आपसे बातचीत करने वाले हैं। दोस्तों 2 जून के इस खास दिन पर हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कलाकार की जिन्हें देखते ही करोड़ों दिलों के मन में भगवान श्री कृष्ण की छवि उभर आती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नीतीश भारद्वाज जी की, जिनका जन्म आज ही 2 जून को हुआ था। दोस्तों महाभारत में श्री कृष्ण का किरदार निभाना कोई आसान बात नहीं थी, लेकिन नीतीश भारद्वाज जी ने अपनी मधुर मुस्कान, शांत व्यक्तित्व और प्रभावशाली संवाद अदायगी से इस भूमिका को ऐसे जीवंत कर दिया कि लोग उन्हें सचमुच श्री कृष्ण का स्वरूप मानने लगे थे। कहते हैं कि जब महाभारत का प्रसारण होता था तो लोग टीवी के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाते थे। श्री कृष्ण के रूप में नीतीश जी की बातें, उनकी मुस्कान और जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण लोगों के दिलों में बस गया था। उनकी यात्रा भी काफ़ी दिलचस्प रही है दोस्तों। अभिनय की दुनिया में आने से पहले उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई की थी, लेकिन किस्मत उन्हें कलाकार की दुनिया में ले आई। कई भूमिकाएं निभाने के बाद उन्हें महाभारत में श्री कृष्ण का किरदार मिला और यही किरदार उनकी पहचान बन गया। एक कलाकार के लिए इससे बड़ी उपलब्धिता क्या होगी, हो सकती है दोस्तों, कि वर्षों बाद भी लोग उन्हें उनके नाम से, काम से और कृष्ण के नाम से ज्यादा याद करते हैं। दोस्तों कुछ किरदार सिर्फ निभाए नहीं जाते बल्कि इतिहास बन जाते हैं। नीतीश भारद्वाज जी ने श्री कृष्ण के रूप में ऐसे ही इतिहास रचा। उनकी मुस्कान में अपनापन था, उनकी वाणी में ज्ञान था और उनके अभिनय में ऐसी सादगी थी कि आज भी उन्हें देखते ही महाभारत के वो स्वर्णिम दिन याद आ जाते हैं। श्री कृष्ण के आदर्शों को पर्दे पर जीवंत करने वाले लोकप्रिय अभिनेता नीतीश भारद्वाज जी को जन्मदिन की हमारी पूरी एफएम की टीम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपको लंबी उम्र दे और आपका स्वास्थ्य हमेशा सुखी और दीर्घायु जीवन प्रदान करे, बस हम तो यही कामना करते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपके संदेश भी आए हैं, उनको भी हम शामिल करेंगे। और साथियों नीतीश भारद्वाज जी की कुछ फिल्में भी आई हैं, बहुत पॉपुलर हो रही हैं एंड कुछ हम उनकी डायलॉग भी आपसे मालूम करने वाले हैं, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। और यहाँ पर खूबसूरत संदेश भी आए हैं, उनको भी मैं जल्दी से शामिल कर लेती हूँ। और हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है अजीत कसाना जी का, साथ में माया देवी जी हैं, ऋतिक हैं और आदित्य कसाना जी का मैसेज हमारे पास आया है कांट रोड लदावली से एंड ये कहते हैं म्यूजिक इज द बेस्ट मेडिसिन ऑफ आवर हेल्थ लाइफ। या एग्जैक्टली सर, आई एग्री विद यू। पता है आपको जब हम कैसी भी सिचुएशन में हो, लेकिन जब हम ट्रैक सुनते हैं ना, गाने सुनते हैं अपने मनपसंद के, तो हमारा जो मन है वो प्रसन्न हो जाता है और माइंड भी तुरंत चेंज हो जाता है। तो म्यूजिक में पावर तो है, शक्ति है और सबसे अच्छी मेडिसिन भी है। एंड यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है पूजा जी का और ये विकास नगर से हमें गुड मॉर्निंग पहुँचाती हैं। कहती हैं मैम गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग, आई एम गुड। और ये कहती हैं कि मैम आज हम मटर पनीर की सब्ज़ी बना रहे हैं और साथ में कचौड़ियाँ भी बना रहे हैं, आप हमारे घर आ जाइएगा, आपका स्वागत है। अरे वाह पूजा, क्या बात है, मटर पनीर की सब्ज़ी, ओए होए, खुशबू हमारे स्टूडियो में पहुँच चुकी है। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी एंड
कुछ और संदेश यहाँ पर हमारे पास आए हैं एंड ये मैसेज हमें मिला है जिला मुरादाबाद ग्राम दुला उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप जी का, साथ में शीतल कश्यप जी हैं, सोनू कश्यप जी हैं और ये कहते हैं कि मैम हमें किसी भी गीत में आप शामिल कर लीजिएगा। बिल्कुल जी, एक खूबसूरत सा ट्रैक सुनवाते हैं दोस्तों, उसके बाद फिर से हम कनेक्ट होंगे। बस आप कहीं मत जाइए, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और मीठी मीठी बातें भी करते रहिए बिल्कुल मेरी तरह। बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक मैं आज आपके लिए प्ले कर रही हूँ फ्रॉम द मूवी सोल्जर से एंड कुमार सानू जी साथ में अलका याग्निक जी की बहुत ही प्यारी सी आवाज़ में। ये प्यारा सा ट्रैक आप सभी के लिए।

0: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
1: टायर लो सोना जीतो।
2: क्या?
1: जी हाँ,
3: चावला टायर
1: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
4: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड,
5: अपोजिट
4: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
5: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई।
6: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
7: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइन्स नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
6: कॉल 8826213131।
8: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।
9: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
10: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग. आपका वेलकम है फिर मुरादाबाद 89.6 पर. खुशी है आपके साथ. और श्रोताओं, वक्त की अगर बात करें तो वक्त हुआ है अभी 11:25 स्टूडियो की घड़ी में राइट नाउ. एंड दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे एक आज बर्थडे है नीतीश भारद्वाज जी का, जो कि महाभारत में जिन्होंने कृष्ण भगवान का रोल निभाया है, श्री कृष्ण भगवान का. और आज मैं उन्हीं की फिल्म का एक आपसे ट्रैक मालूम करने वाली हूँ. आप मुझे बताइएगा कि ये गाना कौन से फिल्म का है, आपको फिल्म का नाम मुझे बताना है. तो चलिए शुरू करते हैं ये सिलसिला. और आप मुझे फटाफट से मैसेज पहुँचाइएगा. आप अपने फ़ोन को बस हाथों में रखिए एंड मुझे यकीन है कि आप जल्द ही इसका जवाब पहुंचा देंगे, क्योंकि आप बहुत बड़े फिल्मी हैं, हम जानते हैं. तो बताइएगा ये गाना कौन से फिल्म का है.

जी दोस्तों, आप मुझे बताइए कि ये ट्रैक जो मैंने प्ले किया है कौन सी फिल्म से है, एंड उस फिल्म का क्या नाम है? नाम मुझे जल्दी से अपना बताइएगा, इस फिल्म का नाम भी और अपना नाम भी आप लिखिएगा। सबसे पहले आप व्हाट्सएप ओपन कीजिए और वहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर आप डायल कीजिएगा 9837896896, और आपको सबसे पहले अपना नाम और अपने सिटी का नाम, जहाँ से भी आप बात कर रहे हैं, अपने सिटी या विलेज से आप हमें जहाँ से भी सुन रहे हैं, एंड उसका नाम, फिर उसके बाद आपको गाने का नाम बताना है कि इस ट्रैक जो मैंने भी प्ले किया है कौन सी मूवी का है। इस मूवी का नाम आपको मुझे बताना है। मोबाइल नंबर मैं आपको बताती हूँ 9837896896, और मुझे पूरा यकीन है कि आप अपने आंसर फटाफट से पहुँचा देंगे। तब तक मैं आपको एक खूबसूरत ट्रैक यहाँ पर सुनवाती हूँ दोस्तों, इसके बाद लौट कर आएंगे और आपसे बातचीत करेंगे।

0: भर लो, थोड़ा सा जी लो, थोड़ा थोड़ा मर लो।
1: दुनिया में आए हो तो लव कर लो, दुनिया में आए हो तो लव कर लो, थोड़ा सा जी लो, थोड़ा थोड़ा मर लो।
0: हाँ, थोड़ा सा जी लो, थोड़ा थोड़ा मर लो।

क्या बात है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक अभी आपने सुना। और आप हमारे अपने हैं तभी तो हम चले आते हैं ना एवरीडे 10 से 12। और दोस्तों अरिजीत सिंह की आवाज़ में खूबसूरत सा ट्रैक आपने एंजॉय किया। एंड अभी यहाँ पर आपके संदेश आए हैं उनको भी हम शामिल करेंगे और कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो आपको देनी है। दोस्तों ये है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। और यहाँ पर समय की बात अगर करें तो वक्त हुआ है 11:41। और दोस्तों भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो सिर्फ कलाकार नहीं बल्कि एक युग बन जाते हैं। आज हम याद कर रहे हैं हिंदी फिल्म जगत के शोमैन कहे जाने वाले महान अभिनेता, निर्देशक और निर्माता राज कपूर जी को। जी हां, आज उनकी पुण्यतिथि है और राज कपूर जी ने अपने अभिनय, निर्देशन और अनोखी सोच से भारत सिनेमा को नई पहचान दी। उनकी फिल्मों में मनोरंजन के साथ साथ समाज का आईना भी देखने को मिलता था। आवारा, श्री 420, संगम मेरा नाम है, जोकर मेरा नाम है जैसी फिल्मों में उन्होंने करोड़ों दिलों पर उन्होंने राज किया है। और उनके करोड़ों फैंस हैं जो उनकी मोहब्बत को अपने दिल में सवार कर रखते हैं। और साथ ही उनकी मुस्कान, उनकी सादगी और उनकी कला आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। राज कपूर जी ने भारतीय सिनेमा को सिर्फ फिल्में नहीं दी बल्कि एक ऐसे किरदार दिए हैं जो पीढ़ियों तक लगातार याद रखे जाएंगे। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें भावनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके द्वारा दिए गए अनमोल योगदान को नमन करते हैं। और दोस्तों उन्हीं की फिल्म की कुछ गीत मैं आपको यहाँ पर सुनवाने वाली हूँ। साथियों पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित एंड भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्देशक व निर्माता है राज कपूर साहब जी और उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और दोस्तों कुछ गीत भी मैं आपको यहां पर सुनवाने वाली हूं। और जो आपके संदेश आए हैं मैं उनको भी शामिल कर लेती हूँ, उनको मैं स्किप नहीं करूंगी क्योंकि आप सब इतने प्यार से संदेश पहुंचाते हैं। और हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया हुआ है मधुबनी बिहार से मोहम्मद शाबिर परवाना जी का। ये हमें गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं और कार्यक्रम को भी लगातार सुनते हैं, धन्यवाद आपका सर। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया हुआ है राशिद हुसैन अंसारी जी का और ये हमें गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं, आपको भी गुड मॉर्निंग। और कहते हैं कि आप हमें किसी भी सदाबहार नगमे में शामिल कर लीजिएगा। बिल्कुल सर, नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी जी का और ये कहते हैं आदरणीय प्रसारक जी को हमारा नमस्कार, आपको भी नमस्कार सर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल जी का और साथ में रंजीत कौर हैं, जयप्रकाश राहुल हैं, प्रियंका हैं, मन्नत हैं, गुरप्रीत हैं और साथ में गुरु शब्द सिंह राहुल जी भी हैं। और दोस्तों एक बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक मैं आपको सुनवाने वाली हूँ। मेरा नाम जोकर मूवी से जो 1970 में फिल्म आई थी और बहुत ही खूबसूरत ये गीत है, आप भी सुनिएगा। बस मैं लौट कर आती हूँ इस प्यारे से गीत की उस पर।

0: जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: टायर लो सोना जीतो।
4: क्या?
3: जी हाँ,
5: चावला टायर
3: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
5: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड अपोजिट मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
6: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई।
7: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
8: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
9: कॉल 8826213131।
10: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
11: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

0: अशांति इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: भूलना नहीं चाहिए।

0: शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। केंद्र सरकार ने कल उच्च न्यायालय के 4 मुख्य न्यायाधीशों और वरिष्ठ अधिवक्ता मोहना को सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत करने की मंजूरी दी थी। सोशल मीडिया पोस्ट में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने घोषणा की कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इनको न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशातेले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉ जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशातेले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया है कि भारत के खिलाफ म्यांमा की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच कल नई दिल्ली में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत का समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री ने म्यांमा से पूर्वोत्तर में संचालित आतंकी गुटों का भी मुद्दा उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि म्यांमा के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमा की धरती का इस्तेमाल नहीं होगा।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
0: गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिया है। इसमें आव्रजन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण और समय सीमा से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। इससे पहले 180 दिन की अवधि समाप्त होने के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। CBSE ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। छात्रों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका ₹100 और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न ₹25 का भुगतान करना होगा। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिककाल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
3: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
4: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz। मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आरजे राज। आज फिर मैं वापस लौट कर आया हूं आप सब के लिए एक महत्वपूर्ण बात लेकर। आखिर वो बात क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूं। ये कार्यक्रम जो प्रस्तुत किया जा रहा है, ये प्रस्तुत किया जा रहा है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से। आज हम बात करेंगे एक ऐसे साइबर अपराध की जो लोगों की सालों की बचत और जीवन भर की कमाई कुछ ही दिनों में खत्म कर देता है। इस अपराध का नाम है निवेश घोटाला। मतलब पैसे लगाओ और 10 मिनट में दोगुने करके वापस पाओ। हाँ जी, आखिर

निवेश घोटाला ना क्या है? श्रोताओं, निवेश घोटाला वह धोखाधड़ी है जिसमें ठग बहुत ज्यादा मुनाफे का लालच देता है, कहते हैं कोई जोखिम नहीं है, गारंटी रिटर्न का वादा करते हैं। वह लोगों को फर्जी ट्रेडिंग ऐप, नकली वेबसाइट, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए निवेश के लिए उकसाते हैं। चलिए आपको एक ड्रामे के जरिए मैं सारी बातें समझाने की कोशिश करता हूँ। अरे इस ग्रुप में लिखा है हर दिन 5% मुनाफा बिना किसी जोखिम के, इतना मुनाफा कहीं धोखा तो नहीं? नहीं यार, देखो स्क्रीनशॉट भी है, सब लोग मुनाफा कमा रहे हैं, पहले 10,000 लगाए हैं, अरे वाह ऐप में तो मुनाफा दिखाई दे रहा है, अब तो 50,000 रुपए लगा देता हूँ, मैं पैसे निकालना चाहता हूँ। निकासी से पहले वेरिफिकेशन फीस जमा करनी होगी। कुछ देर बाद ऐप गायब हो जाता है और समझ जाता है कि वह निवेश घोटाले का शिकार हो चुका है। निवेश घोटाले इतने खतरनाक क्यों हैं? श्रोताओं, निवेश घोटाले इसलिए खतरनाक हैं क्योंकि ये लालच का फायदा उठाते हैं, पढ़े लिखे लोग भी फंस जाते हैं, लोग अपनी पूरी जमा पूंजी लगा देते हैं, कई मामलों में रिटायरमेंट का पैसा चला जाता है, कर्ज लेकर निवेश किया जाता है, परिवार पर आर्थिक बोझ बढ़ जाता है। निवेश घोटाले से रिलेटेड चलिए मैं आपको बताता हूँ रेड फ्लैग। गारंटेड मुनाफा दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि शायद यहाँ पर आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। बिना जोखिम के निवेश, हाँ जी, आप कहीं पर अगर निवेश कर रहे हैं तो पहले वहाँ पर देखिए कि कितना जोखिम है कितना नहीं। आज आखिरी मौका है, जब आपके साथ या फिर आपसे कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि अभी निवेश करो, आज आखिरी मौका है, तो आप समझ सकते हैं कि शायद आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। अनजान व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप, किसी भी वजह से, किसी भी कारण, किसी भी ऐसे ग्रुप में अगर आप ऐड होते हैं और ग्रुप में ऐड होने के बाद आप निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं करना है। ऐप या कंपनी का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। हाँ, अगर आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और वहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। क्या सच में वो ऐप वेरीफाइड है या फिर नहीं है, इन बातों का ध्यान भी रखना होता है। याद रखिए, असली निवेश में जोखिम होता है, ज्यादा मुनाफा मतलब ज्यादा जोखिम। निवेश करने से पहले क्या करें? निवेश से पहले ये बातें जरूर जांचें कि कंपनी या प्लेटफॉर्म सरकारी रजिस्टर्ड में दर्ज है या फिर नहीं है। किसी अधिकृत वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। इंटरनेट पर रिव्यू और जानकारी खोजें। अनजान लोगों बातों में ना आएं। कभी भी बैंक लॉगिन, ओटीपी, यूपीआई पिन साझा बिल्कुल ना करें। बुजुर्गों और नए निवेशकों के लिए मैं एक संदेश देना चाहूँगा। श्रोताओं, निवेश घोटालों के शिकार अक्सर बुजुर्ग, रिटायर्ड कर्मचारी, पहली बार निवेश करने वाले लोग होते हैं, इसलिए परिवार में निवेश से पहले चर्चा करें। जल्दी मुनाफे के लालच से बिल्कुल बचें। शक हो तो नहीं कहना सीखें। ठगी हो जाए तो क्या करें? अगर आपके साथ निवेश घोटाला हो गया है तो तुरंत कॉल करें 1930 पर। शिकायत दर्ज करें www.cybercrime.government.in पर। याद रखिए, जितनी जल्दी शिकायत उतनी ज्यादा मदद मिलने की संभावना। साइबर सुरक्षा से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप www.staysafeonline.com पर विजिट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ सुरक्षित निवेश के 5 सुनहरे नियम। गारंटेड मुनाफा सबसे बड़ा धोखा, अनजान प्लेटफॉर्म बड़ा खतरा, जल्दबाजी मतलब नुकसान, जानकारी साझा करना गलती, समझदारी सबसे बड़ी सुरक्षा। जाते थे श्रोताओं, मैं आपसे इतना चाहूंगा कि पैसा मेहनत से कमाया जाता है और एक गलत फैसले से चला भी जाता है। लालच नहीं, जानकारी के साथ निवेश करें। यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से। जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। हाँ जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz, आपके शहर का पहला रेडियो स्टेशन जो आपको एंटरटेनमेंट के साथ साथ काम की जानकारियां भी देता है। तो राज फिलहाल इस शो से अभी के लिए अलविदा लेना चाहता है और जाने से पहले एक बार फिर कहना चाहता है कि लालच बुरी बला है। अगर कहीं पर आपको ये कहा जा रहा है कि आप पैसा इन्वेस्ट कीजिए, आपका पैसा 2x, 4x इतने परसेंट की बढ़ोतरी हो जाएगी, तो इन्वेस्ट करने से पहले कृपया करके जांच कर लें कि क्या आप सही जगह निवेश कर रहे हैं या फिर नहीं। तो अभी के लिए लेता हूँ यहाँ से अलविदा। बाय बाय, टेक केयर, सुनते रहिए FM मुरादाबाद। जल्दी मिलूंगा कुछ और ऐसी ही इम्पोर्टेंट बातों के साथ।

0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई। पिछले दो एपिसोड में हमने HPV वैक्सीन को लेकर डर, अफवाह, पीरियड्स और बांझपन की बात की। आज हम एक और जरूरी सवाल पर आते हैं। ठीक है, मान लिया कि टीका जरूरी है, सुरक्षित है और अफवाहों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आम परिवार क्या करे, कहाँ जाए, कितना खर्च होगा, क्या सरकारी अस्पताल में मिलेगा, क्या पहले रजिस्ट्रेशन होगा और क्या सिर्फ बेटी का टीका ही काफी है या फिर घर की बड़ी महिलाओं को भी कुछ करना चाहिए। इस सारे सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ फिर से है टीकन देवी और सुनीता। सुनीता, अब आपका मन कैसा है?
1: अब पहले जैसा डर नहीं है, पर अब चिंता दूरी है। प्रक्रिया की, कहाँ जाए, किस से पूछे, कागज क्या लेंगे, भीड़ होगी या नहीं, लौटना ना पड़ जाए, हमारे जैसे परिवारों में यही व्यवहारिक बातें भी बड़ा फर्क डालती हैं।
2: बिल्कुल, और सही स्वास्थ्य सेवा तभी काम आती है जब वह लोगों की पहुंच के अंदर हो, समझ में आए और लोग बिना शर्म बिना डरे सेवाओं का लाभ उठा सकें। इसलिए आज हम सिर्फ क्या नहीं कैसे की बात करेंगे।
0: तो सबसे पहले सीधी सूचना, उपलब्ध सरकारी सामग्री में साफ बताया गया है कि HPV वैक्सीन 14 वर्ष की लड़कियों के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क उपलब्ध है, यानी पैसा ना ही होना सही इलाज के लिए वादा नहीं है, सुरक्षा जेब की मोहताज नहीं है, यही सरकार द्वारा निःशुल्क सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की बुनियादी सोच है।
1: यह बात मेरे दिल को छू गई लगी, क्योंकि सच कहूँ अगर यह बहुत महंगा होता तो शायद हम टाल देते, पर हम जैसे घरों में बीमारी से ज्यादा कभी कभी इलाज का खर्चा डराता है।
2: और यही कारण होता है कि मुफ्त उपलब्धता कोई छोटी बात नहीं, ये बराबरी की बात है। इसका मतलब ये है कि रोकथाम सिर्फ शहरों के बड़े निजी अस्पताल या पैसों वालों तक सीमित ना रहे, गांव, कस्बे, कम आय वाले परिवार सबकी बेटियां सुरक्षा पाएं।
0: लेकिन सिर्फ मुफ्त कहना काफी नहीं, लोगों को रास्ता भी साफ चाहिए। तो टीकन भाभी, कोई परिवार क्या क्या कर सकता है?
2: पहला रास्ता, अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र आयुष्मान आरोग्य मंदिर, प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल या सरकारी मेडिकल कॉलेज में जानकारी लें। दूसरा, यदि स्कूल से सूचना आए तो स्कूल से पूछें कि कैंप कहां और कब लगेगा। तीसरा, अपने इलाके की आशा, ANM या स्वास्थ्य कार्यकर्ता से बात करें। चौथी बात, जहां लागू हो UWIN डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण और अपॉइंटमेंट की जानकारी ली जा सकती है। पांचवा, यदि कोई बात समझ ना आए पूछने में शर्म ना करें, स्वास्थ्य सेवा सवाल पूछने वालों के लिए ही है।
1: UWIN का नाम तो सुना है, पर सबको मोबाइल चलाना थोड़ी आता है।
2: बिल्कुल सही, इसीलिए डिजिटल सुविधा एक रास्ता है, एकमात्र रास्ता नहीं। अगर मोबाइल, इंटरनेट, OTP ये सब मुश्किल लगे तो सीधे स्वास्थ्य केंद्र जाओ या आशा से मदद लो, तकनीकी मदद के लिए, छाटने के लिए नहीं।
0: यह बिंदु बहुत अहम है। भारत जैसे समाज में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स उपयोगी हैं, लेकिन उनमें वर्ग, लिंग और पहुंच की असमानताएं भी होती हैं। इसलिए सेवा का ऑफलाइन रास्ता हमेशा मजबूत रहना चाहिए।
1: हाँ, हमारे यहाँ तो कई घरों में मोबाइल भी पति के पास रहता है, ऊपर से ऐप डाउनलोड, नाम लिखना, अंग्रेजी पढ़ना सब आसान नहीं।
2: तो फिर सीधा रास्ता अपनाओ, स्वास्थ्य केंद्र जाओ, यही तो सरकारी व्यवस्था का मतलब है, जनता को दरवाजे पर सुविधा मिले।
0: जरा दृश्य बता दें, सुनीता, टीकन भाभी और मैं आपका दोस्त सरकारी केंद्र पहुंच गए हैं। सुनीता के मन में हिचक है और उन्हें लग रहा है लोग क्या कहेंगे, क्या पूछेंगे, कहीं डांट ना दें। लेकिन कई परिवारों को भी यही स्थिति होती है। तो अब आप जरा अपना अनुभव श्रोताओं के साथ साक्षा करें।
1: मैं तो सच कहूँ, पहली बार गई तो लगा कोई कहेगा इतनी देर से क्यों आई या पहले जानकारी क्यों नहीं ली, पर जब वहाँ बैठी ANM बहन ने ठीक से समझाया तो आधा डर वहीं उतर गया।
2: यही तो भरोसा बनता है, स्वास्थ्य व्यवस्था का चेहरा सिर्फ इमारत नहीं, वहाँ बैठा इंसान भी होता है, अगर वह सम्मान से बात करें तो सेवा का असर दो गुना हो जाता है।
0: और यही एक भी सीख है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सिर्फ इंजेक्शन या दवा नहीं, संवाद, सम्मान और भरोसा भी है, खासकर महिलाओं और किशोरियों के लिए।
1: एक और बात समझ में आई, हम बेटी के टीके के लिए गए थे पर वहाँ महिलाओं की जांच की भी बात हुई। पहले तो लगा यह अलग मुद्दा है, फिर समझ आया कि नहीं, यह जुड़ा हुआ है।
2: बिल्कुल जुड़ा हुआ है। अधिकार संदेश साफ कहते हैं, सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम में दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। कम उम्र की लड़कियों के लिए समय पर HPV वैक्सीन और महिलाओं के लिए नियमित स्क्रीनिंग। इसका मतलब ये नहीं कि टीका सब कुछ अकेले कर देगा, इसका मतलब ये है कि सुरक्षा की एक श्रृंखला है। पहला कदम टीका, बाद के वर्षों में जांच और समय पर पहचान।
0: और उपलब्ध सरकारी संचार में यह भी कहा गया है कि महिलाओं के लिए सर्वाइकल जांच नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में निशुल्क उपलब्ध हो सकती है, तथा समय पर पहचान जीवन रक्षक हो सकती है। यानी घर की बड़ी महिलाओं को यह नहीं सोचना चाहिए कि यह तो लड़कियों की बात है, इससे क्या लेना।
1: यही बात मेरे मन को लगी, मैं बेटी के साथ गई थी पर वापस आते वक्त लगा कि मुझे खुद भी अपनी जांच के बारे में पूछना चाहिए। हम औरतें अक्सर यही सोचते हैं, अभी क्या जरूरत है, सब कुछ लक्षण होने तक देखेंगे, पर जब तक देर हो जाए तो।
2: इसीलिए जागरूकता जरूरी है, जो बीमारी रोकी जा सकती है उसे चुपी और देर के भरोसे ना छोड़ा जा सके।
0: अब बात करते हैं उस घरेलू तनाव की जो अक्सर फैसले के रास्ते में आता है। मान लीजिए माँ तैयार है पर दादी कहती हैं हमारे जमाने में यह सब नहीं था। पति कहता है देख लो मुझे नहीं पता। पड़ोसन कहती है सरकारी चीज है संभल कर जरा। ऐसे में क्या करें।
1: यही तो हुआ मेरे साथ, एक तरफ बेटी का भविष्य, दूसरी तरफ घर की अलग अलग आवाजें। फिर लगा कि अगर मैं हर किसी को खुश करने लगूंगी तो शायद सही फैसला कभी नहीं ले पाऊंगी।
2: इसीलिए निर्णय की दूरी साफ रखो, घर की राय सुनो पर अंतिम आधार प्रमाण हो। जो बात डॉक्टर, मंत्रालय, वैज्ञानिक, जागरूकता सामग्री और विश्वसनीय स्रोत कह रहे हैं वही प्राथमिक होनी चाहिए। परिवार का डर सम्मान के लायक है पर झूठ का आधार नहीं।
1: और अब मुझे यह भी लगता है कि एक माँ को सिर्फ भावुक कहकर किनारे नहीं कर देना चाहिए। वह सवाल पूछ रही है, इसका मतलब वह जिम्मेदार है।
2: सही कहा, सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में माताओं की भूमिका केंद्रीय होती है, लेकिन उन्हें जानकारी और सहारा दोनों चाहिए, सिर्फ निर्देश नहीं।
0: यह बात नीति निर्माताओं, स्वास्थ्य कर्मियों और संचार कार्यकर्ताओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। यदि अभियान में सम्मानजनक संवाद नहीं होगा तो अफवाह खाली जगह भर देगी। यदि परिवार को सिर्फ आदेश मिलेगा, समझ नहीं, तो भरोसा नहीं बनेगा। इसलिए ऐसे सेल के जैसे कार्यक्रम जहाँ सवाल छोटे नहीं माने जाते।
1: टीकन भाभी, जब मैं केंद्र गई थी वहाँ किसी ने कहा कि पहले रजिस्टर हो जाओ फिर तारीख मिलेगा, किसी ने यू विन कहा, मुझे लगा फिर वही मुश्किल।
2: पर तुमने पूछा ना?
1: हाँ पूछा, तब समझ आया कि विकल्प है, अगर ऑनलाइन मदद मिले तो ठीक है, नहीं तो केंद्र पर ही जानकारी मिल सकती है। पहले मैं पूछने से डरती थी, अब नहीं।
2: यही नागरिक समझ है, मुझे नहीं आता कह देना हार नहीं है, मुझे समझाइए कहना अधिकार है।
0: यह बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने। श्रोताओं ध्यान से सुन लीजिए, स्वास्थ्य सेवाओं में जानकारी मांगना झिझक की नहीं अधिकार का विषय है, खासकर उन समुदायों के लिए जो अक्सर औपचारिक संस्थानों में से दूरी महसूस करते हैं।
1: और एक बात, जब मैंने सुना कि यह लड़कियों के लिए मुफ्त है तो मन में एक राहत आई, पर साथ ही एक दर्द भी है। कितनी बार महिलाएं और लड़कियां ऐसे चीजों से सिर्फ इसलिए वंचित रह जाती हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि सुविधा उनके लिए है।
2: यही सूचना असमानता है, सुविधा होती है पर खबर पहुंचती नहीं, या खबर पहुंचती है तो उसके साथ अफवाहें भी पहुंच जाती हैं। इसीलिए जानकारी को सिर्फ जानकारी देना काफी नहीं, उसे समझ में आने वाली भाषा में भरोसे वाले माध्यम से पहुंचाना भी जरूरी है।
0: और यही कारण है कि सामुदायिक रेडियो, स्थानीय स्वास्थ्य संवाद, आशा कार्यकर्ता, स्कूल, महिला समूह, ये सब इतनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। एक दिल्ली वाला संदेश तभी असर डाल करता है जब वह गांव की बोली, कस्बे की चिंता और घर की रसोई तक पहुंचे।
1: हम जैसे घरों में तो रेडियो की बात मोबाइल से ज्यादा भरोसेमंद लगती है, क्योंकि यहाँ कोई हमारे ही जैसे लोगों की भाषा में बात करता है।
2: हाँ, क्योंकि ये उपदेश नहीं, साथ चलने वाली बातें होती हैं।
0: अब एक उपयोगी सूची बना लेते हैं। यदि आपकी बेटी 14 वर्ष की है तो आप क्या करें? पहला, निकटतम सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, PHC, CHC, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जिला अस्पताल या स्कूल कैंप की जानकारी लें। दूसरा, आशा, ANM या डॉक्टर से पूछे कि HPV वैक्सीन कहां और कब उपलब्ध है। तीसरा, यदि उपलब्ध हो तो UWIN पर पंजीकरण की जानकारी लें। चौथा, किसी भी फॉरवर्ड, वीडियो या बिना स्रोत के दावे की अंतिम सच को ना माने। पांचवा, बेटी से खुलकर बात करें, उसे बताएं कि यह सुरक्षा का कदम है। छठा, घर की 30 वर्ष से ऊपर की महिलाओं के लिए सर्वाइकल स्क्रीनिंग के बारे में भी पूछें। सातवा, किसी भी झिझक या भ्रम को लेकर वापस सवाल पूछने से ना हिचकें।
1: यही सूची में लिख लेना चाहती हूँ, क्योंकि बातों में बहुत कुछ भूल जाती हूँ, पर लिखी चीजें साथ रहती हैं।
2: लिखो और चाहो तो दीवार पर चिपका दो, जैसे राशन की सूची लगती है वैसे ही सेहत की सूची भी लगे।
0: बहुत सुंदर बात कही, क्योंकि स्वास्थ्य भी घरेलू योजना का हिस्सा होना चाहिए, कोई आकस्मिक घटना नहीं।
1: टीकन, अब मैं बेटी के टीके लेकर तैयार हूँ, पर एक अजीब सी बात है, पहले जो डर था अब उसी की जिम्मेदारी आ गई है। लगता है अब मुझे औरों को भी बताना चाहिए।
2: यही तो सार्वजनिक भलाई है, जब एक घर समझता है तो अगला घर थोड़ा आसान हो जाता है। तुम अपनी पड़ोसन से कह सकती हो, मैंने जाकर पूछा, मुझे ये जानकारी मिली, ये उपदेश नहीं अनुभव साझा करना है।
1: मैं अपनी जानी को भी कहूँगी कि अपनी जांच के बारे में पूछे, वे हमेशा कहती हैं हमारे लिए कौन सा समय है। अब मैं कहूँगी, समय नहीं बताना, निकालना पड़ता है।
2: सही, और ये सिर्फ बीमारी से लड़ने वाली बात नहीं, अपने जीवन की कीमती पहचान की बात है।
0: यही बुनियादी संदेश है, महिलाओं की सेहत फुर्सत का विषय नहीं है, बेटियों की रोकथाम और माताओं की जांच दोनों परिवार की मुख्य जिम्मेदारी है, अतिरिक्त बोझ नहीं।
2: और मैं यही कहूँगी, सरकारी दरवाजा तभी अपना लगता है जब हम उस तक जाने की हिम्मत करें। डर, संकोच और क्या कहेंगे को पीछे छोड़ो, पूछो, समझो, फिर फैसला करो।
1: और मेरी तरफ से, मैं अब सिर्फ अपनी बेटी को टीका दिलवाने नहीं जाऊंगी, मैं अपने घर की महिलाओं की जांच की बात भी उठाऊंगी, क्योंकि सुरक्षा आधी अधूरी नहीं होनी चाहिए।
0: बहुत सही, यही सेहत सही लाभ कही, एक सवाल से शुरू होकर पूरे परिवार की समझ तक पहुंचना। यदि आपकी बेटी 14 वर्ष है, अपने नजदीक सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जानकारी लें, और यदि आपके घर में 30 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं हैं तो सर्वाइकल स्क्रीनिंग के बारे में अवश्य पूछें। अगले कार्यक्रम तक याद रखिए, सही जानकारी, समय पर कदम, सम्मानजनक संवाद, यही असली सुरक्षा है। अंत से पहले आज की मुख्य बातें। एक, 14 वर्ष की लड़कियों के लिए HPV वैक्सीन नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध है। दूसरा, जहां सुविधा हो UWIN पर पंजीकृत और अपॉइंटमेंट की जानकारी ली जा सकती है, जहां ना हो सीधे स्वास्थ्य केंद्र या आशा ANM से संपर्क करें। तीन, डिजिटल सुविधा मदद के लिए है, बाधा के लिए नहीं। चौथा, सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम में किशोरियों का टीकाकरण और वयस्क महिलाओं की नियमित स्क्रीनिंग दोनों महत्वपूर्ण हैं। पांचवा, परिवार की राय सुनिए, पर अंतिम निर्णय प्रमाणित जानकारी और डॉक्टर की सलाह पर टिकाइए। छठा, सवाल पूछना शर्म नहीं, अधिकार है। सातवा, जो सुविधा आपके लिए बनी है उसके बारे में जानकारी लेना। सातवा, जो सुविधाएं आपके लिए बनी है उसके बारे में जानकारी लेना, यह आपकी ताकत है। और साथियों, यह एक बात और जोड़ना जरूरी है, जब हम कहते हैं कि सेवा सरकारी केंद्र पर उपलब्ध है तो उसका मतलब सिर्फ जाइए और इंजेक्शन लगवा लीजिए नहीं होता है, इसका मतलब भी है कि नागरिक को सेवा के बारे में स्पष्ट सूचना मिले, सम्मान मिले और उसके सवालों को हल्के में ना लिया जाए। सार्वजनिक स्वास्थ्य तभी मजबूत होगा जब स्वास्थ्य जवाबदेह हो और लोग उस जुड़ने का भरोसा रखें। सार्वजनिक स्वास्थ्य तभी मजबूत होगा जब व्यवस्था जवाबदेही हो और लोग उससे जुड़ने का भरोसा रखें।
2: और जवाबदेही तो दो तरफ से होती है। व्यवस्था को समझना चाहिए और लोगों को पूछना चाहिए। कई बार हम बिना पूछे ही मान लेते हैं कि यह हमारे बस की बात नहीं, यही दूरी कम करनी है।
1: अब मुझे लगा कि यह सिर्फ मेरी बेटी का मुद्दा नहीं है, हमारे पूरे मोहल्ले का मुद्दा है। क्योंकि अगर एक घर जानकारी से जुड़ा है और दूसरा अफवाह से, तो फर्क साफ दिखेगा।
2: बिल्कुल, और यही वजह है कि जागरूकता अभियान सिर्फ पोस्टर लगाकर पूरे नहीं होते, उन्हें बातचीत बनानी पड़ती है। आंगन में, स्कूल में, महिला समूह में, रेडियो पर, तभी देश जीत रहता है।
0: यह बिंदु विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है जहां भाषा, डिजिटल पहुंच और स्वास्थ्य संस्थानों के साथ दूरी जैसे चुनौतियां हों। हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि सूचना जारी हो गई इसलिए काम पूरा हो गया। नहीं, इसका असली काम तब पूरा होगा जब घर की महिलाएं कहें, मुझे समझ में आ गया है।
1: सही कहा, पहले मुझे भी सिर्फ इतना पता था कि कोई नया टीका है। अब मुझे पता है क्या है, कहाँ मिलेगा, किससे पूछना है और अपने लिए क्या पूछना है।
2: यही बदलाव है, अधूरी खबर से पूरी समझ तक।
0: एक और अंतिम व्यावहारिक बात, यदि किसी कारण से पहली बार केंद्र जाकर पूरी जानकारी ना मिले, या भीड़ हो या कोई स्टाफ उपलब्ध ना हो, तो हार मत मानिए, दोबारा जाइए, आशा से पूछिए, उच्चतर केंद्र की जानकारी लीजिए। सार्वजनिक सुविधा का उपयोग करना धैर्य भी मांगता है, लेकिन उसके बिना बराबरी नहीं आती।
1: अब मैं यह भी समझ गई हूँ कि एक बार लौट आने का मतलब छोड़ देना नहीं होना चाहिए।
2: बिल्कुल नहीं, सेहत का काम धक्का देकर नहीं, ठहर कर करना पड़ता है।
0: और शायद यही इस पूरे सिलसिले का सबसे बड़ी सीख है, सुरक्षा एक घटना नहीं, प्रक्रिया है। जानकारी, सवाल, सेवा, टीका, जांच और सामूहिक जिम्मेदारी, इन्हीं से भविष्य सुरक्षित होता है। हम सब मिलकर आज ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
2: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
0: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
2: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
1: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
0: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
2: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा, तभी भारत समृद्ध बनेगा।
0: सेहत सही तो लाभ कई।
1: सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6। अब मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में।

0: स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी दोस्त आरजे खुशी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बीमारी की जिसका नाम तो आपने शायद सुना होगा, लेकिन सही जानकारी बहुत कम लोगों तक पहुंचती है। नाम है कालाजार। लेकिन आज की शुरुआत मैं एक कहानी के साथ करना चाहती हूँ। टीकन देवी जी, आप तो गांव-गांव में जाती हैं, क्या आपने कभी ऐसा कोई मामला देखा है?
1: अरे आरजे खुशी, देखा ही नहीं, बहुत करीब से देखा है। हमारे पड़ोस में एक औरत थी, नाम था सरोज। पहले तो उसे बस हल्का बुखार आता था। लोग बोले मौसमी बुखार है, ठीक हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे उसका बुखार कम ही नहीं हुआ। उसका वजन गिरने लगा, चेहरा पीला पड़ गया, पेट फूलने लगा। हमने कहा सरोज चलो अस्पताल चलते हैं, लेकिन उसके घर वाले बोले अरे ये तो किसी की नजर लग गई है या कोई शाये है। महीने तक इलाज नहीं हुआ। जब अस्पताल पहुंची तब तक हालत बहुत खराब हो चुकी थी। इलाज हुआ, जान तो बच गई, लेकिन बाद में उसके शरीर पर दाने निकल आए, चेहरा खराब हो गया। डॉक्टर बोले ये PKDL है, कालाजार की बीमारी। आज भी वो घर से कम निकलती हैं। लोग देखकर फुसफुसाते हैं। सोचिए आरजे बहन, अगर समय पर इलाज हो जाता तो ये सब नहीं होता।
0: ये तो बहुत दर्दनाक है दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं, हकीकत है। तो आज हम समझेंगे कालाजार क्या है, कैसा होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। टीकन देवी जी, सबसे पहले ये बताइए ये कालाजार होता क्या है?
1: देखिए आरजे खुशी, कालाजार एक बहुत ही गंभीर बीमारी है, जिसे हम आम भाषा में भले ही कालाजार कहते हैं, लेकिन इसका असली नाम विसरल लीसमेनियासिस है। यह बीमारी एक बहुत ही छोटे से कीड़े के काटने से फैलती है, जिसे रेत मक्खी या सैडफ्लाइड कहा जाता है। अब ये मक्खी इतनी छोटी होती है कि कई बार हमें दिखती भी नहीं है, और खास बात यह है कि यह ज्यादातर रात के समय काटती है, जब लोग सो रहे होते हैं। जब यह रेत मक्खी किसी इंसान को काटती है तो इसके साथ एक छोटा सा परजीवी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। यह परजीवी धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर जाकर हमारे लीवर, पीलिया यानी तिल्ली, और खून को नुकसान पहुंचाने लगता है। यही वजह है कि शुरुआत में यह बीमारी साधारण लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर शरीर को काफी कमजोर कर देती है।
0: अच्छा, तो इसका मतलब है कि बीमारी धीरे धीरे बढ़ती है। लेकिन टीकन देवी जी, इसके लक्षण कैसे पहचाने, लोगों को कैसे पता चले कि ये कालाजार हो सकता है?
1: बहुत अच्छा सवाल है आरजे खुशी। देखिए, इसके लक्षण एकदम से तेज नहीं आते, बल्कि धीरे धीरे दिखाई देते हैं। सबसे पहले तो व्यक्ति को लंबे समय तक बुखार बना रहता है, जो ठीक होने का नाम ही नहीं लेता। इसके साथ साथ व्यक्ति का वजन कम होने लगता है, शरीर में कमजोरी आ जाती है और वह पहले जैसा काम नहीं कर पाता। धीरे धीरे पेट भी फूलने लग जाता है, क्योंकि अंदर की तिल्ली और लीवर बढ़ जाते हैं। इसके अलावा खून की कमी भी हो जाती है, जिससे चेहरा पीला पड़ जाता है और व्यक्ति बहुत कमजोर दिखने लगता है। यही वजह है कि कई बार लोग इसे साधारण बुखार समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है।
0: मतलब देखने में तो ये सामान्य बुखार जैसा लगता है, लेकिन असल में ये अंदर से बहुत खतरनाक बीमारी होती है।
1: बिल्कुल सही समझे आप। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अगर समय पर इसका इलाज ना कराया जाए तो करीब 95% मामलों में यह जानलेवा साबित हो जाती है। इसीलिए लक्षणों को पहचानना और समय पर जांच करवाना बहुत जरूरी है।
0: यह बीमारी किन इलाकों में ज्यादा देखने को मिलती है?
1: भारत में यह बीमारी खास तौर पर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में ज्यादा पाई जाती है। इन राज्यों में करीब 13 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इस बीमारी के खतरे में हैं।
0: इतने सारे लोग जोखिम में हैं, ये तो सच में चिंता की बात है।
1: हाँ आरजे खुशी, और खास बात यह है कि यह बीमारी ज्यादा उन लोगों को प्रभावित करती है जो कच्चे घरों में रहते हैं, जिन घरों की दीवारों में दरारें होती हैं, जहाँ साफ सफाई की कमी होती है और जहाँ पशु घर के बहुत पास रखे जाते हैं, वहाँ यह रेत मक्खी आसानी से पनपती है और ऐसे वातावरण में इस बीमारी का खतरा और बढ़ जाता है।
0: अगर किसी को लगे कि उसे ये लक्षण है तो उसे क्या करना चाहिए?
1: सबसे पहले तो बिना देर किए नजदीकी सरकारी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र जाना चाहिए। आजकल वहाँ पर बहुत सी आसान और तेज जांच की सुविधाएं उपलब्ध है। एक ऐसा टेस्ट होता है जो लगभग 10 मिनट में यह बता देता है कि व्यक्ति को काला आजार है या नहीं, और सबसे जरूरी बात कि इसका इलाज सरकारी अस्पतालों में की तरह मुफ्त किया जाता है, ताकि कोई भी व्यक्ति पैसों की वजह से इलाज से वंचित ना रहे।
0: मुफ्त इलाज, ये तो बहुत बड़ी राहत की बात है।
1: बिल्कुल, और अब तो इलाज के लिए बहुत प्रभावी दवाइयाँ भी उपलब्ध है, जैसे कि लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी, जो जल्द असर करती है और मरीज को जल्द ठीक होने में मदद करती है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है कि मरीज को पूरा इलाज लेना चाहिए, बीच में दवा छोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो बीमारी दोबारा लौट सकती है।
0: टीकन देवी जी, आपने अभी बताया कि लोग समय पर अस्पताल जाएं, लेकिन एक बात बताइए, कई बार लोग सोचते हैं कि जांच में बहुत समय लगेगा या बहुत पैसे लगेंगे, तो क्या सच में जांच इतनी मुश्किल होती है?
1: नहीं नहीं आरजे खुशी, अब तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रही है। पहले के समय में जरूर जांच में समय लगता था, लेकिन अब सरकार ने इतनी सुविधाएं दे दी है कि गांव के पास ही सब सेंटर या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बहुत जल्द काला आजार की जांच हो जाती है। आजकल एक खास तरह का टेस्ट होता है जिसमें रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता, बस उंगली से एक छोटा सा खून का सैंपल लिया जाता है और करीब 10 मिनट के अंदर ही पता चल जाता है कि व्यक्ति को काला आजार है या नहीं।
0: सिर्फ 10 मिनट में? ये तो बहुत ही आसान हो गया है।
1: हाँ बिल्कुल, और यही वजह है कि अब किसी को भी जांच कराने में डरने या देरी करने की जरूरत नहीं है। पहले लोग सोचते थे कि शहर जाना पड़ेगा, बड़े अस्पताल में इलाज करनी पड़ेगी, लेकिन अब ये सुविधाएं गांव के पास ही उपलब्ध है।
0: लेकिन टीकन देवी जी, क्या ये टेस्ट पूरी तरह भरोसेमंद होता है?
1: देखिए, ये टेस्ट बहुत हद तक सही परिणाम देता है और शुरुआती पहचान के लिए बहुत उपयोगी है। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो डॉक्टर तुरंत इलाज शुरू कर सकते हैं, और अगर किसी केस में डॉक्टर को और पुष्टि की जरूरत लगे तो वे आगे की जांच भी करवा सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि यह टेस्ट हमें समय पर बीमारी पकड़ने में मदद करता है, जिससे इलाज जल्द शुरू हो सके और बीमारी गंभीर होने से पहले ही रोक दी जाए।
0: मतलब अब सबसे बड़ी बाधा यानी देर से पता चलना, वो भी काफी हद तक खत्म हो गई है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और मैं तो हमेशा लोगों से यही कहती हूँ, अगर किसी को 2 हफ्ते से ज्यादा बुखार रहे, वजन कम हो रहा हो या कमजोरी महसूस हो रहे हो, तो बिना सोचे जे सीधे स्वास्थ्य केंद्र जाए और टेस्ट कराए। डरने की नहीं, समझदारी दिखाने की जरूरत है।
0: और क्या आशा दीदी भी इसमें मदद करती हैं?
1: हाँ बिल्कुल, आशा दीदी और दूसरे स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर ऐसे लक्षण वाले लोगों की पहचान करते हैं। वे लोगों को समझाते हैं, उन्हें स्वास्थ्य केंद्र तक ले जाने में मदद करते हैं और कई बार खुद टेस्ट करवाने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर किसी को जाने में दिक्कत हो तो आशा दीदी से मदद जरूर लेनी चाहिए, वे आपके सबसे करीब की स्वास्थ्य साथी है।
0: ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मतलब अब जानकारी, जांच और इलाज तीनों एक ही गांव के पास उपलब्ध हैं।
1: बिल्कुल, और यही वजह है कि अब काला आजार को हराना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है, बस जरूरत है कि लोग समय पर कदम उठाएं।
0: सरकार इस बीमारी को खत्म करने के लिए क्या कर रही है?
1: सरकार इस दिशा में काफी काम कर रही है। एक बड़ा कार्यक्रम चला रहा है जिनका नाम है राष्ट्रीय काला आजार उन्मूलन कार्यक्रम और यह NCVBDC के तहत आता है। इस कार्यक्रम का मुख्य लक्षण यह है कि हर ब्लॉक में काला आजार के मामले 10,000 लोगों में से एक से भी कम हो जाए। और आपको जानकर खुशी होगी कि भारत ने 2023 में यह लक्ष्य हासिल कर लिया है जो कि बहुत ही उपलब्धि है।
0: ये तो सच में गर्व की बात है।
1: हाँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम लापरवाह हो जाए। अभी भी सावधानी बहुत जरूरी है। सरकार हर साल लाखों घरों में स्प्रे करवाती है। करीब 3.5 से 3.8 करोड़ लोगों के घरों में दीवारों पर दवा का छिड़काव किया जाता है जिसमें रेत मक्खियां खत्म हो सके और बीमारी फैलने से रोकी जा सके।
0: तो आम लोग खुद क्या कर सकते हैं इससे बचने के लिए?
1: बहुत आसान उपाय है जिन्हें हम अपनी

0: रोजमर्रा के जिंदगी में अपना सकते हैं। सबसे पहले तो घर की दीवारों की दरारों को भरना चाहिए ताकि मक्खियों को छिपने की जगह ना मिले। घर और आसपास की साफ सफाई बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा पशुओं को घर से थोड़ा दूर रखना चाहिए ताकि मक्खियाँ इंसानों के पास ना आए। रात में सोते समय मच्छरदानी का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जमीन पर या खुले में बाहर सोने से बचे। इन छोटे छोटे उपायों से हम काला आजार जैसे बीमारी से खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं।
1: टीकन देवी जी, एक बात बताइए, गांव में लोग इस बीमारी को लेकर किस तरह की गलत फहमियाँ रखते हैं? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि लोग बीमारी से ज्यादा डर उसके बारे में सुनी सुनाई बातों से जताते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने आरजे खुशी, और यही सबसे बड़ी समस्या भी है। हमारे गांव में आज भी बहुत लोग काला आजार को भूत प्रेत साया या किसी की बुरी नजर का असर मान लेते हैं। जब किसी को लंबे समय तक बुखार रहता है, शरीर कमजोर हो जाता है और पेट फूल जाता है तो लोग सीधे डॉक्टर के पास जाने के बजाय झाड़ फूक या ओझ गुनी के पास चले जाते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ, अरे भाई, ये कोई जादू टोना नहीं, ये एक बीमारी है और इसका इलाज भी है। अगर समय पर सही इलाज मिल जाए तो व्यक्ति पूरी तरह ठीक हो सकता है।
1: हाँ, और शायद इसी वजह से लोग देर कर देते हैं इलाज कराने में।
0: बिल्कुल, और एक और बड़ी गलतफहमी यह है कि लोग सोचते हैं कि यह बीमारी छूने से फैलती है, इसीलिए मरीज से दूरी बना लेते हैं। कुछ लोग मरीज को तो अलग कमरे में रखने लगते हैं या उसे बात तक नहीं करते, लेकिन सच्चाई यही है कि काला आजार छूने, साथ बैठने या खाना खाने से नहीं फैलता, ये सिर्फ रेत मक्खी के काटने से फैलता है। इसीलिए मरीज से डरे या उसे अलग कमरे की कोई जरूरत नहीं, बल्कि उसे सहारा देने की जरूरत है।
1: और क्या क्या गलत धारणाएं होती हैं लोगों में?
0: कई लोग यह भी मान लेते हैं कि अगर बुखार अपने आप कम हो या तो बीमारी ठीक हो गई, जबकि अंदर से बीमारी बनी रहती है और बाद में और गंभीर हो जाती है। कुछ लोग दवा शुरू तो कर देते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा आराम मिलता है दवा बीच में ही छोड़ देते हैं। ये बहुत खतरनाक है क्योंकि इससे बीमारी दोबारा लौट सकती है या और जटिल हो सकती है। और एक बात, और कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ गरीब या कमजोर लोगों को ही काला आजार होता है, जबकि सच्चाई यह है कि अगर माहौल सही नहीं है और मक्खियाँ पनप रही है तो कोई भी व्यक्ति इसका शिकार हो सकता है।
1: तो इसका समाधान क्या है? लोग इन गलत फहमियों से कैसे बाहर आए?
0: समाधान बहुत साफ है आरजे खुशी। सही जानकारी और जागरूकता। सबसे पहले तो जैसे ही किसी को दो हफ्ते से ज्यादा बुखार रहे, वजन कम हो या पेट फूलने लगे तो तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाइए, किसी भी तरह का झाड़ फूक या देरी से बचे। दूसरी बात, अगर डॉक्टर इलाज शुरू करे तो पूरा कोर्स पूरा करे, चाहे बीच में कितनी भी आराम क्यों ना मिल जाए। और तीसरी बात, घर और आसपास की सफाई रखे, दीवारों की दरारें भरे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करे, और सबसे जरूरी, मरीज का साथ दे, उसे अलग या कमजोर महसूस ना होने दे।
1: बहुत ही जरूरी बातें आपने बताई, लेकिन टीकन देवी जी, आपने शुरुआत में एक दुखदाई कहानी सुनाई थी, क्या कोई ऐसी कहानी भी है जहां जागरूकता ने किसी की जिंदगी बदल दी है?
0: हाँ बिल्कुल है, और ये कहानी सुनकर आपको भी अच्छा लगेगा। हमारे पास के गांव में मेरी एक सहेली है रीना। कुछ साल पहले उसके इलाके में काला आजार के कई मामले सामने आए थे, जिससे गांव पूरा डरा हुआ था, लेकिन रीना ने डरने के बाद समझदारी दिखाई। उसने पहले से ही अपने घर की दीवारों को ठीक कराया, दरारें भरवाई और घर के आसपास साफ सफाई पर ध्यान देना शुरू किया। उसने मच्छरदानी का इस्तेमाल करना शुरू किया और आशा दीदी की हर बात को ध्यान से सुना और अपनाया। एक दिन उसे भी हल्का बुखार आया। पहले तो वो थोड़ी घबरा गई, लेकिन इस बार उसने देर नहीं की, तुरंत स्वास्थ्य केंद्र गई, टेस्ट करवाया और रिपोर्ट नेगेटिव आई। तो हंसते हुए मुझसे बोली, यार टीकन, इस बार मैं डरने वाली नहीं थी क्योंकि मुझे पता था कि क्या करना है और कहाँ जाना है। आज वही रीना अपने पूरे गांव में लोगों को समझाती है कि डरना नहीं बल्कि समय पर कदम उठाना है।
1: सच में ये तो असली बदलाव है जब एक व्यक्ति जागरूक होता है और पूरे गांव को जागरूक बना देता है।
0: बिल्कुल, और यही सबसे बड़ी ताकत है, जागरूकता। याद रखिए, काला आजार खतरनाक जरूर है लेकिन अगर हम समय पर पहचान ले और इलाज करा ले तो इसे पूरी तरह हराया जा सकता है।
1: और यही सबसे बड़ा संदेश है आज के कार्यक्रम, समय पर जांच और सही इलाज आपकी जिंदगी बचाता है।
0: और साथ ही सही जानकारी अपनाइए, गलत कमियों से दूर रहिए और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक बनाइए।
1: तो दोस्तों, आज से ही एक कदम बढ़ाइए, अपने और अपने पूरे परिवार की सुरक्षा के लिए जागरूक बनिए।
0: जागरूक बने,
1: सुरक्षित रहें और काला जार को मिलकर हराएं। तो इसी के साथ आज का शो समाप्त होता है, पर जाने से पहले हम सब मिलकर लेते हैं आज ये शपथ कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
0: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
0: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करें ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
1: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
0: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
1: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
1: सेहत सही तो लाभ कई। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। नमस्कार श्रोताओं।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
2: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
3: कॉल 8826213131।

0: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
2: हाँ जी दोस्तों, कैसे हाल चाल है? मैं आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। एक बार फिर से आपका पुनः स्वागत करते हैं आपके फेवरेट प्रोग्राम जिसका नाम है सोच बदलो। जी हाँ साथियों, अगर हमारी सोच बदलेगी, हमारे समाज की सोच बदलेगी, तो हमारा देश अपने आप बदल जाएगा। एक बार फिर से आनंद हाजिर हो गया इस प्रोग्राम को लेकर, और आज हमारा मुद्दा बहुत ही खास और विशेष और अहम और महत्वपूर्ण है। सारे शब्दों का मैंने इस्तेमाल कर लिया है श्रोताओं। एक बार फिर से सबसे पहले आपका वार्म वेलकम करते हैं आपके फेवरेट स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। और इस प्रोग्राम को आज मैं अकेला होस्ट नहीं कर रहा हूं, मेरा साथ दे रही है हमारी प्यारी सी को एंकर कुमकुम। बहुत बहुत स्वागत है कुमकुम स्टूडियो में, कैसी हैं आप?
3: थैंक यू सो मच, मैं बहुत अच्छी हूँ और मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। आज का जो प्रोग्राम है सोच बदलो, आज उसके बारे में हम जो बात करने वाले हैं वो काफी डिजिटल के बारे में बात करने वाले हैं, तो देखते हैं कैसा रहने वाला है।
2: बिल्कुल बिल्कुल, और यहाँ पर देखने से ज्यादा सुनाई देने वाला है कुमकुम जी। कुमकुम अभी थोड़ी नई नई है, इसलिए ना वो डिजिटल जमाने में ज्यादा एक्टिव है, इसलिए वो देखने की बात कर रही है, लेकिन हम यहाँ सुनाई देने की बात करते हैं क्योंकि यहाँ आवाजों की दुनिया है। तो कुमकुम ऐसा तभी नई जुड़ी है श्रोताओं, कोई बात नहीं, हो जाता है, बड़े बड़े शहरों में अक्सर छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं। लेकिन श्रोताओं, प्रोग्राम का नाम बिल्कुल सही बताया, सोच बदलो। आज हम इस पे एक बहुत ही अहम मुद्दे पर डिस्कस करने वाले हैं इस प्रोग्राम में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे डिजिटल दुनिया की, जहां दोस्ती भी ऑनलाइन है, काम भी ऑनलाइन है और पहचान भी ऑनलाइन है। आजकल तो खाना पीना भी ऑनलाइन है, क्यों कुमकुम जी? कपड़े जी भी ऑनलाइन है,
3: अब तो हमें जो चाहिए वो ऑनलाइन मिल जाता है।
2: इनफैक्ट मजे की बात यह है, आजकल मेकअप भी ऑनलाइन है, आप नहाकर मत आओ, फिल्टर लगाओ, आपका मेकअप भी आ जाता है। तो सब कुछ तो ऑनलाइन हो गया है, लेकिन इस डिजिटल जमाने में जितनी चीजें मेरे और आपके लिए आसान है ना कुमकुम, उतनी ही खतरनाक भी है।
3: जी हाँ,
2: सही कहा ना मैंने?
3: सोशल मीडिया से हमारे कनेक्शंस और लोगों तक जा सकते हैं जो निगेटिव रहते हैं हमारे लिए।
2: करेक्ट करेक्ट, और हम वो सारी चीजें जाने जाने में शेयर भी कर देते हैं जिसका हमारे जो हेटर्स हैं वो वेट कर रहे होते हैं कई बारी। तो श्रोताओं, आज इन सब मुद्दों पे बात करेंगे। आप बिल्कुल चिपक के बैठिएगा अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 पे। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। जी हाँ, चलिए लेते हैं एक छोटा सा अंतराल, उसके बाद पुनः मिलेंगे। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए FM मुरादाबाद।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

0: बहुत ही खूबसूरत गाना, क्या बात है। मतलब बच्चन साहब और रेखा जी पर पिक्चराइजेशन, बड़ा ही प्यारा गाना था। आपको कैसा लगा कुमकुम ये गाना?
1: जी ये तो मेरा एक फेवरेट गाना हो गया।
0: अरे वाह, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में है गुल खिले हुए। और देखिए भाई साहब, निगाहों में गुल नहीं, आजकल निगाहों में सोशल मीडिया के एप्स खुले हुए हैं, कहीं पर इंस्टाग्राम, कहीं पे व्हाट्सएप, कहीं पर फेसबुक और कहीं स्नैपचैट और पता नहीं ब्ला ब्ला ब्ला एक्सेट्रा एक्सेट्रा। शायद अगर हम उनके बारे में बात करेंगे तो हमारा समय कम पड़ जाएगा। वैसे तुम्हारा फेवरेट कौन सा ऐप है जरा ये बताओ, तुम सबसे पहले उठते ही कौन सा ऐप खोलती हो मोबाइल में?
1: Actually, मैं व्हाट्सएप खोलती हूँ।
0: देखा, व्हाट्सएप के दीवाने भी भरे पड़े हैं, मुझे पता है गाइस, आप भी व्हाट्सएप चलाते हो दोस्तों, मैं जानता हूँ मैम। दीदी जी, सुबह उठते ही व्हाट्सएप मत चलाया करो, फैमिली ग्रुप्स में गुड मॉर्निंग बेबी आ जाता है ना सुबह उठते ही, मुझे पता है। तुम्हारे पास किसका गुड मॉर्निंग आता है सबसे पहले?
1: एक्चुअली मेरी फैमिली का ही आता है।
0: ये लो भाई, आजकल ना जमाना बड़ा डिजिटल हो गया, फैमिली के साथ बैठे हैं फिर भी ऑनलाइन गुड मॉर्निंग कर रहे हैं।
1: हाँ, जी नहीं, हाँ, तो
0: आपकी शादी हुई तो बात अलग है। जी हाँ, वो तो फिर चलो समझ सकता हूँ, लेकिन ये जो व्हाट्सएप पे फैमिली ग्रुप्स है ना, इसमें जो लोग खेलते हैं गुड मॉर्निंग, हमको भी कभी कभी अच्छा लगता है। लेकिन दोस्तों खैर, जितनी मजे की चीज है ना सोशल मीडिया, उतनी घातक और खतरनाक भी है। क्यों कुमकुम? क्योंकि मुझे लगता है कि आज हम जो जी रहे हैं वो एक डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं, जहां हर चीज हमारे लिए बहुत आसान हो गई, बहुत कन्वीनियंट हो गई है, बट कहीं ना कहीं हमारे लिए रिस्क भी बढ़ गया है। डिजिटल स्कैम्स लगातार हो रहे हैं, हम इन पे बात कर रहे हैं, बहुत सारे ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं, चीजें बहुत आसान हो गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी अगर सावधानी हम नहीं रखेंगे तो चीजें खराब भी हो सकती हैं।
1: हाँ, इसमें मैं आपको एक एग्जांपल भी दे सकती हूँ।
0: हाँ प्लीज।
1: जैसे कि डेटिंग एप्स हैं।
0: हाँ, अरे वाह, बताओ बताओ।
1: डेटिंग एप्स पे जो गर्ल्स अपने पार्टनर्स ढूंढ रही होती हैं, कई बार उनके साथ भी फ्रॉड हो जाता है।
0: True.
1: या बॉयज के साथ भी हो जाता
0: True,
1: है।
0: True. आजकल तो लड़के लड़कियां बन के घूम रहे हैं, व्हाट्सएप पे आईडी बनाते हैं और इंस्टाग्राम पे भी, और आपको मैसेज करेंगे ये वो। इनफैक्ट सबसे मजे की बात तो ये है कि आजकल आप ही के दोस्त के नाम की आईडी बना के आपसे पैसे लूट रहे होते हैं लोग।
1: जी राइट,
0: ये भी बहुत हो रहा होता है। कभी हुआ है तुम्हारे साथ ऐसा?
1: मेरे साथ तो नहीं, बट मेरी फ्रेंड के साथ हो चुका है, क्योंकि उसके साथ तो मैंने ही करा था।
0: अयो रामा भाई, सबसे बड़ी यहाँ पर साइबर क्राइम बैठी हुई है, क्या कह रहे हो?
1: बट वो एक प्रैंक था।
0: अच्छा, प्रैंक था, बट यार ऐसे प्रैंक मत किया करो, दिक्कत हो जाती है। वेल, इसे जोक्स अपार्ट दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा नया प्रोग्राम जिसका नाम है सोच बदलो, और अगर हम बदलेंगे तो सोच बदलेगी, और सोच बदलेगी तो समाज अपने आप बदलेगा। और आज हमारे इस प्रोग्राम का टॉपिक है सोशल मीडिया सिक्योरिटी, यानी कि खुद को ऑनलाइन सुरक्षित रखना भी जरूरी है। तो तुम क्या मानती हो कुमकुम, ऑनलाइन जितनी सारी चीजें आजकल हमें मिल रही हैं, इसमें क्या रिस्क भी है?
1: जी हाँ, अगर हम अपनी सारी चीजें ही सोशल कर देंगे तो सारी चीजें लोगों को पता चल जाएंगी, और जिससे हमारी प्राइवेसी खत्म हो जाएगी।
0: और लोग करते हैं यार
1: जी,
0: अगर लोग चाय भी पी रहे हैं उसकी फोटो, थोड़ी देर बाद सैंडविच खा रहे हैं उसकी फोटो, कहीं जा रहे हैं उसकी फोटो, मैं गाइस यहाँ हूँ मैं वहाँ हूँ।
1: एक्चुअली लोकेशन इंस्टाग्राम पे मोस्ट ऑफ डालते हैं कि लोकेशन के साथ कि हाँ हम यहाँ जा रहे हैं,
0: और जबकि वो आपके लिए खतरनाक भी हो सकता है।
1: जी, आप पैसे निकाल लें एटीएम से तब आप ऑनलाइन है, लाइव आ रहे हैं, ये सारी चीजें गलत है।
0: गॉट इट, बिल्कुल सही कहा इसने। और श्रोताओं, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि दोस्तों आज हर कोई फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप यूज कर रहा है, लेकिन कई बार हम जाने अनजाने में अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन खुद ही शेयर कर देते हैं, जैसे इन्होंने कहा, जैसे कि लोकेशन, एग्जैक्टली फोन नंबर भी हम कई बार डाल देते हैं ना जब हम आईडी बना रहे होते हैं। आजकल तो खैर लोग कुछ कुछ तो ऐसे हैं जो अपना आधार कार्ड भी डाल देते हैं भाई, जबकि वो नहीं डालना होता है, दिस इज फुल ऑफ प्राइवेसी, बट क्या ही कर सकते हैं। देखिए हमारा डेली रूटीन है, मानते हैं, एक तो आदत भी हो गई है कहीं ना कहीं कुमकुम इस चीज की ना हमें, कि उठते ही हर चीज शेयर करनी है, हर चीज को दिखाना है,
1: सोशल मीडिया का कीड़ा बनना हो गया है एक तरह से।
0: करेक्ट करेक्ट, मतलब पूरे आदि बन चुके हैं हम
1: जी।
0: अगर एक दिन के लिए सोशल मीडिया बंद कर दिया जाए तो पता नहीं लोग क्या हाल होगा,
1: आधी दुनिया रुक जाएगी।
0: सच बोल रही है यार, ये तो मुझे भी लगता है। तो दोस्तों यहीं से शुरू होता है खतरा, यानी कि हैकर्स या फिर फ्रॉड जिन्हें हम कहते हैं। और आज छोटी छोटी जानकारियां आपके लिए लेकर आए हैं, और आज का हमारा टॉपिक हमने आपको बता ही दिया है जिस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जी हाँ श्रोताओं, सोशल मीडिया सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, कैसे आप बच सकते हैं सोशल फ्रॉड से, इस पर हम चर्चा करेंगे। कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको जरूर ध्यान में रखनी है, सोच बदलो प्रोग्राम के अंतर्गत आपके साथ तमाम बातें साझा करेंगे। आप कहीं मत जाइए, एक छोटा सा अंतराल, उसके बाद पुनः लौट कर आ रहे हैं मैं और कुमकुम।

0: क्या गाना था यार, मजा आ गया किशोर दा की आवाज सुन के। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। बिल्कुल बताओ, कल का तो नहीं पता, लेकिन आज भी अगर आपने चीजों को सही से मैनेज नहीं किया तो बिल्कुल कल का कुछ पता नहीं चलेगा। मैं किसकी बात कर रहा हूँ बताता हूँ अभी आपको, लेकिन उससे पहले आप सभी का खुली बात के साथ स्वागत है जी। आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 FM, जहां पर आज हम बात कर रहे हैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, सोशल मीडिया सिक्योरिटी। बहुत जरूरी है आजकल, जहां सोशल मीडिया का जमाना है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, हर कोई इस्तेमाल करता है। इस सोशल मीडिया में थोड़ी थोड़ी सावधानी भी बहुत जरूरी है, थोड़ी नहीं पूरी सावधानी बहुत जरूरी है। इसी पर चर्चा कर रहे हैं, प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। तो मेरे साथ दे रही है कुमकुम जी। कुमकुम, आपको कैसे लगा ये गाना और आप क्या कहना चाहेंगी इस गाने के बारे में?
1: ये गाना तो बहुत अच्छा था और मैं इस प्रोग्राम के बारे में कहना चाहूंगी, सोशल मीडिया सिक्योरिटी, यानी हाँ खुद को आप ऑनलाइन कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, इसके बारे में भी और आगे बताएंगे। इतने हम आनंद जी से जानते हैं, क्या क्या बोलना चाहिए?
0: देखो यार, मैं यही बोलना चाहता हूँ, देखिए सोशल मीडिया पे ना जो छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें अक्सर अवॉइड करनी चाहिए, और ये गलतियां हम डेली करते हैं, जैसे कि हम कोई भी ऐसा नॉन लिंक हमारे पास आता है इंस्टा या फेसबुक पे, हम तुरंत क्लिक कर देते हैं। कई बार व्हाट्सएप पे आता है, हम तुरंत क्लिक कर लेते हैं, और ये लिंक पे क्लिक करना ही सबसे बड़ा रिस्क होता है। दूसरा, तुम्हें भी पता होगा हर फ्रेंड रिक्वेस्ट हमारे पास 2 मिनट में आती है, ऐसे ऐसे लोगों की आती है जिनको हम जानते भी नहीं है और कहीं एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। और एक और बात, कई बारी होता है ना कि हम अपना पासवर्ड बहुत कमजोर बनाते हैं, कई बारी अपना फोन नंबर रख लेते हैं, कई बारी 1, 2, 3, 4, 5 रख लेते हैं, हमें लगता है ये हमारे लिए कन्वीनियंट है, लेकिन ये पासवर्ड हैकर्स बहुत आसानी से हैक कर सकते हैं और आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड भी हो सकता है, स्कैम हो सकता है सोशल मीडिया वाला। दूसरी बात, सबसे अहम जो आपको याद रखनी है, किसी को भी अपना OTP नहीं बताना है, ये तो आप भी जानती हैं।
1: शेयर नहीं करना चाहिए।
0: बिल्कुल, आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे OTP को लेकर?
1: OTP को लेकर मैं शेयर करना चाहूंगी कुछ बातें, जैसे कि हमारे बैंक अकाउंट की डिटेल्स होती है, हमारी सोशल मीडिया के सारे अकाउंट्स के एप्स के जो भी होते हैं उसका OTP आता है, जो हम कभी कभी दोस्तों में अपनी आईडी बताने के चक्कर में शेयर कर देते हैं, लेकिन ये हमें नहीं करना चाहिए। OTP तो बिल्कुल भी शेयर नहीं करना चाहिए। सो दोस्तों याद रखिए, OTP वन टाइम पासवर्ड नहीं होता, ओनली टू पर्सन, यानी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए
0: होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कुमकुम ने, जो पासवर्ड है ये सिर्फ आपके लिए है, आप ही का बनाया हुआ है, और आप इसका सही इस्तेमाल करें और हर किसी के साथ अपनी पर्सनल डेटा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी साझा ना करें। इसी को ध्यान में रखते हुए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अंतराल, आप कहीं नहीं जाएंगे, सुनते रहेंगे कुमकुम और आनंद को। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो, आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 FM।
2: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
3: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
2: पर पापा।
3: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
4: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है, ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
5: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया सुरक्षा की, क्योंकि आज हमारी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा ऑनलाइन दुनिया में बीतता है। सोशल मीडिया आखिर क्या सच में हमारे लिए जितना लाभदायक है, क्या उतना खतरनाक भी है? तो चलिए इस पर बात करते हैं। श्रोताओं, आज हम फोटो वीडियो शेयर करते हैं, अपनी लोकेशन बताते हैं, परिवार और दोस्तों से जुड़ते रहते हैं, निजी विचार और जानकारी पोस्ट करते रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आपकी पोस्ट कौन कौन देख रहा है और उस जानकारी का इस्तेमाल कैसे हो सकता है? सोशल मीडिया पर ज्यादा जानकारी साझा करना आपको ठगी, पहचान की चोरी और ब्लैकमेल का शिकार भी बना सकता है। तो चलिए एक रेडियो ड्रामे के जरिए मैं आपको ये बात बताता हूँ कि एक पोस्ट कई मुसीबतें लेकर आ सकता है। रोहन, दोस्तों मैं परिवार के साथ 7 दिन के लिए मनाली जा रहा हूँ, ये रहा होटल का नाम और पूरा ट्रैवल प्लान। रोहन, तुम्हारे अकाउंट से मैसेज आया है, तुम फंस गए हो या पैसे चाहिए?
6: क्या, मैंने ऐसा कुछ नहीं भेजा।
5: किसी ठग ने रोहन की पोस्ट से जानकारी लेकर उसके नाम से नकली प्रोफाइल बना ली। उसके दोस्त को मैसेज भेज दिया, मैं मुसीबत में हूँ, तुरंत पैसे भेज दो। कुछ दोस्तों ने पैसे भी भेज दिए हैं। सोशल मीडिया पर कुछ खतरे ऐसे हैं जो आम हैं, जैसे कि फर्जी प्रोफाइल, पहचान की चोरी, फोटो और वीडियो का गलत इस्तेमाल, ब्लैकमेल या मार्फिंग, फ्रॉड लिंक और गिफ्ट स्कैम, लोन या इनाम का लालच। कई बार ठग आपकी प्रोफाइल से आपका जन्मदिन, आपका मोबाइल नंबर, आपके परिवार की जानकारी इकट्ठा करके आपके पासवर्ड का अंदाजा भी लगा लेता है। अगर आपको कुछ ऐसे संकेत दिखते हैं तो आप जरूर सतर्क रहिए। अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट आना, आप इनाम जीत गए हैं जैसा मैसेज आना, बैंक या लोन का ऑफर सोशल मीडिया से, किसी करीबी के नाम से अचानक पैसे मांगना, संदिग्ध लिंक। याद रखिए, हर प्रोफाइल असली नहीं होती। सोशल मीडिया को आखिर सुरक्षित कैसे रखें? आपकी प्रोफाइल प्राइवेट होनी चाहिए, मजबूत और अलग पासवर्ड होना चाहिए, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू होना चाहिए। अनजान फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार न करें, अपनी लोकेशन सार्वजनिक रूप से पोस्ट न करें, निजी दस्तावेज या पहचान संबंधी जानकारी साझा न करें। महिलाओं और छात्रों को मैं कुछ खास सलाह देना चाहूँगा। सोशल मीडिया पर अक्सर महिलाओं को फर्जी प्रोफाइल से परेशान किया जाता है, छात्रों को फर्जी स्कॉलरशिप या जॉब ऑफर दिया जाता है, इसलिए अनजान लोगों से चैटिंग में सावधानी रखें। फोटो और वीडियो सोच समझ कर शेयर करें, ब्लैकमेल होने पर चुप न रहें। अगर सोशल मीडिया फ्रॉड हो गया हो तो आपका अकाउंट हैक हो जाए, कोई फर्जी प्रोफाइल बन जाए, ब्लैकमेल किया जाए, तो आप तुरंत 1930 पर कॉल करें और आप अपनी शिकायत www.cybercrime.government.in पर भी जाकर कर सकते हैं। साइबर सुरक्षा की अधिक जानकारी के लिए आप www.staysafeonline.com पर जा सकते हैं। सोशल मीडिया से जुड़े 7 ऐसे नियम मैं जो आपको बताना जा रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी हैं। कम से कम निजी जानकारी शेयर करें, हर फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें, मजबूत पासवर्ड रखें, संदिग्ध लिंक से बचें, लोकेशन सार्वजनिक ना करें, शक हो तो तुरंत उसे रिपोर्ट कर दें। श्रोताओं, सोशल मीडिया हमें जोड़ता है लेकिन सावधानी के बिना नुकसान भी पहुंचा सकता है। लाइक और शेयर से पहले एक बार जरूर सोचें, जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ से। कार्यक्रम से अलविदा लेने से पहले मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि अगर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते वक्त कुछ सावधानी जरूर बरतें। जैसा कि बताया गया कि हर किसी की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करनी है। अगर आपने अपना पासवर्ड कमजोर बनाया है तो ऐसा करें कि उस पासवर्ड को स्ट्रांग बनाकर रखें। अपनी प्रोफाइल किसी के साथ साझा न करें। अगर आप अपनी फैमिली के साथ पोस्ट भी कर रहे हैं अपनी फोटो, तो कोशिश करें आप लोकेशन वहां पर ना साझा करें। अगर आपके पास कोई भी मैसेज आता है जिसमें पैसे के लेन देन के बारे में बात हो रही है, तो उसे इग्नोर करें। सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारे लोग आपको इन्वेस्टमेंट के लिए भी उकसा

0: आते हैं, तो उन चीजों से बच कर रहे। जितनी सावधानी आप बरतेंगे उतना आप सुरक्षित रहेंगे। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो एक बार जरूर सोचें कि शायद ये सोशल मीडिया आपके लिए खतरनाक भी हो सकता है। तो उतना ही इस्तेमाल करें जिससे आपको कोई परेशानी ना हो।
1: तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ये जो जानकारी सुनी इस पे आप जरूर अमल करेंगे, गौर करेंगे और इन छोटे छोटे बिंदुओं को अपने जीवन में आप जरूर उतारेंगे। और भैया, ईच वन टू कीच वन आप भी अप्लाई करें, औरों को भी करवाएं। तो ये छोटी सी जानकारी इस प्रोग्राम के जरिए, जिसका नाम है सोच बदलो, जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी तब तक हम यहीं पर अटके रह जाएंगे, क्यों कुमकुम? तो इसीलिए हमारा मुद्दा भी यही है कि सोच बदलना जरूरी है, और सोच बदलने के साथ साथ छोटी छोटी चीजों का बदलना जरूरी है, डेली रूटीन की हैबिट को बदलना जरूरी है। अच्छा, मान लो आज हम सोशल मीडिया सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, जहां दिन भर में तमाम 50 फोटो हम शेयर करते हैं, 100 लाइक्स हमारे पे आती है, नहीं आती है तो हम बड़े डिप्रेशन में हो जाते हैं, यार मेरी पड़ोसन की फोटो पे 50 लाइक आए हैं, मेरे पे 2 ही आए हैं, ये सोच के भी लोग तनाव में चले जाते हैं।
2: जी हाँ, बहुत सारी लेडीज भी ऐसी होती है, बहुत सारे पड़ोसी भी ऐसे होते हैं कि हाँ भाई ये उठ रहा है और हम नहीं उठ रहे, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना चाहिए, ऐसा सोच के। अच्छा, मान लीजिए अगर आनंद जी आपको वो इंस्टाग्राम पे कोई लिंक सेंड करे कि हाँ आपने 50 लाख की लॉटरी जीती है और आपका भाग्य खुल चुका है, तो आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे?
1: देखो यार, अगर 50 लाख की लॉटरी या 25 लाख की लॉटरी का मेरे को कोई मैसेज आता है और वो कहेगा कि पहले लिंक क्लिक करो, तो मैं एक्साइटमेंट तो सबको होगी, मैं जरूर सोचूंगा, लेकिन मैं करूंगा नहीं, क्योंकि हो सकता है वो 50 लाख का मुझे लालच दिया जा रहा हो।
2: जी हाँ, ऐसा मेरे भाई के साथ भी हो चुका है।
1: अच्छा?
2: तो कब बोला था, मतलब? कि आपकी लॉटरी में बाइक निकली है।
1: कौन सी वाली थी, स्प्लेंडर या कौन सी?
2: सुपर बाइक
1: या केटीएम बाइक?
2: नहीं, सुपर बाइक थी वो, एक जो कि यहाँ नहीं था, इंडिया से बाहर का था। उसमें बोला गया था कि आप दिल्ली आ जाओ, दिल्ली आके ले लो और 15,000 रुपए पहले जमा कर दो।
1: अरे बाप रे, तो मतलब ये तो धड़ाधड़ वाला धोखाधड़ी था यार, तो मतलब किया तो नहीं भाई ने ऐसा?
2: नहीं, भैया ने बोला कि आप हमारे पहले बाइक खुद लेके आओ, अगर आप हैंड टू हैंड देंगे तब हम आपको दे देंगे।
1: ओके, तो ये तो चलिए अच्छा बोला भैया ने, थैंक गॉड, तो इससे कहीं ना कहीं आप बच गए।
2: जी,
1: है ना दोस्तों, ऐसे आए दिन हमारे साथ भी होते हैं, और जैसे इन्होंने बोला कि अगर आपको कोई बोलता है कि आपके इंस्टाग्राम पे रैंडमली कोई मैसेज आता है, कंग्रेचुलेशन आप जीत चुके हैं 10 लाख रुपए का लॉटरी पैकेज, इस पे लिंक पे क्लिक करें एंड अपने अकाउंट में जल्दी से विड्रॉल करें पेमेंट, तो आपको ना ये बेवकूफी नहीं करनी है, आपको सावधान और सतर्कता के साथ, स्मार्टनेस के साथ काम करना है, आपने उस लिंक को इग्नोर करना है। रिसेंटली 2 दिन पहले ही मेरे इंस्टाग्राम पे आया था रिक्वेस्ट में, बट मैंने उसको डिलीट किया, और मैंने एक दो लोगों से पूछा भी, क्योंकि कभी कभी होता है हमें चीजें समझ में नहीं आती, लेकिन जब हमने कोई लॉटरी खेली नहीं है तो हम जीतेंगे कहां से, सबसे बड़ा क्वेश्चन। दूसरी बात यह है, अगर आपने जाने जाने में ऐसे लिंक पे क्लिक कर भी दिया तो बॉस आपका जो अकाउंट है वो हैक हो जाएगा, जो आपकी मेहनत की कमाई है वो भी कैसे लूट जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो कहते हैं ना दोस्तों, लालच से बचिए और समझदारी को अपनाइए, बहुत जरूरी है। फिलहाल एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम की ओर से ये आपके शहर का पहला सामुदायिक रेडियो जो आपको कहता है सोच बदलिए, अपने इरादों को बदलिए और थोड़ी सी नई सोच को अपनाइए, है ना, स्मार्ट सोच को अपनाइए। आप सिर्फ पुरानी चीजों पे नहीं रहना, स्मार्ट सोच का मतलब यही है कि जो सोचने का तरीका है वो थोड़ा स्मार्ट बनाइए। जैसे डिजिटल हम सोचते हैं ना कि यार सब चीजें आसान हो जाएं, वैसे थोड़ा सोच को भी आसान बनाइए। बहुत ज्यादा अगर थका दोगे तो कहीं ना कहीं जाने जाने में लिंक पे क्लिक कर दोगे, और लिंक पे क्लिक किया तो लॉस हो जाएगा, क्यों?
2: जी राइट, आपको अपने माइंड को एक्टिव रखना है, जिससे कि आप खो ना जाए और लिंक पे क्लिक ना कर जाए।
1: फिलहाल तो हम दोनों खोने वाले हैं अभी एक खूबसूरत गाने में, उसके बाद हम दोनों लेंगे जाने की इजाजत, लेकिन जाने से पहले कुछ और अहम और महत्वपूर्ण बातें आपको बताएंगे, तो एक म्यूजिकल ब्रेक, फिर लौट कर आते हैं मैं और कुमकुम।

0: बिल्कुल जी, मैं भी यही कहता हूँ अक्सर अपने इंस्टाग्राम को देख के कि तू है जहाँ मैं हूँ वहीं, क्योंकि इंस्टाग्राम के बिना तो यार बड़ा अधूरा सा लगता है यार कुंकू। मगर एक दिन भी रील ना डालो, फोटो ना डालो तो ऐसा लगता है यार कुछ तो मिस था आज के दिन में। बट वही चीज, अगर हम गड़बड़ कर देते हैं तो वो हमारे लिए घातक भी हो जाती है। रिसेंटली किस्सा बताता हूँ, मेरे पड़ोस में एक फैमिली के यहाँ पे शादी थी और वो लोग बाहर जा रहे थे शादी सेलिब्रेट करने, बट उनका एक बेटा जो भाई साहब सोशल मीडिया पे हर एक अपडेट डालता है, मतलब छोटी छोटी अपडेट, अब ये अपडेट उनके ऊपर भारी पड़ गई। उन्होंने सारी लोकेशन वगैरह सब डाल दी कि हम दो दिन के लिए शादी में जा रहे हैं ये वो। अब उसके बाद जो उनके हेटर्स हैं, या यू कह सकते हैं जो मौके की फिराक में थे, उन्हें मौका मिला, घर में जाके चोरी कर ली। अब उससे बहुत बड़ा लॉस हो गया परिवार को जब ये पता लगा, तो सिर्फ किस वजह से हुआ, सोशल मीडिया की वजह से। तो सोशल मीडिया जितना अच्छा है ना गाइज, जितना आपको हैपनिंग और प्यारा साउंड करते हुए नजर आता है, जितने हम खुश दिखाई देते हैं, एक्चुअल में उतने होते नहीं है। वेरी ऑनेस्ट, टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको लिटरली बताऊं कुमकुम, कुछ चीजें तो सोशल मीडिया पर सिर्फ दिखावा चल रहा है, है ना।
1: आजकल दिखावे की दुनिया है।
0: है, आई नो दैट, बट इस दिखावे की दुनिया में जो फेक चीजें उनसे भी बचना है यार, नहीं तो फिर आपके साथ दिक्कत हो जाएगी। और चलते चलते मैं और कुमकुम जो है बस आपसे यही कहना चाहते हैं कि सोशल मीडिया हमारी जिंदगी आसान बनाता है, लेकिन छोटी सी गलती हमें बड़ी परेशानी में भी डाल सकता है। एग्जैक्टली, तो बस याद रखिए, सेफ रहिए, सतर्क रहिए, जो आप कर रहे हैं अच्छे से करिए, लेकिन हर चीज को अपलोड मत करिए, क्योंकि आपको नहीं पता आपकी फोटो का कौन गलत इस्तेमाल कर ले। AI का जमाना है आजकल, तो वैसे भी गर्दन किसी और की होती है, बॉडी किसी और की होती है, तो उसका शिकार आप ना हो, हम ना हो, इसलिए सावधानी ही सबसे बड़ी सतर्कता है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, फिर और मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है सोच बदलो। तब तक के लिए मैं RJ आनंद लेता हूँ आपसे इजाजत, अनुमति, और कुमकुम आप भी चलो बाय करो।
1: बाय।
0: बस भी इतना ही बोलेगी, अभी उसको ज्यादा थोड़ा सा जो है मतलब सीखने की जरूरत है, अभी उसको ज्यादा आ नहीं रहा है, इसने प्यार से बोला बाय। चलो ठीक है, चलो मैं अपना थैला उठाता हूँ, लाओ। अरे मेरा ये फेस वॉश तो रख दो। अरे बाबा मेरी सनस्क्रीन भी रखो इसमें। एक तो गाइस धूप बहुत हो रही है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप घर से बाहर जा रहे हैं ना तो अपने थैले के अंदर सनस्क्रीन और ये काला चश्मा। मेरा चश्मा कहाँ गया यार कुमकुम, मेरा चश्मा है क्या? अच्छा ये, हाँ। तो गाइस आप लोग भी अपना चश्मा, पानी की बॉटल और ये सनस्क्रीन सब अपने साथ रखिए, और ख्याल रखिए, और डिजिटली थोड़ा सा एक्टिव रहिए, बट सावधानी के साथ, सतर्कता के साथ।
1: आपके हाथ में
0: क्या बात है, बिल्कुल मेरे हाथ में मेरा थैला दो। चलो बाय गाइस।

0: टायर लो सोना जीतो।
1: क्या?
0: जी हाँ,
2: चावला टायर
0: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड अपोजिट मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: ऑफर वैलिड टिल 10th June। TNC अप्लाई।
5: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
6: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज। मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आज राज। आप सभी का स्वागत करता हूं इस विशेष कार्यक्रम में। और ये कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जो शायद आपका बैंक अकाउंट खाली होने से बचा सकता है। हाँ, क्योंकि आज जो बात होने वाली है वो एक ऐसे टॉपिक पर होने वाली है जो टॉपिक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है। क्योंकि आप सभी को बताया कि जैसे जैसे हम ऑनलाइन अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, वैसे वैसे बहुत सारे ऐसे अपराध हैं जो आपके साथ हो रहे हैं। और ये जो अपराध हो जाते हैं उस अपराध के बारे में आप किसी को बताना नहीं चाहते, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद हमारे साथ ये अपराध हो गया। हाँ जी, तो आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल अरेस्ट के बारे में। तो ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत। आज हम बात करेंगे एक ऐसे साइबर अपराध की जो न सिर्फ आपका पैसा बल्कि आपका आत्मविश्वास, मानसिक शांति और सम्मान भी छीन सकता है। इस अपराध का नाम है डिजिटल अरेस्ट। श्रोताओ, सबसे पहले ये बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई भी कानूनी प्रक्रिया भारत में मौजूद नहीं है। यह पूरी तरह से एक साइबर ठगी है। ठग खुद को पुलिस अधिकारी, साइबर क्राइम ऑफिसर, CBI, ED या नार्कोटिक्स विभाग का कर्मचारी बताकर आपसे संपर्क करते हैं। वे फोन, व्हाट्सएप कॉल या वीडियो कॉल करते हैं, डर पैदा करते हैं। तो चलिए एक ड्रामे के जरिए मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये साइबर ठग आपके साथ कैसा पेश आते हैं। यहाँ पर एक राजेश है और एक ठग है, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो, कौन बोल रहा है?
1: मैं साइबर क्राइम विभाग से बोल रहा हूँ, राजेश कुमार। आपका आधार कार्ड अवैध गतिविधियों में इस्तेमाल हुआ है।
0: क्या? मैंने तो कुछ नहीं किया साहब।
1: आपके नाम से मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग्स ट्रांजेक्शन हुआ है, आपको अभी डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। देखिए, ये मेरी आईडी है, कोर्ट का नोटिस है, आप किसी से बात नहीं करेंगे। अगर सहयोग नहीं किया तो जेल जाना पड़ेगा।
0: मैं क्या करूँ साहब?
1: आपकी जांच के लिए सुरक्षा राशि जमा करनी होगी। अभी UPI से पैसे ट्रांसफर कीजिए।
0: मैंने पैसे भेज दिए हैं।
2: और यही पर राजेश ठगी का शिकार हो जाता है। श्रोताओं, डिजिटल अरेस्ट ठग मानसिक दबाव का इस्तेमाल करते हैं, जल्दी जल्दी बोलते हैं, धमकी देते हैं, बदनामी और जेल का डर दिखाते हैं। यही सबसे बड़ा संकेत है कि यह ठगी है। याद रखिए, असली पुलिस कभी भी गोपनीयता के नाम पर आपको अलग थलग नहीं करती। असली अधिकारी कभी पैसे नहीं मांगते हैं। अगर ऐसा कॉल आए तो आपको क्या करना चाहिए, चलिए मैं आपको बताता हूँ। श्रोताओं, अगर आपके पास ऐसा कॉल आए, सबसे पहले एक गहरी सांस लें, डरे नहीं, कॉल तुरंत काट दें। किसी भी हालत में OTP, बैंक डिटेल, आधार कार्ड, पैन कार्ड साझा ना करें। अपने परिवार से बात करें, नजदीकी पुलिस स्टेशन या हेल्पलाइन से संपर्क करें। सबसे ज्यादा ये ठग निशाना बनाते हैं बुजुर्गों को। श्रोताओं, डिजिटल अरेस्ट के सबसे बड़े शिकारी हैं बुजुर्ग नागरिक, रिटायर्ड कर्मचारी, अकेले रहने वाले लोग। इसलिए आपसे अपील है, अपने माता पिता को ये जानकारी जरूर दें, उन्हें समझाएं कि फोन पर गिरफ्तारी नहीं होती है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप समझ सकते हैं कि ये किसी ठग का काम है आपको ठगने के लिए। अगर गलती से आप इस ठग का शिकार हो जाते हैं और आपके पैसे चले जाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है? अगर ठगी हो जाए तो सबसे पहले तो घबराना नहीं है, तुरंत एक नंबर मैं आपको बताने वाला हूँ, वो नंबर है 1930। इस नंबर पर कॉल करके अपनी सारी परेशानी को उनसे बताएं। अगर आप कॉल नहीं कर पा रहे हैं तो www.cybercrime.government.in पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करें। जितनी जल्दी शिकायत दर्ज होगी उतनी ज्यादा रिकवरी की संभावना बनेगी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिजिटल अरेस्ट से बचने के ऐसे कौन कौन से नियम हैं जिनका आप पालन कर सकते हैं और आप इस अरेस्ट से बच सकते हैं। सबसे पहले, पुलिस फोन पर गिरफ्तारी नहीं करते हैं, ये आपको समझनी है। सरकारी अधिकारी कभी आपसे पैसा नहीं मांगता है। डर दिखाया जाए, समझ जाइए कि शायद आपके साथ ठगी हो सकती है। किसी से बात करने से रोका जाए, खतरे की घंटी हमेशा इस बात का ध्यान रखें, पुष्टि हमेशा खुद से करें। जाते जाते मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहूंगा कि डिजिटल अरेस्ट सिर्फ एक झूठ है, लेकिन इसका डर सच्चा नुकसान करता है। डर को हराइए, जानकारी को हथियार बनाइए। याद रखिए, डर में लिया गया फैसला नुकसान करता है, समझदारी आपको सुरक्षित रखती है। यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की ओर से। जाते जाते आप सभी से इतना कहना चाहूंगा, सुरक्षित सुरक्षित रहें, जागरूक रहें। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आज राज। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज। एक बार फिर मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो कृपया करके आप सबसे पहले तो घबराए नहीं। अगर आपके साथ ऐसी कोई चीज हो गई है तो 1930 पर कॉल करें। अगर आपको अपनी शिकायत दर्ज करनी है तो www.cybercrime.government.in पर जाकर आप अपनी कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। हाँ, घबराना नहीं है, सुरक्षित रहें। जितनी जानकारी उतनी ज्यादा सुरक्षा। तो अभी के लिए लेता हूँ अलविदा, बाय बाय, टेक केयर।
3: विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी रेडियो की जुबानी। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पर मैं आरजे राज आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, यूं तो हम हर रोज अपने जीवन से जुड़े कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करते हैं, पर हमारी आज की बातचीत थोड़ी ज्यादा खास है। हम सभी के जीवन में कभी न कभी किसी किताब की तरह कुछ पन्ने पलटते हैं और फिर शुरू होती है एक नई कहानी। हमारे वो सभी सपने सच हो जाते हैं जिनके बारे में हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। ऐसे ही एक युवक के सपनों की दास्तान मैं लेकर आया हूँ आपके लिए आज के कार्यक्रम में। तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ जानने के लिए कि कैसे उत्तर प्रदेश और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा संचालित सीएम युवा उद्यमी विकास योजना ने वाराणसी के चोबेपुर के सतीश के सभी सपनों को साकार कर दिया।
4: फिल्मों में हम अक्सर देखते हैं कि कैसे हीरो रातों रात अमीर हो जाता है और उसका देखा हर एक सपना हकीकत बन जाता है, पर वास्तविक दुनिया में ऐसी बातें महज एक कल्पना है।
3: वाराणसी के एक डिग्री कॉलेज से इंजीनियरिंग में स्नातक करने के बाद सतीश के सारे दोस्तों का लक्ष्य दिल्ली बम्बई में ऊँचे औहदे की नौकरी पाना था, पर हमारे सतीश की अभिलाषा कुछ और ही थी।
4: मैं अपने घर का इकलौता बेटा हूँ और मेरे लिए अपने माता पिता और गांव को छोड़कर जाना तर्कसंगत फैसला नहीं होता। बाबूजी ने मेरे लिए हमेशा अपनी हैसियत से ज्यादा किया था और अब मेरी बारी थी कि मैं अपने अभिभावकों के बुढ़ापे की लाठी बनूं।
3: सतीश का मन लगातार अपने और परिवार के भविष्य को लेकर बोझिल रहता था।
4: मेरी रातों की नींद बस इन्हीं ख्यालों को सोच सोच कर उड़ सी गई थी। आखिर ऐसा क्यों होता है कि सपनों को पूरा करने के लिए अपनों का साथ छोड़ना पड़े या उनसे कहीं बहुत दूर जाना पड़े।
3: दोस्तों, सतीश जैसी दुविधा हमारे देश के हजारों युवाओं के मन में होती है, जो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर संसाधनों की कमी के चलते उनके सपने बस उनकी कल्पना में ही रह जाते हैं।
4: महीनों बीत गए थे अपने शहर में इंटरव्यू देते देते, मेहनत के हिसाब से कहीं पर भी पैकेज नहीं जमा। फिर एक दिन सुबह अखबार खोला तो उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के बारे में पता चला।
3: और दोस्तों, यही है सतीश की कहानी का वो पन्ना जिसने पूरी दास्तान बदल कर रख दी। इससे पहले कि सतीश आपको आगे की कहानी बताए, मैं आपको बताता हूँ कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना आखिर है क्या। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत सरकार युवाओं को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करती है जिससे वह अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।
4: जैसे ही मैंने इसका इश्तेहार को देखा तो फटाफट से मोबाइल पर इसके बारे में मैंने सर्च किया और मुझे पता चला कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए, उसकी आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए, अप्लाई करने के लिए कम से कम 8वीं पास होना जरूरी है और आवेदनकर्ता को किसी सरकारी ट्रेनिंग योजना से प्रशिक्षण लिया होना चाहिए या मान्यता प्राप्त संस्था से स्किल सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए।
3: श्रोताओं, इस योजना की औपचारिक शुरुआत 24 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।
4: मैंने जब अपने फ्रेंड सर्कल में देखा तो मेरे जैसे दो बैचमेट्स रवि और निर्भय थे जो मेरे ही जैसे समस्या से जूझ रहे थे। मैंने उन्हें भी इस योजना के बारे में बताया और हम सभी ने साथ में ही हमारी दुविधा का हल निकालने की ठान ली थी। सबसे पहले हम इस योजना से संबंधित बैंक गए और वहाँ के कर्मचारियों ने हमें लोन मिलने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया।
3: साथियों, हमारे देश के सर्वाधिक युवाओं वाले प्रदेश उत्तर प्रदेश के युवाओं की असीमित क्षमता को गति देने और माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन को साकार करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अति महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान CM युवा की मिशन रोड से शुरुआत की गई। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित इस अभियान का मुख्य उद्देश्य कौशल प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को उत्पाद सेवा संबंधित उद्यम स्थापित कराकर स्वरोजगार से जोड़ना, प्रतिवर्ष 100,000 युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना तथा 10 वर्षों में कुल 10 लाख स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है।
4: जितनी जानकारी मैंने प्राप्त की थी उसके हिसाब से मुझे योजना को लेकर काफी कॉन्फिडेंट फील हो रहा था, पर मेरे साथियों के मन में थोड़ा डाउट था, कहीं हमारे दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल तो नहीं हो जाएगा। पर डॉक्यूमेंट को लेकर सभी का ये संकोच जल्दी ही क्लियर भी हो गया। जब हमने हमारे उम्र के एक नौजवान को बैंक में मिठाई बांटते देखा, उससे बात हुई तो पता चला कि वो भी युवा उद्यमी विकास योजना के जरिए अपना बिजनेस चला रहा है और जोरों शोरों से व्यवसाय चलाने के बाद उन्होंने अपनी बहन की शादी भी तय कर दी है। फिर क्या, हमने हमारे भी सपनों को अपनी आँखों के सामने सच होते हमें भी दिख रहे थे।
3: अब सतीश और उसके दोस्तों की गाड़ी तो चल पड़ी, पर आप सभी के लिए योजना के चरणों के बारे में जानना भी बेहद जरूरी है। साथियों, इस योजना के पहले चरण में 5,00,000 तक की परियोजना हेतु 4 वर्षों तक 100% ब्याज तथा गारंटी मुक्त ऋण मिलता है और दूसरे चरण के लिए पहले चरण में लिए गए मूलधन पैनल इंटरेस्ट की पूर्ण वापसी करने वाला अभ्यर्थी पात्र होता है। साथियों, सतीश की इस कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए हम सुनते हैं संबंधित विभाग के अधिकारी का ये मुख्य संदेश।
5: कुमार उपायुक्त उद्योग मुरादाबाद, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य सूक्ष्म लघु उद्योगों को गति प्रदान करने के लिए युवाओं को रोजगार प्रदान करने का उद्देश्य है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष 10,00,000 युवा उद्यमी बनाए जाने हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना की जो प्रमुख एलिजिबिलिटी है वो है कि कोई भी युवा कौशल प्रशिक्षण प्राप्त हो और न्यूनतम 8वीं पास हो और 21 से 40 साल का अगर वो युवा आयु है उसकी, तो वो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत लाभ ले सकता है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत 5,00,000 रुपए तक का कोलेट्रल फ्री इंटरेस्ट फ्री लोन उस पर मिलता है जिस पर युवा को कोई भी ब्याज अगले 4 वर्ष तक नहीं देनी है। ऊपर से उसको 10% उसको सब्सिडी उसको मिलेगी। अब तक जनपद मुरादाबाद में इस वित्तीय वर्ष में 25 से 26 में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के अंतर्गत 2230 युवाओं का ऋण स्वीकृत हो चुका है जिसमें कि 2000 युवाओं को ऋण प्राप्त भी हो चुका है। तो इस योजना के अंतर्गत कोई भी युवा अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस एक्टिविटी अपना कार्य शुरू करना चाहता है तो हमारी इस योजना के अंतर्गत बैंक के माध्यम

0: से मैं अपील करना चाहता हूँ कि रोजगार सीकर न बन के जॉब गिवर के बारे में सोचें और अपना स्वयं का व्यवसाय उद्योग इस योजना के अंतर्गत लाभ लेकर अपना उद्योग स्थापित करें।
1: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: जब मैंने कॉलेज में दाखिला लिया था तो मन में सिर्फ नौकरी करना यही विचार आता था। मेरा खुद का बिजनेस होगा और मैं अपने साथ दूसरों को भी नौकरी देने में सक्षम बन पाऊंगा, ऐसा मैंने और मेरे परिवार वालों ने कभी नहीं सोचा था।
1: साथियों, इस योजना के तमाम फायदे हैं पर कुछ लाजमी शर्तें भी हैं, जैसे डिजिटल लेन देन के सापेक्ष रूप 1 प्रति ट्रांजेक्शन तथा अधिकतम 2,000 रूपए प्रति वर्ष के अतिरिक्त अनुदान प्रति लाभार्थी दे होता है। योजना के अंतर्गत सभी राष्ट्रीयकृत बैंक, अनुसूचित बैंक, ग्रामीण बैंक तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत सभी वित्तीय संस्थान ऋण वितरण हेतु पात्र है। तंबाकू उत्पादक जैसे गुटखा, पान मसाला, अल्कोहल युक्त पेय पदार्थ, कार्बोनेट पेय पदार्थ, पटाखे, प्लास्टिक कैरी बैग 40 माइक्रोन से कम तथा भारत राज्य सरकार द्वारा समय समय पर प्रतिबंधित श्रेणी में रखे उत्पाद योजना में लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होते हैं। योजना का क्रियान्वयन मिशन मोड में होता है। जिला स्तर पर जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र केंद्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करता है। अधिक जानकारी के लिए आप cmyuva.org.in विजिट कर सकते हैं।
0: जब हम सभी ने मिलकर ये निर्णय लिया कि हम एक कंप्यूटर और डिवाइस सर्विस सेंटर खोलना है, तो बिना देरी के हम अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र पहुंचे और वहां जाकर हमें पता चला कि आवेदन की संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन है। अप्लाई करने के लिए MSME पोर्टल को लिंक पर ऑनलाइन आवेदन किया के पोर्टल पर लिंक आवेदन किया जाता है। जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र में ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों का परीक्षण किया जाता है। परीक्षण के उपरांत आवेदनों को बैंक में भेजा जाता है, जहां समयबद्ध रूप से ऋण स्वीकृति एवं वितरण की व्यवस्था की जाती है। साथ ही बैंकों द्वारा ऑनलाइन माध्यम से मार्जिनी मनी, ब्याज उत्पादन तथा CGTMSE प्रतिपूर्ति प्राप्त किए जाने की व्यवस्था भी होती है। आज मेरी इस उपलब्धि का पूरा श्रेय माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जाता है, जिन्हें महज वादे ही नहीं किए बल्कि धरातल पर कोशिशों को साकार भी किया। आज ये उन्हीं की देन है कि मैं और मेरे साथी काम करने वाले पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने और अपने परिवारों का भरण पोषण कर रहे हैं। सचमुच लीडर हो तो ऐसा, योगी जी इसी दूरदर्शी सोच के लिए उन्हें मेरा सैल्यूट है।
1: दोस्तों, वाराणसी के चौबेपुर निवासी सतीश और उनके बिजनेस पार्टनर्स रवि, निर्भय और उन सभी के परिवार वालों को आज महत्वपूर्ण चीजों पर खर्च करने के लिए सोचना नहीं पड़ता। आज वो आर्थिक रूप से मजबूत भी हैं और अपने शहर में रहकर अपने सपनों को पूरा करने में सक्षम भी हैं।
0: मेरे लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी ही असली फ्रीडम है और हम सभी युवाओं के लिए यही बदलते उत्तर प्रदेश की तस्वीर भी है। ये नया यूपी है जहां अब युवा रोजगार के लिए भटकेगा नहीं बल्कि अपने रास्ते खुद तय करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार और युवाओं के हित में सोचने वाले माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को ढेर सारा धन्यवाद। और साथ ही रेडियो के माध्यम से मैं अन्य लोगों को भी ये बोलना चाहूँगा कि खूब सपने देखिए, क्योंकि आपके सपने और लक्ष्य को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश आपके साथ है।
1: साथियों, बदलते और प्रगति की ओर बढ़ते उत्तर प्रदेश की और भी कहानियाँ हम लेकर आएंगे आपके पसंदीदा प्रोग्राम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश में। साथ ही अगर आप चाहें तो अपनी कहानियाँ हमारे माध्यम से जनता तक पहुँचा सकते हैं। सुनते रहिए और बने रहिए हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ FM मुरादाबाद 89.6 MHz। मैं हूँ आपका दोस्त आरजराज, जल्दी ही मिलूंगा ऐसी और बहुत ही खूबसूरत कहानियों के साथ।
2: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: टायर लो सोना जीतो।
2: क्या?
1: जी हाँ,
3: चावला टायर
1: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
4: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
5: अपोजिट
4: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
5: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई।

0: शोधन नियम 2026 अधिसूचित किए, पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें।
1: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता था। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनजातीय समुदायों के युवाओं को सशक्त बनाने और उनका उत्थान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।
1: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य के प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपनी जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तब सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाएं केवल वित्तीय सहायता का साधन नहीं है बल्कि ये युवाओं को सपनों को देखने का अधिकार देती हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्तियां उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोलती हैं जिनमें अपार प्रतिभा है लेकिन संसाधनों की कमी के कारण वे प्रगति करने से वंचित रह जाते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि युवा राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से आग्रह किया कि वे अपनी जड़ों को न भूलें।
1: भारत को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं। इस लक्ष्य के प्राप्ति में आप जैसे युवाओं की अहम भूमिका है। मुझे विश्वास है कि आप जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं समाज और राष्ट्र के निर्माण में आपका सक्रिय योगदान रहना चाहिए।
0: गृह मंत्रालय ने आवर्जन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। इसमें आवर्जन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। इससे पहले 180 दिन की अवधि समाप्त होने के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य था। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशाटिले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशाटिले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमेरिका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन आज मुंबई पहुंचे। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल विष्णुदेव वर्मा ने उनका स्वागत किया। प्रोटोकॉल मंत्री जयकुमार रावल भी हवाई अड्डे पर उपस्थित थे। राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन आज मुंबई में व्यापार और उद्योग जगत से बात करेंगे और विभिन्न स्थलों का दौरा करेंगे। वे आज शाम लोक भवन में उनके सम्मान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कोलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इनको न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि ऐसे व्यक्ति जो पिछले 21 दिन में इबोला प्रभावित देश से यात्रा करके आए हैं, उन्हें बुखार, सिरदर्द और मांसपेशियों में दर्द या दस्त या बिना किसी स्पष्ट कारण के रक्तस्राव जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो वे स्वयं को लोगों से अलग कर लें। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे व्यक्ति स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को तुरंत सूचित करें। नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। भारत ने इबोला वायरस से निपटने के लिए अफ्रीका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र CDC को चिकित्सा सहायता की 43 टन की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस खेप में निदान, निगरानी उपकरण और दवाएं शामिल है। श्री जयशंकर ने कहा कि इससे अफ्रीकी संघ के सदस्य देशों को इबोला वायरस से निपटने में मदद मिलेगी। केरलम विधानसभा में कांग्रेस नेता शानिमोल उस्मान उपाध्यक्ष चुनिए गए हैं। शानिमोल उस्मान को 99 वोट मिले जबकि विपक्षी उम्मीदवार मोहम्मद मोहसिन को 34 वोट प्राप्त हुए। भारतीय जनता पार्टी के तीनों सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: CBSE ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। बोर्ड ने बताया कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए आधार सत्यापन को शामिल किया गया है। जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है उनके माता पिता, रिश्तेदार या अभिभावक के आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। विद्यार्थियों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपए और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपए का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान केवल UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग जैसे ऑनलाइन माध्यमों से किया जा सकता है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने के आरोप में आजमगढ़ से एक युवक को गिरफ्तार किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: यह आतंकवादी गिरोह नौजवानों को अहम व्यक्तियों और संस्थानों की निगरानी करने, उनकी हत्या करने, राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर बमबारी करने, सुरक्षा एजेंसियों के कर्मचारियों की हत्या करने और उनके कार्यालयों और मुख्यालयों पर हमला करने जैसे अपराध को अंजाम देने के लिए उकसा रहा था। खुफिया जाँच के दौरान आजमगढ़ निवासी मोहम्मद शेख का पता चला जो इस गैंग से जुड़ा हुआ था। शेख पाकिस्तान और दुबई के फोन नंबरों का उपयोग करके व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए शहजाद भट्टी के आतंकवादी गिरोह से जुड़ा हुआ था। वो अपने साथियों और अन्य लोगों को भी आतंकवादी गिरोह में शामिल होने और गैर कानूनी काम को अंजाम देने के लिए भड़का रहा था। शहजाद भट्टी के गिरोह ने मोहम्मद शेख को एक राजनीतिक पार्टी की महिला नेता को धमकाने और उसकी हत्या करने का काम सौंपा था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रवर्तन निदेशालय ED मुंबई, सूरत, अंकलेश्वर और राजकोट में 20 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। निदेशालय ने सलीम इस्माइल डोला और उसके सहयोगियों द्वारा संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठित मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ ये कार्रवाई की है। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA 2002 के प्रावधानों के तहत की जा रही है। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोने की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। निदेशालय ने विदेश से लाए गए 2 किलो 600 ग्राम सोने को जब्त किया है, जिसकी कीमत लगभग 4,20,00,000 रुपए है। खुफिया जानकारी के अनुसार अधिकारियों ने दुबई से आए 2 यात्रियों को पकड़ा। मामले की जांच की जा रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश के सीधी जिले में 1 वर्ष में प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद 53 गर्भवती महिलाओं की कथित मृत्यु के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आयोग ने इस मामले में 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। देश भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आज तेलंगाना का स्थापना दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर राज्य के लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तेलंगाना को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परिश्रमी लोगों का साथ मिला है। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जीवंत परंपराओं से संपन्न है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि तेलंगाना का इतिहास और गौरवशाली संस्कृति साहस, दृढ़ संकल्प और संघर्ष का प्रतीक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच अमेरिका की मध्यस्थता से हुए संघर्ष विराम पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। समझौते के बाद क्षेत्र में तनाव कम होने की संभावना थी, लेकिन हाल के सैन्य उल्लंघनों से इसकी स्थिरता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
4: ईरान ने लेबनान में इजरायली हमले जारी रहने पर अमेरिका के साथ सभी प्रकार की बातचीत रोक दी है। अमेरिका के साथ किसी भी युद्ध विराम समझौते के लिए ईरान ने लेबनान पर इजरायली हमले रोकने की पूर्व शर्त रखी थी। उसने होर्मुज जल डमरो मध्य पूरी तरह से बंद करने और लाल सागर के मुहाने पर स्थित बाब अल मंदेब जल डमरो मध्य सहित अन्य मोर्चे खोलने की बात कही है। ईरान का कहना है कि लेबनान और गजा में इजरायली हमले पूरी तरह बंद होने तक अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी। लेबनान में जारी संघर्ष अमेरिका और ईरान के बीच संभावित युद्ध विराम समझौते में एक बड़ी बाधा बन चुका है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं से भी मिलेगा। मुलाकात का उद्देश्य दोनों पार्टियों के बीच लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और जन केंद्रित राजनीतिक पहुंच पर विचारों का आदान प्रदान करना है। घरेलू शेयर बाजार में आज शुरुआती कारोबार में पहले गिरावट और फिर 0.5% से अधिक की तेजी देखने को मिली। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 508 अंक के उछाल के साथ 74,775 जबकि निफ्टी 140 अंक की वृद्धि के साथ 23,523 पर कारोबार कर रहा था। और अब बात खेलों की। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल तक आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में तेज बारिश का अनुमान है। अगले 2 से 3 दिन तक हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने सभी वर्गों के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति पर जोर दिया। सरकार ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किए। पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
6: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
5: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
7: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
8: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
9: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
8: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
10: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
11: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
12: हर घर सूर्य घर। एक नए इतिहास के।
13: अरे भैया, खेती और फायदे का सौदा।
14: और क्या, हमारे यूपी में पहले केवल पारंपरिक खेती होती थी, अब ट्रैक्टर्स, मॉडर्न मशीनों और डिजिटल तकनीकों की मदद से किसान और कृषि दोनों स्मार्ट हो गए हैं।
13: अच्छा
14: भैया, किसानों की बढ़िया ट्रेनिंग, आर्थिक मदद और प्रोत्साहन से यूपी में अनाज, दूध, पशुपालन, हर चीज का उत्पादन बढ़ चुका है।
13: अरे वाह,
14: सरकार का फोकस ही इस पर है कि किसानों को बढ़िया दाम मिले, बिचौलियों को छुट्टी मिले और कस्टमर को अच्छा सामान मिल पाए।
13: शुक्र है डबल इंजन सरकार है।
12: विश्वास के एक नए इतिहास के।
15: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
16: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
17: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन, जैसे कोट सूट, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
16: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।
18: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो, और मेरा नाम आनंद है और प्रोग्राम है खेती किसानी। आज हम बात करेंगे, अब किसान भाइयों के लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं जिसपे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो जितने भी किसान भाई इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं या जो किसानी खेती किसानी नहीं भी करते हैं, आज उनके लिए भी बहुत सारी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है इस प्रोग्राम के जरिए। तो आप बिल्कुल हमारे प्रोग्राम में जुड़े रहिएगा क्योंकि आज आपको तमाम सारी जानकारियां मिलेंगी। और मैं भी बहुत दिन से सोच रहा था कि कोई ऐसा एक्सपर्ट हमारे स्टूडियो में जरूर होना चाहिए जिससे हम ढेर सारी बातचीत करें, कोई तो ऐसे विशेषज्ञ होने चाहिए जिनसे हम अपने क्वेश्चन के आंसर ले सकें। हमारे पास बहुत सारे लोगों के मैसेजेस भी आते हैं जो हमारे किसान भाई लगातार हमें संदेश पहुंचाते हैं। तो आज हमने आपके सवालों को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही खास मेहमान को अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। आज हम उनसे ढेर सारी बातचीत करने वाले हैं श्रोताओं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं आपको, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आगामी गन्ना पिरायत्र 2026-27 हेतु प्रत्येक जनपद में गन्ना सर्वेक्षण 1 मई से 30 जून तक चल रहा है, और इसी पर बातचीत करने के लिए हमने डॉक्टर विनय कुमार सिंह को अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
19: धन्यवाद
18: जी। सर मैं चाहूंगा कि हमारे तमाम सुनने वाले श्रोताओं को आप एक बारी अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, जो हमारे किसान भाई सुन रहे हैं, जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं।
19: जी बिल्कुल सर, आपके एफएम मुरादाबाद के समस्त श्रोता बंधुओं को हमारा सादर प्रणाम और सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर विनय कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज, श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी गजरौला से हूँ। और मैं बेसिकली आज किसान भाइयों के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर आज चर्चा करने के लिए आपके स्टूडियो में मौजूद हूं। आपका तहे दिल से धन्यवाद कि आपने हमें अवसर दिया और अपने स्टूडियो में बोलने का मौका दिया। आज का, जैसे कि आपने अभी विषय में जो है चर्चा किया है कि आज का हमारा विषय क्या है, तो गन्ना सर्वेक्षण जो कि प्रत्येक वर्ष हमारे प्रदेश में और पूरे देश में हालांकि चलता है जहां जहां गन्ना उत्पादक होता है।
18: जी जी।
19: तो गन्ना सर्वेक्षण जो है क्यों जरूरी है और इसमें किसानों की क्या भूमिका है, इस विषय के ऊपर हम आज विस्तृत चर्चा करेंगे।
18: क्या बात है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से जो है बारे में हमारे श्रोताओं को बताया, थैंक यू सो मच। और आपने हमारे टॉपिक का भी जिक्र कर दिया इसी में, जैसे कि आपने कहा कि आज हम गन्ना सर्वेक्षण क्या है इसके विषय में तमाम सारी बातचीत करेंगे। तो श्रोता साथी जितने भी हमें सुन रहे हैं, जो भी किसान भाई हमें सुन रहे हैं इस प्रोग्राम के जरिए, आज आपके बहुत सारे सवालों के जवाब हम आपको देने वाले हैं। जैसे कि मैंने बताया ये जो हमारा प्रोग्राम है ये 1 मई से 30 जून तक चल रहा है ना सर?
19: जी बिल्कुल।
18: तो सर सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि गन्ना सर्वेक्षण आखिर है क्या, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से हमारे लिसनर्स को बताएं।
19: जी बिल्कुल, किसी कार्य को करने से पहले उसके बारे में समझना जरूरी होता है।
18: जी
19: गन्ना सर्वेक्षण एक प्रकार की प्रक्रिया होती है
18: जी सर,
19: जिसके माध्यम से किसानों को खेत में बोए गए जितना भी क्षेत्रफल होता है उसकी किस्म क्या लगाई हुई है और फसल की स्थिति क्या है उसका रिकॉर्ड तैयार किया जाता है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा हर वर्ष किया जाता है। यह कार्य गन्ना विभाग और चीनी मिल दोनों के तत्वाधान में किया जाता है, ताकि किसानों को सही पर्ची, समय पर पर्ची, भुगतान और अन्य सुविधाएं आदि सभी चीजें मिल सकें। ये है हमारा गन्ना सर्वेक्षण का उद्देश्य।
18: बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छे से आपने इस पे जो है चर्चा करी विस्तार से। सर मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा कि गन्ना सर्वेक्षण किसानों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?
19: जी बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है ये हमारा पॉइंट, क्योंकि सही सर्वेक्षण से किसानों का वास्तविक गन्ना क्षेत्र दर्ज होता है
18: जी,
19: जिसे उन्हें समय पर गन्ना पर्ची मिलती है और डाले गए या कह सकते हैं कि आपूर्ति किए हुए गन्ने का उचित मूल्य उनको मिलता है तथा सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिलता है। गलत सर्वेक्षण से किसान का आर्थिक नुकसान भी हो सकता है।
18: अच्छा सर, किसानों को सर्वेक्षण के समय क्या सावधानी रखनी चाहिए, जो आपको लगता है कि छोटी छोटी सावधानियां अक्सर किसान भाई भूल जाते हैं, लोग भूल जाते हैं, तो क्या रखनी चाहिए?
19: जी बिल्कुल, देखिए किसान भाई जो है सर्वेक्षण के समय बहुत ही सावधानी पूर्वक इसको करवाना चाहिए, क्योंकि क्या है कि आधारशिला अगर है तो हमारा सर्वेक्षण है, सर्वेक्षण अगर गलत हो जाएगा तो उनको कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जिसमें कुछ जो है सावधानियां मैं आपको बता रहा हूं। जैसे पहला है हमारा कि किसान भाई खेत पर स्वयं उपस्थित रहें, जैसे वो लोग क्या करते हैं कि स्वयं ना होकर के किसी को भेज देते हैं कि आप चले जाइए, जिसको उस गन्ने की किस्म, उस गन्ने की जो है कितना क्षेत्रफल है इत्यादि जो है जानकारी नहीं होती है, जानकारी के अभाव में वो गलत सूचनाएं वहां पे दर्ज करा देते हैं, जिसका उनको नुकसान आगे चल करके उठाना पड़ता है। तो मेरा अपील ये रहेगा कि किसान भाई खेत पर स्वयं उपस्थित रहें, और दूसरा गन्ने का सही क्षेत्रफल बताएं, हालांकि वो सर्वे अपने आप ही करते हैं, एक्चुअल जितना भी उनका एरिया आएगा वो उनको पता चल जाता है, लेकिन फिर भी अगर वो ऐसी जानकारी वो मांगते हैं तो क्षेत्रफल ना सही बताएं। और तीसरा है हमारा गन्ने की सही किस्म एवं बुआई की जानकारी अवश्य दें, क्योंकि गन्ना अभी हमारा बढ़वार के समय पे है, गन्ने की जो आइडेंटिफिकेशन होती है तो उनके कई सारे चरण होते हैं, कुछ की पौध पे निर्भर करती है, कुछ की उसके गन्ने के रंग पे निर्भर करता है, कुछ उसकी गांठों से उसकी जो है पहचान होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उनको पहचानना अभी इस समय पे बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो सकता है, तो जो भी किस्म आपने बोई हुई है तो वो सटीक और सही जानकारी उपलब्ध कराएं। और अगला पॉइंट हमारा है कि किसी भी गलती को तुरंत जो है संबंधित अधिकारी को अवश्य बताएं, अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो अपने अधिकारी को जो वहां पे मौजूद है सर्वेक्षण के समय, तो उसको आप अवश्य बताएं। सर्वेक्षण होने के उपरांत रिकॉर्ड की जांच अवश्य करें, जितना भी रिकॉर्ड आपको स्लिप मिलता है स्लिप में एक बार चेक कर लें, अगर उसमें कोई भी आपको त्रुटि लग रही है जिसमें या संशोधन की आवश्यकता है तो उस चीज का आप जांच करें और तुरंत संबंधित अधिकारी या कार्यालय में संपर्क करके उसको संशोधित अवश्य कराएं।
18: किसानों को सर्वेक्षण के समय क्या सावधानी रखनी चाहिए, इसी पर हम बात कर रहे थे अभी। बहुत अच्छे से डॉक्टर विनय कुमार जी ने इस पे चर्चा करी। सर अगर मैं आपसे वहीं दूसरे सवाल की ओर आगे बढ़ूं, एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है कि गन्ना सर्वेक्षण की पर्ची वितरण से क्या संबंध है, इसके विषय में अगर थोड़ा आप बताएं तो।
19: जी बिल्कुल, देखिए आधारशिला हमारा सर्वेक्षण होता है
18: जी,
19: गन्ना पर्ची सर्वेक्षण के आधार पर ही जारी होती है। यदि सर्वेक्षण सही होगा तो किसान को उसकी उपज के अनुसार समय पर पर्ची प्राप्त होगी। गलत सर्वेक्षण से पर्ची कम या देरी से मिल सकती है, जिससे किसान भाई को आगामी गन्ना आपूर्ति बाधित हो सकती है
18: जी। ओके, गन्ना सर्वेक्षण में किसानों की भूमिका क्या रहती है सर, क्या है मतलब सबसे ज्यादा उनकी भूमिका?
19: जी बिल्कुल, देखिए किसानों की सक्रिय भागीदारी बहुत ही आवश्यक होती है।
18: जी।
19: किसान सही जानकारी देकर सर्वेक्षण टीम का सहयोग करके तथा रिकॉर्ड की पुष्टि करके पूरी प्रक्रिया को सफल बना सकते हैं। एक जागरूक और सफल गन्ना उत्पादक किसान सर्वेक्षण के दौरान गहनता से और बड़ी ही सूझबूझ से कार्य करता है, क्योंकि वह जानता है उसकी आगामी गन्ना आपूर्ति इसी सर्वेक्षण पर निर्भर करती है। तो सर्वेक्षण में किसानों की अहम और बहुत ही सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए।
18: जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम विषयों पर जो है हमारे साथ बातचीत करी और आगे भी हम आपसे करते रहेंगे। एक सवाल है, आधुनिक तकनीकी से गन्ना सर्वेक्षण में क्या लाभ हो रहा है, इस विषय में थोड़ा सा बताइए हमारे किसान भाइयों को।
19: जी बिल्कुल, देखिए आधुनिकता दिन प्रतिदिन हमारी बढ़ती जा रही है और जैसे कि डिजिटल इंडिया हमारे जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मोटो है और सभी लोग फॉलो भी कर रहे हैं और हमारा देश अग्रसर भी है डिजिटल इंडिया की ओर।
18: जी जी,
19: आजकल क्या है कि बहुत सारे एप्लीकेशन आ गए हैं, डिजिटल प्रणालियां फॉलो हो रही हैं, तो हर क्षेत्र में एक जो है एक क्रांति सी आई है जब से ये डिजिटल इंडिया चला है। तो इस गन्ना सर्वेक्षण में भी आजकल मोबाइल ऐप और डिजिटल प्रणाली के माध्यम से सर्वेक्षण हो रहा है, जो कि अधिक पारदर्शी है, सुगम है और तेज है। इससे गलतियों की संभावना कम होती है तथा रिकॉर्ड भी सुरक्षित रहता है। इसके अलावा हमारा क्या है कि जैसे कि अभी जानकारी के अनुसार जैसे सभी लोग पहले क्या होता था कि पर्चियां कार्यालय में जाके पूछते थे कब आएगी और कब हमारा भुगतान आएगा, तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश जो है गन्ना विभाग ने एक ई गन्ना ऐप लॉन्च किया है, जिसकी जानकारी आप जो है ई गन्ना ऐप से उपलब्ध रहती है। इस ई गन्ना ऐप में किसान भाई अपनी कुल सर्वे, जो कि उनका सर्वेक्षण हुआ है, तो कुल कितना सर्वेक्षण हुआ है इसकी भी जानकारी मिल सकती है, कितने उनके सर्वेक्षण में प्लॉट शामिल हुए हैं उसकी भी जानकारी रहती है, और प्रत्येक प्लॉट का एरिया कितना है वो भी उनको पता चल जाता है, कुल पर्चियां उनकी कितनी बनी है, उनका बेसी कोटा क्या है। बेसी कोटा असल में पिछले 5 वर्षों की आपूर्ति के आधार पर बनता है, इसमें रेशियो रहता है पिछले 2 वर्षों का रिकॉर्ड, फिर पिछले 3 वर्षों का रिकॉर्ड और फिर पिछले 5 वर्षों का। इनमें से जो भी वैसी कोटा टोटल आपूर्ति जोड़ी जाती है, फिर उनको जितने ही भी वर्ष होते हैं, जैसे 2 साल है तो 2 से डिवाइड करना, 3 साल का लिया तो 3 साल से डिवाइड करना, और अगर 5 साल का लिया है तो 5 से डिवाइड करना। इनमें से जो भी जैसे मात्रा में ज्यादा होगा, जितने कुंटल उसमें ज्यादा होगा, तो उसी को ही बेस मान करके उनकी पर्चियां बनाई जाती हैं। तो इसमें बेसी कोटा की भी जानकारी मिल जाती है, कुल सप्लाई पिछले 5 वर्षों की, ये भी किसान भाई अपने आप स्वयं में ही ई गन्ना ऐप पे देख सकते हैं। तो इत्यादि जो है अनेकों प्रकार की जानकारी हमारी ई गन्ना ऐप में मिल जाती है, जिसमें उनको भुगतान, आपूर्ति और जो है सारी किस किस डेट पे निकली है, अगर उन्होंने कोई पर्ची नहीं लगा पाए, गन्ने की छिलाई किसी कारणवश नहीं हो पाई, तो वो अगर उनकी मिस हो जाती है पर्ची, तो उसकी भी जानकारी उनको मिलती रहती है। तो ई गन्ना ऐप बहुत ही सुगम और आसान और बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि हमारे लिए यूजफुल होता है, किसान भाइयों के लिए भी।
18: जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे से आपने इस पे जो है जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, यदि किसी किसान की फसल सर्वेक्षण में छूट जाए तो वो क्या करना चाहिए, वो क्या करे इस सिचुएशन में?
19: जी बिल्कुल, देखिए अहम मुद्दा है
18: जी।
19: ऐसी स्थिति में किसान तुरंत अपनी गन्ना समिति अथवा गन्ना विभाग
18: जी
19: अथवा संबंधित चीनी मिल कार्यालय में संपर्क करें तथा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करके संशोधन करवा सकते हैं। सर्वेक्षण कार्य पूरा होने के उपरांत कृषकों को एक स्लिप, जिसको कच्चा कैलेंडर भी कह सकते हैं, ये अत्यधिक उपलब्ध करा दिया जाता है, जिसमें उनको प्रत्येक जो है कह सकते हैं कि प्लॉट का जिक्र उसमें रहता है, एरिया कितना है, किस्म क्या लगाई है, तो सब कुछ उसमें रहता है। यदि किसी किसान भाई का कोई प्लॉट छूट जाता है अथवा गन्ना प्रजाति का चयन गलत हो जाता है आदि का संशोधन 15 कार्य दिवस के अंदर अपनी गन्ना समिति अथवा गन्ना विभाग में संपर्क करके उसको करा सकते हैं।
18: डॉक्टर साहब, एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगा, गन्ना सर्वेक्षण का चीनी उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके विषय में थोड़ा बताएं।
19: जी बिल्कुल, देखिए गन्ना सर्वेक्षण एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है। सही सर्वेक्षण से चीनी मिलों को गन्ने की उपलब्धता का सही अनुमान लगता है, क्योंकि उनके पास में क्षेत्रफल ज्यादा रहता है, कई सारे गांव रहते हैं, कई सारी गन्ना समितियां होती हैं, उन समितियों में कई सारे किसान होते हैं, तो क्षेत्र में कितनी गन्ने की उपलब्धता होती है इससे उनको अनुमान मिल जाता है। दूसरा चीज है गन्ने की पर्चियों का निर्धारण और पर्चियों को जारी करना यानी कि निर्गत करने की योजना वो आसानी से बना सकते हैं, जिससे मिल संचालन और उत्पादन योजना बेहतर तरीके से बनाई जा सकती है।
18: जी बहुत ही बढ़िया। श्रोताओं आप सुन रहे हैं प्रोग्राम खेती किसानी और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर विनय जी मौजूद हैं स्टूडियो में और आज हम बहुत सारी चर्चा कर रहे हैं गन्ने के ऊपर, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आगामी गन्ना पेराई सत्र 2026-27 हेतु प्रत्येक जनपद गन्ना सर्वेक्षण 1 मई से 30 जून तक चल रहा है और इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब तमाम जानकारियां आप दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और सवाल, गन्ना सर्वेक्षण में सामान्य गलतियां कौन कौन सी होती हैं, इस पर अगर हम एक नज़र डालें तो।
19: जी बिल्कुल, देखिए सावधानी ही हमारी जो है जागरूकता की ओर अग्रसर करती है।
18: बिल्कुल सही कहा।
19: देखिए अगर आप सावधानी से काम करेंगे तो गलतियों की संभावना नहीं रहेगी।
18: नहीं रहेगी
19: जी। इसमें अगर फिर भी अगर सामान्य गलतियां कौन कौन सी अक्सर किसान कर देते हैं तो उनका हम जिक्र करेंगे। जैसे पहला गलत क्षेत्रफल दर्ज हो जाना।
18: जी जी।
19: दूसरा है हमारा गलत किस्म दर्ज हो जाना या गलत किस्म उन्होंने उसमें दर्ज कर लिया है।
18: जी जी।
19: तीसरा हमारा है फसल छूट जाना, जैसे फसल का मतलब यहाँ पे है हमारा कि जैसे कोई फसल लगी हुई है और उन्होंने जो है उसको छोड़ दिया है तो वो प्लाट छूट जाता है, तो प्लाट आप ऐड करवा सकते हैं। चौथा पॉइंट हमारा क्या कह सकते हैं कि फसल प्रकार, जैसे कि कोई किसान है उसके यहाँ पेड़ी है तो पेड़ी की जगह पे पौधा हो गया है, या पौधा है पौधे में भी जो है कैटेगरीज होती हैं, एक शरदकालीन होता है जिसको ऑटम प्लांटिंग कहते हैं और एक वसंतकालीन पौधा होता है जिसको हम लोग स्प्रिंग प्लांटिंग कहते हैं।
18: जी।
19: तो जैसे पौधा है किसान ने बोया हुआ है शरदकालीन, जिसकी पर्चियां जो है अमूनता चीनी मिल पहले जो है निर्गत करती है, लेकिन अगर धोखे से वो वसंतकालीन हो जाएगा तो किसानों को वो पर्ची विलंब से मिलेगी, तो इससे किसानों को दिक्कत हो सकती है और उनका जो है प्लॉट देरी से उसकी सप्लाई हो सकती है। नेक्स्ट हमारा क्या गलती होती है, जैसे किसान द्वारा जैसे सही जानकारी नहीं देना, जैसे जो भी उनसे पूछा जाता है तो वो अगर सही और सटीक जानकारी नहीं देंगे तो उसमें भी जो है गलतियां हो सकती हैं। और अगला हमारा जो है सामान्यतः गलती कौन सी करते हैं, जैसे रिकॉर्ड की जांच नहीं करना, जैसे
18: जी,
19: उनको स्लिप मिलता है, उन्होंने सर्वे करवा दिया स्लिप लेकर के अपने घर पे रख लिया।
18: हाँ जी।
19: वो गलत है, आप स्लिप लीजिए उसको आप पढ़िए, आप नहीं अगर पढ़ पा रहे हैं तो आपका घर में जो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो आप उसके माध्यम से अपने रिकॉर्ड की जो है जांच अवश्य करें, ताकि आपका कोई प्लॉट तो नहीं छूटा, प्लॉट छूटा तो किसी उस पर्टिकुलर प्लॉट का कोई हमारा जो है क्षेत्रफल कम या ज्यादा तो नहीं हुआ, या गन्ने की प्रजाति गलत तो नहीं हुई, या गन्ने की किस्म पेड़ी अथवा पौधा या पौधे से पेड़ी ये तो नहीं हो गया, तो इत्यादि तरीके की ये गलतियां मुमता होती हैं। इनको विशेषतः किसानों को ध्यान में रख करके अपना जो है ये सर्वेक्षण कार्य पूरा कराना चाहिए।
18: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आज हमारा विषय था गन्ना सर्वेक्षण का महत्व एवं किसानों की भूमिका और इसी पर हम चर्चा कर रहे थे डॉक्टर विनय कुमार साहब से, और बहुत अच्छा लगा सर आपने तमाम सवालों के जवाब दिए, और मुझे पूरी उम्मीद है पूरा विश्वास है जो भी किसान भाई हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं या जो भी लोग सुन रहे हैं उनको तमाम जानकारियां जो आपके द्वारा दी गई हैं वो उनको जरूर काम में आएंगी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है आरजे आनंद और एफएम मुरादाबाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 MHz पे, प्रोग्राम है खेती किसानी। डॉक्टर साहब तमाम चर्चाएं हमने कर ली आपके साथ मिलकर गन्ने के ऊपर, अब मैं आपसे एक संदेश लेना चाहूंगा जो हमारे तमाम श्रोता साथी किसान भाई आपको सुन रहे हैं उनके लिए आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे जाते जाते इस प्रोग्राम में।
19: जी बिल्कुल, देखिए आपने जैसे ही शुरुआत में आपने जिक्र किया था गन्ना सर्वेक्षण के ऊपर,
18: जी जी,
19: तो अपने जो है उत्तर प्रदेश राज्य में प्रत्येक जनपद में जो कि हर बार हर साल होता है, ऐसे ही इस साल भी जो हमारा आगामी गन्ना पेराई सत्र है यानी कि जो आगे आने वाला पेराई सत्र है 2026-27, इसके लिए गन्ने का सर्वेक्षण का कार्य अभी से प्रारंभ हो गया है जो कि 1 मई से 30 जून तक होना सुनिश्चित हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। लेकिन इसमें क्या है कि जैसे 1 मई से 30 जून तक होता है, इसमें अभी क्या है टेम्परेचर ज्यादा है, धूप तेज है, तो अमूनता क्या है कि कृषि विभाग और ये चीनी मिल दोनों के संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम हो रहा है, और ये धूप की वजह से ये प्रातःकाल जो है अतिशीघ्र कह सकते हैं कि जल्दी सुबह इसको जो है किया जाता है ताकि धूप से बचा जा सके, और बचना भी जरूरी है। तो देखिए ये कार्यक्रम हमारा 1 मई से 30 जून 2026 तक चलेगा
18: जी,
19: प्रत्येक समिति में यह कार्य चल रहा है, यानी कि प्रत्येक जिले में समितियां होती हैं, गन्ना समितियां, किसान भाई सभी लोग जानते होंगे, तो प्रत्येक समिति में यह कार्य चल रहा है और प्रत्येक समिति में गन्ना पर्यवेक्षक गण लगे हुए हैं, इन काम को बहुत ही जो है लगन से कर रहे हैं इतनी धूप और इसकी वजह से। लेकिन फिर भी क्या है कि जो है गलतियां वगैरह होती रहती हैं, तो इन सभी चीज़ों को हम लोगों को अच्छी तरीके से करना है। और दूसरा क्या है कि अपने क्षेत्रीय गन्ना पर्यवेक्षक से संपर्क बना के रखना है, जो भी किसान भाई हैं क्षेत्रीय गन्ना पर्यवेक्षक प्रत्येक गांव के होते हैं, उनसे संपर्क में रहना है। सभी किसान भाई गन्ना सर्वेक्षण को गंभीरता से लें। प्रत्येक गन्ना समिति में अनेक गांव होते हैं तथा प्रत्येक गांव में अनेकों किसान भी होते हैं, अतः जिस दिन आपके गांव में सर्वे का कार्य हो रहा हो तो आप सभी किसान भाई अपने प्लाट पर स्वयं उपस्थित हों, किसी और को ना भेज करके स्वयं उपस्थित हों, ताकि आप सही उनको जानकारी दें। सही सर्वेक्षण ही समय पर पर्ची, उचित भुगतान और किसान हितों की सुरक्षा का आधार होता है।
18: डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी श्रोता ये प्रोग्राम सुन रहे हैं उनको तमाम जानकारियाँ मिली हैं आपके द्वारा, और मैं आपका फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और तमाम चर्चा आपने करी, इतनी खूबसूरती के साथ आपने जानकारियाँ दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने इतना समय हमारे साथ साझा किया उसके लिए भी हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, और हम चाहेंगे कि आप ऐसे ही आगे भी हमारे किसान भाइयों का मार्गदर्शन करने के लिए स्टूडियो में आते रहें।
19: जी बिल्कुल बिल्कुल
18: जी। सर कुछ और जाते जाते जो आपको लगता है आप कहना चाह रहे हैं हमारे किसान भाइयों से?
19: देखिए हम ये कहना चाहेंगे कि सही गन्ना सर्वेक्षण न केवल किसान की आय को सुरक्षित करता है
18: जी, बिल्कुल,
19: बल्कि चीनी उद्योग एवं कृषि व्यवस्था को भी मजबूत बनाता है।
18: हाँ जी हाँ जी।
19: इसलिए सभी किसान भाई सर्वेक्षण कार्य को पूर्ण सहयोग करें एवं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें, ताकि आपकी पर्चियों की कैलेंडरिंग सही से हो सके और आपकी आपूर्ति सुचारू रूप से चल सके। आपकी आपूर्ति ही आपकी आय का आधार होती है।
18: सर आपने ये जो लास्ट में बात बताई ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण थी।
19: जी जी बिल्कुल
18: जी,
19: ये जो है क्योंकि आपकी जो भी आपूर्ति रहेगी यही आपकी आय का आधार है। आपकी पर्चियां, आपका खेत, आपका गन्ना कितना भी हो, अगर समय पर पर्ची आपको नहीं मिलेगी तो आपकी आपूर्ति बाधित होगी, क्योंकि आपूर्ति अगर आपकी बाधित हो जाएगी तो आपको भुगतान भी बाधित ही मिलेगा।
18: बहुत बहुत धन्यवाद सर। और किसान भाइयों थैंक यू सो मच, आपने भी इसको बहुत ध्यान से सुना है, मुझे पता है आपको भी बहुत जानकारियां मिली होंगी, तो ऐसी जानकारियों से भरे प्रोग्राम्स आपके लिए आते रहेंगे। आप बस ऐसे ही सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़, जहां बातें वही होती हैं जो आपका दिल चाहता है। डॉक्टर साहब आपको कैसा लगा हमारे ऑफिस में आके हमारे साथ ये संवाद करके, बातचीत करके, वार्ता करके?
19: जी बिल्कुल, देखिए आप लोगों ने हमें यहां पे बुलाया
18: जी,
19: मैं डॉक्टर विनय कुमार सिंह अपनी तरफ से, अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से और आपके स्टूडियो की भी तरफ से समस्त श्रोतागणों का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों से जुड़ने का एक अवसर हमको मिला
18: जी।
19: और इस अवसर को उपलब्ध कराने के लिए आपका भी तहे दिल से धन्यवाद, जो कि आपने यहां पे अवसर के लिए मुझे आमंत्रित किया है।
18: सर बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लगा आपको रेडियो में आके, पहली बार आए?
19: जी नहीं, मैं जो है AIR
18: आकाशवाणी
19: में
18: जाते रहते हूँ
19: जी, आकाशवाणी कोटा में मैंने एक दो बार मैंने
18: प्रोग्राम्स किए
19: जी, प्रोग्राम किए हैं खेती किसानी से संबंधित।
18: हाँ
19: आपके स्टूडियो में मैं पहली बार
18: मुरादाबाद में पहली
19: जी
18: बार।
19: जी
18: अच्छा, तो आप मुरादाबाद से हैं सर?
19: जी नहीं जी, मैं रहने वाला हूँ डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी,
18: लखीमपुर
19: जी उत्तर प्रदेश से ही।
18: ओके,
19: बट अभी मैं श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी में सहायक प्राध्यापक यानी असिस्टेंट प्रोफेसर पद पे कृषि विभाग में अभी जो कार्यरत हूँ।
18: क्या बात है सर, आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा सर, और थोड़ा सा आपके बारे में जान लिया मैंने, क्योंकि वो जब हम बातचीत करते हैं तो संवाद के दौरान हमारी लैंग्वेज, हमारी भाषा जो है ना वो झलकती है।
19: बिल्कुल,
18: तो आपकी लैंग्वेज में वो लग रहा था मुझे कि आप थोड़ा सा उस साइड से ही बिलोंग करते हैं शायद।
19: जी, जी,
18: तो
19: जी,
18: सर आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया, और हम चाहेंगे आप दोबारा भी जरूर आए।
19: बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप हमें अवसर देंगे जरूर
18: सर। अरे जरूर सर, डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन। और श्रोताओं आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप सुनते रहिए ऐसे ही आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। जल्दी मिलेंगे एक नए एपिसोड में कुछ और नए खास मेहमानों के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।

0: रोहन जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: नमस्कार श्रोताओं, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी को गुड आफ्टरनून, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी खुशी और मैं हाजिर हूं आप सभी का पसंदीदा शो लेकर। हेलो फरमाइश, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं कि आपका दिन मुस्कुराहटों से भरा होगा और इस ब्यूटीफुल शो में मैं आपके साथ कनेक्ट हो चुकी हूँ। आपकी दोपहर को मैं बनाऊंगी और ज़्यादा खूबसूरत। वो कैसे? जब आप अपने पसंद के गाने सुनेंगे ना यहाँ पर, तो आपकी जो दोपहर है ना, ये खूबसूरत सी, सुनहरी सी। हाँ माना थोड़ी गर्मी भी है, लेकिन कोई बात नहीं, जब हम अपने फेवरेट गाने सुनते हैं ना तो सुकून दिए जाते हैं, और जब हमें सुकून मिलता है तो गर्मी से भी राहत मिल जाती है। और अभी हम बात करेंगे अपने फर्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। लेकिन मैं दोस्तों आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप इस समय इस शो को सुन रहे हैं तो प्लीज़ आप भी मुझे कॉल लगा सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9837896896। और अभी बातचीत करते हैं अपने फर्स्ट कॉलर से, जानेंगे उनकी क्या फरमाइश है आज कार्यक्रम में। हेलो फरमाइश।
1: जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। नमस्कार खुशी।
0: आपको भी नमस्कार। मुझे तो लग रहा था कि मैं पूरा गाना सुनूं, अब बीच में ही आपने स्टॉप कर दिया। क्या नाम है आपका?
1: मैं पूरा सुनवा देंगे तो टाइम ज्यादा हो जाएगा, 5 मिनट चला जाएगा।
0: ये तो है, 5 मिनट तो लगेंगी। सर अपना नाम बताइएगा।
1: यूपी बनारस से मौसी मंसारी बात कर रहा हूँ।
0: मौसी मंसारी जी, कैसे हैं आप बताइए?
1: मस्त बिंदास। आप कैसे हैं?
0: हाँ जी मैं भी ठीक हूँ। आप बताइएगा बनारस का मौसम कैसा है?
1: आज तो कुछ मौसम में चेंजिंग है, थोड़ा सी धूप छांव लगा हुआ है, मगर उतनी गर्मी नहीं है, हवाएं चल रही हैं।
0: ओके।
1: तो अच्छा मौसम है आज। कल तो बहुत उमस था और परसों भी उमस था, तो रात से मौसम थोड़ा चेंज है। आपके यहाँ कैसा मौसम है?
0: हाँ जी मेरे यहाँ पर भी गर्मी है, एंड उतनी नहीं है जितनी अभी बीच में थी। लाइक अभी जो टेम्परेचर है हमारे यहाँ का 36 डिग्री सेल्सियस है।
1: तो ऐसे मौसम में थोड़ा सी आप अपने सेहत का ध्यान रखिए, क्योंकि आपको जुकाम वगैरह हमको लग रहा है थोड़ा सा हो गया है।
0: हाँ जी थोड़ा नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा हो गया है, लाइक 1 वीक से ज्यादा हो गया है। अभी तक तो ठीक हुआ नहीं है, लेकिन पहले से राहत है। लाइक पहले बहुत ज्यादा दर्द था गले में, अभी ठीक है।
1: तो गर्म पानी का उपयोग थोड़ा सी करे और काली चाय पिए, आधे अदरक वाला।
0: अच्छा अदरक को और क्या बोलते हैं उधर? उधर आपकी साइड क्या बोलते हैं अदरक को? आदि
1: आदि आदि बोलते हैं।
0: आदि बोलते हैं। ओके।
1: हमारे यहाँ आदि बोलते हैं, आप लोग के अदरक बोलते हैं? अदरक भी बोलते हैं यहाँ पे।
0: हाँ। आदि उसको प्यार से बोलते हैं, निकनेम होगा अदरक का।
1: आदि प्यार से बोलते हैं।
0: हाँ जी।
1: और घर पे सभी लोग ठीक है?
0: हाँ जी ऑल गुड, सब बढ़िया है। आप बताइएगा आज क्या फरमाइश है आपकी?
1: एक गाना सुनना चाहता हूँ।
0: बताइएगा।
1: अपने थोड़ी सी जैसा भी मेरा आवाज है उसमें मैं गुनगुनाना चाहता हूँ।
0: श्योर बिल्कुल गुनगुनाइएगा।
1: गोरे रंग पे ना इतना घुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा, तू समा है मैं हूँ परवाना, तू समा है मैं हूँ परवाना, इससे पहले तू जल जाएगा।
0: अरे वाह, बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक है। और ये गाना आप किन के लिए सुनना चाहते हैं सर?
1: सबसे पहले अपने खास गर्लफ्रेंड के साथ आलिया खान शाहजहांपुर से
0: जी,
1: और आपके साथ खुशी जी, और जितने आपके केंद्र के सुनने वाले जैसे मुरादाबाद होता है सभी को साथ एंजॉय करना चाहता हूँ।
0: ठीक है सर, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। सुनवाते हैं प्यारा सा ट्रैक आपको। मोस्ट वेलकम। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत, एंड लौट कर आते हैं हम। तब तक आप मुझे कॉल लगाइएगा, मोबाइल नंबर है 9837896896। और ये खूबसूरत सा गीत आप सुनने वाले हैं किशोर कुमार जी साथ में लता मंगेशकर जी की खूबसूरत सी आवाज में, प्यारा सा गाना। मैं लौट कर आती हूँ, तब तक आप कहीं मचाइए, मुस्कुराइए और इस ब्यूटीफुल ट्रैक को एंजॉय कीजिएगा।

0: हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक सुना, गोरे रंग पर इतना ना गुमान कर, गोरा रंग दो दिन में ढल जाएगा, फ्रॉम द मूवी रोटी। 1974 में ये फिल्म आई थी और राजेश खन्ना साथ में मुमताज जी के ऊपर ये फिल्माया गया ट्रैक था, बहुत ही खूबसूरत सा। और इस गीत के म्यूजिक डायरेक्टर थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, लिरिक्स थे आनंद बख्शी जी के। और साथियों, अभी इतनी सारी जानकारियां मैंने आपको दी हैं एंड मेरे पास में यहाँ पर अखिल सर भी आकर बैठे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, क्योंकि ये बहुत देर से मुझे टुक टुक निहार रहे हैं, कह रहे हैं खुशी जी मुझे भी बोलने का मौका दीजिए। मैंने कहा बिल्कुल सर, आप हैं, हम आपको पूरा मौका देते हैं और आप तो इस माइक की जान शान मान सभी है। क्या बोलते हैं, जान शान बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
1: कैसी हैं आप खुशी जी?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ सर, आप बताइएगा कैसे हैं?
1: मैं बढ़िया हूँ। और क्या हो रहा है आज?
0: आज हमारा स्पेशल, मैं आपको बताऊं तो कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि आज सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं है और मुझे बहुत जोर की भूख लगी है।
1: आज फास्ट है?
0: आज व्रत नहीं है, लेकिन हाँ व्रत ही हो गया है, क्योंकि सुबह से जब कुछ खाया नहीं है तो फास्ट ही हो गया है।
1: चलिए चलिए, कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी जो है आपको खाने को मिलेगा, बहुत जल्द और स्वादिष्ट मिलेगा, जो भी मिलेगा ना अच्छा ही लगेगा।
0: हाँ, देर से ही सही, लेकिन टेस्टी व्यंजन आएगा सर, ये कहना चाहते हैं। हाँ
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
0: तो हमारे साथ यहाँ पर एक कॉलर जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं, क्या उनकी फरमाइश है। हेलो फरमाइश।
2: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी, कैसे हैं आप?
2: जी सर्वप्रथम तो आवाज के दुनिया के बुलंद सितारे उद्घोषिका गहन जी को ग्राम दिलवानी स्मृति नगर जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से सुरेश चंद्र साहू का सादर अभिवादन, सप्रेम नमस्कार।
0: आपको भी नमस्कार सर, कैसे हैं आप बताइएगा?
2: जी मैं बहुत बढ़िया हूँ और स्वस्थ हूँ, एकदम मस्त हूँ, कार्य में व्यस्त हूँ बहन जी। और आप कैसे हैं?
0: जी हम भी बहुत अच्छे हैं, आप सबकी ब्लेसिंग से। आप बताइएगा आपके शहर का मौसम कैसा है सर इस समय?
2: हमारे शहर का मौसम तो अभी पारा जो है 42 डिग्री सेल्सियस है बहन जी।
0: ओके 42।
2: इतनी भीषण गर्मी और इतनी तपिश है कि हम दोपहर में निकलना बिल्कुल बंद ही कर दिए।
0: नहीं बहुत अच्छा किया आपने सर कि आप दोपहर के समय नहीं निकलते हैं, शाम में ही घर से बाहर जाइएगा। आप बताइए कार्यक्रम में आज आपने कॉल किया है, लॉन्ग टाइम के बाद, क्या फरमाइश है आपकी?
2: सर्वप्रथम तो मैं यह जानना चाहूंगा कि आपकी आवाज जो है इतनी बहुत मधुर मनमोहक मीठी और बहुत ही प्यारी आवाज है, आप कौन बोल रहे हैं?
0: मैं खुशी बात कर रही हूँ सर।
2: जी खुशी जी, तो आपके लिए दो लाइन की पंक्ति है, इजाजत हो तो बोलो।
0: बिल्कुल बिल्कुल बोलिएगा सर।
2: जिंदगी एक सफर है, जिंदगी एक सफर है, सफर सभी की चलती है। जिंदगी एक कारवा है, कारवा सभी की चलती है
0: जी।
2: जिंदगी एक झरोखा है, झरोखा नदियों की तरह कल कल कल कल करके बहती रहे। और रेडियो एक मुरादाबाद से बहन खुशी जी की आवाज स्वर महरी में स्वर धारा में हमेशा बहती रहे। और एक है मुरादाबाद से रेडियो एक दिन का सफर का यह कारवा हमेशा हमेशा चलती रहे, हमेशा हमेशा चलती रहे।
0: थैंक यू सो मच सर, आपकी लाइनें बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही ब्यूटीफुल थी, बहुत बहुत शुक्रिया। बताइएगा क्या फरमाइश है आज आपकी?
2: और ऐसा है बहन जी, अभी फरमाइश तो ऐसी है कि कल अभी हमारे फिल्म जगत के सुविख्यात गायिका सुमन कल्याणपुर जी का निधन हो गया, तो उनको श्रद्धा के चंद दो फूल उसको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए फिल्म राजकुमार का गीत है बहन जी, तुमने पुकारा और हम चले आए।
0: बहुत ही खूबसूरत गीत है सर।
2: और गीत सुनने से पहले खुशी बहन जी आपके कुछ प्रशंसक श्रोताओं का नाम ले लूं?
0: हाँ जी हाँ जी बिल्कुल ले लीजिएगा सर।
2: जी तो हमारे नांदेड़ महाराष्ट्र से प्रभाकर जोंदले साहब जी रहे, हमारे विश्वविद्यालय सागर से हमारे चंद्रेश गौर साहब जी है, उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव जी है, हमीरपुर यूपी से रामपाल यादव जी है, और हमारे जॉन रितेश्वर भाई साहब जी है, हमारे ब्रिजेंद्र भाई विश्वकर्मा जी है, दीपक साध्य साहब है, संतोष राव जी है, सागर सोमनी से नारायण लाल साहू जी है बहन जी, और रेडियो आर्यन की उद्घोषिका बहन पूनम गौतम जी आपके कृपया।
0: ठीक है सर, सभी आपके साथियों के साथ सुनवाते हैं खूबसूरत सा गीत। कॉल करने के लिए धन्यवाद आपका। तो चलिए श्रोताओं, सुनते हैं खूबसूरत गीत और लौट कर आते हैं और करेंगे गुफ्तगू आपसे। तब तक आप हमें कॉल लगाओ, मोबाइल नंबर है 9837896896।

0: हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आपका स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और देखिए, आप सबने हमें पुकारा और हम चले आए। अखिल सर भी मेरे साथ में हैं। अखिल जी, क्या बात है, आज बड़ा मुस्कुरा रहे हैं आप।
1: नहीं, मुस्कुरा नहीं रहा हूँ, एक बात याद आ गई, एक चुटकुला हल्का सा याद आ गया।
0: हाँ हाँ, बिल्कुल सुनाइए, हमारे श्रोता भी थोड़ा सा मुस्कुरा लें जरा।
1: एक पति बोला
0: हाँ
1: अपनी वाइफ से, जानू मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लेके आऊंगा।
0: अच्छा,
1: तो पत्नी बोली पहले सब्जी लेकर आ जाओ, फिर नासा ज्वाइन कर देना।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो अभी ये चुटकुले और ये प्यारी सी मस्ती भरी बातें तो चलती रहेंगी साथियों कार्यक्रम में। अभी बात करते हैं अपनी कॉलर से, कौन जुड़े हैं हमारे साथ।
1: हेलो फरमाइश।
2: हेलो फरमाइश
1: सर, अपना नाम बताइए और कहाँ से बात कर रहे हैं बताइएगा।
2: मोहम्मद रिजवान बात कर रहा हूँ, जिला मुरादाबाद, कस्बा।
1: कैसे हैं रिजवान जी आप?
2: अच्छे हैं, खैरियत से हैं आप? सुनवाए
1: कैसी है गर्मी बाहर?
2: गर्मी बहुत है सर, बस गर्मी का आलम मत पूछो।
1: और बाकी सब क्या कहते हैं, सब खैरियत है? बताइए आपकी क्या फरमाइश पूरी की जाए आज।
2: फरमाइश है, बंजारन मूवी का गाना है, ये भेद बदलते हैं, भेद बदलते हैं, दिल बदलते नहीं।
1: किसे डेडिकेट करना चाहेंगे आप ये गाना?
2: अरे साथ में कुछ मिलने वाले हैं, दोस्त हैं।
1: बताइए बताइए, उनके भी नाम बताइए, दोस्तों के नाम बताइए अपने।
2: दोस्तों के नाम बताएं, मुस्लिम भाई हैं और कयूम भाई हैं, फारूक भाई हैं।
1: क्या बात है, चलिए आपके सभी दोस्तों को ये गाना डेडिकेट करते हैं और ये गाना सुनते हैं। धन्यवाद रिजवान जी।
0: तो चलिए एवरीवन, अखिल सर ने भी बात की रिजवान जी से और उनकी फरमाइश है देश बदलते हैं, भीष बदलते हैं, फ्रॉम द मूवी बंजारा से, जो 1991 में आई थी, ऋषि कपूर और साथ में श्रीदेवी जी के ऊपर ये फिल्माया गया ट्रैक है। अनुराधा पौडवाल जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज़ में ट्रैक है। तो अभी आते हैं लौटकर और उसके बाद हम आपसे फिर से गुफ्तगू करेंगे एवरीवन।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेकर आया है सुरक्षित मातृत्व और हाई रिस्क प्रेगनेंसी की बेहतरीन सुविधा। डॉक्टर सुदीप कौर स्त्री प्रसूति एवं बाचपन रोग विशेषज्ञ के साथ यहां मिलता है एडवांस लेबर रूम, NICU, ICU, हाई BP, शुगर, हार्ट, किडनी प्रॉब्लम वाली प्रेगनेंसी का सफल इलाज, साथ ही ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी की विशेषज्ञ सलाह, IUI से लेकर हर सुविधा और 24/7 ब्लड बैंक भी उपलब्ध है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: जी आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
2: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
3: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
2: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।
4: टायर लो सोना जीतो।
5: क्या?
4: जी हाँ,
6: चावला टायर
4: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
6: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड अपोजिट मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
7: ऑफर वैलिड टिल 10th June, TNC अप्लाई।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं 89.6 मेगाहर्ट्ज़ और मैं हूँ आपके साथ, आपकी खुशी लेकर आई हूँ आपके लिए आपका पसंदीदा शो, आपका फेवरेट शो हेलो फरमाइश। और दोस्तों, अब हम करने वाले हैं बहुत सारी मस्ती धमाल, क्योंकि मेरे साथ अखिल जी भी हैं। और जब अखिल सर आते हैं तो कुछ ना कुछ खुराफाती तो होती ही है, क्योंकि इनका जो माइंड है बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव है और हमें क्रिएटिव इंसानों की ही नीड है इस फील्ड में। तो बताइएगा, माइंड में क्या खुराफाती चल रही है आपके सर?
1: जी, कुछ कहना चाहूंगा पहले तो।
0: हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल कहिएगा।
1: मुस्कुराने की वजह मत ढूंढो,
0: वाह वाह,
1: वरना जिंदगी यूं ही गुजर जाएगी। कभी बेवजह भी मुस्कुरा कर देखो, आपके साथ जिंदगी भी मुस्कुराएगी।
0: बहुत खूब, बहुत ही प्यारी सी लाइनें आपने बोली हैं। अक्सर इंसान मुस्कुराने की वजह ढूंढता है, सोचता है कि मैं अगर मेरे पास ये चीज मिल जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा। किसी एग्जाम्पल, जैसे कोई गाड़ी है, अगर मेरे पास बुलेट है तो मुझे मेरी जो ड्रीम है वो मैं चाहती हूँ कि कार मिल जाए, वो भी फॉर्च्यूनर, तो मैं जब भी खुश हो पाऊंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है सर, जो हमारे पास चीज़ें हैं हमें उसी में खुश रहना चाहिए। बाकी और चीज़ों के लिए प्रयास करो, लेकिन जो रियल खुशी आपके पास है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए।
1: बिल्कुल सही बात कही आपने। हमारे साथ एक नए लिसनर जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं।
0: हाँ बिल्कुल,
1: हेलो फरमाइश।
2: हेलो फरमाइश
1: सर, अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं? मुरादाबाद से। रजा खान जी, कैसे हैं आप?
2: हम ठीक है सर, आप सुनाइए, आप कैसे हो?
1: सब बढ़िया है साहब, रजा खान जी सब बढ़िया। और क्या करते हैं आप?
2: हम खेती किसानी करते हैं और ऑटो चलाते हैं मुरादाबाद शहर में।
1: बहुत बढ़िया। तो बारिश से आपको राहत मिली नहीं मिली?
2: जी बारिश परसों तुम्हारे मुरादाबाद में हुई थी, हमारे यहाँ हुई।
1: अच्छा, हमारे मतलब शहर में हुई, आपकी तरफ नहीं हुई है?
2: हाँ जी, हम ज्यादा दूर गए हैं, दलपतपुर हमारे पास नहीं है, दलपतपुर गोविंदपुर चौराहा है।
1: अच्छा,
2: हल्की बूंदाबांदी हुई थी।
1: हल्की बूंदाबांदी में ही आपका मैटर निपट गया वहाँ?
2: जी जी।
1: चलिए, कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
2: करनपुर से बोल रहा हूँ, करनपुर चौराहा है, गांव है, मोहिंदपुर का दादी माँ आया हुआ हूँ।
1: अच्छा,
2: चावल खा रहे हैं।
1: बड़ा चावल खाया जा रहा है इस समय, बस खाने का नाम मत लीजिए, एकदम भूख लग जाती है। रीना मैम तो बेचारी आज लंच भी अपना स्किप करके बैठी हुई है, तो
0: रीना जी कहाँ है यहाँ पर?
1: खुशी जी तो अपना लंच भी स्किप करके बैठी हैं। देखो, भूख के चक्कर में नाम भी
0: चेंज हो गया।
2: तो
1: हाँ, खुशी मैम तो खुश रहती हैं, यही तो खासियत है खुशी मैम की। और बताइए, आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आज?
2: बोले तेरे बिना दिल लगता नहीं है वो मेरी जान, कुछ नाम बोल
1: रहे। हाँ हाँ, आपकी शादी हो गई है?
2: शादी हो गई सर जी।
1: हाँ, तो पहला नाम तो वही बोलिएगा।
2: किसका?
1: जिनसे शादी हुई है।
2: अच्छा जी, उनका नाम है परवीन जहां।
1: परवीन जहां जी। और बताइए, और किस किस को डेडिकेट करना चाहेंगे गाना?
2: हमारे दोस्त हैं मकसूद हुसैन है, मेरा जान अंसारी है, सफी अमन अंसारी है, नाजिम अली और मोहम्मद दानिश सिद्दीकी है, दोस्त हैं आप और हम।
1: ठीक है, सभी के लिए ये गाना डेडिकेट करते हैं रजा जी। धन्यवाद रजा जी। एक बार को तो रजा जी भी कंफ्यूज हो गए थे कि हमने किसका नाम पूछ लिया है।
0: हाँ, वो चुप हो गए थे कि किसका नाम। भैया, जीवन साथी का नाम तो सबसे पहले आता है। और चलिए, खूबसूरत सा गीत सुनते हैं, उसके बाद बातचीत करेंगे आपसे। एवरीवन, रेडियो बजाते रहिए
1: और गुनगुनाते रहिए।
0: हाँ जी,
3: मैं आ रहा हूँ।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हेलो एवरीवन, हाय, आपका स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अखिल सर, बताइएगा कैसा लगा आपको ये गाना?
1: गाना बहुत बढ़िया था एकदम। कहते हैं ना, पहले भी मैंने आपको बताया कि कुछ गाने ऐसे होते हैं जब आप आते हैं और गुनगुनाते हैं तो वो उसमें आप थोड़ा सा खो जाते हैं।
0: ये थोड़ा सा नहीं, पूरा ही खो गए थे सर सॉन्ग में, एंड मैंने इनको जगाया, हेलो अखिल सर कहाँ पर हैं आप?
1: खो तो मैं किसी और चीज में भी गया था।
0: ओ हो, चलिए।
1: अभी ने हमने अपने नए लिसनर्स को,
0: हाँ, अभी हमारे साथ कौन कनेक्ट हुए हैं उनसे बातचीत करते हैं। हेलो फरमाइश।
2: हेलो,
0: हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
2: अरे खुशी मैडम जी, नमस्कार, मैं जबलपुर से आपका श्रोता अशोक सिंह बात कर रहा।
0: जी बताइएगा अशोक जी, आपको भी नमस्कार, कैसे हैं आप?
2: मैं ठीक हूँ, आप कैसे? आपके परिवार और अखिल जी, आप दोनों अच्छा कार्यक्रम पेश करते हो, अच्छा चार चांद लग जाते हैं।
0: थैंक यू सो मच। अखिल सर क्या कहना चाहेंगे आप?
1: मैं तो यही कहूँगा कि थैंक यू वेरी मच अशोक जी, आप जबलपुर से हमें सुनते हैं और हमें बहुत ही अच्छा लगता है कि हमें इतनी दूर से भी लोग सुनते हैं और हमें कॉल करते हैं, अपनी फरमाइश भी बताते हैं। मतलब हमारे लिए भी बहुत गौरव की और अच्छी
0: गर्व की बात है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। तो बताइएगा, मैं आपसे जानना चाहूंगी अशोक जी, मौसम कैसा है आपके यहाँ का, जबलपुर का?
2: मौसम अभी थोड़ा ठंडा हुआ, तापमान नीचे गिरा, मगर गर्मी तो है, पानी नहीं गिरा अभी तक।
0: अच्छा, बारिश नहीं हुई अभी वहाँ पर?
2: चल रहा है।
0: ओके, तो आप बताइएगा आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप?
2: नहीं दुर्गा मूवी का लता जी की आवाज में तुम याद न आया करो,
0: याद आने से पहले आ जाया करो,
2: पहले आ जाया करो।
1: मूवी का नाम बहुत अच्छा है अशोक जी।
0: थैंक यू अशोक जी, आपने कॉल किया, धन्यवाद आपका। सुनवाते हैं खूबसूरत से गीत
2: सुनने वाले सब मुरादाबाद को सुनवा दीजिए।
0: हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, सभी के साथ सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत आपको। और इन्होंने मूवी का नाम क्या बताया सर?
1: जीने नहीं दूंगा।
0: हाँ एक तो ये गर्मी हमें जीने नहीं दे रही है, इतनी गर्मी है हद से ज्यादा, सुबह 11 बजे के बाद बाहर निकलने का दिल ही नहीं करता है। अखिल सर इतनी गर्मी लगती है, लाइक शाम में 5 बजे के बाद वेदर ठीक होता है।
1: बिल्कुल सही, हाँ, मतलब शाम के समय जब 4-5 बजे के बाद ही थोड़ा सा मौसम जो है हल्का सा हवा
0: बाहर जाने लायक रहता है, वरना बहुत गर्मी होती है, 11 से 4 तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है। और दोस्तों मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप भी घर से बाहर निकलते हैं तो प्लीज छाता लेकर एंड पानी की बॉटल लेकर हमेशा साथ में चलें, क्योंकि आप बीच बीच में पानी पीते रहेंगे तो आपकी जो हेल्थ है वो सही रहेगी और आपको वीकनेस भी फील नहीं होगी।
1: इसी चक्कर में गर्मी से राहत पाने के लिए भी ना लोग शाम को, मैंने देखा अक्सर पार्क में और कोई मतलब आसपास का कोई आउटिंग स्पॉट्स होते हैं ना,
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: की तरफ रुक कर लेते हैं,
0: हाँ टहलने भी जाते हैं। तो चलिए बहुत ही प्यारा सा ट्रैक लौट कर आते हैं, तब तक आप कहीं मचाइए। और खुशी आपसे कहते हैं कि आप भी हमें फोन मिलाइएगा, मोबाइल नंबर बताइएगा अखिल सर।
1: 9837896896।
0: हाँ जी, ये मोबाइल नंबर है जिससे आप डायल करेंगे और सीधा हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगे।

0: उदास क्यों हो रहे थे? कितने सारे लोग इंतजार कर रहे हैं तेरा, वो भी आ जाएंगे।
1: आए
0: बोलना यार तू भी।
2: अरे गा यार, जय तुझे, क्या गा यार, गा ना। अरे गा।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: टायर लो सोना जीतो।
3: क्या?
2: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
4: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड अपोजिट मधुबनी पार्क मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
5: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई।
0: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून, बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद। 7983153386।
6: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
7: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
8: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

0: अरे वाह, बिजी मैन है ये, लेकिन फिर भी समय निकाल ही लेते हैं शो के लिए। इतना प्यार हो गया इनको एफएम मुरादाबाद से कि रह नहीं पाते हैं, चले आते हैं एवरी डे। और अच्छा लगता है जब अखिल सर शो में आते हैं। बाकी अखिल सर, ये मुझे आप बताइएगा, इस गर्मी में जैसे आज आपका फास्ट है, तो आपने क्या क्या लिया है आज? आज पांचवा मंगलवार है ना, बड़ा पांचवा मंगलवार है, एंड बताएगा आपने क्या लिया है सुबह
1: फास्ट
0: से?
1: में तो अभी ऐसा कुछ नहीं, मतलब सिर्फ एक लस्सी से काम चल रहा है।
0: अच्छा, लस्सी से। लेकिन एनर्जी देखिए इनकी, लग नहीं रहा है कि आज, मतलब इन्होंने कुछ खाया नहीं है, सुबह लस्सी पी है और चेहरे पर इतना नूर है, ये सब भाभी जी का असर है।
1: मुझे पता था आप घूम फिर के वहीं आओगे।
0: अच्छा, ओके, चलिए, समझदार है हमारे खिल सर। अभी बात करते हैं अपनी कॉलर से और जानेंगे उनकी क्या फरमाइश है यहाँ पर। हेलो फरमाइश।
2: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, नमस्कार, क्या नाम है आपका?
2: जी बहना जी, प्रणाम, नमस्कार।
0: आपको भी नमस्कार सर, नाम बताइए अपना।
2: जी मैं राजू यादव, ग्राम प्रेंका, श्रीरामपुर डेरा, सरीला राठ, मुस्करा, हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश।
0: जी जी, बताइएगा कैसे हैं आप सब?
2: हम तो बहना जी बढ़िया हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, स्वस्थ हैं, बिंदास हैं, और इस समय बारिश हो रही है।
0: अच्छा, इस समय बारिश हो रही है आपके यहाँ पर?
2: जी बहना जी, मैं बगीचे में भीग रहा हूँ।
0: आप भीग क्यों रहे हैं?
2: मजा ले रहा हूँ बरसात का।
0: अच्छा, बारिश का आनंद ले रहे हैं आप?
1: राजू जी,
2: जी बहना जी,
1: राजू जी, आपके कहीं फेवरेट एक्टर राजपाल यादव तो नहीं है?
0: अखिल सर कह रहे हैं कि आपके फेवरेट एक्टर राजपाल यादव तो नहीं है? बताइएगा सर, क्या सुनना चाहते हैं आप इस प्यारी सी बारिश में?
2: आएगी बरसात, कहाँ जाएंगे,
1: कहीं उड़ मत जाइएगा,
2: डूब जाएंगे।
0: नहीं नहीं नहीं, डूबना नहीं है आपको।
1: नहीं डूबना है, ना ही उड़ना है, बस हमारा गाना सुनना है।
0: ठीक है सर, कॉल करने के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखो। लेकिन इस बारिश में नहीं भीगना चाहिए, क्योंकि ये बारिश, प्रणाम आपको भी, इस बारिश में नहीं भीगना चाहिए। मेरी
1: पेरेंट्स,
0: क्योंकि अखिल सर ये जो बारिश होती है ना, इसमें ना ये कच्चा पक्का मौसम होता है, कहते हैं कि इस मौसम में अगर भीगते हैं ना, तो बीमारी होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, बीमार होने के, समझ रहे हैं आप?
1: अच्छा, ऐसा भी है?
0: हाँ, तो लापरवाही ना करें, बारिश अगर हो रही है तो बारिश का आनंद लो, लेकिन घर में बैठ के।
1: मैं तो कहूँगा बारिश हो रही है तो भीग जाओ।
0: नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं भीगूंगी। देखिए, मैं बिना भीगी मेरी तबीयत खराब है, और मैं भीग जाऊंगी तो क्या होगा, सोचिए आप।
1: कोई बात नहीं, तबीयत ठीक भी हो जाएगी।
0: अच्छा, तो चलिए आज आप भीग के दिखाइए, मैं बारिश करवाती हूँ फिर। ओके, चलो दोस्तों, अभी गाना सुनते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं, फिर आपसे गुफ्तगू करेंगे।

0: हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आपके अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 और शो चल रहा है हेलो फरमाइश। और अभी आपने टाइटल ट्रैक सुना फ्रॉम द मूवी
1: तेरे नाम। ये गाना जो था ये हमने अपने सभी श्रोताओं को डेडिकेट किया है खुशी।
0: हाँ जी, बहुत ही प्यारा सा ट्रैक, उदित नारायण जी की आवाज। जब मैं सुनती हूँ ना तो पता नहीं क्यों एक अलग ही सुकून मिलता है मुझे, और उनके सारे गाने मुझे बहुत पसंद है।
1: ये बात तो आपने बहुत बढ़िया कही
0: जी।
1: साथ में सुनते हैं अपने नए लिसनर को।
0: हाँ हाँ हाँ बिल्कुल।
1: हेलो फरमाइश।
2: हेलो फरमाइश,
1: कैसे हैं सर आप?
2: बहुत अच्छे हैं सर। कहाँ चले गए थे, दो गीत बजा दिए मुझे होल्ड पर रख के।
1: सर आप अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं ये भी बताइए हमारे श्रोताओं को।
2: मकसूद हुसैन बात कर रहा हूँ, बीबीपुर मुरादाबाद से।
1: कैसा हो रहा है आपकी तरफ मौसम?
2: अरे नामी हवा चल रही है, बढ़िया ठंडी ठंडी।
1: और क्या काम करते हैं आप?
2: मैं किसान हूँ, खेती बाड़ी का काम होता।
1: सब सही है, घर में सब कुशल मंगल है सर?
2: हाँ सब बढ़िया है, बस ऐसा मत क्या करो श्रोताओं के साथ में, मतलब ये है कि ये अगला गीत जो है बजाया, इतना लंबा वेट मत कराया करो भाई।
0: क्यों सर, हम करवाएंगे वेट, हम करवाएंगे, क्योंकि देखिए इतने प्यारे श्रोता हैं हमारे। अब आप हमें कॉल करते हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है ना, थोड़ी सी खातिरदारी करें आपकी।
2: नमस्ते खुशी जी।
0: आपको भी नमस्कार सर।
2: और खैरियत से?
0: जी जी बिल्कुल, आपकी दुआएं हैं, हम बहुत अच्छे हैं, आप फरमाइएगा जनाब।
2: थोड़ा सा वेट में ना, ज्यादा लंबा वेट में सही में लगता, मैं एक गीत में ही वेट अच्छा लगता।
0: अच्छा, कितना वेट हो गया आपका?
2: वेट का वो दूसरा गीत और पीने कर दिया तो ऐसा लगा जैसे कहीं बिजी हो गए कहीं काम से, पता नहीं।
0: हाँ सर, थोड़ा बिजी थी इसीलिए आपका कॉल अटेंड नहीं कर पाए। बाकी आप बताएगा क्या फरमाइश है आपकी।
2: देखिए एक गीत है पड़ोसन फिल्म से, किशोर जी और मन्ना डे जी की आवाज में, एक चतुर्नाग बड़ी होशियार करके सिंगार फसल जाती है, गीत प्ले कर देना मैम।
1: ठीक है ठीक, आप अभी तक छत पे ही खड़े हुए हैं?
2: मैं खड़ा हुआ तो नहीं हूँ, चार पाई हैं यहाँ पर, जब आपको सोने की अलग है या छत पर नीचे की अलग है।
1: क्या बात है, मतलब चार पाइयों को आपने बांट रखा है कि सोने वाली चार पाई ये है और बैठने वाली चार पाई ये है।
2: नहीं सब सोने की बैठने की है, सोने चांदी की कोई ना है, मतलब चार ऊपर है छत पे और बाकी नीचे है, ये कह रहा हूँ।
1: अब तो ये वहीं पे आके हमें पता चलेगा सर कि सोने की है या चांदी की है। मगर बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपके गाना जरूर प्ले करते हैं।
2: ठीक है, धन्यवाद
1: धन्यवाद।

0: गोला चतुरा
1: एक पैर है ना, या गोला बोलना या चतुर बोलना। गा
2: एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, अपने ही जाल में फंसत जात, हम मरत

0: टायर लो सोना जीतो।
1: क्या?
0: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए, विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
2: अपोजिट
0: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
2: ऑफर वैलिड टिल 10th June, TNC अप्लाई।
3: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी खुशी और श्रोताओं श्रीमती ममता मालवीय, अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व मुरादाबाद जनपद द्वारा हीट वेव यानी लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसका अर्थ है कि तापमान सामान्य से बढ़कर लगभग 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच चुका है और गर्मी लगातार तेज होती जा रही है। ऐसे में आप सभी से अनुरोध है कि सतर्क रहें, काम के बीच संतुलन बनाकर रखें, धूप में निकलने से बचें, पर्याप्त पानी पीते रहें और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें।
4: मैं ममता मालवीय, अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व मुरादाबाद, आप सभी जनपद वासियों को सूचित करना चाहती हूं कि राज्य स्तर से हीट वेव लू संबंधी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसका मतलब जनपद का तापमान सामान्य तापमान 40 के आसपास पहुंच गया है। गर्मी अधिक हो रही है, लू की संभावना है, अतः सभी सजग रहें। जब तक बहुत आवश्यक न हो 11 बजे से 4 बजे तक सुरक्षित जगह घर या छायादार स्थान पर रहें। मजदूरों को भी उक्त अवधि में काम एवं सुरक्षा के बीच संतुलन का नियम लागू किया जाए। साथ ही अभिभावक

0: अभिभावकों से अपील है कि बच्चों और गर्भवती महिलाओं को प्रत्येक 2 घंटे के अंतराल पर पानी, छाछ, नींबू पानी या लस्सी इत्यादि पेय पदार्थ के सेवन की सलाह दी जाती है। यदि जी मचलाना, दस्त, उल्टी, तेज बुखार, चक्कर इत्यादि की दिक्कत हो तो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मैं ममता मालवीय, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, समस्त अधिकारीगण से आग्रह करती हूं कि हीट वेव, लू को लेकर सतर्क रहें तथा जिला स्तरीय निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं। जिला प्रशासन आपके स्वास्थ्य के प्रति सजग है, आप भी सजग रहें। धन्यवाद।
1: याद रखिए, सावधानी ही सुरक्षा है, क्योंकि इस भीषण गर्मी में आपकी सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है। तो साथियों, जुड़े रहिए हमारे साथ, जहां मिलती हैं जानकारियां भी, जागरूकता भी और ढेर सारा अपनापन भी।
2: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
3: अरे बेटा, बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
2: पर पापा।
3: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
4: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती। सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद। Thank you.

0: हेलो हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है। और दोस्तों, आपको समय भी हम बता देते हैं, अभी वक्त हुआ है 4:31 और मेरे साथ में अखिल जी भी हैं। अखिल सर के साथ एक कॉलर भी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं कौन कहाँ से हैं।
1: हेलो फरमाइश। सर कैसे हैं आप? सर थोड़ा ठंडा मौसम इधर भी भेज दीजिए यूपी की तरफ।
2: आपकी गर्मी है उधर?
1: हाँ सर, गर्मी भी है और कहते हैं ना उमस है, सब एकदम एक साथ भरा पड़ा है यहाँ पे मामला।
2: इधर तो बड़ी ठंड है, इधर तो मैंने स्वेटर लगाई है।
1: क्या करते हैं क्या करते हैं सर आप कश्मीर में?
2: मैं इधर होटल में काम करता हूँ।
1: आप होटल में काम करते हैं, तो क्या बनाते हैं आप?
2: होटल में इधर नाइट स्टे होता है।
1: अच्छा। और वहाँ पे इस समय टूरिस्ट कैसा है? बाहर आई हुई है? हम भी आएंगे साथ, जल्दी आएंगे सबके
2: साथ।
1: कहाँ पर है आपका होटल कश्मीर में, किस साइड है ये? डिस्ट्रिक्ट डोडा में। किस नाम से है होटल? हमारे श्रोता लोग सुनने अगर कश्मीर आएंगे तो जरूर आपके यहाँ स्टे करेंगे। पिंक पॉइंट, ईस्ट पॉइंट। और ये आपका ईस्ट पॉइंट कहाँ, आसपास क्या है घूमने के लिए वहाँ पे?
2: घूमने के लिए बहुत अच्छी अच्छी जगह है, आप पर सीनरी है।
1: ओके,
2: बहुत मजेदार सीनरी है।
1: ठीक है सर, आपसे जितने भी सुनने हैं हमारे सारे श्रोता कहीं ना कभी कभी कभी कश्मीर आए तो जरूर आपसे सेवा लेंगे। क्या कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
2: हीना फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं, अनारदाना।
1: ओके सर, ये हीना फिल्म का भी आपके लिए गाना लगाते हैं।
2: धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम है आप सभी का एफएम मुरादाबाद 89.6 पर, और शो चल रहा है हेलो फरमाइश, जहां पर आप अपने पसंद के गीत यहां पर सुनने को आपको ये मौका मिलता है। और मैं कहती हूं कि इस चांस को ना आप मिस मत करो, क्योंकि हर किसी का एवरीडे कॉल लगे ये तो हमारे शो में परमिशन नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है दोस्तों, आपको ना सिर्फ वीक में एक ही बार कॉल करना होता है। और अगर आपके पास आज टाइम है तो आप फटाफट से कॉल करो, मोबाइल नंबर मैं आपको बताती हूँ 9837896896। और अभी बात करते हैं अपने कॉलर से, कौन जुड़ी है हमारे साथ, हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश, हेलो हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी, क्या नाम है आपका मैम? जी जी, नाम बताइएगा अपना।
1: तुम सुनाओ मैम, तुम कैसे हो?
0: मैं ठीक हूँ, अपना नाम बताइएगा। क्या नाम है आपका? जी तबस्सुम, कहाँ से बात कर रहे हो आप?
1: डोलते से बोल रही हूँ।
0: डोलती रहती हैं आप पूरे दिन इधर से उधर? हाँ
1: हेलो,
0: हाँ जी तरन्नुम जी, बोलिएगा।
1: गाना सुनना है?
0: हाँ हाँ, गाना सुनवाएंगे आपको, निश्चिंत रहिए। मैंने बोला आप डोल रहे से बोल रही हैं, तो पूरे दिन डोलती रहती हैं या काम भी करती हैं आप घर का?
1: सुनाई नहीं आ रही मैम।
0: सुनाई क्यों नहीं आ रही है? मैंने कहा तरन्नुम जी, आप हमें कॉल तो इतने प्यार से करती हैं, लेकिन आपका ध्यान बातों में नहीं होता है। देखो ऐसे मत किया करो, आप हमें नेक्स्ट टाइम कॉल करें तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें मतलब आपका जो फोकस है वो फोन पर ही होना चाहिए, क्योंकि हम इतनी मेहनत से, आप भी इतनी मेहनत से कॉल करते हैं, और हम बहुत सारे श्रोता होते हैं जो लाइन में लगे रहते हैं, तो एक गलती की वजह से हम सबको वो सजा नहीं देना चाहते, तो इसीलिए नेक्स्ट टाइम से अगर आप कोई भी कॉल कर रहे हैं तो प्लीज फोन के पास ही रहें और नेटवर्क में रहें, ताकि आपकी आवाज स्पष्ट रूप से हमें आए। तो एक खूबसूरत सा गीत हम सुनवाते हैं एंड बात करते हैं अभी, उसके बाद कौन हमारे साथ कहाँ से कनेक्ट होने वाले हैं वो तो जानेंगे हम नेक्स्ट कॉलर से ही, लेकिन अभी गाना सुनिएगा बहुत ही प्यारा सा।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।
5: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेलो फरमाइश शो में। खुशी आपके साथ है और ये है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन, जहाँ पर आप अपनी मनपसंद के गाने भी सुनते हैं, बहुत सारी जानकारी

0: दुनिया भी आपको मिलती है ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और दोस्तों अभी हमारे साथ हमारे एक कॉलर भी जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हेलो फरमाइश। जी बताइएगा कैसे हैं आप सब।
1: ठीक है मैडम, आप नीचे मैं भी अच्छा हूँ, घर आया हूँ मैडम, और आपका कार्यक्रम में लाइव में जुड़ा हूँ
0: जी।
1: और दिशा मोर्ते मनोरंजन के साथ में जल्दी सबसे पत्नी के गीत बताता हूँ। फिल्म का नाम है सिम्बा और गीत में बोले वो लड़की आठ कुमार, गायक मीका सिंह, कुमार सानू, नेहा कक्कर, अशोक शुक्ल गीत आपसे डिबे कर रहा हूँ।
0: हाँ जी,
1: रेडियो मुरादाबाद में जिले से विशेष आबाद मनी को दोस्तों को आपकी प्रियाजन के रिश्तेदारों को आपकी सैनियों को पूरे भारत राज्य श्रोताओं को हेलो एक्टर रेडियो कुमार जी के जुड़े श्रोताओं को रेडियो मुरादाबाद में जुड़े सभी जो सब भाई बहनों को और स्टाफ कर्मचारियों को सभी को वीडियो करा मेरा। अब मैं इंतजार कर रहा हूँ अपने पसंद की सुनने के लिए। सुन रहा हूँ शिवा गीत की बोले वो लड़की आज तुम्हारे गायक कुमार सोनी मीका सिंह यहाँ का कर खुश आम किए मैडम। धन्यवाद इस गीत से इस फिल्म के गीत को पूरा सुनाएंगे। धन्यवाद मैडम, खुश आम करने के लिए।
0: थैंक यू सो मच सर, सुनवाते हैं प्यारा सा ट्रैक आपको। एंड चलिए दोस्तों सुनते हैं, बहुत ही प्यारी सी गाने की रिक्वेस्ट भेजिए फ्रॉम द मूवी सिम्बा से। और सारा अली खान साथ में रणवीर सिंह बहुत ही खूबसूरत नजर आए इस फिल्म में, गाना भी बहुत शानदार है, आप भी सुनिएगा।

0: हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है हेलो फरमाइश शो में। और अभी आपने अमेजिंग ट्रैक एंजॉय किया भाई, मैंने तो जम के डांस किया है और आपने भी किया है मैं जानती हूँ। अगर डांस नहीं किया तो थोड़ा बहुत तो थिरके हैं आप। कार का वॉल्यूम, आपने म्यूजिक का वॉल्यूम थोड़ा हाई किया था ये मैं जानती हूँ, और अभी इस समय मुस्कुरा भी रहे हैं, बस ऐसे ही खुश रहा करो आप सब। अभी बात करते हैं अपने लास्ट कॉलर से। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश, हेलो हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: नमस्ते मैडम जी,
0: आपको भी नमस्कार। अपना नाम बताइएगा।
1: जी मैं महाराष्ट्र हिंगोली जिला कलमद्री तालुका मोहन सिंह ठाकुर बात कर रहा मैडम जी।
0: मोहन सिंह ठाकुर जी, बहुत दिनों के बाद आज कार्यक्रम में आप जुड़े हैं, बताइए कैसे हैं?
1: कुछ नहीं मैडम, थोड़े काम में उलझे थे तो इसलिए लगा नहीं। कार्यक्रम सुन रहे थे मैडम जी, ऐसा कुछ नहीं।
0: जी जी जी,
1: तो सुनते रहते हैं।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, बताइएगा आप कौन सा गाना सुनेंगे?
1: गीत है हम आपके है कौन, और गीत के बोल है पहला पहला प्यार है, पहली पहली मार है। एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज है, लता मंगेशकर।
0: ठीक है, ये गाना आपको सुनवाते हैं सर, धन्यवाद कॉल करने के लिए।
1: थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद,
0: मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं प्यारा सा गाना, उसके बाद हम आपसे लेते हैं जाने की अनुमति एंड लौट कर आएंगे हम आपके साथ। कब बात करेंगे हम? हाँ जी, कल सुबह मॉर्निंग में। अभी रीना जी आने वाली हैं अपना ब्यूटीफुल शो लेकर, जो आपकी शाम को बनाएंगे और ज़्यादा खूबसूरत। तो आपसे मैं कहूँगी कि बस आप ऐसे ही खुश रहो, मुस्कुराते रहो। FM मुरादाबाद 89.6 सुनते रहो, गुनगुनाते रहो, और अपना भी अपनी फैमिली का भी अच्छे से ध्यान रखो। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।

0: अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता था। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाएं केवल वित्तीय सहायता का साधन नहीं है, बल्कि ये युवाओं को सपने देखने का अधिकार देती है। दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपकोसा माशातिले ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। उनके साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था। वार्ता में व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग, कौशल विकास और जनजन संबंधों को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया। केंद्र सरकार ने आव्रजन और विदेशी नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार जो विदेशी नागरिक भारत में 180 दिनों के लिए आते हैं और अपने वीजा की अवधि बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें वीजा की समाप्ति से पहले ही अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। ये पंजीकरण पहले 180 दिन की अवधि पूरी होने के बाद 14 दिन के भीतर कराया जा सकता था। गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। इसमें आव्रजन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण की समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इसके अलावा पहली बार नियमों में ऑनलाइन अपील प्रणाली जोड़ी गई है। अब किसी आदेश से प्रभावित व्यक्ति आव्रजन ब्यूरो के आयुक्त के समक्ष ऑनलाइन अपील दायर कर सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शिल नागू, न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर, न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, न्यायमूर्ति अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु और केरलम में अगस्त्यमलाई पारिस्थितिकी परिदृश्य के संरक्षित क्षेत्रों में अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए एक समयबद्ध अतिक्रमण उन्मूलन योजना तैयार करने और इसे प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि उन सभी 118 वर्तमान और सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए जिन्होंने अतिक्रमण किया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन आज मुंबई पहुंचे। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर महाराष्ट्र के

को जाने कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित की गई। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हेलो जी, हेलो। बहुत ही प्यारा आपने गाना एंजॉय किया है। जी हाल मस्क मुकम्बरा बहाल हिजरा बेचारा दिल है। सच बताओ, कुछ गाने ना बड़े शानदार होते हैं जिसे सुनकर ना शाम और भी शानदार हो जाती है। और आपके साथ आरजे रीना कनेक्ट हो गई है इवनिंग मस्ती शो में। और समय की बात करूँ तो 5:09 हो चुके हैं श्रोताओं। ऑफिस की थकान हो या ट्रैफिक का झंझट या फिर दिन भर की भाग दौड़, बस वक्त है खुद को थोड़ा रिलैक्स करने का। और मैं आपके साथ आपकी आरजे रीना तो हूँ, और आप सुने अपने शहर का सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। अगले 2 घंटे तक होगी ढेर सारी मस्ती, शानदार गाने, मजेदार बातें, दिलचस्प किस्से और

आपके प्यारे प्यारे जो मैसेज आते हैं ना भैया, सच बताओ तो आपके मैसेज शामिल करके ना दिन बन जाता है। तो इंतजार क्यों कर रहे हैं आप, फोन उठाइए और हमें मैसेज करिए, क्योंकि आज का शो आपका है, आपकी बातों का है और आपकी मुस्कुराहटों का है। इसीलिए कहीं मत जाइए, रेडियो से जुड़े रहिए और सुनते रहिए अपने शहर का सामुदायिक रेडियो एफ एम मुरादाबाद 89.6। अगर आपके दिल में कोई बातें हैं और आप चाहते हो कि मेरी बातें रेडियो तक पहुंचे, आप किसी और तक पहुंचाना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप मैसेज करिए, हम आपकी बातों को आगे पहुंचाएंगे। बहुत से ऐसे होते हैं ना जो सोचते हैं कि यार काश जो मैंने लिखा है वो भी रेडियो पर ब्रॉडकास्ट हो। तो बिल्कुल जी है, हम आप सभी के लिए बैठे हैं। तो मैंने बोला तो आज का शो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, तो मैसेज करते रहिए। हमारा मैजिकल नंबर 9837896896। चलिए अभी के लिए बहुत प्यारा गाना, सो इस गाने को एंजॉय करके एंजॉय करते हैं और लौट कर आते हैं आप सभी के बीच।

जी हेलो, गुड इवनिंग है आर्जेरिया के बाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूं तो 5:16 हो चुके हैं और आप सुन रहे हैं अपने शहर का सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। यानी कि आज की तारीख 2 जून, और 2 जून की दो रोटी, क्या है इसका मतलब? कहाँ से आया आखिरकार ये मुहावरा जी, मैं अब आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि अगर आप ट्रैफिक में हैं तो देखिए जी, ज्यादा घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस गर्मी से बेहाल हर कोई है। हर कोई चाहता है कि भैया बस ठंडक मिलती रहे हमें, तो आपको ठंडक में मिलेगी। बस अपने दिमाग को शांत रखना है और गाड़ी धीमे चलानी है, और हॉर्न पे कम फोकस करके सामने फोकस करना है आपने। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम हॉर्न इतने बजा देते हैं कि आपको देखिए, आप तो गाड़ी में हैं, लेकिन जो बाहर इंसान है ना, वो बड़ा इरिटेट हो जाता है। और इरिटेट होने के बाद वो बाहर से आपको क्या बोल रहा है आपको खुद भी नहीं पता चलेगा। इसीलिए धैर्य के साथ, और जो बाइक स्कूटी चला रहे हैं, देखिए गर्मी बहुत है, बहुत ज्यादा गर्मी है, सो हेलमेट और कॉटन का जो दुपट्टा है, पन्ना है, उसको अपने सर पर जरूर बांधिए और तभी आप बाहर निकलिए। सो ये 2 जून, 2 जून का ये रोटी, दो वक्त का रोटी क्या है, इसके बारे में जानना चाहते हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, तो क्या करना पड़ेगा जी? मेरे साथ कनेक्ट रहना पड़ेगा फिलहाल के लिए। जो ये गाना है ना, बड़ा ही जबरदस्त है जी। सो इस गाने को एंजॉय करिए, लौट कर आते हैं इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पर, कहीं नहीं

लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: क्या बात है जी, बहुत ही प्यारा गाना एंजॉय किया आपने और अर्जेंटीना आप सभी के साथ कनेक्ट हो गई है। समय की बात करूं तो 5:26 हो चुके हैं श्रोताओं, और आप सुन रहे अपने शहर का सामुदायिक रेडियो, यानी कि 2 जून और दो रोटी, ये यानी कि अवधी भाषा का एक पुराना और प्राचीन मुहावरा है। इसका अर्थ है दिन में दो वक्त का भोजन जुटा पाना। यह सिर्फ खाने की बात नहीं करता, बल्कि उन लोगों के संघर्ष को भी दर्शाता है जो अपने और अपने परिवार के पेट भरने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। आज भी यह मुहावरा आम आदमी की बुनियादी जरूरतों और जीवन की चुनौतियों को बयां करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जून शब्द का अर्थ है, कई लोगों को लगता है कि यह जून शब्द का संबंध जून महीने से है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह मुहावरे में 2 जून का मतलब है समय या वक्त से। पुराने समय में यानी कि बोलचाल और कुछ भाषाओं में जून शब्द का उपयोग समय के लिए भी किया जाता है, और इसीलिए 2 जून का मतलब है दिन के दो वक्त, यानी कि हर इंसान कैसे कमा कर दो वक्त की रोटी जोड़ता है। उसके पीछे की मेहनत तो देखिए, मतलब ये जो हमारा पेट है वो इंसान से चाहे कड़क धूप हो, आंधी तूफान हो, बारिश हो, लेकिन काम तो करना ही पड़ता है, यानी कि दो वक्त की रोटी जुटाने के लिए। सिर्फ खाना नहीं, गुजारे का प्रतीक आज 2 जून की रोटी का मतलब है केवल दो वक्त रखे जितना नहीं रह गया। अब इसका इस्तेमाल उन आदमी के लिए भी किया जाता है जो सिर्फ व्यक्ति को रोज और खर्चा और परिवार चलाता है। यानी कि बदलते समय की साथ ही ये मुहावरा आज लोगों की जुबान पर है, क्योंकि यह जीवन की दो शब्द सबसे जरूरी चीजों के बारे में बात करता है, जो भोजन और आजीविका। यही कारण है यह मुहावरे की, यानी कि पीढ़ियों से ये चला आ रहा है मुहावरा, 2 जून दो वक्त की रोटी। तो 2 जून सिर्फ महीना नहीं है, ये हमारे लिए बहुत कीमती है, दो वक्त का समय। चलिए श्रोताओं, और ढेर सारी बातें करते रहेंगे, फिलहाल अपना मैसेज भेजना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि आपके शहर का रेडियो है, सामुदायिक रेडियो है, और बातें दिल से दिल तक होती हैं, और आपके दिल में भी है कुछ बातें, तो बिना टेंशन लिए आप फटाफट हमें मैसेज कर सकते हैं। और अभी के लिए कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया है, उसके बाद कनेक्ट होते हैं आप सभी के साथ।
1: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
2: अरे भैया, नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
3: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ, एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर।

0: गुड चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
2: अरे बेटा, बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
1: पर पापा।
2: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
3: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती। सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद। We'll be right back.

तीन पैग बलिए आपने गाना एंजॉय किया आर्जेरीना के साथ और आप सुन रहे अपने शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे गुनगुनाते रहिए। और समय की बात करूं तो 5:37 हो चुके हैं। इवनिंग मस्ती शो में आप कनेक्ट है जी। और अब बात करूं यानी कि देखिए हम खेतों में जो फसलें उगाई जाती हैं वो हम बहुत यानी कि कोशिश ये करते हैं कि हमने एक महीने के अंदर हमारे खेतों में फसल उग जाए, लेकिन वो केमिकल वाला फसल होता है जो कि हम खाते हैं और आजकल बीमारियां इतनी ज्यादा बढ़ रही है सिर्फ और सिर्फ इसीलिए। तो 1 जून से लेकर 30 जून तक देश भर में यानी कि चल रहा है खेती बचाओ अभियान। ये खेती बचाओ अभियान क्या है मैं आपको बताती हूँ। कम खाद सही सलाह खेत बचाओ अभियान में संतुलित उर्वरक उपयोग होगा और फसल साथ ही साथ अच्छा होएगा। आप जो भी पहले के टाइम में देखे जो भी सब्जियां उगाई जाती थी वो बिना खाद वाले होते थे। इनफैक्ट उसमें टाइम लगता था, 1 से 2, 3, 4 महीने लग जाते थे, खुशी है ना। और वो मतलब आप खाते थे वो खाने में भी उनका स्वाद ना अलग ही नेक्स्ट लेवल वाला होता था। लेकिन अब की जो सब्जियां है उसमें वो स्वाद नहीं रहा है। इनफैक्ट जो मसाले होते हैं उनमें भी वो स्वाद नहीं है। जो आप जो खड़े मसाले लेते हैं घर पर पीसते हैं और जो मार्केट वाला जो मसाला होता है उसमें आप सब्जी बनाकर देखिए, आपको फर्क पता चल जाएगा। सो यही है 1 जून से 30 जून तक खेत बचाओ यानी कि खेतों की जो मिट्टी है उसकी जांच की जाएगी और कम खाद वाले जो सब्जियां हैं फसलें हैं वो उगाने की सलाह दी जाएगी, यानी कि कम खाद पे भी आप फसलें अच्छे से उगा पाएंगे। सो श्रोताओं यहाँ पर लेती हूँ मैं एक म्यूजिकल ब्रेक। बस आप आर्जेरीना के साथ कनेक्ट रहिए, लेकिन मेरे पास ना बहुत सारे मैसेज भी आ गए तो चलिए शामिल करते हैं। सुनो आर्जेरीना, हाँ जी सुनाइए। हेलो गुड इवनिंग, मेरा नाम पंकज कुमार है और मैं मुरादाबाद से ही बात कर रहा हूँ। क्या बात है जी, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। बिल्कुल जी, आप अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी ज़िंदगी में यूं ही रौक मचाते रहिए। और इनका कहना है कि मैम आपके द्वारा दी गई जानकारी, जो भी आप संदेश पहुँचाती हो जानकारियाँ देती हो बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच जी। और अगले मैसेज की बात करूँ तो अगला मैसेज आता है हमारे पास। रीना दी नमस्कार, ग्राम चमुआ जिला संभल से ब्रजेश मिस्त्री, शशिपाल मिस्त्री, लखन सिंह, राजेंद्र सतपाल सभी लोग एफएम सुन रहे हैं, आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं। रीना दी बार बार धन्यवाद, गर्मी बहुत पड़ रही है। ओहो गर्मी बहुत पड़ रही है, बिल्कुल जी सही कहा आपने, लेकिन इस गर्मी में हमें अपना ध्यान रखना है। और मिस्त्रियों को तो मैं कहती हूँ जो धूप में हमारे लिए मकान बनाते हैं, खेतों में काम करते हैं, फसलें उगाते हैं, भैया आप अपना ध्यान रखिए। अगर आप ठीक है तभी हम छत के नीचे रह पाएंगे, तभी हमारे घर में जो राशन है वो आ पाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले आप अपना ध्यान रखिए, पानी अपने साथ रखिए, ओआरएस अपने साथ रखिए, ताकि आपको एनर्जी लो फील होए तो आप ओआरएस पानी में डालकर मिक्स करके आप पी सकते हो। साथ ही अगले मैसेज की बात करूं तो हेलो रेडियो वाली रीना जी गुड इवनिंग कैसे हैं आप, बहुत अच्छे जी, विक्की सागर जी कनेक्ट होते हैं। ओके जी चलिए फिलहाल गाने की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं आप सभी के बीच।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: अरे सुनो वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
2: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड मुरादाबाद।
4: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आज रीना के साथ इवनिंग मस्ती शो पे। आप कनेक्ट है, समय की बात करूँ तो 5:49 हो चुके हैं श्रोताओं। और देखिए, यानी कि गर्मी की बात करूँ तो गर्मी तो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। वैसे भी जून का महीना है और गर्मी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि यानी कि 7 दिन तक 17 राज्यों में आंधी तूफान, हैवी रेनफॉल यानी कि बहुत तेज आंधी तूफान बारिश आने की संभावना जताई जा रही है, यानी कि 17 राज्यों में। और साथ ही मुरादाबाद की बात करूं तो यानी कि फ्राइडे को मुरादाबाद में भी झमाझम बारिश होने वाली है आंधी तूफान के साथ। तो देखिए, दिल तो हमेशा खुश रखना चाहिए ना, गर्मी हो या फिर बारिश हो, मुझे हर मौसम का हमें लेना चाहिए। और साथ ही साथ आप आर्जुरीना के साथ कनेक्ट रहिए, अपना प्यारा प्यारा मैसेज हमें भेजते रहिए, ढेर सारी बातें करेंगे और आप सभी के मैसेज शामिल करेंगे।

चलिए फिलहाल एक और प्यारे से गाना, ये मेरा फेवरेट गाना है, बहुत प्यारा फेवरेट गाना है और मैं इसको बहुत सुनती थी। सो आज ये गाना एकदम मेरे को याद आया तो मैंने सोचा कि चलिए आप तक भी सुनवाते हैं एक गाने।

0: गुड वाली इवनिंग है अर्जुनीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूं तो यानी कि 5:57 हो चुके हैं श्रोताओं, और आज की तारीख बहुत स्पेशल है, बहुत खास है। खास इसलिए है कि 2 जून का दिन यानी कि भारत के इतिहास में खास महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि आज मनाया जाता है तेलंगाना स्थापना दिवस। यानी कि साल 2014 में आज के ही दिन तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। तेलंगाना का गठन लंबे जन आंदोलन और लोगों की वर्षों की मांग के बाद, यानी कि इसके राजधानी की बात करूं तो हैदराबाद, जो अपनी समृद्धि, संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहर और आधुनिक विकास के लिए दुनिया में प्रसिद्ध है। यह दिन तेलंगाना के लोगों के लिए संघर्ष, उनकी पहचान और उनके सपनों का सम्मान देने का अवसर है। राज्य भर में संस्कृति प्रोग्राम, परेड और विभिन्न आयोजन किए जाते हैं, जो कि तेलंगाना के समृद्ध विरासत को दर्शाता है। तो श्रोताओं, इस खास मौके पर तेलंगाना के सभी नागरिकों को स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और भारत की विविधता की में एकता की भाव को और भी मजबूत बनाएं। और यूं ही अर्जुनीना के साथ कनेक्ट रही और सुनते रही अपने शहर का सामुदायिक रेडियो। और अब देखिए श्रोताओं, आज का जो सवाल मैं पूछने वाली हूँ बहुत ही सिंपल है। अगर आप जीत हैं तो आपको फूड वाउचर मिलने वाला है। आप विनर बनते हैं मेरे शो में, तो उसके लिए आपको स्टूडियो आना पड़ेगा और उसके लिए आपको मैसेज जरूर करना पड़ेगा, तभी आपको फूड वाउचर का जो आनंद है आप उठा पाएंगे। क्योंकि भैया बात अगर हम खाने चलो, कभी कभी मन करता है ना कि यार चलो यार बाहर से खा के आते हैं, जब आपको फूड वाउचर मिल रहे हैं स्टूडियो से रेडियो से, तो क्यों ना उसका आनंद उठाया जाए। आनंद तो आप तभी उठा पाएंगे ना जब आप मैसेज करेंगे राइट आंसर के साथ कनेक्ट होंगे। और भैया 50 वाले भी मतलब आपको फूड वाउचर मिलेगा ही मिलेगा यहाँ से। तो देखते हैं आज के शाम यानी कि कौन बनते हैं मेरे शो के विनर, लेकिन कड़क सवाल लेकर आएंगे आप सभी के लिए। फिलहाल के लिए कुछ यानी कि कमर्शियल एड ब्रेक के साथ साथ न्यूज का भी टाइम हो गया श्रोताओं, तो पहले न्यूज को हम सुनते हैं, उसके बाद आप सभी के साथ कनेक्ट होते हैं, क्योंकि देश दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है यानी कि जानकारी होनी बहुत जरूरी है।
1: विदा लेनी होगी मैं अजय तोमर का, मेरे साथ मेरे सहयोगी अमीषा पटेल और कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।
2: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारत ने कहा है कि नेपाल और भारत के द्विपक्षीय संबंधों में किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत नेपाल सीमा को लेकर टिप्पणी और उसके बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के बारे में पूछे गए सवाल के उत्तर में कही। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% सीमांकन हो चुका है।
4: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
3: भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अवांछित संदर्भों को भी खारिज किया। श्री जायसवाल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगी। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। ये वार्ता ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, दवा और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर केंद्रित होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था। दोनों नेताओं ने भारत दक्षिण अफ्रीका द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर सार्थक वार्ता की। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउ लाइन आज मुंबई पहुंचे। आज शाम लोकभवन में उनके सम्मान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में वे शामिल होंगे। नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। ये मुलाकात भाजपा को जाने कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। नई दिल्ली में आज जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सतत विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें। केंद्र सरकार ने आव्रजन और विदेशी नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार जो विदेशी नागरिक भारत में 180 दिन के लिए आते हैं और अपने वीजा की अवधि बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें वीजा की समाप्ति से पहले ही अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। ये पंजीकरण पहले 180 दिन की अवधि पूरी होने के बाद 14 दिन के भीतर कराया जा सकता था। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, न्यायमूर्ति चंद्रशेखर, न्यायमूर्ति संजीव सचदेव और न्यायमूर्ति अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ने पिछले महीने 23 अरब 20 करोड़ लेनदेन का रिकॉर्ड बनाया है। इस उपलब्धि पर वित्तीय सेवा विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से नागरिकों को डिजिटल भुगतान को अपनाने के लिए धन्यवाद दिया। दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय गुप्ता ने केंद्रीय अन्वेषण

0: अशांति इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

क्या करूं। हां जी, जो जलता है उनको इतना जलाओ। आरजे रीना के साथ आप कनेक्ट है मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे गुनगुनाते रहे जी। समय की बात करूं तो देखिए दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई है और समय यानी कि 6:10 हो चुके हैं और आज की तारीख 2 जून, और 2 जून को यानी कि 5 जून को बहुत जल्द यानी कि भैया देखिए हर किसी को इंतजार होता है कि कौन सी मूवी रिलीज होने वाली है, तो मैं आपको बताती हूँ यानी कि 5 जून को रिलीज होने वाली है जवानी तो इश्क होगा, यानी कि वरुण धवन की मूवी है, कॉमेडियन फिल्म, यानी कि अब ये मजेदार मूवी होने वाली है। साथ ही साथ अगर OTT की बात करूं तो गुल्लक सीजन 5 OTT पर रिलीज होने वाली है, तो जिन्होंने यानी कि सीजन 1, 2, 3, 4 देखा है उनको 5 आसानी से समझ में आ जाएगा, और जिन्होंने नहीं देखा है तो आप सोच रहे होंगे कि मैं सीजन 5 देखूंगा तो वो आपको समझ नहीं आएगी। इसलिए कोई भी काम करते हैं ना तो पहले देखिए छत पर जाने के लिए हमें पहले सीढ़ी को क्रॉस करना पड़ता है तब जाकर हम छत पर पहुंचते हैं, इसीलिए आप सीजन 1, 2, 3, 4 देखेंगे तभी आपको 5 समझ में आएगा। अगर आप बॉलीवुड मूवी देखना चाहते हैं यानी कि सिनेमा घरों में जाकर थिएटर में जाकर दोस्त के साथ एंजॉय करते हुए तो है जवानी तो इश्क होना है। बंदर मूवी जो कि बॉबी देओल की है, ये रिलीज होने वाली है 5 जून को, तो ये मूवी देखना बिल्कुल ना भूले। और आरजेरीना के साथ जो कि अब लेकर आने वाली आप सभी के लिए कड़क सवाल, अगर आप देते हैं कड़क सवाल के राइट आंसर तो आपको मिलेगा फूड वाउचर, और उसको आपको स्टूडियो से कलेक्ट करना पड़ेगा, लेकर जाना पड़ेगा जी। चलिए बहुत ही जल्द एक गाने के बाद लेकर आते हैं आप सभी के लिए कड़क सवाल, फिलहाल के लिए पार्टी करते हैं जी।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आर्जरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 और आप एंजॉय कर रहे हैं आर्जरीना के साथ इवनिंग मस्ती शो। और समय की बात करूं तो 6:18 हो चुके हैं श्रोताओं। और अब यानी कि जो मैं बात करने वाली हूं, वीआईपी और सरकारी अफसरों को लगेगा अब टोल टैक्स। यानी कि अभी तक यानी कि टोल टैक्स उनको मुफ्त मिलता था, यानी कि टोल टैक्स नहीं भरना पड़ता था उनको, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्द ये रद्द होने वाला है। और जो सरकारी अफसरें हैं, जो वीआईपी जो टोल प्लाजा नहीं भरते थे, टोल टैक्स नहीं देते थे, अब उनको टोल टैक्स देना पड़ेगा, वो भी बहुत जल्द। तो अब यानी कि जो भैया मुफ्त में एंट्री हो जाती थी ना, अब वो नहीं होने वाली। जेब थोड़ा गर्म करना पड़ेगा, यानी कि खर्चे लग सकते हैं आपको। और साथ ही साथ देखिए, मैं आप सभी का साथ अब लेकर आने वाली हूँ क्या कड़क सवाल, और उसमें अगर आप राइट आंसर देते हैं तो आप बनते हैं विनर, और विनर बनेंगे तो आपको मिलेगा फूड वाउचर, और उसको कलेक्ट करने के लिए आपको हमारा स्टूडियो तो आना ही पड़ेगा जी। चलिए फिलहाल एक और गाना उसके बाद लेकर आते हैं।

हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है आर्जेरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूँ तो 6:27 हो चुके हैं और अब आर्जेरीना आप सभी के लिए लेकर आ गई है कड़क सवाल। और कड़क सवाल के साथ यानी कि राइट आंसर के साथ आप कनेक्ट होते हैं तो आपको मिलता है फूड वाउचर। जरूरी नहीं है कि जिसने पहले राइट आंसर दिया सिर्फ उसी को ही मिलेगा, बल्कि अगर आप चाहे चार हमें राइट आंसर दो, आप मतलब जितने राइट आंसर देंगे आप सभी को फूड वाउचर मिलेगा ही मिलेगा। चलिए, तो आज का सवाल है, जो कड़क सवाल है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही फैंटास्टिक। अगर आप मुरादा पक्के मुरादाबादी हैं तो आप इसका आंसर आसानी से दे पाएंगे। तो आज का कड़क सवाल ये है, क्या आप जानते हैं कि मुरादाबाद का नाम किस मुगल राजकुमार के नाम पर रखा गया था, जो मुगल सम्राट शाहजहां के पुत्र थे, उसका आपने नाम बताना है, उसी के नाम पर मुरादाबाद का नाम पड़ा है। हमारा मैजिकल नंबर है 9837896896 पर आपने राइट आंसर पहुंचाना है। वंस अगेन एक बार और मैं रिपीट कर रही हूं कि मुरादाबाद का नाम किस मुगल राजकुमार के नाम पर रखा गया था, जो कि मुगल सम्राट शाहजहां के पुत्र थे। सोचिए और फटाफट मैसेज करिए कि मुरादाबाद के नाम, ये जो मुरादाबाद का नाम है, किस राजा के पुत्र के नाम पर पड़ा है। और अभी के लिए खौर कड़क सवाल आप सभी के बीच, सो इस गाने को एंजॉय करिए, लौट कर आते हैं जी आप सभी के बीच।

0: क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है। और समय की बात करूँ तो 6:35 हो चुके हैं, अर्जेंटीना के साथ अब कनेक्ट है। और देखिए, यानी कि अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले ही, यानी कि जो जिन्होंने यानी कि टिकट बुक कर लिया है वो भी एयरपोर्ट का, तो मैं आपको बता दूं कि ये अंतर्राष्ट्रीय हाईवे अड्डे, यानी कि अब जुलाई से लेकर सितंबर तक हर सोमवार और हर मंगलवार को पूरी तरह बंद रहेगा। यानी कि अगर आप अमरनाथ का यात्रा करना चाहते हैं, जो तीर्थ यात्रों पर जाना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां भी बढ़ चुकी हैं, और साथ ही साथ अभी 1 महीना हर घर में भाई बच्चे एक ही आवाज़ लगाएंगे कि नानी के घर चलो, या तो कहीं उत्तराखंड घूमने चलो, पहाड़ों में घूमने चलो, या फिर अमरनाथ यात्रा के लिए चलो। तो आपको बता दूं, अगर आप हवाई अड्डे का टिकट बुक करते हैं तो सोमवार और मंगलवार को खासकर आपने ये 2 दिन बुक नहीं करना है, अदरवाइज आपको लग सकते हैं 440 वोल्ट का झटका। साथ ही साथ आपको आज मैंने आप सभी से पूछा है बहुत ही आसान और बहुत ही प्यारा सा कड़क सवाल, जो कि आप आंसर है वो आसानी से बता पाएंगे, क्योंकि आप मुरादाबादी हैं और मुरादाबाद के हैं, तो आपको इतना तो पता ही होगा श्रोता। क्या पता होगा, बताती हूँ जी। यानी कि आज का कड़क सवाल ये है कि मुरादाबाद का नाम किस मुगल राजकुमार के नाम पर पड़ा था? आपने सिर्फ उस मुगल सम्राट यानी कि शाहजहां के पुत्र के नाम बताने हैं कि किस राजकुमार के नाम पर मुरादाबाद का नाम मुरादाबाद पड़ा है। सोचिए और हमें फटाफट मैसेज करिए, नंबर है 9837896896। लेकिन उससे पहले कुछ कमर्शियल एड ब्रेक।
1: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
2: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
3: टायर लो सोना जीतो।
4: क्या?
3: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए, विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
5: अपोजिट
3: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
5: ऑफर वैलिड टिल 10th June, TNC अप्लाई।
6: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
7: अरे बेटा, बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
6: पर पापा।
7: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
6: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद। Thank you.

आवाज की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

क्या बात है जी, आपने तो धूम मचा लिया और अभी आपने मैसेज के साथ धूम मचाना है। जो आज के हमारा कड़क सवाल बहुत ही सिंपल था और समय की बात करूँ तो 6:43 हो चुके हैं श्रोताओं, और आरजे रीना के साथ कनेक्ट है। आप सुन रहे अपने शहर का सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे गुनगुनाते रहे जी। देखिए, इस बढ़ती गर्मी से और इस गर्मी में आप चाहते हैं कि बीमार ना होए, तो आपको कुछ चीजें हैं अपने लाइफ में चेंजेस करने पड़ेंगे। पहली बात तो यानी कि हम फोन के साथ इतना बिजी हो जाते हैं कि झुककर फोन देखना, रील देखना, यानी कि स्क्रीन जो टाइमिंग है वो इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं कि कब 1 से 4 घंटे निकल जाते हैं हमें भी नहीं पता चलता है, जिसका असर सिर्फ और सिर्फ हमारे आंखों और दिमाग पर भी पड़ता है, और इससे फेस पर भी झुर्रियां आती है जो कि अब यानी कि बुढ़ापे से पहले ही बूढ़े दिखने लग जाते हैं। यानी कि जब फेस पर झुर्रियां दिखती है तो कहते हैं ना कि भैया बुढ़ापा चढ़ गया है। और कोई कोई जो अपने फिटनेस का ध्यान रखता है, भैया 50 की एज में भी लगता है कि भैया 24 और 16 साल की लड़की है, यानी कि शिल्पा शेट्टी की ही बात कर लो। तो आप चाहते हैं कि फिट रहे, तंदुरुस्त रहे और बीमार ना पड़े, तो आपको सबसे पहला काम करना पड़ेगा, स्क्रीनिंग टाइम अपने हटानी है, यानी कि फोन कम जितना हो सके कम यूज करिए। साथ ही साथ दिन में चाहे सुबह शाम पैदल चलिए, जितना पैदल चलेंगे आपकी हड्डियां उतनी ही मजबूत रहेगी, साथ ही साथ दिमाग भी हेल्दी रहेगा और मूड भी आपको आपका फ्रेश रहेगा, और साथ ही साथ वेट कंट्रोल में रहेगा। और जब ये फायदे आपके अंदर दिखेंगे तो आप खुद ही यानी कि आपकी सेहत सही हो जाएगी। और साथ ही साथ जो बाहर का जंक फूड खाना है उसको छोड़िए और डेली अपने रूटीन में तो बना लीजिए कि एक फ्रूट आपने डेली खाना ही खाना है, चाहे कुछ भी हो।

0: है। और अगर देखिए आज आप विनर बनते हैं मेरे शो में, आज का जो आपको मिलेगा फूड वाउचर, जो कि आज का कड़क सवाल बहुत ही सिंपल बहुत ही फैंटास्टिक है जिसका आंसर आपने पहुंचाना है। सो आज का कड़क सवाल ये है कि मुरादाबाद का नाम किस राजा के नाम पर पड़ा है? आपने उस राजकुमार का नाम बताना है। हमारा नंबर है 9837896896 पर, कि मुरादाबाद का नाम किस राजा के पुत्र के नाम पर पड़ा है। चलिए आप फटाफट मैसेज करिए एक और प्यारा सा गाना, लेकिन गाने से पहले कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया श्रोता, उसके बाद आप सभी के साथ कनेक्ट होते हैं और अगली बारी सिर्फ और सिर्फ आपके मैसेज के ही होंगे। तो आप रेडी हो जाइए क्योंकि बारी सिर्फ और आपकी है। तो चलिए फिलहाल कुछ कमर्शियल एड ब्रेक।
1: बसंती इनके सामने मत नाचना।
2: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
3: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
2: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

क्या बात है जी, बहुत ही प्यारा आपने गाना एंजॉय किया अर्जेंटीना के साथ। और समय की बात को तो 6:51 हो चुके हैं। आप सुन रहे अपने शहर का सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे गुनगुनाते रहे जी। और अब बारी है किस स्टेज के आप सभी के प्यारे प्यारे मैसेज की। तो आज का कड़क सवाल हमने बड़ा ही फैंटास्टिक वाला पूछा है, यानी कि मुरादाबाद का नाम किस राजकुमार के बेटे के नाम पर पड़ा है। चलिए मैसेज की तरफ बढ़ते हैं भैया, कि इनका क्या मैसेज आता है हमारे पास।

मुराद बख्श के नाम पर पड़ा है और ये हमारे साथ कौन कनेक्ट होती है री बाबा। इन्होंने अपना नाम तो बताया ही नहीं है, तो मैं इनका नंबर यानी बोल देती हूँ, फुलास्ट के 4 डिजिट।

यानी कि इनका लास्ट का फोर डिजिट है 2015, और इनका कहना है कि मुराद बख्श के नाम पर पड़ा है। ओके जी, चलिए फिलहाल अगले मैसेज की बात करूं तो अगला मैसेज आता है हमारे पास, ये विक्की सागर जी कनेक्ट होती है, और इनका कहना है कि मुराद नाम है, और ये मुरादाबाद से कनेक्ट होते हैं। साजा के बेटे प्रिंस यानी कि मुराद मुराद के नाम पर रखा गया है। ओके जी, ओके ओके ओके, मुराद के नाम पर रखा गया है। साथ ही साथ अगले मैसेज की बात करूं तो अगला मैसेज आता है, मुगल बादशाह के बेटे मुराद के नाम पर मुरादाबाद जिला बहुत ही पुरानी कहानी है। ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, ग्राम चमुआ जिला संबल से ब्रजेश सिंह मिस्त्री, और एंड इनके साथ कविता वैष्णवी दिव्यांश, सभी लोग आंसर भेज रहे हैं। ओके जी, और आपका आंसर ठीक है, नहीं है वो तो हम बताएंगे। मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन हंसारी जी कनेक्ट होते हैं, गुड, और इनके साथ इनके दोस्त है सैयद शारिक अली जी। गुड इवनिंग रीना जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी, आपका शो सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, और सॉन्ग भी बहुत अच्छे प्ले कर रही हो, थैंक यू सो मच जी। मुरादाबाद का नाम मुराद बख्श के नाम के ऊपर ही रखा गया है। ओके जी, साहजा के बेटे मुराद के नाम पर रखा गया है, ये पंकज जी मुरादाबाद से कनेक्ट होते हैं। अगले मैसेज की बात करूं तो अगला मैसेज आता है हमारे पास, हेलो गुड इवनिंग रीना दी, कैसी हो आप? बहुत अच्छी हैं जी, आज मैंने बहुत दिनों बाद आपसे बात कर रही हूँ, काफी दिनों बाद मैसेज कर रही हूँ। रीना दीदी जी, आपको आई लव यू नेहा एंड स्वाति की तरफ से, लव यू टू जी। फिलहाल अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं, अगला मैसेज हमारे पास किनका आता है, ये हमारे साथ कनेक्ट होती है संजू मुरादाबाद से, और मुराद बख्श के नाम से ही रखा गया मुरादाबाद का नाम। ओके, और अगले मैसेज की बात करूं तो भैया इनका मैसेज आता है, जयप्रकाश शर्मा जी कनेक्ट होते हैं, और इनका कहना है कि भैया राइट आंसर होता है, क्या होता है बताऊं जी, हंसी आएगी। इनका कहना है कि तरबूज है, ओ माय गॉड, मतलब ये तरबूज खा रहे हैं, इनको याद आ रहा है तरबूज तरबूज तरबूज नहीं है जी राइट आंसर, और इसका राइट आंसर होता है यानी कि मुराद बख्श के नाम पर रखा गया था। और आज मैं बता दूं मेरे शो के विनर बनते हैं तो अगर आपको आना पड़ेगा स्टूडियो, अगर आप चाहते कि फूड वाउचर हमें मिले तो उसके लिए पैरों को कष्ट तो आपको देना पड़ेगा जी, तभी आप फूड वाउचर हमारे पास से लेकर जाएंगे। यानी कि बात करूं तो अरुण जी, सबसे पहले आप विनर बनते हैं हमारे शो के, तो आपको स्टूडियो आना पड़ेगा यानी कि फूड वाउचर लेने के लिए। साथ ही साथ पंकज जी, आप भी आ सकते हैं हमारे स्टूडियो यानी कि फूड वाउचर लेने के लिए, और इरशाद हुसैन अंसारी जी, सर आपको भी अपने पैरों को थोड़ा सा कष्ट देना पड़ेगा यानी कि स्टूडियो आना पड़ेगा वाउचर के लिए। साथ ही ब्रजेश सिंह जी, आपको भी आना पड़ेगा, और ये विक्की सागर जी कनेक्ट होते हैं, देखिए जो राइट आंसर के साथ कनेक्ट हो रहे हैं उनको हम दे रहे हैं फूड वाउचर। जरूरी नहीं कि आपने पहले आंसर दिया है तो आप तो है ही विनर, लेकिन औरों ने भी जो राइट आंसर दिया है उनके लिए भी फूड वाउचर है। साथ ही साथ यानी कि संजू भी विनर बनती हैं, तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे स्टूडियो में, आइए और अपना फूड वाउचर लेकर जाइए। चलिए जी, इसी के साथ मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाजत, हम मिलेंगे कल सेम टाइम एंड सेम जगह, करेंगे ढेर सारी बातें। अभी के लिए बाय, टाटा, ठीक कर, अपना ध्यान रखिए, और हम मिलते हैं बहुत जल्दी यानी कि कल मिलेंगे जी। देखिए कब आना है मैं आपको बताती हूँ कि कल आप अपना फूड वाउचर यानी कि मैं 12 बजे से लेकर यानी कि शाम को 7 बजे तक होती हूँ, तो आप इस बीच कभी भी आकर अपना फूड वाउचर ले जा सकते हैं जी। बिल्कुल, मैं आपको 12 से 7 मिलने वाली हूँ फूड वाउचर, आप इस 12 से यानी कि शाम के 7 बजे तक किसी टाइम आइए और अपना फूड वाउचर लेकर जाइए। रामलीला ग्राउंड के पास हमारा रेडियो स्टेशन है,
आप आ सकते हैं और फूड वाउचर लेकर जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और इसी के साथ एक प्यारा सा गाना, इसी के साथ बाय बाय टाटा, टेक केयर।

0: के बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के बारे में पूछे गए सवाल के उत्तर में कही श्री जायसवाल ने कहा कि भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% सीमांकन हो चुका है।
1: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अवांछित संदर्भों को भी खारिज किया। श्री जायसवाल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगी। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि डेल्सी रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। ये वार्ता ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, दवा और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर केंद्रित रहेगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातीले से मुलाकात की। दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति के साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी था। दोनों नेताओं ने भारत दक्षिण अफ्रीका द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर सार्थक वार्ता की। वार्ता में व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग, कौशल विकास और जन जन संबंधों को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया। केंद्र सरकार ने आव्रजन और विदेशी नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार जो विदेशी नागरिक भारत में 180 दिनों के लिए आते हैं और अपने वीजा की अवधि बढ़ाना चाहते हैं, तो उन्हें वीजा की समाप्ति से पहले ही अपना पंजीकरण कराना होगा। ये पंजीकरण पहले 180 दिन की अवधि पूरी होने के बाद 14 दिन के भीतर कराया जा सकता था। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु और केरलम में अगस्त्यमलाई पारिस्थितिकी परिदृश्य के संरक्षित क्षेत्रों में अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए समयबद्ध अतिक्रमण उन्मूलन योजना तैयार करने और इसे प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि उन सभी 118 वर्तमान और सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए जिन्होंने अतिक्रमण किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर वर्तमान में 8,000 से अधिक उपयोगकर्ता एक साथ काम कर रहे हैं। अब तक 16,000 से अधिक छात्र सफलतापूर्वक अपना मूल्यांकन जमा कर चुके हैं। बोर्ड ने बताया कि पोर्टल की सेवा में व्यवधान डालने के लिए 2 मिनट के अंदर लगभग 15 लाख आवेदन भेजे गए। बोर्ड ने कहा कि सिस्टम पर उपलब्ध फाइलों तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के 1 लाख से अधिक प्रयास हुए। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और हरिहरन अमसा करुणन तथा MR अर्जुन की जोड़ी ने प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz। मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आज राज। आप सभी का स्वागत करता हूं इस विशेष कार्यक्रम में। और ये कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जो शायद आपका बैंक अकाउंट खाली होने से बचा सकता है। हाँ, क्योंकि आज जो बात होने वाली है वो एक ऐसे टॉपिक पर होने वाली है जो टॉपिक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है। क्योंकि आप सभी को बताया कि जैसे जैसे हम ऑनलाइन अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, वैसे वैसे बहुत सारे ऐसे अपराध हैं जो आपके साथ हो रहे हैं। और ये जो अपराध हो जाते हैं उस अपराध के बारे में आप किसी को बताना नहीं चाहते, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद हमारे साथ ये अपराध हो गया। हाँ जी, तो आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल अरेस्ट के बारे में। तो ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत। आज हम बात करेंगे एक ऐसे साइबर अपराध की जो न सिर्फ आपका पैसा बल्कि आपका आत्मविश्वास, मानसिक शांति और सम्मान भी छीन सकता है। इस अपराध का नाम डिजिटल अरेस्ट। श्रोताओं, सबसे पहले ये बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई भी कानूनी प्रक्रिया भारत में मौजूद नहीं है। यह पूरी तरह से एक साइबर ठगी है। ठग खुद को पुलिस अधिकारी, साइबर क्राइम ऑफिसर, CBI, ED या नारकोटिक्स विभाग का कर्मचारी बताकर आपसे संपर्क करते हैं। वे फोन, व्हाट्सएप कॉल या वीडियो कॉल करते हैं, डर पैदा करते हैं। तो चलिए एक ड्रामे के जरिए मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये साइबर ठग आपके साथ कैसा पेश आते हैं। यहाँ पर एक राजेश है और एक ठग है, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं साइबर क्राइम विभाग से बोल रहा हूँ, राजेश कुमार। आपका आधार कार्ड अवैध गतिविधियों में इस्तेमाल हुआ है।
2: क्या?
0: मैंने तो कुछ नहीं किया साहब। आपके नाम से मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग्स ट्रांजेक्शन हुआ है, आपको अभी डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। देखिए, ये मेरी ID है, कोर्ट का नोटिस है, आप किसी से बात नहीं करेंगे। अगर सहयोग नहीं किया तो जेल जाना पड़ेगा।
2: मैं क्या करूँ साहब?
0: आपकी जांच के लिए सुरक्षा राशि जमा करनी होगी। अभी UPI से पैसे ट्रांसफर कीजिए।
2: मैंने पैसे भेज दिए हैं।
0: और यही पर राजेश ठगी का शिकार हो जाता है। श्रोताओं, डिजिटल अरेस्ट ठग मानसिक दबाव का इस्तेमाल करते हैं, जल्दी जल्दी बोलते हैं, धमकी देते हैं, बदनामी और जेल का डर दिखाते हैं। यही सबसे बड़ा संकेत है कि यह ठगी है। याद रखिए, असली पुलिस कभी भी गोपनीयता के नाम पर आपको अलग थलग नहीं करती। असली अधिकारी कभी पैसे नहीं मांगते हैं। अगर ऐसा कॉल आए तो आपको क्या करना चाहिए, चलिए मैं आपको बताता हूँ। श्रोताओं, अगर आपके पास ऐसा कॉल आए, सबसे पहले एक गहरी सांस लें, डरे नहीं, कॉल तुरंत काट दें। किसी भी हालत में OTP, बैंक डिटेल, आधार कार्ड, पैन कार्ड साझा ना करें। अपने परिवार से बात करें, नजदीकी पुलिस स्टेशन या हेल्पलाइन से संपर्क करें। सबसे ज्यादा ये ठग निशाना बनाते हैं बुजुर्गों को। श्रोता, और डिजिटल अरेस्ट के सबसे बड़े शिकारी हैं बुजुर्ग नागरिक, रिटायर्ड कर्मचारी, अकेले रहने वाले लोग। इसलिए आपसे अपील है, अपने माता पिता को ये जानकारी जरूर दें, उन्हें समझाएं कि फोन पर गिरफ्तारी नहीं होती है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप समझ सकते हैं कि ये किसी ठग का काम है आपको ठगने के लिए। अगर गलती से आप इस ठग का शिकार हो जाते हैं और आपके पैसे चले जाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है? अगर ठगी हो जाए तो सबसे पहले तो घबराना नहीं है, तुरंत एक नंबर मैं आपको बताने वाला हूँ, वो नंबर है 1930। इस नंबर पर कॉल करके अपनी सारी परेशानी को उनसे बताएं। अगर आप कॉल नहीं कर पा रहे हैं तो www.cybercrime.government.in पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करें। जितनी जल्दी शिकायत दर्ज होगी उतनी ज्यादा रिकवरी की संभावना बनेगी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिजिटल अरेस्ट से बचने के
2: ऐसे कौन कौन से नियम हैं जिनका आप पालन कर

0: सकते हैं और आप इस अरेस्ट से बच सकते हैं। सबसे पहले पुलिस फोन पर गिरफ्तारी नहीं करते हैं, ये आपको समझनी है। सरकारी अधिकारी कभी आपसे पैसा नहीं मांगता है। डर दिखाया जाए, समझ जाइए कि शायद आपके साथ ठगी हो सकती है। किसी से बात करने से रोका जाए, खतरे की घंटी हमेशा इस बात का ध्यान रखें, पुष्टि हमेशा खुद से करें। जाते जाते मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहूंगा कि डिजिटल अरेस्ट सिर्फ एक झूठ है, लेकिन इसका डर सच्चा नुकसान करता है। डर को हराइए, जानकारी को हथियार बनाइए। याद रखिए, डर में लिया गया फैसला नुकसान करता है, समझदारी आपको सुरक्षित रखती है। यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की ओर से। जाते जाते आप सभी से इतना कहना चाहूंगा, सुरक्षित रहें, जागरूक रहें। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आज राज। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz। एक बार फिर मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो कृपया करके आप सबसे पहले तो घबराएं नहीं। अगर आपके साथ ऐसी कोई चीज हो गई है तो 1930 पर कॉल करें। अगर आपको अपनी शिकायत दर्ज करनी है तो www.cybercrime.government.in पर जाकर आप अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। हाँ, घबराना नहीं है, सुरक्षित रहें, जितनी जानकारी उतनी ज्यादा सुरक्षा। तो अभी के लिए लेता हूँ अलविदा, बाय बाय, टेक केयर।
1: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
2: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
3: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
2: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
4: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
5: यू आर लिसनिंग FM मुरादाबाद 89.6 MHz।
6: कमिटेड टू कम्युनिटी।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी रेडियो की जुबानी। आज नवरात्रि का चौथा दिन है। शक्ति की आराधना का यह पावन पर्व हमें नारी के दिव्य स्वरूपों से परिचित कराता है। नवरात्रि के इस चतुर्थ दिवस पर हम पूजन करते हैं माँ कुष्मांडा की, जिन्हें सृष्टि की आदि शक्ति और ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। माँ कुष्मांडा का स्वरूप हमें यह संदेश देता है कि सृजन, सकारात्मकता और ऊर्जा से ही नई संभावनाओं का जन्म होता है। और आज का उत्तर प्रदेश इसी सृजनशील शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार ने विकास की एक नई दिशा तय की है, जहां हर क्षेत्र में नवाचार, आत्मनिर्भरता और प्रगति को बढ़ावा मिल रहा है। आज प्रदेश की महिलाएं सिर्फ भागीदारी ही नहीं बल्कि विकास की अंगदूत बन चुकी हैं। चाहे वह स्वरोजगार हो, स्टार्टअप हो या फिर समाज में नेतृत्व की भूमिका, हर क्षेत्र में उनका योगदान है प्रदेश की प्रगति को नई ऊर्जा दे रहा है। विभिन्न योजनाओं और प्रयासों के माध्यम से एक ऐसा वातावरण तैयार हुआ है जहां महिलाएं अपने सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ रही हैं, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के साथ। तो आइए माँ कुष्मांडा की सृजन शक्ति और ऊर्जा से प्रेरणा लेकर हम सभी मिलकर विकास और नारी सशक्तिकरण के इस सफर को और गति दें। मैं हूँ आपका दोस्त आरजे राज और आप सुन रहे हैं विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी रेडियो की जुबानी। बने रहिए FM मुरादाबाद के साथ, जानने के लिए कि कैसे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चल रहा उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण विकास मिशन यानी UPSRLM उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में मील का पत्थर साबित हो रहा है।
1: कहते हैं कि जब कोई आपकी सहायता करते हैं तो उन्हें धन्यवाद करने में देरी नहीं करनी चाहिए, फिर चाहे वो मदद किसी दोस्त ने की हो या फिर रिश्तेदार ने या फिर खुद सरकार ने।
0: साथियों, विनय कुमारी का गांव घाटमपुर कानपुर में स्थित है, जहां के लोग बहुत सीधे साधे और जमीन से जुड़े हुए हैं। यहां आज भी पेड़ पौधे और धरती माता पूजी जाती हैं और यहां के निवासी प्रकृति को ही अपना सर्वत्र मानते हैं।
1: मैं 10वीं कक्षा में थी तब से मेरी रुचि खेती में बढ़ गई थी। स्कूल में मास्टर जी जब जीव ज्ञान पढ़ाते थे तो पूछे गए सवालों का जवाब देने के लिए मेरा हाथ सबसे पहले उठ जाता था।
0: 12वीं में अच्छे अंकों से पास होने के बाद विनय कुमारी ने BSc एग्रीकल्चर में दाखिला लिया और अपनी रुचि को पेशे में बदलने का निश्चय किया,
1: जहां मेरे साथ के सभी सहपाठी बड़े शहर में नौकरी करने को इच्छुक थे। मेरी मनसा अपने गांव के लिए कुछ करने की थी, पर अपनी कोशिश में मैं अकेली नहीं थी। मेरे साथ की थी मेरी सहेली किरण, जो क्लास में तो मुझसे जूनियर थी लेकिन जानकारी और समझदारी में आगे। उसने ही मुझे उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में बताया।
0: दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन यानी UPSRLM ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूह SHG के माध्यम से जोड़कर बैंकिंग सखी, सोलर शॉप और मधुमक्खी पालन जैसी योजनाओं द्वारा आर्थिक आत्मनिर्भरता प्रदान करता है। आज यह योजना उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के 826 ब्लॉकों में मौजूद है, 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को सशक्त बना रही है।
1: जैसे ही किरण ने मुझे इस योजना के बारे में बताया, हम दोनों ने जन सेवा केंद्र गए और सरकारी दफ्तरों से भी विस्तार में जानकारी ली। इसके
2: suryaghar.gov.in
3: हर घर सूर्य घर।
4: पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं इससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि हम क्या हैं।
5: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कुशीनगर में 424 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास, कहा डबल इंजन सरकार ने तैयार किया विकास, सुरक्षा और रोजगार का नया वातावरण। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के चिलुआ ताल में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से पर्यटन विकास कार्यों का किया लोकार्पण। कहा, प्राकृतिक स्थलों को पर्यटन डेस्टिनेशन में बदल रही है सरकार। केंद्र सरकार ने CBSE के चेयरमैन और सचिव का किया तबादला। ऑन स्क्रीन मार्किंग सेवाओं की खरीद की जांच के लिए समिति गठित। और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज आगरा के कैलाश मंदिर में किया दर्शन पूजन। कहा, शुद्ध मतदाता सूची ही निष्पक्ष चुनावों की नींव। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कुशीनगर में 424 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 278 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार ने विकास, सुरक्षा और रोजगार का नया वातावरण तैयार किया है। कुशीनगर अब पिछड़ेपन की पहचान नहीं बल्कि तीव्र गति से आगे बढ़ते नए उत्तर प्रदेश का प्रतीक बन रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है।
2: इसी सत्र में हम लोग कुशीनगर के कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का भी संचालन करने जा रहे हैं। उसमें सत्र प्रारंभ होगा, बच्चों का एडमिशन हम करवाएंगे। कुशीनगर में अपना विश्वविद्यालय हो, कुशीनगर जनपद में मेडिकल कॉलेज हो। कुशीनगर जनपद में अब किसानों को गन्ने का दाम अब 315 नहीं बल्कि 400 रुपया कुंटल हम देने का काम कर रहे हैं और गन्ना का मूल्य समय पे मिले यह सुनिश्चित किया जा रहा है। अब इंसेफ्लाइटिस की बीमारी वैसे ही समाप्त हो गई है जैसे माफिया यूपी से समाप्त हो गए हैं।
5: मुख्यमंत्री ने आज गोरखपुर के चिलुआ ताल में 20 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से पर्यटन विकास और सौंदर्यीकरण कार्यों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में ताल और पोखरों की उपेक्षा होती थी लेकिन डबल इंजन की सरकार ताल और पोखरों का संरक्षण करती है, प्रकृति के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करती है, इन्हें टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित कर रही है। केंद्र सरकार ने CBSE के चेयरमैन और सचिव का तबादला कर दिया है। वहीं CBSE द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग सेवाओं की खरीद की जांच के लिए एक जांच समिति का गठन किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: CBSE ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। बोर्ड ने बताया कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए आधार सत्यापन को शामिल किया गया है। जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है उनके माता पिता, रिश्तेदार या अभिभावक के आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। विद्यार्थियों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपए और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपए का भुगतान करना होगा। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
5: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज आगरा के कैलाश मंदिर में विधि विधान के अनुसार भगवान शिव की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने मतदाताओं से आग्रह किया है कि वे अपना वोटर आईडी कार्ड अवश्य बनवाएं और चुनावों में अपना वोट डालें। उन्होंने कहा कि एक शुद्ध मतदाता सूची ही निष्पक्ष चुनावों की नींव होती है। श्री कुमार 2 दिवसीय दौरे पर कल आगरा पहुंचे थे।
7: आगे आने वाले चुनाव भी पारदर्शी और ट्रांसपेरेंट होंगे। शुद्ध मतदाता सूची ही पारदर्शी चुनावों की आधारशिला है। आइए अपना वोट जरूर बनवाइए और चुनावों में वोट जरूर करिए।
5: मुख्य सचिव SP गोयल ने उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026 के मास्टर प्लान और लेआउट का अवलोकन करते हुए संबंधित विभागों को समयबद्ध और प्रभावी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। श्री गोयल ने कल ट्रेड शो की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि 25 से 29 सितंबर तक होने वाला ये शो और अधिक भव्यता के साथ आयोजित किया जाए। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। देश में प्रधानमंत्री

0: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गांव तक पहुंच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918-929 हो गया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। देश भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आगरा के बिरहरू को भी नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार मिलेगा। बिरहरू ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान भूरी सिंह परमार इस उपलब्धि के लिए कल दिल्ली में सम्मान ग्रहण करेंगे। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए सरकार और ग्राम पंचायत का आभार व्यक्त किया है।
2: ये गांव की जनता का पूरा सहयोग रहो, सरकार का भी बहुत सहयोग रहो। पहली बार मैं प्रधान बनूं और गांव की दुर्दशा पहले बहुत ज्यादा खराब थी, लोगों के हिसाब से सरकार को सहयोग और सब गलियां पक्की, इंटरलॉक, सीसी सब कराई गई। बाकी पंचायत घर, सचिवालय, आरआरसी सेंटर, लैब, लाइब्रेरी, ऐसे बहुत से कार्य करे गए। सरकार को बहुत धन्यवाद।
1: उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने के आरोप में आजमगढ़ से एक युवक को गिरफ्तार किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: ये आतंकवादी गिरोह नौजवानों को अहम व्यक्तियों और संस्थानों की निगरानी करने, उनकी हत्या करने, राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर बमबारी करने, सुरक्षा एजेंसियों के कर्मचारियों की हत्या करने और उनके कार्यालयों और मुख्यालयों पर हमला करने जैसे अपराध को अंजाम देने के लिए उकसा रहा था। खुफिया जाँच के दौरान आजमगढ़ निवासी मोहम्मद शेख का पता चला, जो इस गैंग से जुड़ा हुआ था। शेख पाकिस्तान और दुबई के फोन नंबरों का उपयोग करके व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए शहजाद भट्टी के आतंकवादी गिरोह से जुड़ा हुआ था। वो अपने साथियों और अन्य लोगों को भी आतंकवादी गिरोह में शामिल होने और गैर कानूनी काम को अंजाम देने के लिए भड़का रहा था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: ज्येष्ठ माह के 5वें बड़े मंगल के अवसर पर लखनऊ के प्रमुख हनुमान मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की कतार देखने को मिली। बजरंगबली के जयकारे के साथ लोग दर्शन पूजन करते नजर आ रहे हैं। जगह जगह भंडारों का भी आयोजन किया जा रहा है। वहीं अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर में भी बड़े मंगल पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में अगले 3 दिनों तक गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया है। इस दौरान प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में तेज झोंकेदार हवाओं के साथ बिजली कड़कने की चेतावनी जारी की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कुशीनगर में 424 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार ने तैयार किया विकास, सुरक्षा और रोजगार का नया वातावरण। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के चिलुआ ताल में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से पर्यटन विकास कार्यों का किया लोकार्पण। कहा, प्राकृतिक स्थलों को पर्यटन डेस्टिनेशन में बदल रही है सरकार। केंद्र सरकार ने CBSE के चेयरमैन और सचिव का किया तबादला। ऑन स्क्रीन मार्किंग सेवाओं की खरीद की जांच के लिए समिति गठित। और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज आगरा के कैलाश मंदिर में किया दर्शन पूजन। कहा, शुद्ध मतदाता सूची ही निष्पक्ष चुनावों की नींव। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।
4: से तो हम दोनों सखियों ने ठान लिया था कि अपने साथ साथ गांव की हर एक महिला को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है।
5: श्रोताओं, हमारे देश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग अक्सर अपने पैसे निकालने या बैंक खातों की जानकारी अपडेट करने के लिए पास के शहरों में स्थित बैंक शाखाओं पर जाते हैं, जिससे वित्तीय सेवाओं तक पहुँचने की लागत बढ़ जाती है। ऐसा माना जाता है कि ग्रामीण महिलाएं अक्सर बैंकिंग लेन देन के लिए रिश्तेदारों या दोस्तों पर निर्भर रहती हैं।

0: इसके अलावा गरीब लोग अक्सर बिचौलियों की भीड़ में परेशान रहते हैं। कई बार ये बिचौलिए गरीबों के फायदे के लिए लेन देन की प्रक्रिया को आसान बनाने का वादा करते हैं और बाद में धोखाधड़ी भी करते हैं। प्रौद्योगिकी की प्रगति और बैंकिंग सुविधाओं की पहुंच बढ़ने के बावजूद भारत में ग्रामीण निवासियों के लिए बैंकिंग सेवाओं में सुधार की गुंजाइश है और ऐसी चुनौतियों को खत्म करने के लिए ही प्रदेश सरकार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन चला रही है।
1: इस योजना के अंतर्गत हमें ट्रेनिंग दी गई, जिसमें हमें जैविक कृषि के कई पहलुओं को समझा और रासायनिक खादों का दुष्प्रभाव, बेस्ट डीकम्पोजिशन का महत्व, समय समय पर खेतों की मिट्टी की जांच एवं संतुलित उर्वरक प्रबंध मिशन, खेती और उन्नत बीजों के माध्यम से पैदावार में बढ़ोतरी करना, सरकारी सब्सिडी और कृषि यंत्रों में संबंधित तमाम तरीके की जानकारी प्राप्त की। मैंने अपने गांव में बजरंगबली सहायता समूह और किरण के महालक्ष्मी सहायता समूह बनाया और हम दोनों ने अपने अपने गांव की महिलाओं को अपने साथ जोड़ा।
0: दोस्तों, इस योजना के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट BC सखियों की नियुक्ति हेतु दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुरूप उत्तर प्रदेश सरकार ने BC सखी कार्यक्रम या मिशन एक ग्राम पंचायत एक BC सखी को अपनाया है, जिसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूह SHG की महिला सदस्यों को प्रशिक्षित और प्रमाणित करना है। SHG की यह अवधारणा महिलाओं पर केंद्रित सबसे बड़े ऋण और बचत कार्यक्रमों में से एक है, जिसका उद्देश्य वित्तीय निर्णयों में महिलाओं की भूमिका और स्थिति को बेहतर बनाना है। इसके बाद BC सखियां उन क्षेत्रों में भी बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर सकती हैं जहां बैंक की शाखाएं मौजूद नहीं हैं।
1: जब हमने अपने स्तर पर थोड़ी और जानकारी प्राप्त की तो पता चला कि इस कार्यक्रम के तहत BC सखियों को बैंक सेवा व्यवसाय की स्थिरता करने में मदद करने के लिए 6 महीने तक प्रति माह 4,000 की राशि प्रदान की जाती है। व्यवसाय बढ़ाने पर BC सखियों को उनके द्वारा किए गए लेन देन की राशि के आधार पर कमीशन का भुगतान किया जाता है, जो आमतौर पर लेन देन की राशि का यानी कि 0.20% या 0.32% होता है। संभावित महिला स्वयं सहायता समूह SHG सदस्यों को जिला स्तर पर ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों RSETI या अन्य चयनित स्थानों पर BC मॉडल का प्रशिक्षण किया जाता है। RSETI में पहले से ही बैंकिंग संवाददाता प्रशिक्षण पर ही 6 दिवसीय पाठ्यक्रम उपलब्ध है, जिसे भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय MORD द्वारा अधिसूचित किया गया है। प्रशिक्षुओं के प्रत्येक बैच को 6 दिन का प्रशिक्षण किया जाता है।
0: दोस्तों, उत्तर प्रदेश में COVID-19 महामारी के लॉकडाउन के बीच मई 2020 में 58,000 BC सखियों को तैयार करने के लक्ष्य के साथ यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। वर्तमान में राज्य में 38,435 BC सखियां कार्यरत हैं, जिन्हें भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान IIBF द्वारा प्रशिक्षित और प्रमाणित किया गया है। उत्तर प्रदेश में यह मॉडल समाज के उन वर्गों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने का एक किफायती और टिकाऊ यंत्र साबित हुआ है, जो बैंकिंग सुविधाओं से वंचित है।
1: आज प्रदेश सरकार और हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की वजह से यह संभव हो पाया है कि हमारे गांव की महिलाएं अपने आप को आर्थिक और सामाजिक तौर पर सशक्त महसूस करती। हमारे जीवन को यह नई दिशा देने के लिए योगी जी को अनेक धन्यवाद।
0: श्रोताओ, कानपुर के गांव घाटमपुर के इन दो कृषि सखियों का प्रयास उनके गाँव की दूसरी महिलाओं को आत्मनिर्भरता का रास्ता दिखा रहा है। इन सखियों ने अपनी मेहनत और सरकारी सहयोग से यह साबित कर दिया है कि यदि सही मार्गदर्शन और अवसर मिले तो महिलाएं कृषि के क्षेत्र में भी बड़ी सफलता हासिल कर सकती हैं। विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी रेडियो की जुबानी। आज के लिए बस इतना ही, फिर जुड़ेंगे आपसे लेकर उत्तर प्रदेश की जनता की सफलता की दूसरी कहानियों के साथ। पर तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ FM मुरादाबाद 89.6 MHz। रेडियो बजाते रहो, गुनगुनाते रहो। नमस्कार।
2: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
1: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
2: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
3: कॉल 8826213131।
4: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: ने जिनको पूछा, सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के सेवाओं की खरीद से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ाई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुराड़ी स्थित परिवहन विभाग के विभिन्न केंद्रों का औचक निरीक्षण कर बुनियादी ढांचे और जन सुविधाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया, 6 मई से राजधानी में संचालित मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट के माध्यम से अब तक 4 लाख से अधिक लोगों को राहत पहुंचाई गई। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम प्रणाली के सेवाओं की खरीद से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति 1 माह के भीतर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। समिति के अध्यक्ष आवश्यकतानुसार अन्य कार्य के अधिकारियों की सहायता ले सकती हैं। समिति को सचिवालय सहायता क्षमता निर्माण आयोग द्वारा प्रदान की जाएगी। सीबीएसई पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर वर्तमान में 8,000 से अधिक उपयोगकर्ता एक साथ काम कर रहे हैं। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अब तक 16,000 से अधिक छात्र सफलतापूर्वक अपना मूल्यांकन जमा कर चुके हैं।
3: सीबीएसई ने कहा है कि विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया के आधार पर प्लेटफॉर्म को और बेहतर बनाया गया है। साथ ही सत्र की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है ताकि विद्यार्थियों के लिए प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक और सुगम हो सके। बोर्ड ने बताया कि पोर्टल की सेवा में व्यवधान डालने के लिए 2 मिनट के अंदर लगभग 15 लाख आवेदन भेजे गए। बोर्ड ने बताया कि सिस्टम पर उपलब्ध फाइलों तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के 1 लाख से अधिक प्रयास किए गए। सीबीएसई ने घोषणा की है कि 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिका की स्कैन की गई प्रति में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनः मूल्यांकन के लिए आवेदन करने का पोर्टल शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। विद्यार्थियों को अपने आधार नंबर का उपयोग करके सीबीएसई वेबसाइट के माध्यम से लॉगिन करना होगा और ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा। बोर्ड ने कहा कि शुल्क भुगतान सहित पूरी प्रक्रिया डिजिटल रूप से संपन्न की जाएगी। उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन का शुल्क प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपए है, जबकि उत्तरों के पुनः मूल्यांकन का शुल्क प्रति प्रश्न 25 रुपए होगा। प्रादेशिक समाचार के लिए प्रियंका अरोड़ा।
2: दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश अजय गुप्ता ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें मंगीलाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल, यश यादव और धनंजय लोखंडे की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी। कल भौतिकी व्याख्याता मनीषा संजय हवलदार, बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे और भौतिकी के शिक्षक तेजस हर्षद कुमार शाह को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। सीबीआई ने अब तक इस मामले में 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले महीने नीट परीक्षा के पेपर लीक होने के आरोपों के बीच एनटीए ने 3 मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा रद्द कर दी थी। पुनर्परीक्षा 21 जून को निर्धारित की गई है। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री शोध पीठ योजना 2026 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस प्रमुख राष्ट्रीय पहल का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं, अनुसंधान संस्थानों और उद्योगों से भारतीय मूल के प्रतिभाशाली अनुसंधानकर्ताओं, वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों और पेशेवरों को देश भर के प्रमुख सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और अनुसंधान केंद्रों की ओर आकर्षित करना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज बुराड़ी स्थित परिवहन विभाग के विभिन्न केंद्रों का व्यापक निरीक्षण कर नागरिक सुविधाओं, बुनियादी ढांचे और सेवा गुणवत्ता का जायजा लिया। इस दौरान श्रीमती रेखा गुप्ता ने निर्माणाधीन स्वचालित परीक्षण स्टेशन, जिला परिवहन कार्यालय, वाहन निरीक्षण इकाई और वाहन प्रशिक्षण संस्थान का दौरा किया।
4: मुख्यमंत्री ने सबसे पहले निर्माणाधीन स्वचालित परीक्षण स्टेशन परियोजना का निरीक्षण किया। उन्होंने परियोजना के डिजाइन, क्षमता, जल निकासी व्यवस्था पर विस्तृत चर्चा कर अधिकारियों से निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी प्राप्त की। वहीं डीटीओ कार्यालय के निरीक्षण के दौरान श्रीमती गुप्ता ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी नागरिक को अनावश्यक रूप से भवन के बाहर प्रतीक्षा करने के लिए बाध्य न किया जाए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त क्षमता वाला आधुनिक प्रतीक्षालय विकसित किया जाए जहां समुचित सुविधा उपलब्ध हो। उन्होंने परिवहन क्षेत्र में व्यापक सुधारों के लिए दिल्ली सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। शिवांग की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए प्रशांत कुमार।
2: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया है कि पिछले महीने की 6 तारीख से राजधानी में संचालित मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट के माध्यम से अब तक 4 लाख से अधिक लोगों को राहत पहुंचाई गई है। श्रीमती रेखा गुप्ता ने बताया कि इस दौरान 1 लाख से अधिक लीटर पेयजल वितरित किया गया, साथ ही 2 लाख से अधिक ORS पैकेट, 67 से अधिक गमछे और 49 से अधिक कैप लोगों को उपलब्ध कराई गई हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि लोगों को तेज धूप से बचाने के लिए मेट्रो स्टेशन और प्रमुख बाजारों में अस्थायी शेड स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मध्य जिले में इन शेड के माध्यम से अब तक 5,000 से अधिक लोगों को लाभ मिला है। पश्चिम जिले में 920 लोगों को लाभ मिला। मुख्यमंत्री ने नागरिकों से अपील की है कि वे हीट वेव से बचाव संबंधी सभी सावधानियों का पालन करें। दिल्ली नगर निगम ने आज ड्रोन आधारित भूस्थानिक सर्वेक्षण और डिजिटल ट्विन पहल के पायलट प्रोजेक्ट के लिए 4 एजेंसियों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। निगम ने बताया कि इन पायलट परियोजनाओं के अंतर्गत ड्रोन आधारित हवाई सर्वेक्षण, लिडार मैपिंग, 3D सिटी मॉडलिंग और आधुनिक डेटा विश्लेषण का इस्तेमाल किया जाएगा। इस पहल से निगम को संपत्ति कर प्रशासन को मजबूत करने, शहरी नियोजन को बेहतर बनाने और निगम प्रशासन के लिए एक मजबूत भूस्थानिक डेटाबेस तैयार करने में मदद मिलेगी। दिल्ली नगर निगम के आयुक्त संजीव खिरवार ने आज सिटी SP जोन के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण कर जल भराव की रोकथाम और चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान श्री खिरवार ने किशनगंज स्थित रेलवे अंडरब्रिज का दौरा कर जल भराव की संभावित समस्या से निपटने के लिए किए जा रहे प्रबंधों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एहतियातन पंपों की पर्याप्त व्यवस्था शीघ्र सुनिश्चित की जाए और मानसून प्रारंभ होने से पूर्व उन्हें परिचालन योग्य बनाया जाए। इससे वर्षा के दौरान जल निकासी में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होगी। दिल्ली सरकार ने राजधानी के जल भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए जल वितरण व्यवस्था में व्यापक सुधारों की शुरुआत की है। राजधानी में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि ये सुधार जल के समान वितरण, जल हानि में कमी, पुरानी जल अवसंरचना के आधुनिकीकरण और शोधित जल के पुनः उपयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित हैं। श्री सिंह ने कहा कि इस परियोजना के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व, जल मांग, उपलब्ध आपूर्ति और मौजूदा अवसंरचना का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाएगा, जिससे किसी भी क्षेत्र को पानी की कमी का सामना न करना पड़े और उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग हो। श्री सिंह ने बताया कि दिल्ली जल बोर्ड की 30 वर्ष से अधिक पुरानी पाइपलाइन को बदलने और पूरे वितरण नेटवर्क को मजबूत बनाने का कार्य सरकार द्वारा किया जा रहा है।
5: ये जो पुरानी लाइनें होती हैं इनमें लीकेज बहुत होती है। जितना पानी हम अपने WTP से छोड़ते हैं लोगों के लिए, वो पुरानी लाइनें होने की वजह से लीकेज में पानी खराब हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। उन सारी लाइनों को चेंज करने के लिए हमारी योजना बन चुकी है, बहुत सारे हमारे टेंडर हो चुके हैं और बहुत सारे होने वाले हैं।
2: श्री सिंह ने कहा कि सरकार दिल्ली सब ब्रांच नहर को खुली नहर प्रणाली से बंद पाइपलाइन आधारित प्रणाली में बदलने की संभावना पर भी काम कर रही है। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाओ ईंधन बचाओ संकल्प को आगे बढ़ाते हुए आज रोहतास नगर विधानसभा क्षेत्र का निरीक्षण DTC की देवी इलेक्ट्रिक बस से किया। श्री सिंह ने बताया कि निरीक्षण के दौरान नागरिकों ने सड़क, जलापूर्ति, जल निकासी, स्वच्छता और अन्य विकास कार्यों से संबंधित समस्याएं और सुझाव रखे। श्री सिंह ने सभी समस्याओं का संज्ञान ते हुए लोक निर्माण विभाग, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली नगर निगम और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए।
6: सारे अधिकारी हमारे साथ ही हैं, सारे कार्यों को नोट कर रहे हैं और कोई भी पैसे की कमी नहीं है। मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, खूब हमको पैसा मिल रहा है। हमारे अधिकारी एस्टीमेट बना रहे हैं, कामों को जितना जल्दी हो सके तेजी से करने की कोशिश।
2: दिल्ली कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और रविंदर इंदराज सिंह ने आज बवाना क्षेत्र का दौरा कर क्षेत्र की आधारभूत संरचना और नागरिक सुविधाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान क्षेत्र में सड़क, स्वच्छता, जल निकासी, स्ट्रीट लाइट, यातायात प्रबंधन तथा अन्य नागरिक सुविधाओं की स्थिति की समीक्षा की गई। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आज रोहिणी क्षेत्र स्थित प्रिंटर अपार्टमेंट हाउसिंग सोसाइटी में एरोबिन का लोकार्पण किया। श्री वाही ने बताया कि एरोबिन की सहायता से एक बिन में 10 किलो गीले कूड़े को बायोकल्चर की सहायता से कंपोस्ट खाद में बदल दिया जाता है। उन्होंने कहा कि इस तकनीक के माध्यम से स्रोत पर ही कचरे का पृथक्करण और निस्तारण करने में सहायता मिलेगी। श्री वाही ने हाउसिंग सोसाइटी से अपने प्रांगण में एरोबिन स्थापित करने की मुहिम से जुड़ने का अनुरोध किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। ये प्रतिष्ठित पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा उन बच्चों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने वीरता, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, खेल, कला और संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसी श्रेणियों में उत्कृष्टता प्रदर्शित की है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया है कि नामांकन केवल awards.gov.in पर स्थित राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ही प्राप्त किए जाएंगे। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। देश भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। समारोह के दौरान 34 ग्राम पंचायतों को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार श्रेणी के तहत और 8 पंचायतों को नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार श्रेणी के तहत पुरस्कार दिए जाएंगे। विश्व मौसम संगठन ने अल नीनो के बनने की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने कहा है कि इस वर्ष जून और अगस्त के बीच अल नीनो के प्रभाव की 80% संभावना है और ये नवंबर तक जारी रह सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण इसका प्रभाव और भी गंभीर होगा। दिल्ली में आज के सुबह के समय हल्की धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 37.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग के अनुसार कल राजधानी में बादल छाए रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ने पिछले महीने 23 अरब 20 करोड़ लेनदेन का रिकॉर्ड बनाया है। इस उपलब्धि पर वित्त सेवा विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से नागरिकों को डिजिटल भुगतान अपनाने के लिए धन्यवाद दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के सेवाओं की खरीद से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ाई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुराड़ी स्थित परिवहन विभाग के विभिन्न केंद्रों का औचक निरीक्षण कर बुनियादी ढांचे और जन सुविधाओं की समीक्षा की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।
3: टायर लो सोना जीतो।
0: क्या?
3: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
4: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड अपोजिट मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
5: ऑफर वैलिड टिल 10th जून, TNC अप्लाई।
6: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे RJ आनंद को। ऑफकोर्स जब आनंद आता है तो कुछ ना कुछ स्पेशल लेकर आता है, और आज एक और खास बातचीत में एक खास एक्सपर्ट को हमने आमंत्रित किया है अपने स्टूडियो में। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ही सीरियस भी है, लेकिन काफी मजेदार भी होने वाला है। यस, आज हम बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ के बारे में। जी हाँ, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य है, बहुत जरूरी है इस पर बात करना। और मुझे लगता है आजकल के लाइफस्टाइल इतना बिजी है, जितना ज्यादा प्रेशर हमें और आपको मिल रहा है ना, उससे कहीं ज्यादा हमें स्ट्रेस देखने को मिलता है। आजकल के छोटे बच्चे, बड़े, जितने भी लोग हैं, सब कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ को लेकर जूझ रहे हैं, और आज इसी पर हमने सोचा बात करना जरूरी है। यार, रेडियो आप सुनते हैं तो काम की बातें भी होनी चाहिए, और इसीलिए आज हम अपने बीच में एक बहुत ही कमाल की एक्सपर्ट को लेकर आए हैं, जो आपको तमाम सारी चीजें बताने वाली है, और मेरे और आपके मन में जो मिथ है वो भी आज क्लियर होंगे। जी हाँ दोस्तों, मुझे लगता है कि मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का मतलब सिर्फ मानसिक समस्याओं को समझना नहीं है या उनके लक्षणों को पहचानना नहीं, बल्कि उसका जो डर है आपके मन में, जो झिझक है, उसको भी कम करना बहुत जरूरी है। और आज यही हम समझेंगे हमारी एक्सपर्ट से। लेडीज एंड जेंटलमैन, यस ऑफकोर्स आप सही सुन रहे हैं, और आज हमारे बीच में जो मौजूद है, शी इज एब्सोल्यूट अल्टीमेट लेडी और बहुत ही कमाल की एक्सपर्ट, आज इनसे बात करना तो बनता है इस प्रोग्राम में। तो अब आइए जरा मैम से आपको रूबरू कराते, लेकिन उससे पहले मैं तो मैम का तारुफ करा दूं। तो आज हमारे स्टूडियो में है मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल डॉक्टर मनोरंजनी जी। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में, वेलकम टू FM मुरादाबाद, एंड हाउ वी डूइंग, कैसे हैं आप?
7: थैंक यू मिस्टर आनंद, मैं बहुत अच्छी हूँ, और आप लोग से मिलने में मुझे बेहद खुशी हो रही है, एंड आई एम सो ग्रेटफुल आप लोग हमें इन्वाइट किया है। एंड ये जो मंच है, ये मेनी पब्लिक को ये रीच होना है, एंड इंक्लूडिंग चिल्ड्रेन, एडोलेसेंट, सब लोग इसमें से एटलीस्ट कुछ चीजें लेके जाना है, ताकि दे कैन इम्प्लीमेंट इन देयर लाइफ, राइट? जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, दैट दे हैव टू अप्लाई इन डेली लाइफ, राइट? तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे चीजें, छोटे छोटे स्टोरी शेयर करेंगे, सो दैट दे विल बी इम्प्रेस्ड बाय इट, एंड अपनी लाइफ में वो आगे बढ़ सके।
6: That's very nice, ma'am. Wonderful intro. Thank you so much. And आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपको रेडियो स्टेशन में आके कैसा लग रहा है?
7: रेडियो स्टेशन, दिस इज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, एंड दिस इज ऑल्सो नॉर्थ इंडिया आने के बाद दिस इज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस दैट आई गॉट, एंड यहाँ पे मेरा पहले बात हुई है मिस्टर गौरव जी से, ही इज सो गुड, एंड आई हैव कम अक्रॉस विद मिस्टर अखिल, एंड ही इज सो नाइस एंड टेकिंग केयर ऑफ द थिंग्स, एंड सो आज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, एंड वी बोथ विल बी बेनिफिटेड बाई दिस। थैंक यू सो मच।
6: तो दोस्तों, मैम को अभी आपने सुना, और जैसे कि मैंने आपको बताया, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल डॉक्टर मनोरंजनी जी हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं। सो मैम, आई वांट टू आस्क यू, दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा सा अपने बारे में हमारे लिसनर्स को बताइए, जो लोग आपको सुन रहे हैं वो आपके बारे में जानना चाहते हैं।
7: ओके, आई एम सो प्रिविलेज्ड मिस्टर आनंद, आई एम डॉक्टर मनोरंजनी विष्णु प्रियन जे, बट मैं ये जो डॉक्टर टाइटल लेने से पहले आई हैव स्टार्टेड माई वेरी बेसिक, राइट, एज अ BSc नर्सिंग कम्प्लीशन स्टूडेंट। यस, तो BSc नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद आई हैव ट्रैवल्ड टू देहरादून, एंड आई हैव मेट अ विजनरी लीडर, right, our vice chancellor Dr. Vijay Dasmana ji, he had a full hope on me, and mujhe language nahi pata, mujhe basic hindi nahi aata, but still unka jo hope hai, right, wo mujh par itna bharosa rakhe hain, to wo mujhe leke aaye Dehradun tak, right, kahan se, Chennai se Dehradun tak, that itself a motivating for me, to wahan pe I have trained myself as a staff nurse, to uske baad I become as a clinical instructor, fir wo jo विजनरी लीडर है जिनके बात मैं कर रही हूँ, डॉक्टर विजय दसमाना जी, ही हैड फुल होप ऑन मी, एंड वो मुझे बोला है, मनो यू गो बैक टू चेन्नई, राइट, आप चेन्नई जाओ और आगे पढ़ो। तो मैं गए चेन्नई एंड आई डिड माय मास्टर्स. तो मास्टर्स मैंने साइकेट्री नर्सिंग में किया है, जिसको हम बोलते हैं मानसिक स्वस्थता, राइट, उसमें हम जागरूक करने के लिए. तो आई हैव कंप्लीटेड. फिर आई वेंट बैक टू देहरादून एंड मेरा करियर दोबारा वहां शुरू हुआ एज ए नर्सिंग ट्यूटर. फिर मैं हुई असिस्टेंट प्रोफेसर, राइट. तो ऐसे देहरादून में आई हैड 13 फुल ईयर्स ऑफ अ हैंडसम एक्सपीरियंस, राइट. नॉट ओनली एक्सपीरियंस बट ऑल्सो अ वेरी बहुत अच्छे अच्छे मेमोरीज. देन आई हैव ट्रेवल्ड to other part of Delhi and मैंने करियर ऐसे आगे बढ़ाया as a vice principal, as a professor.

0: कहाँ शुरू करें, बट वंस वी स्टेप इन टू इट राइट, तो विथ अ गुड होप एंड स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स जरूर हम आगे बढ़ेंगे. यस, अपार्ट फ्रॉम दिस आई एम ऑल्सो अ सर्टिफाइड काउंसलर एंड हु डू ऑनलाइन काउंसलिंग कॉन्सेंट्रेटिंग मोर ऑन एडोलेसेंस. यस, स्टूडेंट्स, चिल्ड्रेन एंड जिनका मानसिक स्वास्थ्य इतना अच्छा नहीं है, मानसिक रोग है राइट, बीमारी है, उन लोग ट्रीटमेंट के बाद जो गिविंग अ साइको एजुकेशन, उन लोग आगे नेक्स्ट लाइफ में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए. हम मानते हैं उन लोग को तकलीफ है, पर हम उनको ऐसे छोड़ नहीं सकते है ना.
1: Exactly.
0: तो आगे हम उनको कैसे अपनी लाइफ स्टाइल के साथ, दवाई के साथ साथ नॉर्मल लाइफ कैसे वो लोग जिएंगे राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट द होल कॉम्पैक्ट of Manoranjini.
1: That's very nice, ma'am. Such a beautiful introduction and you are so ultimate, absolutely.
0: Thank
1: and
0: you.
1: I'm super glad with you.
0: Thank
1: because
0: you.
1: जब हम लोगों के साथ अच्छे लोगों के साथ जुड़ते हैं, अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं, तो फीलिंग्स और पॉजिटिविटी दोनों ही मैच हो जाती है, मजा आ जाता
0: है. Of course, of course.
1: And you are also very positive.
0: Thank you so much.
1: Well, आगे बढ़ते हैं और आज का मेरा पहला क्वेश्चन होगा मैम आपके लिए, वॉट इज मेंटल हेल्थ, बेसिकली क्या है ये?
0: देखिए, मेंटल हेल्थ ये एक कॉम्पोनेंट होती है राइट. हम सब लोग जानते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना, WHO, जो भी हमें स्टैटिस्टिकल डाटा मिल रही है, जो भी बीमारी फैल रही है, जो भी अच्छी चीज हो रही है, ये सब हमें कहां से, जो ऑथेंटिक मतलब जो हम ट्रस्ट कर सकते हैं, वो डाटा कहां से मिलता है? WHO से मिलता है. वो जो WHO क्या कहते हैं, हेल्थ मतलब स्वस्थता क्या होती है, नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ. अगर आपके शरीर में कोई बीमार नहीं है, आप चल रहे हो, फिर रहे हो, काम कर रहे हो राइट, मानते हैं वो हेल्थ है, बट दैट इज नॉट पूरा हेल्थ राइट. आपका मन कैसे होना चाहिए, आपका सोच कैसे होना चाहिए, आपका मन का स्वस्थता कैसे होना चाहिए राइट. तो हमारा शरीर का हेल्थ एंड हमारा मन का हेल्थ प्लस हमारा सोशल हेल्थ राइट. अगर हमारा फिजिकल हेल्थ अच्छा है, हमारा सोच, हमारा काम, हमारा एटीट्यूड अच्छा है, तो हम कैसे रहते हैं सोसाइटी में, हम मिलजुल कर रहते हैं राइट. तो वो क्या होता है, दैट बिकम्स अ सोशल हेल्थ. तो अभी हमने क्या क्या देखा, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड सोशल हेल्थ, इसके साथ साथ स्पिरिचुअल हेल्थ राइट. ये सब लोग, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते. जो नहीं मानते, नो प्रॉब्लम राइट. तो जो मानते हैं, दिस चार कॉम्पोनेंट मेक यू हेल्दी पर्सन राइट. यहाँ से शायद आपको समझ में आ गया होगा मेंटल हेल्थ कितना जरूरी होता है राइट. सो दिस मेंटल हेल्थ, देखो नॉर्मली क्या होता है, मेंटल हेल्थ सबको अच्छा होना चाहिए है ना, पर उसमें हम इतना ध्यान नहीं देते हैं. अगर फिजिकली कुछ बीमार हो गई है, बुखार हो रहे हैं, जुकाम हो रहे हैं, पेट में दर्द है, छाती में दर्द है, तो हम क्या करते हैं, तुरंत भागते हैं
1: डॉक्टर्स के पास
0: राइट. बट अगर मेरा मेंटल हेल्थ इतना ठीक नहीं है, मैं उदास बैठी हूँ, मैं किसी से बात नहीं कर रही हूँ राइट, और मुझे खाने के लिए मन नहीं है, सोने के लिए मन नहीं है, मुझे अकेला रहना है, मुझे कुछ कुछ अजीब सोच आ रहे हैं, तो क्या हमारा फैमिली हमें इम्पोर्टेंस दे रही है इस चीज के लिए? अगर किसी फैमिली ने इम्पोर्टेंस दिया एंड इसको अर्लियरली राइट जल्दी पता लगना होगा, देन क्या होता है, आपका मेंटल हेल्थ ठीक होने का बहुत बहुत चांसेस है राइट. तो मेंटल हेल्थ क्या है, एक दिन में जैसे हम सारे काम करते हैं, वैसे मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डेली लाइफ राइट. तो दो चीज मैं बोलती हूँ, फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ बोथ आर इनसेपरेबल, मतलब एक छोड़कर एक नहीं रह सकते हैं. अगर आपका फिजिकल हेल्थ अफेक्ट हुआ, पक्का आपका मेंटल हेल्थ भी अफेक्ट हुआ. अगर आपका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, वो कैसे लोगों को दिखता है, आपका फिजिकल शरीर से दिखता है. आप उदास बैठते हो, आप हंसते नहीं हो, आप सोते नहीं हो राइट. तो आपका फेस, आपका बॉडी पूरा टायर्ड हो जाता है राइट. सो फ्रेंड्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ कितना कितना इंपॉर्टेंट है, जो हम उसमें चांस नहीं ले सकते हैं.
1: क्या बात है दोस्तों, बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कह गई है मैम, और मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी मुद्दा है जिसपे मैं और मैम आज डिस्कस कर रहे हैं. बिल्कुल सही कहा उन्होंने, कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो हमारे सामने हमें तुरंत दिख जाते हैं. उन्होंने कहा कि सामने वाले की बॉडी से पता लग जाता है कि उसकी मेंटल हेल्थ किस तरीके से खराब है, क्योंकि हमारा उदास रहना, बीच बीच में किसी से बात ना करना, चिड़चिड़ापनी, वो सब सिम्टम्स है जो कहीं ना कहीं बताते हैं कि हमारी मेंटल हेल्थ से हम कितना डिस्टर्ब हैं. आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वो कहते हैं ना, मुस्कुराहटों के पीछे भी दर्द छुपा होता है, हर इंसान अंदर से उतना स्ट्रांग नहीं होता जितना मुझे और आपको दिखता है. चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे. दूसरा क्वेश्चन हम मैम से पूछना चाहेंगे आगे बढ़ते हुए, मैम व्हाई इज मेंटल हेल्थ अवेयरनेस इंपॉर्टेंट, क्यों जरूरी है मेंटल हेल्थ के लिए अवेयरनेस, हमारे लिसनर्स को जरा

0: इसके बारे में बताइए।
1: यस, ये आपने बोल दिया अवेयरनेस मीन्स जागरूकता, राइट? तो ये मैं सिर्फ तीन पॉइंट में बोलती हूँ
0: प्लीज।
1: पॉइंट नंबर वन, रिड्यूस स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या होता है? कलंक, है ना? तो अगर ये स्टिग्मा कैसे होता है, अगर किसी बच्चे ने बोल दिया या किसी बड़ों ने बोल दिया मुझे आज अच्छा फील नहीं हो रहा है, राइट, और फैमिली उसको देख रहे हैं वो बहुत दिनों से ठीक नहीं है, राइट, उसका फिजिकल भी ठीक नहीं है और उसका मेंटल एक्टिविटी भी ठीक नहीं है, बट वो डॉक्टर के पास जाना बहुत सोचते हैं। क्यों सोचते हैं? बिकॉज इसलिए सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, है ना? अच्छा, इसका कुछ बीमारी है, ये मानसिक डॉक्टर के पास क्यों ले जा रहे हो, पागल हो गए क्या, है ना? पहला सवाल ये आता है, राइट, विच दिस स्टिग्मा, ये जो कलंक है ये पूरा फैल चुके हैं, है ना? तो ये आज हमारा ये जो डिस्कशन है, दिस इज द ड्रॉप, है ना? ऐसे छोटे छोटे ड्रॉप होकर ये जो सारे स्टिग्मा है वो हम मिटाने के लिए कोशिश करेंगे, ओके? सो दिस इज पॉइंट नंबर वन। हम मेंटल हेल्थ अवेयरनेस क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो कलंक है उसको पूरी तरह से मिटाने के लिए, ओके? राइट, सो पॉइंट नंबर टू, एनकरेजेस अर्ली डिटेक्शन। सो अर्ली डिटेक्शन क्या होता है? जल्दी पता लगाना है, राइट? क्या पता लगाना है? मतलब लक्षण, राइट? जो साइंस बाहर दिखता है हमें, ये मेरा बच्चा है ये उदास है, वो नहीं बोल रहा है, इसका 20 साल हो गई है आज तक मैंने उसको ऐसे नहीं देखा है, पर ये पिछले एक हफ्ते से बहुत उदास है, अकेले कोने कोने में जाके बैठता है, नहीं खा रहा है, नहीं पी रहा है, राइट, और ऐसे ऐसे शब्द यूज कर रहा है जो हम कभी फैमिली में हम इस्तेमाल ही करते हैं, पता नहीं इसके ऊपर क्या हो रहा है, राइट? सो व्हाट इज ऑल दिस, ये सारे होते हैं लक्षण, राइट? जब आपको ये लक्षण पता चल गए तो आपको क्या करना चाहिए? आनंद जी आप बताइए, आप क्या करोगे?
0: मैम मैं तो सीधा एक्सपर्ट के पास जाके विजिट करूंगा।
1: बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच, आपने इतना एक शब्द में बोला है दैट यू विल विजिट एन एक्सपर्ट, राइट? पर सब लोग ऐसे नहीं कर रहे हैं ना, राइट? ऑल आर नॉट डूइंग दिस, वो लोग बहुत कुछ घर में जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं किसी किसी के पास लेके जा रहे हैं, है ना? वो लोग एक्सपर्ट के पास नहीं जा रहे हैं, जिनको जाना चाहिए, चीजें ज्यादा बिगड़ने से पहले रोक लो, राइट? डरो मत, जो भी चीज है जल्दी पता लगने में चीजें वहीं की वहीं खत्म नहीं भी हो गए तो जल्दी खत्म हो जाएगा, उसका हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे। अगर हाथ से चली गई चीजें, सिर के ऊपर चली गई, तो फिर हम रोई दोई कोई फायदा नहीं है, राइट? सो व्हाट इज द सेकंड पॉइंट? एनकरेजिंग अर्ली डिटेक्शन। अगर आपको कुछ पता चल गए तो तुरंत एक्शन लो, बातें ज्यादा मत करो, एक्शन लो, राइट? काम करो ज्यादा, यू अंडरस्टैंड, राइट? सो पॉइंट थ्री, इम्प्रूव ओवरऑल वेल बीइंग, है ना? तो मैंने पहले ही बोला है, जो WHO ने बोला है, हेल्थ का कॉम्पोनेंट्स चार होते हैं, है ना? तो इसको हम क्या बोलते हैं? होलिस्टिक बोलते हैं। होलिस्टिक मतलब पूरा, राइट? एक इंसान जब एक पूरा इंसान होते हैं तब का मन अच्छे हो या शरीर अच्छे हो, जो लोग से अच्छे से व्यवहार करते हो और उसको सारी जो खामियां है वो प्रॉपरली चल रहा हो, राइट? तो अगर हम मेंटल हेल्थ क्यों बोलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, एक इंडिविजुअल का ओवरऑल एक्टिविटीज अच्छे होना चाहिए एंड जो इंसान जिंदगी जी रहे हैं वो जिंदगी क्वालिटी होना चाहिए, है ना? पर आजकल हम कर क्या रहे हैं? हम जिंदगी काट रहे हैं,
0: करेक्ट,
1: है ना? एक ही शब्द में बोलो, हम जिंदगी काट रहे हैं। सुबह 9 बजे चले गए, काम कर रहे हैं मशीनों की तरह, राइट? 1 बजे लंच कर रहे हैं 10-15 मिनट में, फिर पेपर फाइल लेके भाग रहे हैं काम के लिए, मीटिंग है, शाम 5 बजे घर जा रहे हैं, घर जाके भी वही सेम, है ना? मशीनरी लाइफ, हम जिंदगी काट रहे हैं, हम जी नहीं रहे हैं, यू अंडरस्टैंड, हम जी नहीं रहे हैं। बट अगर आप इसको पहले रेट्रो पीरियड में लेके गए, 90s में, 80s में, 70s में, लाइफ बहुत बहुत सिंपल थी, राइट? बहुत सिंपल थे, राइट? बट अभी वो 70s, 80s, 90s पीरियड नहीं आ सकते हैं, है ना? अब नाउ वी आर इन 2026, अगर इस मशीनरी वर्ल्ड में भी हम कैसे कैसे काम करें ताकि हमारा मेंटल हेल्थ पूरा हमारे साथ हो जाए, राइट? तो उसमें हमें कॉन्सेंट्रेट करना है। तो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस क्यों इंपॉर्टेंट है? 3 पॉइंट, एक, जो कलंक है उसको मिटाना है, दूसरा जल्दी पता लगाना है, तीसरा जो जिंदगी हम जी रहे हैं उसको क्वालिटी लाइफ देने के लिए. यू अंडरस्टैंड? आई होप आनंद जी मैंने आपका जो सवाल को जस्टिफाई किया है.
0: एब्सोल्युटली, बहुत अच्छे से आपने किया है मैम, थैंक यू वेरी मच. और मैम कई लोग हैं जो साइलेंटली स्ट्रगल करते हैं, मतलब वो स्ट्रगल करते रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे?
1: साइलेंट स्ट्रगल, सी एक ही शब्द में बोलूंगी दैट यू शुड नॉट हेसिटेट टू आस्क फॉर हेल्प, है ना. आपको अगर जरूरत पड़े आपको मदद लेना चाहिए, आप पीछे मत हो, यू स्टॉप ओवर थिंकिंग, है ना. आजकल प्रॉब्लम क्या हो रहे हैं, हम ओवर थिंकिंग करते हैं, है ना, हम ओवर थिंकिंग करते हैं.
0: इवन मैं कई बार करने लग जाता हूँ छोटी छोटी चीजों को लेकर, तो इसका रीजन क्या है विल मैम?
1: बिकॉज वी आर इन मोड ऑफ फियर एंड एंग्जायटी, आगे क्या होगा,
0: क्या एग्जैक्टली एक बात की चार बात आने लगती है. और ये मेरे साथ नहीं, मुझे लगता है दुनिया के हर दूसरे इंसान के साथ.
1: मैं इतना बोल रही हूँ ना, मुझे भी होता है, बिकॉज आई एम ऑल्सो ह्यूमन बींग, है ना, राइट, ह्यूमन बींग. जब हम प्रैक्टिकली एक चीज से फॉलो करते हैं ना, तब हमें बहुत सारे सवाल उठते हैं मन में.
0: एब्सोल्युटली
1: यस. सो प्लीज आप हेसिटेट मत करो लेने के लिए, राइट. ज्यादा मत सोचो, अगर मैं पूछूंगी तो ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, ना ना ना ना ना,
0: सोसाइटी के बारे में बहुत सोच रहे होते हैं कई बार.
1: डोंट थिंक, जीना है या मरना है, जिंदगी अच्छी तरह से जीना है या तुम्हारी जिंदगी काटना है, वो सारे तुम्हारा ऊपर है,
0: डिपेंड
1: आपके ऊपर है, मेरे ऊपर, इनके ऊपर है, राइट. सोसाइटी मैं मानती हूँ, आप टिकट जल मुल के लेना पड़ेगा, मैं मानती हूँ, बट डू नॉट डिपेंड ऑन देम वो क्या कहेंगे. बस आपका सो आप इट. एंड एक चीज, दूसरे को बुरा मत करना, है ना, एंड खुद को भी नुकसान मत करना. डोंट डू एंड दूसरों को डोंट डू. अगर इट पे आप जियोगे, आई विश दैट विल लीड अ वेरी गुड लाइफ इन अ बेसिक एंड पीसफुल मैनर. ये बोलना आसान है, आप अगर बोलोगे करके दिखाओ, मुझे भी मुश्किल पड़ेगा.
0: So much difficult,
1: है ना, मुझे भी मुश्किल पड़ा. तो मैं एक बोलूंगी, जो छुप छुप कर बहुत पेन में रहते हैं ना, प्लीज कम, ये मत सोचो लोग क्या सोचेंगे, ये मत सोचो लोग क्या कहेंगे, मुश्किल तो आपको हो रहे हैं ना, यू आर सफरिंग, है ना, पेन आपको हो रहा है, दूसरों को क्या है, वो एक दो शब्द में बोल के चले जाएंगे, बट हु इज सफरिंग, यू, मी, ही, राइट. ये जो साइलेंट सफरर्स हम खुद भी है, तो व्हाट वी हैव टू डू, ब्रेक ऑल द स्टिग्मा एंड कम आउट, आस्क फॉर हेल्प, राइट. 10 लोग से मत पूछो, आपको पता है एक बंदा, राइट, इनसे मैं शायद पूछ सकती हूँ, है ना. तो वो जो भरोसा जिनके पास है उनके पास जाओ, एंड यू डोंट हेसिटेट टू आस्क फॉर हेल्प. अगर वो हेल्प ना भी कर सके, जरूर वो कुछ ना कुछ रास्ता बताएगा, सो दैट यू कैन रीच दैट प्लेस एंड यू कैन ओवरकम दैट इन एन अर्ली फेस. जो मैंने पहले बोला है, जल्दी पता लगाना है. यू गॉट इट?
0: आई एग्री मैम, आई गॉट इट. बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, थैंक यू सो मच.
1: ओके आनंद जी,
0: थैंक यू वेरी मच मैम, इतनी ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन देने के लिए. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो कॉन्वर्सेशन है गाइज, आई एम श्योर आपको बहुत हेल्प करने वाली है. और मैं तो कहता हूँ ईच वन टू कीच वन, आप भी सुने औरों को भी सुनाएं, बहुत जरूरी है आजकल की भागती दौड़ती जिंदगी में ना, हर दूसरे पर्सन को मेंटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है, बट वो कह नहीं पाते. इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रॉब्लम से नहीं जूझ रहे हैं, बहुत लोग जूझ रहे होते हैं. और आज उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही कमाल के एक्सपर्ट हैं, जी हाँ, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल डॉक्टर मनोरंजनी जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं. ये सारी कॉमन, उनसे बातचीत कर रहे हैं, बहुत सारी कॉन्वर्सेशन उनसे लगातार हो रही है. तो मैम कॉमन साइंस बोल देता हूँ ना, सिंपल कॉमन साइंस, ओके. सो मैम कॉमन साइंस पीपल शुड बी नोटिस, मतलब वो कौन कौन सी, अगर मैं बात करूँ, ऐसी चीजें हैं जो मेंटल हेल्थ को अट्रैक्ट कर रही है, बट वो लोग उसको नोटिस नहीं करते हैं और उनको जरूर करना चाहिए.
1: यस आनंद जी, दिस इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन. देखिए, जो नॉर्मल हमारा जो व्यवहार है उससे हटकर कुछ भी अगर आपको लग रहा है, ये थोड़ा दूसरे ट्रैक में जा रहे हैं, राइट, सो दैट इट्सेल्फ अ रेड सिग्नल, ठीक है ना. तो ये मेंटल, अगर आप मेंटल डिसऑर्डर बोले, हर हर डिसऑर्डर को, हर हर बीमारी को हर हर साइंस होती है, है ना, वो दैट डिफर्स. एक में बहुत उदास होते हैं, एक में बहुत हाइपर एक्टिविटी होते हैं, है ना, तो ये अलग होता है. बट मैं एक 5-6 चीजें ऐसे कांस्टेंट बोल देती हूँ, अगर इस चीजें हैं तो इसका मतलब मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं अफेक्ट हुआ है. ओके, सो दोस थिंग्स कम्स एज कांस्टेंट सैडनेस. सो सैडनेस आपको पता है ना, उदास से भी ज्यादा,
0: करेक्ट,
1: है ना, उदास से भी ज्यादा. कभी कभी ज्यादा काम है तो हम उदास हो जाते हैं, या कितना काम कर रहे हैं ना, थोड़ा मैं बस ऐसे बैठ जाऊंगी, ऐसे बैठ जाऊंगा, राइट. तो ये सैडनेस है वो किसी स्ट्रांग कारण के पीछे होते हैं, राइट, वो कॉन्स्टेंट सैडनेस. दूसरा है बहुत चिड़चिड़ होना, बहुत गुस्सा करना, या गुस्सा सब लोग करते हैं, बट वो हम देखते हैं ना ये हद से ज्यादा हो रहा है, ये तुम्हारा हुआ क्या है, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, है आपको क्या हो गया है. तो जब हम ये सवाल पूछते हैं ना, मतलब वहां कुछ ना कुछ है कारण जो हमें नोटिफाई करना है, राइट. बहुत चिड़चिड़ होना, वैसे वो बंदा ऐसे नहीं है, बट आजकल हो रहा है ऐसे, बहुत चिड़चिड़ापन एंड बहुत बहुत गुस्सा है जो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं. ओके, एंड नींद, राइट, कल हम पूरी नींद ले नहीं रहे हैं,
0: exactly,
1: है ना, exactly. वो डिलिबरेटली हम कर रहे हैं, कुछ कुछ कारण है, बस मैं वो नहीं बोल रही हूँ अभी. जिसमें हम जो साइंस है ना, जो रेड सिग्नल, वो मैं बात कर रही हूँ. जो नींद एक बहुत ज्यादा लेना, या जरूरत से कम लेना, या जो नींद ले रहे हैं वो क्वालिटी नहीं है, बीच बीच में उठ रहे हैं, उठ के बैठ रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, राइट, और घबरा रहे हैं, ऑल दिस क्या होता है, नींद का डिस्टर्बेंस, स्लीप डिस्टर्बेंस. ओके, नेक्स्ट ओवर थिंकिंग. ये जो ओवर थिंकिंग है आजकल ना, हमारा पार्ट एंड पार्सल हो गए है, राइट. हर बंदे ओवर थिंकिंग, मैं भी करती हूँ, आप भी करती हूँ, ये भी करते हैं,
0: करता है दुनिया का हर दूसरा इंसान, ओवर थिंकिंग से परेशान है.
1: यस, बट यो ओवर थिंकिंग के वजह भी हम हमारा नॉर्मल काम से तो नहीं हट रहे ना,
0: करेक्ट.
1: बट ये जो ओवर थिंकिंग के कारण एक बंदा अपना रूटीन काम छोड़कर बैठ गई, दैट मीन्स इट इज अ रेड सिग्नल, राइट. आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, बोल रही हूँ ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बट यहाँ जो ओवर थिंकिंग है वो रेड सिग्नल है. कैसे, ये जो ओवर थिंकिंग के कारण बाकी सारे काम हट गए, जो करना है वो बिल्कुल नहीं हो रहा है, सिर्फ वो कोने में बैठ के सोचते रहे, सोचते रहे, सोचते रहे, राइट. सो इट मीन्स दैट इज वन ऑफ द सिग्नल. ओके, नेक्स्ट, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज, है ना. तो इसको हम कहते हैं एनहिडोनिया, राइट, हमारा जो टर्म है उसमें कहते हैं. लॉस ऑफ इंटरेस्ट मीन्स जो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता था, राइट, गाने सुनना या गार्डनिंग करना, वो बहुत अच्छा लगता था, बट आजकल पूरा छोड़ दिया है. सामने हो रही है, मेरा जो पौधा है वो बहुत सूख रहे हैं, पानी नहीं है, फिर भी मैं नहीं दे रही हूं, क्यों, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे उसमें फोकस ही नहीं है,
0: बिल्कुल,
1: राइट, क्यों, बिकॉज मैं कुछ और चीजों में मैं उलझ गई,
0: बिल्कुल,
1: है ना,
0: करेक्ट,
1: राइट. सो नेक्स्ट इज फीलिंग लोनली. देखो, अब चार लोग मेरे साथ बैठे हैं, मैं बात कर रही हूँ, हंस रही हूँ, फिर रही हूँ, राइट. अगर ये चार लोग मेरे पास होने के बावजूद भी मैं ऐसे फील कर रही हूँ, मैं अकेली हूँ, मेरा कोई सुनने के लिए नहीं है, राइट, मैं right. कुछ कह रही हूँ, कोई उसको रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहे हैं, राइट, मैं अकेला फील कर रही हूँ, मुझे हेल्प करने के लिए कोई नहीं है, मेरा जिंदगी में कोई होप नहीं है, मैं किसी वैल्यू की नहीं है, राइट. ये सारी चीजें जब आते हैं ना, तब फील होता है मैं अकेली हूं, यू अंडरस्टैंड. सो दैट इज वन ऑफ द रेड सिग्नल. एंड सडन साइलेंस, ये बच्चे है ना बहुत लड़ाकू है, कुछ भी उसको कह दिया ना बस लड़ने आ जाएंगे, राइट. बट आजकल क्या हो रहा है, बिल्कुल साइलेंस, शी आइसोलेटेड हर सेल्फ फ्रॉम द सोसाइटी, वो अकेली चली गई, कुछ भी बोले वो आजकल अच्छे से बात भी नहीं कर रही है, पता नहीं व्हाट हैपेंड टू हर, ये एक हफ्ते 10 दिन से ऐसे चल रही है, एक महीने से ऐसे चल रही है ना. व्हेन यू सी ऑल दीज थिंग्स, प्लीज नॉक द डोर ऑफ सम मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, बिकॉज दैट पर्सन, शी और ही इज इन नीड ऑफ हेल्प, राइट, उनको बहुत जरूरी है, अदरवाइज उसके बाद अगर हम कुछ हो गए है, फिर वी आर आंसरेबल, है ना. हम अगर हम ये नोटिस नहीं किया है, जान पूछ कर हमने कुछ काम कर दिया है, दूसरे को नुकसान हो गए, यू अंडरस्टैंड. सो ये जो चीज है, दिस इज वेरी कार्डिनल साइंस. कार्डिनल किसको बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट से भी ज्यादा है, राइट. अगर कोई आपके पास में, आपकी फैमिली में, आपको पड़ोस में, आपके कलीग, आपके स्टूडेंट्स, कोई भी है, प्लीज नोटिफाई करना, कुछ नहीं बिगड़ता है ना, किसी को आपने मदद किया है, यू अंडरस्टैंड. ओके, सो दिस इज आनंद, विच यू से एज अ रेड साइंस, वेयर वी हैव टू पे मोर अटेंशन. आनंद जी, आपको समझ आया?
0: बिल्कुल मैम, समझ क्यों नहीं आएगा, आप इतनी प्यार से समझा रही है, तो बिल्कुल, इवन मुझे नहीं, मेरे लिसनर्स को भी बहुत अच्छे से समझ आ रहा है.
1: या, हमारा गोल तो वही है,
0: एब्सोल्युटली,
1: यस.
0: एंड मैम सीरियसली, आप इतने अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स सबको समझ में आना चाहिए, और सब समझ भी रहे हैं. एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है.
1: जी जी जी जी
0: हाई ब्यूटीफुल पीपल, वंस अगेन यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम, जहां आनंद आज आपके साथ ढेर सारी बातचीत कर रहा है आपके मेंटल हेल्थ के बारे में। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल डॉक्टर मनु रंजनी जी। इस टाइम स्टूडियो में हमारे साथ हैं और वो ढेर सारे सवालों के जवाब आपके दे रही। लिसनर प्लीज रिमेम्बर, आस्किंग फॉर हेल्प इज स्ट्रेंथ नॉट वीकनेस। क्यों मैम?
1: एब्सोल्युटली।
0: फंबल कहा? स्ट्रेंथ पे आया। स्ट्रेंथ पे फिर से करूं? ठीक है। लिसनर प्लीज रिमेम्बर, आस्किंग फॉर हेल्प इज स्ट्रेंथ नॉट वीकनेस। क्यों मैम?
1: एब्सोल्युट आनंद जी,
0: क्या बात है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आज की कॉन्वर्सेशन थोड़ी सी लंबी हो गई, आई नो दैट, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार थी। एंड आई थिंक मैम को फ्री करने से पहले एक ऐसा क्वेश्चन जो डेफिनेटली मुझे पूछना चाहिए। मैम, दिस इज माई लास्ट क्वेश्चन। या सो माई क्वेश्चन इज की हाउ फैमिली एंड फ्रेंड्स कैन हेल्प।
1: राइट, वेरी गुड, बिकॉज दे आर द प्राइमरी केयर गिवर्स, है ना। फैमिली, जो फैमिली मेंबर्स अफेक्ट हो रहे हैं तो उनको ही पहले पता चलेगा, या कलीग्स या स्कूल्स या कॉलेजेस, फ्रेंड्स को पहले पता चलेगा एंड फैकल्टीज को, राइट। तो ये हाउ यू कैन डू इज, मैंने ये बोला है, जो सिम्टम्स मैंने बोला है ना, इफ यू फाइंड दैट सिम्टम्स तो आपको जरूर नॉक करना है नियर बाई साइकेट्रिक स्पेशलाइजेशन, ठीक है। अगर ओके, आई विल कम टू योर पॉइंट, अगर आपको लग रहा है मैं कैसे पहले वहां मानसिक डॉक्टर के पास कैसे लेके जाऊंगी या कैसे जाऊंगा, मुझे ना अच्छा नहीं फील हो रहा है, इट्स ओके, एवरीथिंग हैपेंस, राइट। तो पहले एक डॉक्टर के पास जाइए, यू गो टू अ जनरल फिजिशियन, है ना। बुखार है, सर्दी है, जुकाम है, जाओगे ना, तो वैसे उसी डॉक्टर के पास आप जाइए, ओके। सो ही और शी विल आइडेंटिफाई उस बच्चे में या उस बंदे में क्या प्रॉब्लम है, राइट, या व्हाट साइन इट इज, एंड वो कितना इंपॉर्टेंट है, जितना जल्दी हमें हेल्प लेना चाहिए, राइट। तो अगर उस हेल्प आपको मिल गए तो आपको थोड़ा क्लियर पिक्चर मिल जाएगा, ताकि यू कैन गो टू द राइट पाथ।
0: 100%।
1: यस, एंड वन मोर थिंग आई वांट टू से, सी देयर आर वेरियस सोर्सेस, सी आजकल सबके पास जो है या ना है, मोबाइल तो जरूर है,
0: करेक्ट,
1: है ना, एंड मोबाइल में है हमारा इंटरनेट फैसिलिटीज, उसे बिना मोबाइल का कोई मतलब नहीं,
0: कोई
1: है,
0: मतलब।
1: सो वी ऑल आर नाउ ट्रैवलिंग विद अवर एआई, जेमिनी, है ना, यू ऑल नो, है ना, सब चैट जीपीटी, यस, दैट इज अ हार्ट, है ना, चैट जीपीटी बिकम अ हार्ट ऑफ एवरी पर्सन, राइट। सो कैन पुट टेली मानस, आनंद जी आप जब लिसनर से बात करोगे इसका हर बार इसका आप थोड़ा सा री इन्फोर्स करिएगा, राइट। इट इज टेली मानस, TELEMANAS। अगर आप डालोगे गूगल में, इट विल गिव यू अ डिटेल्ड पिक्चर, ठीक है। तो मैंने बोला है ना, देर इज नथिंग रॉन्ग इन आस्किंग फॉर हेल्प, राइट। दूसरों से पूछने आपको अच्छा नहीं फील हो रहा, ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, चलो उस चर्चा में हम नहीं जाएंगे, राइट। तो यू पुट टेली मानस, दैट इज एन इमरजेंसी सर्विसेज गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, राइट। हमारा इंडियन गवर्नमेंट का है वो, वहां पे ना आप किसी से पहचानते हो ना वो आपसे पहचानते हैं, राइट। आप उसके लिए स्ट्रेंजर हो, वो आपके लिए अनजान है, ठीक है। तो वहां पे तो आप कॉल की बोल सकते हो,
0: करेक्ट, बिल्कुल, एब्सोल्युटली,
1: है ना। तो यू कैन से आप किस चीज में अभी फील कर रहे हो, राइट, अभी क्या परेशानी हो रही हो। डोंट थिंक मैं ये बोलूंगी तो इसका मतलब मेरा कुछ मानसिक बीमार हो गई, एब्सोल्युटली नो, राइट। सबको कोई ना कोई मोमेंट में एक हेल्प का जरूरत होती है, एक काउंसलिंग का जरूरत होती है, क्योंकि हम अभी जिंदगी जी रहे हैं एक मशीनरी वर्ल्ड में, राइट। सो प्लीज डोंट हेसिटेट टू आस्क फॉर हेल्प। ये जो मैं बोल रही हूँ टेली मनास, अगर आप हेल्प भी नहीं लेना, नो प्रॉब्लम, एक बार उसको देख तो लो आप लोग, है ना। यू जस्ट पुट दैट टेली मनास इन गूगल, AI, चैट जीपीटी, कहीं भी, राइट, इट विल गिव यू एन नंबर ऑफ इन्फॉर्मेशन, पूरा जागरूक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको कहीं प्रॉब्लम भी होगा ना, उस पेज आप खोलोगे, आपको वहां पे जरूर जवाब भी मिलेगा, ओके, नॉन जजमेंटल। तो ये टर्म तो आप समझते होगे, नॉन जजमेंटल, है ना, लोग क्या कहेंगे, ये बिल्कुल नहीं होगा हाँ वहां पे, ओके। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर सोर्स, आपका फैमिली, आपका फ्रेंड्स हेल्प ले सकते हैं, ताकि जो पर्सन प्रॉब्लम में है वो प्रॉब्लम से जल्द बाहर आने के पूरी कोशिश कर पाएंगे, राइट। और हम यहाँ पे पूरा वादा भी नहीं करेंगे पूरा हो जाएगा, नहीं, पूरा हम कोशिश करेंगे ताकि द पर्सन कैन लीड अ नॉर्मल लाइफ along with medicine and therapy. You understand? Because mental disorder, mental illness ऐसे एक condition है, एक बार अगर हमने दवाई छोड़ लिया है फिर दोबारा लक्षण आने का बहुत chances है. Right? तो उस चीज के लिए हम बाद में जाएंगे. अब अगर किसी का ये problem है तो family and friends जरूर इस चीज से help ले सकते हैं. मैं ये बोल रही हूँ ये किसी का कोई नुकसान नहीं देगा. You understand?
0: Yes.
1: So Anand ji, so this is जो रिसोर्स है जो इंडियन गवर्नमेंट दे रहे हैं. अगर आप यहाँ पे पहुंचना है तो आप इजीली पहुंच सकते हो या इससे पहले आप लोकल रिसोर्स, फॉर एग्जांपल आप मुरादाबाद में है ना, तो यहाँ पे कोई दिक्कत है किसी पर्सन को किसी डॉक्टर के पास जाना है तो लोकल सर्विस भी अवेलेबल है जो लोग वो भी यूज कर सकते हैं. ओके, एंड मैं दूसरा एक बोलती हूँ, प्लीज डोंट हेसिटेट टू नॉक द डोर ऑफ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल. जरूरी नहीं है तुम आप लोग को साइकेट्रिस्ट के पास ही जाना है, इवन यू कैन गो टू द साइकोलॉजिस्ट और टू द काउंसलर. है ना, हम ये टप्पा नहीं लगा रहे हैं आपको कुछ मानसिक रोग है. है ना, हम हर बंदे को तनाव होती है, हर बंदे को सैडनेस होती है, राइट? किसी से हेल्प लेना इज नॉट गलत.
0: एब्सोल्युटली 100%.
1: या आनंद जी, सो दीज ऑल आर द एरिया वेयर फैमिली एंड फ्रेंड्स कैन गेट हेल्प टू ट्रीट देयर लव्ड वंस.
0: That's very nice, yes. Ma'am. That's very nice.
1: Yeah, yes.
0: Dr. Manuranjini ji, thank you so much for coming. Thank you very much. And it was really wonderful talking to you. Thank you so much.
1: Thank you, Anand ji. Thank you for inviting me. And I'm so privileged. Main aap log se aaj baat कर पाए. एंड एक चीज मैं बोलकर कम्प्लीट
0: करो,
1: आज तक हमने ये जो मेंटल हेल्थ बात किया ना, राइट? तो हम क्या क्या जिंदगी में, मतलब लाइक डेली एक्टिविटीज में, राइट, कुछ कुछ चीजें हम करेंगे ताकि थोड़ा बहुत हम मेंटल हेल्थ को मतलब इम्प्रूव कर सकते हैं. यू अंडरस्टैंड, राइट? सो लेट मी सेव टू और थ्री थिंग्स. ओके, पॉइंट नंबर वन इज You, whenever you feel stressed, right? थोड़ा सा मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है भाई, मुझे ऐसे लग रहा है मैं ठीक नहीं हूं, है ना? तो उस समय जो आपको बहुत पसंद चीज है, राइट, बहुत अच्छा लगता है, वो करो आप.
0: जो but, आपका फेवरेट है.
1: यस, बट प्लीज मोबाइल मत स्क्रॉल करना.
0: okay? सबसे ज्यादा फेवरेट तो यही
1: yes,
0: है ना.
1: यस, प्लीज मोबाइल मत स्क्रॉल करना. मोबाइल स्क्रॉल करने से पहले, मोबाइल आने से पहले तक भी तो हमारा बहुत बहुत हॉबीज थे, है ना? वो सब हम भूल गए, राइट? यस. सो जो सॉन्ग बहुत हमारा हार्ट टू हार्ट टच होता है वो सॉन्ग प्ले करके आप सुनो, राइट? लिसन टू दैट इन अ रिपीट मोड, दो बार तीन बार, राइट,
0: चला सकते.
1: यस, सो मन थोड़ा शांत होगा. नेक्स्ट, थोड़ा ब्रीदिंग, राइट, आप थोड़ा डीप ब्रीदिंग करिए. इसका ये मतलब नहीं है आपको योगिक के पास जाना है, योगा सीखना, नो, वो सब आप कर सकते हो, गलत नहीं है. बट वेन एवर यू फील स्ट्रेस्ड, तनाव है, राइट, तो थोड़ा सा यू जस्ट डू ब्रीदिंग, राइट. एंड तीसरा चीज है डेली जर्नलिंग, राइट. ये जो डेली जर्नलिंग क्या होता है आनंद जी, डू यू नो दिस, व्हाट इज मेंट बाय डेली जर्नलिंग?
0: मैम प्लीज यू हैव टू एक्सप्लेन मी.
1: हम करते हैं बट हमें अब ये जो टर्म है, मे बी ये नॉवल हो सकता है. डेली जर्नलिंग मींस जो रात को सोने से पहले या सुबह जब हम उठते हैं थोड़ा लिख लेते हैं हम, है ना, आज का दिन कैसे होना चाहिए, और रात को सोने से पहले आज का दिन कैसे गया है, आज मैंने क्या किया है, क्या क्या अच्छी चीज है, क्या क्या चीज मुझे हर्ट हुआ है, राइट. ये सारी चीजें जब लिखते हैं सो दैट हम खुद को पता चल जाता है आज का दिन में हम क्या क्या अच्छी अच्छी चीज करी है, या जो जो चीजें करी है जो हमें अगले बार नहीं करना चाहिए. यू अंडरस्टैंड, उसको हम बोलते हैं जर्नलिंग, डेली जर्नलिंग, ठीक है?
0: yeah.
1: तो दिस इज नोन एज, ये सारे जो बेसिक थिंग्स है. दूसरा है माइंडफुलनेस. ये जो माइंडफुलनेस का मतलब लिविंग एट प्रेजेंट, पास्ट मत सोचो, फ्यूचर मत सोचो, लिव एट प्रेजेंट, इस मोमेंट में गिव थैंक्स टू गॉड, एंड इस मोमेंट में आप अच्छे से जियो, राइट. अगर आप अच्छी हवा ले रहे हो, अच्छा सा बारिश हो रही है, वहां पे भी मोबाइल मत लेके जाना, मैं फोटो खींच रही हूँ, मैं वीडियो बना रही हूँ, फेसबुक इंस्टाग्राम में डालूंगी, कितना लाइक्स आएगा, प्लीज डोंट डू दैट. लिव एट दैट मोमेंट, एंजॉय करो, राइट. वो दैट इज नॉट माइंडफुलनेस. वो सारी चीजें आजकल हमने मिस कर रहे हैं, इसी कारण डेली हमें स्ट्रेस और सम अदर प्रॉब्लम्स कमिंग इन अवर लाइफ,
0: राइट.
1: सो प्लीज यू फॉलो दीज स्टेप्स. ओके, माइंडफुलनेस, लिविंग एट प्रेजेंट, डेली जर्नलिंग, थोड़ा थोड़ा लिखो, एंड डू सम काइंड ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, सो यू दैट यू मे फील गुड. ओके, सो आनंद जी थैंक यू सो मच, And let me wind this here. And I say this to the listeners, please aap log listen to this mindfully. है ना, जब आप इसको लिसन करोगे प्लीज डोंट स्क्रोल योर मोबाइल. आप बस प्लीज लिसन करो, नोट्स बनाओ, पॉइंट्स बनाओ, जो अच्छा लगा, जो अच्छा नहीं लगा है, राइट. सो व्हेन यू गिव अवर योर फीडबैक, नेक्स्ट टाइम हम और अच्छे से कर सकते हैं एंड और अच्छे टॉपिक के साथ हम आपसे मिल सकते हैं. थैंक यू सो मच.
0: थैंक यू सो मच वंस अगेन. आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. सो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे एक बहुत ही खास बातचीत एक खास एक्सपर्ट के साथ. मेरा नाम आरजे आनंद है और आप ऐसे ही सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम, आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन. रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए. और फिलहाल अब मैं लेता हूं जाने की इजाजत. जल्दी मिलेंगे एक और नए एपिसोड में कुछ और नए खास मेहमान के साथ. तब तक के लिए स्टे ट्यून और स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ योर माइंड जस्ट लाइक योर बॉडी. वेल, अभी के लिए हैप्पीनेस के साथ एंजॉय करते रहिए आपके शहर अपना अमेजिंग रेडियो. बाय बाय, टेक केयर.
2: आज ब्लू है पानी पानी पानी.
3: अरे भाभी, आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो.
2: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं. खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ.
4: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद.
5: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं. बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान. पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद.
6: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
7: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर. 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद.
8: कॉल 8826213131.
9: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज. मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे. डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705.

0: हैदराबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: एक नए इतिहास के।
2: अरे भैया, खेती और फायदे का सौदा
3: और क्या। हमारे यूपी में पहले केवल पारंपरिक खेती होती थी, अब ट्रैक्टर्स, मॉडर्न मशीनों और डिजिटल तकनीकों की मदद से किसान और कृषि दोनों स्मार्ट हो गए हैं।
2: अच्छा
3: भैया, किसानों की बढ़िया ट्रेनिंग, आर्थिक मदद और प्रोत्साहन से यूपी में अनाज, दूध, पशुपालन, हर चीज का उत्पादन बढ़ चुका है।
2: अरे वाह,
3: सरकार का फोकस ही इस पर है कि किसानों को बढ़िया दाम मिले, बिचौलियों को छुट्टी मिले और कस्टमर को अच्छा सामान मिल पाए।
2: शुक्र है, डबल इंजन सरकार है।

0: ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टॉन्टन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। समाचार विस्तार से। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए 1 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति 1 महीने के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकन उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं।
1: पोर्टल शुरू होते ही इसे बड़े स्तर पर साइबर हमलों के जरिए इसकी सेवाओं को बाधित करने का प्रयास किया गया। CBSE ने बताया कि इन्हीं प्रयासों के क्रम में मात्र 2 मिनट में पोर्टल पर 15 लाख हिट दर्ज की गईं और अनधिकृत रूप से फाइलों तक पहुंचने के लिए 1 लाख से अधिक प्रयास किए गए। बोर्ड ने साफ किया कि उसकी टीमें पूरी सतर्कता और तत्परता के साथ काम कर रही हैं ताकि छात्रों को हर संभव सुविधा प्रदान की जा सके। छात्रों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर CBSE ने प्लेटफॉर्म में और कई सुधार किए हैं। इसके तहत प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और निर्बाध बनाने के लिए सेशन की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर वर्तमान में 8,000 से अधिक उपयोगकर्ता एक साथ काम कर रहे हैं। अब तक 16,000 से अधिक छात्र सफलतापूर्वक अपना मूल्यांकन जमा कर चुके हैं। पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। आनंद कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह के हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं।
2: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैंस लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
3: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
0: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्से रॉड्रिक्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्से रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि वो अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी।
4: विजिट ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट।
5: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर भी चर्चा होगी।
4: ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी, औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। उनके साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने स्वदेशी निर्मित वायु से सतह पर मार करने में सक्षम रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के दौरान मिसाइल सटीकता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO, भारतीय वायुसेना, रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विकास और उत्पादन भागीदारों तथा संबंधित उद्योग हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सफल परीक्षण स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी की बढ़ती परिपक्वता को प्रदर्शित करते हैं और उन्नत हथियार प्रणालियों में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवर, अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनके नियुक्तियों को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु और केरलम में अगस्त्यमलाई पारिस्थितिकी परिदृश्य के संरक्षित क्षेत्रों में अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए एक समयबद्ध अतिक्रमण उन्मूलन योजना तैयार करने और इसे प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि अतिक्रमण करने वाली सभी 118 वर्तमान और सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्यवाही शुरू की जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति राय बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू की सेवानिवृत्ति के बाद शुक्रवार से पदभार ग्रहण करेंगी। दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय गुप्ता ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें मंगीलाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल और यश यादव और धनंजय लोखंडे की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी। NTA ने 3 मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा रद्द कर दी थी। पुनर्परीक्षा 21 जून को निर्धारित की गई है। प्रसार भारती के डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वेव्स OTT की नवंबर 2024 में शुरुआत के 2 वर्षों से भी कम समय में पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि देश के सार्वजनिक डिजिटल मीडिया तंत्र के विकास में ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मंत्रालय ने कहा कि ये भारत और दुनिया भर के दर्शकों को विश्वसनीय, समावेशी और विविध सामग्री प्रदान करने वाले स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्मों को तेजी से अपनाए जाने को दर्शाता है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
3: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ।
4: 2-3 ब्रांचेस ऑल्सो।
2: वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है, जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचता है।
5: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास 1 रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी है। एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
2: वही मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गाँव तक पहुँच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री सीताराम इससे पहले गृह मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में कार्यरत थे, उन्होंने श्री राहुल सिंह का स्थान लिया है। सरकार ने श्री वरुण भारद्वाज को CBSE में सचिव के रूप में नियुक्त किया है। रूस ने कीव और यूक्रेन के अन्य शहरों पर ड्रोन और मिसाइलें दागी, जिसमें 21 नागरिक मारे गए और 100 से अधिक घायल हो गए। राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि देश में नागरिक बुनियादी ढांचे और ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाया गया। उन्होंने अमेरिका से यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइलें भेजने का भी आग्रह किया। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के अंतर्गत सेवारत 550 से अधिक भारतीय शांति रक्षकों ने संघर्षग्रस्त देश में नागरिकों की सुरक्षा और शांति स्थापना प्रयासों में उनके समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया गया। इनमें 53 महिलाएं शामिल हैं। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टॉन्टन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7066002430।
8: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
9: टायर लो सोना जीतो।
10: क्या?
9: जी हाँ,
11: चावला टायर
9: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए।
12: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड अपोजिट मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
13: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई।

0: नमस्कार, मुरादाबाद। आप सुन रहे हैं 89.6 मेगाहर्ट्ज़ और मैं हूं आपका दोस्त अखिल, और मेरे साथ हैं रीना। कैसी हैं रीना जी?
1: मैं बहुत बढ़िया हूं, आप बताओ कैसे हो?
0: मैं भी बिल्कुल मस्त हूं। मुझे फिर लग रहा है कि आज फिर आप नींदों में हैं।
1: मैं

0: वैसे आज क्या लेकर आए हैं आप?
1: मैं ये बताना चाहूँगा और कहना भी चाहूँगा कि जिंदगी में पैसा, शोहरत और सफलता सब जरूरी है, लेकिन सबसे खूबसूरत रिश्ता जो होता है वो होता है दिल का रिश्ता।
0: अच्छा हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, दिल का रिश्ता तो होता ही अच्छा है।
1: दोस्ती और प्यार दोनों ही जिंदगी को रंगीन बनाते हैं। और कुछ कहना भी चाहूँगा दोस्ती पे, दोस्ती वो नहीं जो तस्वीर में साथ दिखे, दोस्ती वो है जो तकलीफ में साथ दिखे। दिल से जो रिश्ता बन जाए उस शब्दों की जरूरत नहीं, सच्चे रिश्ते आंखों से भी पढ़ लिए जाते हैं।
0: अरे वाह, क्या बात है, बहुत ही प्यारी आपकी शायरी है। मुझे लगता है कि हम एक म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं।
1: हाँ, म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं, और उससे पहले आप सभी लोग हमें मैसेज करके बताइए कि कौन सा एक ऐसा आपका अच्छा दोस्त है जिसने आपकी जिंदगी भी बदली है। हमें मैसेज करिएगा 9837896896 पर।
0: ऐसे भी दोस्त होते हैं कि आपकी जिंदगी बदल दे।
1: बहुत।
0: क्या बात है, वेरी नाइस। तो चलिए श्रोताओं, आप मैसेज करिए और प्यारा सा गाना आप सभी के बीच।

0: मेरे साथ हैं। सो आप सभी को पता है कि दिल की बातें दिल तक पहुंचाते हैं, और आज मैं इसे जानना चाहूंगी कि क्या है आज आपके पिटारे में।
1: आज हमारे पिटारे में है तो बहुत कुछ, और उसमें आज हम जिस पे बात करेंगे वो है एक रिलेशनशिप में भरोसे की अहमियत कितनी होती है।
0: अच्छा, यानी कि भरोसे के ऊपर बात करने वाले, ट्रस्ट के ऊपर बात करने वाले।
1: रिश्ते जो होते हैं प्यार से ही नहीं, भरोसे से भी चलते हैं ना।
0: मुझे लगता है कि जब भरोसा है तो प्यार तो वो बरकरार रहता ही रहता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, अगर विश्वास हम लोगों का मजबूत है तो हर रिश्ता मजबूत है।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: छोटी छोटी सी जो गलत फहमी होती है रिश्तों को कभी कभी कमजोर कर देती है।
0: और मुझे लगता है कि चलो एक बार आपने ट्रस्ट तोड़ दिया तो एक बार तो हर कोई माफ कर देता है ना, लेकिन दूसरी तीसरी बार आप उसी चीज को दोहराएंगे तो प्यार तो रहता ही नहीं है, और ट्रस्ट तो मान लो आपके ऊपर नाम मात्र का हो जाएगा।
1: तब तो वो आप जानबूझ के कर रहे हो, सामने वाले को मजबूर कर रहे हो कि वो हाँ किसी तरीके से आपसे अपना जो है पीछा छुटा है। तो एक हल्की सी बात इस पे कहूँगा, मोहब्बत नाम है जिसका वो ऐसी कैद है यारो कि उम्र बीत जाती है सजा पूरी नहीं होती। तुम्हारी मुस्कान मेरी पहचान बन गई है, तुम्हारी खुशी ही मेरी जान बन गई है। अगर कोई भी रिश्ता बचाना चाहते हो तो हमेशा याद रखिएगा कि इसमें बातचीत बिल्कुल बंद ना हो।
0: ये तो बिल्कुल सही बात है, और जब बात बंद हो जाती है तो शक भी पैदा होना शुरू हो जाता है कि आखिरकार जो इंसान कल तक मुझसे बात करता था, मैसेज करता था, मतलब मेरी आवाज सुने और एक मैसेज करे बिना रह नहीं पाता था, आज वही इंसान मेरे पास कॉल मैसेज नहीं कर रहा है। इसका मतलब आपका पूरा शक तो उस पर जाएगा ही जाएगा, है ना।
1: थोड़ा बहुत तो जाएगा इस पे।
0: थोड़ा बहुत
1: हम थोड़ा बहुत इसलिए कहते हैं ना, थोड़ा बहुत तो कुछ तो उम्मीद रखी जाए कि कहीं ना कहीं तो शक को बचाया जाए।
0: मेरे जैसा इंसान है तो पूरा शक जाएगा।
1: तुम तो हुई शक्की।
0: हाँ सच में, मैं तो इतने मैसेज कर देती हूँ ना इंसान पागल हो जाए।
1: ऐसा किया है तुमने वैसे?
0: हाँ किया है।
1: कब?
0: मेरी फ्रेंड है।
1: तो फ्रेंड पे क्या शक रहा तुम्हें?
0: अरे शक ये था कि एक नई लड़की आ गई मेरे कॉलेज में। हाँ। तो उसके साथ घूमने लगी, मेरे पास पहले कहीं जाती थी तो चल रही ना चलते, और मतलब कुछ टाइम बाद लगा कि चल उसी के चल साथ चलते। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा ये क्या बात है, जहाँ भी जा रही इसी के साथ जा रही, तो बाद में चला कि वो स्कूटी सीखने जाती है उसके साथ। पहले बताया नहीं मेरे को, वो बोलती बेवकूफ तुझे नहीं पता मैं पैसे बचाने के लिए स्कूटी सीखने जाती हूँ, स्कूटी आएगी तो हम दोनों गेड़िया मारेंगे। मैंने कहा ओ तो तुझे पहले बताया।
1: ये तो मतलब कोड था एकदम जासूसी वाला कोड कि यार मैं कुछ सीख लेती हूँ, एक दोस्त से दूसरे दोस्तों खबर ना हो कि मैं कर क्या रही हूँ। बहुत ही शातिर थे, मतलब मैं तो आपकी उस दोस्त को कहूंगा, सल्यूट करूंगा, क्या शातिर बना उसने किया।
0: हाँ, तो आगे बताइए क्या है?
1: आगे यही है कि जो है हम हमेशा इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, मगर हम लोगों को इन चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए कि कैसे जो है अपनी बातों को, अपनी उन चीज़ों को नहीं एक दूसरे से इतना छुपाना चाहिए कि जो कभी कभी बाद में पता चलती है तो बहुत ही अजीब लगती है।
0: हाँ ये तो बिल्कुल सही कहा आपने कि बातें हमें नहीं छुपानी चाहिए। और हम लेते हैं यहाँ पे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद कनेक्ट होते हैं। आप सभी के बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आ रहे हैं, उनको भी शामिल करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत प्यारा गाना, सो गाना एंजॉय करते श्रोताओं, आप भी मैसेज करते रहिए। नंबर है 9837896896।

0: जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट।

0: रोड मुरादाबाद।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841।
4: टायर लो सोना जीतो।
5: क्या?
4: जी हाँ,
6: चावला टायर्स
4: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
6: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
7: अपोजिट
6: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
7: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई।

0: वेलकम बैक है सभी दोस्तों का 89.6 मेगाहर्ट्ज मुरादाबाद पर।
1: क्या बात है जी, आज इनका फास्ट है तो भैया लग रहा है कि इनकी आवाजें नहीं निकल पा रही हैं।
0: नहीं, आवाज़ तो अच्छे से निकलेगी। और अच्छे मतलब होता है ना, कभी कभी थोड़ा सा फास्ट जब होता है थोड़ा सा तो बंदे के अंदर बैटरी जो है आगे पीछे हाँ लो हो जाती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने।
0: हमारे पास मैसेज आया है गौरव जी का, और उन्होंने बहुत ही अच्छी शायरी में एक अपनी स्टोरी लिखी है, मैं बोलना चाहूँगा। मैंने कभी नहीं चाहा कि मैं किसी के लिए परेशानी बनूं, किसी के लिए बोझ बनूं, किसी के दुख का कारण बनूं। मैंने हमेशा लोगों को खुश देखना चाहा, खुशियों की वजह बनना चाहा।
1: क्या बात है।
0: पूरी ईमानदारी से हमेशा साथ दिया रिश्तों का, निभाया, फिर भी पता नहीं क्यों लोग मुझे मुझसे रूठ जाते हैं और दूर चले जाते हैं। अंत में हम ही क्यों बुरे बन जाते हैं। कितना भी करूं किसी के लिए कोई समझता ही नहीं, ना ही कोई कदर करता है। पता नहीं मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है। तो मैं तो गौरव जी से कहूंगा, गौरव जी आपने बहुत ही अच्छा लिखा है, और जहां तक मुझे लग रहा है ये बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि
1: दिल छू
0: हाँ,
1: जाने
0: दिल
1: वाली
0: छू
1: बातें
0: जाने
1: हैं,
0: वाली बात है।
1: क्योंकि
0: और
1: हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते रहते हैं कि रिश्ता अच्छा रहे, अच्छा बने रहे, मेरी तरफ से कोई भी दिक्कत ना आए, लेकिन जब वही इंसान को उसका फीडबैक एक गलत तरीके से मिलता है तो वो टूट जाता है।
0: तो यही कहूँगा गौरव जी, अभी क्या है कि ना, हम अगर अपनी ज़िंदगी की बात करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी सीख यही है कि सफलता और असफलता इन दोनों को कैसे साथ में, मतलब इनका साथ कैसे देखा जाए। एक सफलता हो गई, एक असफलता हो गई,
1: हाँ बिल्कुल।
0: और दोनों ही एक दूसरे के प्राय हैं। मतलब अगर सफलता है तो पहले असफल भी हुआ है। तो हर सफल और हर सफल इंसान के पीछे रीना जी कई असफलताएं छुपी होती है, मैं तो यही
1: वो तो
0: कहूँगा।
1: है, बिल्कुल सही कहा आपने, छुपी तो जरूर होती है।
0: अगर असफलता ना मिले तो सफलता की कीमत भी तो समझ में नहीं आएगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जो आप सफलता आपको मिल रही है ना, उसमें आपको संघर्ष तो करना पड़ता है। अहमियत तो तभी पता चलती है ना उस चीज़ के बारे में, उस काम के बारे में। अगर मान लो आपको कोई काम मिल रहा है तो आप मेहनत नहीं करो और वो काम आपको जल्दी मिल जा रही है तो आप उसकी कद्र नहीं करोगे। कद्र उस काम की होती है जिसके पीछे आपने बहुत मेहनत करी हो, डर बदर भटके हो, इज्जत उस काम की होती है।
0: बार बार आप प्रयास करें, सफलताएं मिलती रहेंगी,
1: वो
0: मगर
1: तो मिलती
0: अपने
1: रहती
0: प्रयास
1: है।
0: को पीछे आप
1: हाँ
0: ना
1: कभी
0: करें।
1: नहीं, मतलब मुझे लगता है कि प्रयास करने से पीछे नहीं हटना चाहिए हमें,
0: बिल्कुल
1: वो
0: सही
1: करते
0: कहा।
1: ही करते ही रहना चाहिए। आज नहीं तो कल आपको सफलता जरूर मिलेगी अपनी
0: और
1: लाइफ में।
0: जितने भी बड़े लोग, जितने भी कहते हैं ना, जो आज एक सफलता की सीढ़ी पे बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आप उनसे पूछेंगे
1: उनके पीछे के
0: तो वो
1: हिस्ट्री
0: भी हाँ, तो उनके यहाँ भी एक वो भी एक वही बात बोलेंगे कि मैंने कई बार फेल हुआ हूँ तब जाके मुझे कुछ
1: हाँ
0: लगा।
1: ये
0: और
1: बात सही कही
0: स्टिल
1: आपने।
0: आज भी वो लोग अगर इतने सफल हैं उसके बाद भी वो अपने आप को सफल नहीं मानते।
1: हम ना दूसरों को बहुत आसानी से कह देते हैं कि इसकी लाइफ बड़ी अच्छी होगी यार, लेकिन सच बताओ किसी कोई उसकी लाइफ के बारे में पूछ कर तो देखे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे।
0: जज करना एकदम पहली, मतलब आपने कवर से जज नहीं कर सकते कि अंदर उसकी किताब में क्या है।
1: हाँ इसीलिए किसी इंसान को जज करने से पहले उसका परखा जाता है, क्या करा है उसने, क्या नहीं करा है।
0: मतलब गौरव जी आपने बहुत ही अच्छी बात कही थी, और मैं भी आपके लिए एक बात कहना चाहूँगा। हार कर बैठ जाना मंजिल नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी
1: कभी
0: हार
1: हार
0: नहीं
1: नहीं
0: होती।
1: होती। क्या बात
0: गिरना
1: है।
0: भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तो अपनों का भी पता चलता है। तो याद रखिए, असफलता अंत नहीं है बल्कि सफलता की एक शुरुआत है।
1: क्या बात है जी,
0: और हमेशा उनको याद रखिए जो आपके असफल समय में आपके साथ
1: साथ
0: रहे
1: हो।
0: हैं। तो उनका तो हमेशा होता ना, एक नाम जैसे याद आया तो एक चेहरे से बड़ी प्यारी सी स्माइल आ जाती है, अरे हाँ यार ये तो कम से कम है मेरे साथ।
1: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। तो श्रोताओं, आपके पास भी कोई ऐसा दोस्त, कोई मतलब आपके लाइफ में कोई ऐसा हो जो आपके साथ दुख में भी साथ हो, सुख में भी साथ हो, तो आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं। नंबर है 9837896896। फिलहाल एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद कनेक्ट होते हैं आप सभी।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।

0: हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है। और साथ ही साथ समय की बात करूँ तो 9:44 हो चुके श्रोताओं, और आप घर बैठकर आराम से छत पर बैठकर अगर हमें सुन रहे हैं तो मैसेज करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये जो बाहर का भी वेदर की बात करूँ तो बहुत अच्छा मौसम है, ठंडक मौसम है, और ऐसे मौसम में ना मज़ा आता है। मतलब सच बताओ, जिस दिन से बारिश हुई है ना, मौसम ने तो कमाल ही कर दिया। भले ही दिन में गर्मी तो हो जाती है क्योंकि धूप निकलती है ना उस टाइम, लेकिन शाम होते होते माहौल थोड़ा शांत हो जाता है,
1: थोड़ा शांत भी हो जाता है और थोड़ा सा आशिकाना भी हो जाता है।
0: अय हाय, क्या बात है जी, आशिकाना हो जाते भैया। ये इनकी बातें तो जरूर करेंगे क्योंकि ये बातें करते दिल से दिल तक, यानी कि टूटे हुए दिल के शायरी लेकर आते हैं, दिल को जोड़ने का काम करते हैं, मलहम लगाने का काम करते हैं। अब ये बात पता चलता है कि किनके दिल पर मलहम लगता है, और अगर आपके दिल पर मलहम लगता है तो हमें मैसेज जरूर करिए। अगर आपका दिल टूटा हुआ तो भी मैसेज करिए।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, प्यार जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास होता है। तो एक बात बताइए रीना जी, जैसे कहते हैं ना कि प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं, निभाने का नाम है।
0: अरे ये तो बहुत बड़ी बात कह दी।
1: तो इसके बारे में कुछ आप बताना चाहें, कुछ बोलना चाहें?
0: मैं तो कहना चाहूंगी, मतलब आज के टाइम का प्यार ना बहुत ही रेयर इंसान होता है जो निभा पाता है, अदरवाइज निभा आज के टाइम में। क्योंकि बात ये ना कि आजकल हम इंसानों के अंदर मैं शब्द आ गया, यानी कि मैं बड़ा हूँ। पहले क्या होता था, अगर मम्मी पापा के रिश्ते की बात करो तो उनका रिश्ता लॉन्ग टर्म क्यों चलता था, आज की शादी इतनी नहीं चल पाती। क्यों भाई, गुस्सा इतना आ जाता है कि क्यों बोल दिया मेरे को, कुछ भी मैं नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती। तो देखिए, अगर आपके बीच में प्यार है तो थोड़ा बहुत तो सहन आपको करना ही पड़ेगा, है ना।
1: ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही, अपने आप को इतना भी शॉर्ट टेम्पर नहीं रखना होगा कि सामने वाला ज्यादा ही टेम्पर हो जाए।
0: बिल्कुल,
1: एक बात कहना चाहूंगा इसी के ऊपर, फिर से कुछ जो है ना लुढ़कता पुढ़कता मेरे अंदर से आ रहा है कुछ। तेरी मुस्कुराहट मेरी पहचान है, तेरी खुशी ही मेरी शान है। कुछ लोग जिंदगी में ऐसे मिल जाते हैं जैसे अधूरी दुआ पूरी हो जाती है। तो इस कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ लोग ऐसे मिल गए आपको कि मांगा आपने, और कहते हैं ना भैया इसको तो जो मांगा इसे वो दे दिया,
0: क्या बात है,
1: तो वो आपकी दुआएं भी कबूल हो जाती हैं। और अगर प्यार सच्चा हो ना तो दूरी भी रिश्तों को कमजोर नहीं कर सकती। कैसे कहेंगे आप, है आपका कोई दूर का रिलेशनशिप?
0: अरे बहुत है,
1: है? बहुत है,
0: है? अरे कॉलेज टाइम वाला दोस्त वाला है। लेकिन मेरे पास, हमारे पास ना एक मैसेज आता है।
1: हाँ हाँ,
0: ये कनेक्ट होते हैं, गुड मॉर्निंग जिला रामपुर ग्राम खेड़ा टांडा से मोहम्मद कामिल जी कनेक्ट होते हैं।
1: इनकी गुड मॉर्निंग चल रही है अभी।
0: इन्होंने लिखा है, ओ गुड इवनिंग, लगता है कि मैं नींद में हूँ। तो ये लिखते हैं, हम आपके प्यार में कुछ ऐसा कर जाएंगे, हम आपके प्यार में कुछ ऐसा कर जाएंगे, बनकर खुशबू इन हवाओं में बिखर जाएंगे।
1: क्या बात है।
0: भुलाना अगर चाहो तो सांसों को रोक लेना, वरना सांस भी लेने लोगे तो दिल में उतर जाएंगे।
1: क्या बात है, बहुत ही गहरी वाली बात है इनकी।
0: बेशक वो नहीं करती बात, फिर भी उससे मिलने को दिल बेकरार क्यों है, उनकी याद तो अब रात को सोने भी नहीं देती। क्या बात है, जाने हमको उससे कितना प्यार क्यों है।
1: क्या बात है, इन्होंने तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया प्यार पे। तो यही है, अगर भरोसा होगा तो दूर रह के भी आप पास हैं, और अगर भरोसा नहीं होगा तो पास रह के भी आप दूरियां बना जाती हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है जी।
1: तो आपके पास भी ऐसा कुछ भरोसे वाला नाम है तो जरूर हम लोगों को शेयर करें। 9837896896।
0: देखिए श्रोताओं, आपको ये था ना कि भैया टूटे दिल का मलहम लगाने वाला कौन है, तो अखिल जी अब डेली लेकर आते हैं आप सभी के लिए 9 बजे दिल की बातें दिल तक। तो आपके दिल में भी कोई बातें हैं तो प्लीज शेयर करिए, म्यूजिकल नंबर 9837896896। चलिए एक म्यूजिकल ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं जी।

0: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आरजे रीना के साथ और अखिल मेरे साथ है। सो अब हमारा जाने का भी टाइम है ना।
1: हाँ,
0: मतलब जाने का टाइम हो गया है। और समय की बात करूँ तो भैया, समय पूरी अपनी कगार पर होती है, यानी कि 9:54 हो चुके हैं।
1: तुम
0: मैं
1: तो
0: क्यों जाती हूँ 54, 85, 88 में।
1: मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। मैं ना एक बार जैसे 1, 2, 3 करके मैं गिनता रहता हूँ, तो एक नंबर है जैसे 30 के बाद जो है ना, जैसे अगर 30 पूरे हो गए तो 30 के बाद जो है 31, 32, 33 पे आ जाता हूँ।
0: हम हिंदुस्तान में ही है ना।
1: हाँ, मतलब ऐसे करके मेरे को कभी कभी होता है। हर एक के साथ कुछ ना कुछ है। कुछ लोग पूरा बोल जाते हैं,
0: 69 को नहीं पता हिंदी में क्या बोलते हैं। मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ, मतलब 69 तो कमजोरी है मेरी लाइफ में।
1: चलो जी साहब, 69 का भी ध्यान रखा जाएगा।
0: अच्छा, जाते जाते क्या सुनाने वाले?
1: अभी हमने बात की थी दोस्ती की, रिश्तों की, प्यार की, सफलता और असफलता की भी। तो जो अब हम जो है ना, अब जब लास्ट में अब जाते समय बात करेंगे कि आप अपनी जो जिंदगी है बहुत ही छोटी है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा समय तो हमें अपने को देना पड़ेगा, थोड़ा सा रिश्तों को संभालिए और थोड़ा जो अपने सपने हैं ना उनके पीछे भागिए।
0: क्या बात है। और मुझे लगता है कि सपनों के पीछे भागना बहुत ज़रूरी है। जब आप अपने सपनों के पीछे भागते हैं ना, तो आप अपनी ज़िंदगी में जो करना चाहते हैं वो आप कर लेते हैं, यानी कि सक्सेसफुल हो जाते हैं आप। अदरवाइज जो हार मान लेते हैं, फिर तो उनके लिए कोई शब्द नहीं।
1: ये बात भी बिल्कुल सही कही आपने। जो आपने सोच रखा है, जो आप करना चाहते हो, वो तो आपको उसके लिए तो थोड़ा बहुत भागना पड़ेगा ही।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है।
1: और मैं उसी से संबंधित एक फिर से लोट पोट होके मेरे अंदर से एक शायरी आ रही है।
0: लुढ़क के आती है।
1: हाँ, लुढ़क पुढ़क की एक शायरी आती है मेरे अंदर से। रिश्ते मोती की तरह होते हैं, अगर कोई मोती टूट जाए तो उसे झुककर उठा लेना चाहिए।
0: क्या बात
1: है। सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते।
0: खुली आंखों से देखी जाती है।
1: हाँ, इसका मतलब आप जो है खुली आंखें से सोती हैं। दिल से निकली दुआ है हमारी, खुशियों से भरी रहे जिंदगी तुम्हारी।
0: क्या बात है।
1: जो दो दोस्त गाड़ी में बैठ के इस समय बैठ के चल रहे हैं ना अपने घर की तरफ, तो वो भी यही सोचोगे, हाँ यार आज क्या क्या बातें हो गई है।
0: रिश्तों की शुरुआत ही ऐसी होती है ना, तो बातें तो होती है, जरूर होती है।
1: इसी खूबसूरत संदेश के साथ मैं, अखिल और रीना आज लेते हैं आपसे विदा, और फिर मिलेंगे हम एक नए अंदाज और एक नए विषय के साथ। तो सुनते रहें मुरादाबाद FM 89.6 मेगाहर्ट्ज़,
0: रेडियो बजाते रहें
1: और गुनगुनाते रहें।

0: उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। ये सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थी के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
1: We categorically reject.
2: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
1: Desist from making any comment on them.
0: वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगी। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपुकोसा माशातिले से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी, औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ तथा वायुसेना ने स्वदेश निर्मित वायु से सतह पर मार करने में सक्षम रुद्रम ट्रू मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के दौरान मिसाइल सटीकता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ, भारतीय वायुसेना, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विकास और उत्पादन भागीदारों तथा संबंधित उद्योग हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। प्रसार भारती के डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म विब्स ओटीटी की नवंबर 2024 में शुरुआत के 2 वर्ष से भी कम समय में पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया है कि देश के सार्वजनिक डिजिटल मीडिया तंत्र के विकास में ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मंत्रालय ने कहा है कि ये भारत और दुनिया भर के दर्शकों को विश्वसनीय, समावेशी और विविध सामग्री प्रदान करने वाले स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्मों को तेजी से अपनाए जाने को दर्शाता है। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे शुरू होगा। श्रृंखला का पहला मैच भारत ने 38 रन से जीता, वहीं दूसरा मैच इंग्लैंड ने 26 रन से जीतकर श्रृंखला को 1-1 से बराबर कर दिया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: टू गांधीनगर मुरादाबाद।
4: टायर लो सोना जीतो।
5: क्या?
4: जी हाँ, चावला टायर और योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
6: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
7: अपोजिट
6: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412221111।
7: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई।

0: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
0: कॉल 7500153841।

0: और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
2: अरे भाभी, आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
1: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
3: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
4: 9 साल विश्वास के, एक नए इतिहास के।
5: अरे भैया, खेती और फायदे का सौदा।
6: और क्या, हमारे यूपी में पहले केवल पारंपरिक खेती होती थी। अब ट्रैक्टर्स, मॉडर्न मशीनों और डिजिटल तकनीकों की मदद से किसान और कृषि दोनों स्मार्ट हो गए हैं।
5: अच्छा
6: भैया, किसानों की बढ़िया ट्रेनिंग, आर्थिक मदद और प्रोत्साहन से यूपी में अनाज, दूध, पशुपालन, हर चीज का उत्पादन बढ़ चुका है।
5: अरे वाह,
6: सरकार का फोकस ही इस पर है कि किसानों को बढ़िया दाम मिले, बिचौलियों को छुट्टी मिले और कस्टमर को अच्छा सामान मिल पाए।
5: शुक्र है, डबल इंजन सरकार है।

हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

आवाज की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: इतिहास के।
1: नव निर्माण के 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश बना कनेक्टिविटी का केंद्र। 22 एक्सप्रेसवे, 90 राष्ट्रीय राजमार्ग, 16,000 किलोमीटर रेल नेटवर्क, हर क्षेत्र में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर।
2: जलमार्ग, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और एयरपोर्ट निवेश विकास को दे रहे नई दिशा। रेल, रोड, जलमार्ग और एयर कनेक्टिविटी हर नागरिक को जोड़ रही है विकास से। गर्व है इस बदलते उत्तर प्रदेश पर।
1: 2 से 22 एक्सप्रेसवे, बेहतर सड़कें, तेज कनेक्टिविटी, हर शहर हर गांव जुड़ रहा है विकास से। रेल, रोड और जलमार्ग बना रहे हैं उत्तर प्रदेश को मजबूत।
2: कनेक्टिविटी से समृद्ध, यही है नए उत्तर प्रदेश की पहचान।

आवाज की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।